ओम शांति। हम प्यार के सागर की संतान हैं, तो नेचुरल रूप से हम प्यार से भरपूर हैं। हमें किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं। हम प्यासी नजरों से चारों नहीं निहारेंगे कि कोई हमें प्यार करे, बल्कि हम तो प्यार के दाता हैं, क्योंकि हमारा बाबा प्यार का सागर है। तो आइए हम अपने व्यवहार में प्यार को बहुत बढ़ाएं, अभिमान को छोड़ दें, कटुता को छोड़ दें, सदा स्ट्रिक्ट रहने की भावना को छोड़ दें। जो सदा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं वो प्रेम स्वरूप को भूल जाते हैं, वो दूसरों को सदा ही टाइट रखते हैं, इसलिए उनके समीप कोई भी आना नहीं चाहता। भले ही हमारे सिद्धांत बहुत सुंदर हैं, लेकिन सिद्धांतों की पालना प्रेम की शक्ति के द्वारा ही कराई जा सकती है, स्ट्रिक्ट होकर नहीं। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वेच्छा से धारणाओं को न अपनाए, तब तक वो धारणाएं उसके अंदर जाएंगी भी नहीं। मान लो सवेरे उठना बहुत स्ट्रिक्टता से कोई करता और कराता है, तो उठने वालों को उसका आनंद नहीं आएगा। लेकिन परमात्म प्यार में सवेरे हम उठें, स्वेच्छा से उठें, महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठें, तो सहज ही ईश्वरीय रसों की अनुभूति होगी। हम अपने प्यार में दूसरों को आगे बढ़ाएं। ये प्यार बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे और शक्तियां हमारे पास हैं, वैसे ही प्यार की, स्नेह की शक्ति भी हमारे पास है। हम सिर्फ शक्तियां हैं। हमें प्यार की दृष्टि देकर दूसरों के विकार नष्ट करने हैं। हमें प्रेम के बोल बोलकर दूसरों के दुख हरने हैं। हमारी भावनाओं में भी प्रेम हो, हमारे व्यवहार में भी प्रेम झलकता हो, ताकि सभी लोग ये सच्चे दिल से कह सकें कि ये तो प्यार के सागर की संतान है। लेकिन ये प्यार, असली प्यार तब बनता है जब ये प्यार आत्मिक प्रेम हो जाए। अगर हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दूसरों को हमारे प्रेम के वाइब्रेशंस जाएंगे। अगर हम स्वयं देह से न्यारे रहेंगे तो संसार की सभी आत्माओं का प्यार हमें प्राप्त होगा। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी हमें बहुत प्यार करेगा। तो हम अपने चित्त से कड़वाहट को निकाल दें, नफरत को निकाल दें, घृणा ईर्ष्या द्वेष को निकाल दें, अवगुणी दृष्टि को समाप्त कर दें, क्योंकि यही सब चीजें हमारे प्रेम स्वरूप को नष्ट करती हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हमने पहले ही कोई अवगुण अपने चित्त पर रख लिया हो, तो हमारे बोल उसी अनुसार निकलते हैं। जिसके लिए हमारे मन में ईर्ष्या हो, तो हमारे बोल भी उस अनुसार निकलते हैं। इसलिए अपने मन में सभी के लिए निर्मल स्नेह पैदा करें। हम याद रखें, संपूर्ण स्वरूप में सभी आत्माएं बहुत गुणों से संपन्न हैं। और दूसरी बात याद रखें, ये सब हमारे हैं। जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, जिनसे हम नफरत करते हैं, जिन्हें हम गिराना चाहते हैं, वो तो सब हमारे हैं। अपनों से कैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर जरा एक नज़र डाल लें। तो आइए हम प्रेम स्वरूप बनकर प्यार के सागर को प्रत्यक्ष करें। और आज सारा दिन ये याद रखेंगे, मैं प्रेम से भरपूर बहती गंगा हूँ। मेरे सामने जो भी आएगा वो ईश्वरीय प्यार को अनुभव करेगा। मुझसे सभी प्यार की सौगात लेकर जाएंगे, मीठी दृष्टि लेकर जाएंगे, दो मधुर वचन सुनकर जाएंगे, ईश्वरीय वरदान लेकर जाएंगे। और
बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह को छोड़कर चलती हूँ परम धाम में, प्यार के सागर को टच करती हूँ, कुछ देर उसके पास बैठ जाती हूँ, उससे प्यार के वाइब्रेशंस भरकर नीचे आती हूँ इस देह में, फिर मैं आत्मा ऊपर वापस जाती हूँ। बाबा प्यार का सागर है, इस संकल्प से उसके साथ बैठ जाती हूँ, हमें प्यार के वाइब्रेशंस भरते जाएंगे, फिर मैं आत्मा नीचे आती हूँ अपनी देह में। ये अभ्यास सारा दिन करेंगे। ओम शांति।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। लोग खुद पर कोई लेबल लगाया जाना पसंद नहीं करते। लेबल के साथ उनका अहम उलझ जाता है। लेबल लोगों के दिमाग को ठप कर देते हैं। लेबल के रूप में जो कुछ भी किया जाता है उसे कभी खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया जाता। आप किसी को बताएं, हरी पत्तेदार सब्जियां तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेंगी, तो वह उन्हें अपने भोजन में शामिल कर लेगा। लेकिन अगर आपने कहा, एक पक्का शाकाहारी होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी शुरू कर देनी चाहिए, तो वह इस मुद्दे पर आपसे बहस करना शुरू कर देगा। शाकाहारी वाला लेबल ही यहाँ समस्या बन गया है। यदि आप किसी से कहते हैं कि उसे माफ कर दो, जो हमें ठेस या चोट पहुंचाते हैं उसे भी प्रेम करो, तो हो सकता है कि वह आपकी बात पर ध्यान दे। लेकिन यदि आपने कुछ इस तरह कहा, एक सच्चा ईसाई होने के नाते मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि उसे माफ कर दो और अपने दुश्मन को भी प्रेम करो, तो इससे आप खुद ही उसके अगले शत्रु बन जाते हैं। ईसाई वाला लेबल ही यहाँ समस्या बन गया है। मान लीजिए आपने किसी से कहा कि कितना अच्छा हो अगर हमारे हवाई अड्डों की व्यवस्था और बेहतर हो जाए, तो वह आपके दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। लेकिन अगर आपने यह कह दिया कि सिंगापुर में रहकर मैंने देखा है कि चीजों को व्यवस्थित कैसे रखा जा सकता है, काश कि हमारे हवाई अड्डे और व्यवस्थित होते, तो इसे आपका विदेश प्रेमी होना माना जाएगा। आपका रोटरी का सदस्य बनना आपके साथी को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ब्राह्मण विरोधी है तो कोई असम से आए लोगों को विश्वसनीय नहीं मानता है। सबको एक ही पैमाने पर नापने वाली ये सब मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां ही तो हैं।

यह एक मानवीय दुर्बलता है, किसी लेबल के साथ, किसी उपनाम के साथ जब आपका आमना सामना होता है तो आप खुद को कुछ छोटा महसूस करने लगते हैं। इसीलिए अपने बचाव में आप अपनी पूरी शक्ति से उठ खड़े होते हैं। पता नहीं क्यों लेबलों के साथ इंसान किसी न किसी जटिलता से पीड़ित हो जाता है। उसे आपसे कोई समस्या नहीं होती, उसकी समस्या उस चीज से है जिसका प्रतिनिधि बनकर आप उसके सामने होते हैं। पद, प्रतिष्ठा, धर्म आदि आदि। हमें किसी लेबल की जरूरत ही क्या है? क्या वह कोई पद है जिससे आप गौरवान्वित होते हैं, या फिर वह आप हैं जिससे वह पद गौरवान्वित होता है? क्या कुर्सी को आपकी जरूरत है या आपको कुर्सी की जरूरत है? यदि केवल कोई लेबल या कोई उपनाम ही आपका परिचय है तो फिर किसी लेबल के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। जो भी व्यक्ति केवल किसी लेबल या उपनाम के बल पर रहता है वह कभी गहरे और घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता। आप यदि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उस लेबल का महत्व बढ़ता है तो फिर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। गहरे और घनिष्ठ संबंधों का शुभारंभ इसी से होता है। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, जिज्ञासु ने आग्रह किया। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, गुरु ने पूछा। रामचंद्र राव, यह तो तुम्हारा नाम है, इसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो, गुरु ने फिर कहा। मैं एक व्यापारी हूं। वह तो तुम्हारा व्यवसाय है, उसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक पुरुष हूं। वह तो तुम्हारा लिंग भेद है, उसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो। गुरुदेव, इससे आगे मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अब ठीक है, किसी जिज्ञासु की यात्रा का पहला चरण यही होता है। जब आप अपने सारे लेबल हटा देते हैं और विशुद्ध आप ही रह जाते हैं, वही हर चीज की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु होता है। आपका बिजनेस कार्ड पुजारी को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईश्वर के आगे वह निरर्थक है, गुरु ने दृढ़ता पूर्वक कहा। अपने लेबल हटाकर खुद की और दूसरों की मदद करें। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। केवल विशुद्ध आप, हर चीज की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु। जब आप जैसे आप हैं अपने आप के लिए पर्याप्त होते हैं, तब आप आजाद होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। यही है वास्तविक आजादी। लोहे की एक छोटी सी छड़ का मूल्य होता है 250 रुपये। इससे घोड़े की नाल बना दी जाए तो इसका मूल्य हो जाता है 1000 रुपये। इससे सुइयां बना दी जाएं तो इसका मूल्य हो जाता है 10000 रुपये। इससे घड़ियों के बैलेंस स्प्रिंग बना दिए जाएं तो इसका मूल्य हो जाता है 1,00,000 रुपये। आपका अपना मूल्य इससे निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि आप में खुद को क्या बनाने की

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आप यह तो नहीं जानते कि आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई में कितना धन खर्च हुआ, लेकिन अपने स्कूल कॉलेज की यादें आपके मन में बसी ही रहती है। अब से कुछ साल बाद आप भूल जाएंगे कि अस्पताल में आपका कितना खर्च हुआ, लेकिन आप उन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे कि आप अपनी माँ का जीवन बचा सके थे या नवजात के रूप में एक नया जीवन अपने साथ ला सके थे। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे, खर्च हुआ धन याद नहीं रहेगा, लेकिन अपने परिवार के साथ बिताए उन पलों की सुखद अनुभूति को आप आजीवन भुला नहीं पाएंगे। खर्च याद नहीं रहता, अनुभूति याद रहती है। अच्छा समय और बुरा समय, अमीरी के दिन और गरीबी के दिन, वह समय जब आपको अपना भविष्य सुरक्षित दिखता था और वह समय जब आप यह भी नहीं जानते थे कि कल का सवेरा होगा भी या नहीं। किसी न किसी रूप में हर एक को उतार चढ़ाव और उथल पुथल वाले समय से गुजरना ही पड़ता है। अच्छे दिनों के बाद और बुरे दिनों के बाद जो बचा रह जाता है वह है उन दिनों की अनुभूति की यादें। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है और कभी जेब में फूटी कौड़ी भी ढूंढे नहीं मिलती। कभी कभी आपके पास बहुत कुछ होता है लेकिन आपके माथे पर बल पड़े रहते हैं। कभी कभी आपके पास जो है वह आपके लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन आपके होठों पर मुस्कान खिली रहती है। आज अतीत में झांकते हुए किसी के साथ बीते अच्छे दिनों के आभार स्वरूप आपकी आंखें नम हो सकती हैं, और कभी आप अकेले में रोए थे यह याद करके आप मुस्कुरा भी सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन ने आपको ढेर सारे अनुभव दिए हैं जिनसे आप अपना इतिहास लिख सकते हैं, लेकिन उस सब को आप अकेले ही याद कर सकते हैं।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

पहली बार किसी के हाथ का सहारा लिए बिना जब आपने साइकिल अपने आप चलाई थी, अपने बच्चे के रोने का वह पहला स्वर, वह पहला कदम, वह पहला शब्द, वह पहला उपहार जो आप अपने माता पिता के लिए लाए थे और वह पहला उपहार जो आपके बच्चों ने आपको दिया था। मंच पर आपका वह पहली बार आना, तालियों की वह पहली गड़गड़ाहट, वह पहला पुरस्कार, इस सूची का कोई अंत नहीं है। समय की मार से अनछुई रहने वाली अनुभूतियां ही अनुभूतियां। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर भौतिक वस्तु का मूल्य धन है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि किसी अनुभूति के लिए चुकाया गया धन तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उस अनुभूति को कभी नहीं भूल पाते। क्या हुआ यदि थोड़ी आर्थिक तंगी है? उसे रहने दें, लेकिन अपने जीवन की गुणवत्ता में कमी न आने दें। अपने माता पिता को यदि आप तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उन्हें मंदिर तो ले ही जा सकते हैं। अपने बच्चों को किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नहीं ले जा सकते, तो किसी स्थानीय पार्क में जाकर उनके साथ खेल तो सकते हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का, नेतृत्व गुणों वाले अधिक से अधिक कर्मचारी तैयार करने का और अच्छे समय के लिए अपनी चाल तेज कर देने का सही समय यही है। और हाँ, आपका स्वास्थ्य, ज्ञान का विकास और आध्यात्मिक उत्थान जैसे पहलू आर्थिक दशा पर तो कभी निर्भर नहीं रहते। समय बीत जाएगा, आर्थिक स्थिति फिर पटरी पर आ जाएगी, मुद्रा फिर मजबूत हो जाएगी, लेकिन इस सब में हम नहीं चाहते कि आप पीछे मुड़कर देखें और पाएं कि यह समय आपने निराशा, हताशा और उदासी में करवटें बदलते हुए बिताया है। धन का अभाव आपको धन से वंचित रख सकता है, लेकिन इसके कारण खुद को अनुभवों से वंचित ना होने दें। जो आपके पास है, यदि उससे आप सुखी नहीं हैं, तो आपके पास चाहे जितना आ जाए, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकेंगे। जीने की कला का सूत्र यह बना लें, मेरे सुख की अनुभूति इस पर निर्भर नहीं करती है कि मेरे पास क्या है और कितना है। जन्म के समय आपका जीवन एक कोरा कैनवास था, फिर आपकी सामर्थ्य के रंग और आपके चयन की कूची इस कैनवास को चित्रित करते रहे। मृत्यु के समय यह कैनवास या तो एक बहुमूल्य श्रेष्ठ कृति होगा या लापरवाही वाली एक उठपटांग किचपिच। वही दिन यह निर्णय करेगा कि आप अपने जीवन को चित्रित करने में कितने कुशल रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम तो यही शुभ आश रखते हैं, आप अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के हर पल को अच्छी अनुभूति के साथ जिए और अपने जीवन को ऐसे अलग अलग रंगों से रंगते हुए और अपने जीवन के कैनवास पर इन अलग अलग रंगों से सुंदर चित्र बनाए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से मनुष्यों ने चिंतन किया है। आज हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में भी कहते हैं। स्वास्थ्य को सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में नहीं देखा जाता, मगर मानसिक, सामाजिक, इन सभी आयामों को देखकर स्वास्थ्य को गिना जाता है। आज स्वास्थ्य की समझ धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ती तो जा रही है, मगर स्वास्थ्य को लेकर हम कितने समझदार बने हैं ये भी सोचने वाली बात है। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, भले वो प्रदूषण हो या भले दौड़ती भागती जिंदगी के नए डिमांड्स हो या फिर टेक्नोलॉजी जो हमें घेरती हुई जा रही है, उन सब के चलते हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये भी जानने योग्य बात है। आइए स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर आज चर्चा करते हैं जिससे हम ये समझते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं और किन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी बात पर आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आजकल जानकारी की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आज हम इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और हमें लगता है कि भाई जितना हमने पढ़ा है वो सब कुछ सही है या वो हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, और उसी आधार पर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यहाँ वहां से पढ़ी हुई या सुनी हुई चीजें, सोशल मीडिया से भी ली हुई चीजें फॉलो करने लगते हैं या लोगों को बताने लगते हैं कि मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने वीडियो में ये सुना और आपको ये करना चाहिए, ऐसे ही लोग कह देते हैं। ये जाने बगैर कि जो व्यक्ति वो बात कह रहा है वीडियो में या फिर जो व्यक्ति वो बात लिख रहा है सोशल मीडिया पर या मीडिया में, वो कितना इस विषय का जानकार है या विशेषज्ञ है, इसकी बारे में कोई जांच पड़ताल किए बगैर लोग ये सब कुछ करने लगते हैं। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं डॉक्टर साहब?
1: ज्ञान पहले पुस्तक से मिलता था, यानी व्यक्तित्व से मिलता था, अपनों से, बड़ों से मिलता था। ब्रह्म कुमारी इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि वो ज्ञान लेने के लिए उम्र का लिहाज नहीं करते हैं। अगर आपसे उम्र में कोई छोटा भी हो और अच्छी बात कर रहा हो तो उसको एक ऊंचा स्थान दिया जाता है और उसकी बात सुनी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है और सबको जो अच्छी बात होती है उसको प्रोपोगेट भी किया जाता है। इसी के इतर एक बड़ी पुरानी बात है या एक मुहावरा है, पोथा चना बाजे घना। आप एक चीज नोटिस करिए कि जो एथलीट्स बहुत अच्छा जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं या आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, उनको फॉरेन में कॉन्टर्शन आर्टिस्ट बोला जाता है। वो अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, इधर से टेढ़ा कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। जब वो आर्टिस्ट या जो आदमी जो बहुत लचीला होता है वो आसन करने लगता है तो हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, अरे वाह कितना अच्छा आसन, अरे बाप रे इसने तो अपना नाक दोनों घुटनों के बीच में रख दी, अरे इसने तो अपना दोनों पंजा जमीन पे छुला दिया, इसके पूरे घुटने सीधे हैं, कमर से पूरा झुक गया या झुक गई। हम भूल जाते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब पतंजलि योग सूत्र में एक लाइन लिखा है, स्थिर सुख आसनम। उन्होंने कहीं भी उस पूरी किताब में ये नहीं लिखा कि जब तक आपकी नाक दोनों घुटनों के बीच में नहीं जाएगी या दोनों हाथ आपका जमीन पे नहीं छुएगा तब तक आपको आसन का फल नहीं मिलेगा। लोग आजकल दिखावटी चीजों पे ज्यादा जाने लगे। जितने भी लोग पतले दुबले हैं वो डाइट का ज्ञान देने लगते हैं इंटरनेट, और लोग उसे सुनते भी हैं। और हम लोग यहाँ चिकित्सालय चला रहे हैं, मालूम चलता है कि भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, कुछ खाते ही नहीं है, पेट साफ ही नहीं होता है, मगर ऊपर से बड़ा अच्छा दिखते हैं। कितने लोगों को थायराइड की परेशानियां हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से उनका वजन बढ़ ही नहीं पाता है। वो सारे लोग बैठकर कि पतला कैसे रहा जाए, क्या खाया जाए, उसकी बात करते हैं। किसी ने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि मैंने एपिगैमिया योगर्ट खाया, ग्रीक से आया। अगर हम योगर्ट की बात करते हैं तो टेक्निकली दही की बात होती है, जिसको अंग्रेजी में योगर्ट कहा जाता है। अभी आप बोलिए कि दही खा लो बेटा, टमाटर मिलाकर पेट साफ हो जाएगा, दही खा लो, खीरा सलाद डाल के अच्छा एक सैलेड बन जाएगा, सलाद बन जाएगा, तो बड़ा अजीब लगेगा सुनने में। अभी यही बोलिए योगर्ट में फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल सैलेड विद, अब मैं बहुत धनिया पत्ता डालिए, आपके कुरियंडर लीव्स का डेकोरेशन करके, तो हम अब वो ज्ञान लेने लगे हैं जो सुनने में सुंदर लग रहा है, और हम एकदम नहीं चेक कर रहे हैं कि वो ज्ञान दे कौन रहा है। हमारे भारत की एक बहुत सफल अभिनेत्री ने अपना एक योगा करते हुए सीडी निकाला था, और 2-3 साल उस सीडी की बड़ी परिचर्चा हुई। उन्होंने एक बहुत बड़े योग गुरु के साथ भी वो आसन किए थे और बड़े लोगों ने उसकी तारीफ की, पर इस बात को अब 6-7 साल 8 साल हो चुका है। अब कोई भी उनका नया योग करते हुए न वीडियो आया है, न योग करते हुए कोई उनका लेक्चर आया है। तो मैंने ये चीज और नोटिस की है कि लोग थोड़े दिन के लिए वो ज्ञान देने लगते हैं। क्यों मैं एक एक्सपर्ट के पास या एक आदमी जिसके पास सही ज्ञान हो उसके पास जाने की राय देता हूं? क्योंकि वो अपना जो ज्ञान देता है आपको, वो आपके हिसाब से आपको देता है। बहुत से लोग जो टीवी के सामने बैठ के कोई योगासन करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, आपके पास संसाधन नहीं है। कोविड के समय सब लोगों ने ऑनलाइन क्लास की, आप कर रहे हैं घर पे अकेले हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर जब आपको मौका मिले तो प्लीज आप आमने सामने बैठ के करिए, क्योंकि आपकी गलती आपको नहीं दिखती है, वो सामने वाला ही देख पाता है। जैसे मैं श्री भैया के साथ इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो श्री भैया मुझे तुरंत रोक देंगे, नहीं डॉक्टर साहब ये जो आपने बोला समझ में नहीं आया, या डॉक्टर साहब ये बात क्लियर नहीं हुई। पता चला मैं टीवी के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं बोलता चला जाऊंगा, या एक रिकॉर्डर के सामने बोल रहा हूँ तो मैं बोलता चला जाऊंगा, धारा प्रवाह सही गलत, मेरी शब्दों में वजन नहीं है, या मैं कहीं ब्रेक ले रहा हूँ, वो सब रिकॉर्ड होता चला जाएगा। सो प्लीज सीरियस नॉलेज के प्रति जाइए। और एक चीज ये याद रखिए कि अगर कोई चीज किसी एक अमुक व्यक्ति पे काम कर रही है तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आप पे भी काम करेगी। छोटा एग्जाम्पल समझिए, एक कमरे में अगर 100 बच्चों को बैठाया जाए या 100 बड़ों को बैठाया जाए, और वहां एक फॉर एग्जाम्पल 24 डिग्री पर एयर कंडीशनर उस कमरे में चला दिया जाए, तो सबको नहीं हो सकता ठंडी लगे, बहुत से लोग को उस 24 डिग्री में भी गर्मी लगने लगेगी। या हम किसी तरीके का संगीत यदि किसी कमरे में बजाएं तो इसके चांसेस बहुत कम है कि हर आदमी को वो संगीत समझ में आएगा या हर आदमी को वो संगीत पसंद आएगा। तो इसीलिए अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, तो प्लीज जाके उसको लीजिए। ब्रह्म कुमारी के सारे लेक्चर भैया लाइव आते हैं, यूट्यूब का चैनल है आपका, तब भी आपके आबू के सेंटर पर कितने सारे लोग आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि, और मैंने खुद भी जब मैं गया मैंने लोगों से बात की, लोगों ने बोला ये मेरा तीसरा बार है, मेरा पांचवा बार है। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा कि सर पांचों बार में कुछ अलग मिला, तो बोले नहीं, हर बार कुछ अलग, कुछ नई चीज मिली और हम रीजेनुएट हुए यहां आकर, और हमारे मन में जो विचार, जो कंफ्यूजन था, वो हम लोग बात करके या सवाल पूछ कर बहनों से और भाइयों से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए प्लीज एक ज्ञानी के पास जाइए, और ठीक है प्लीज अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नीचे आदमी बोल रहा है उसकी क्या डिग्री है, वो कहाँ से पढ़ा है, क्या वजन है, देख तो लीजिए, नहीं तो पता चला कोई बोलते चले जा रहा आप उसको ब्लाइंडली फॉलो किए चले जा रहे हैं, क्या डिग्री है उस व्यक्ति की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिग्री की जरूरत है, बट थोड़ा उसकी पढ़ाई अगर है, उस फील्ड का वो मास्टर है, तो जरूर उसकी बात सुनिए।
0: यानी ये बात कही जा रही है कि व्यक्ति का अनुभव क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, कितना उसका अध्ययन है, कितना उसका अनुभव है, उसके आधार पर उन चीजों को सुनने की जरूरत है। और आजकल हम देखते हैं कि एक प्रचलन सा है कि कोई भी कैमरा के सामने आके कुछ भी कह देता है, रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देता है, वो चीज शायद हमारे लिए इतना लाभप्रद ना हो। इसलिए स्वास्थ्य के विषय में विशेष रूप से सही विशेषज्ञों से मिलना, उनसे राय करना ये आवश्यक है। जब हम प्रकृति चिकित्सा की बात करते हैं तो लोग प्रकृति चिकित्सा को भी एक चिकित्सा समझ लेते हैं, कहते हैं कि भाई ये भी बीमारियों से ठीक होने का जरिया है, जैसे एलोपैथी है ऐसे नेचुरोपैथी भी है। बिल्कुल ये सही भी हो सकता है, मगर प्रश्न ये उठता है क्या ये यहीं तक रुक जाता है, क्या ये हमें स्वस्थ रहने के लिए भी कोई मार्गदर्शन देता है, जीवन में हमारी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में कोई मार्गदर्शन मिलता है।
1: प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्म, यूनानी, सिद्धा, आश्रम लाइफस्टाइल, ये आप इसके बारे में जो भी समझ लिए, ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं बट एक जीवन जीने का तरीका। मैं बड़ा सिंपल बात करता हूं आपसे कि आज आप मेरे प्राकृतिक चिकित्सालय में आइए तो हम आपको सुबेरे जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी दिन की शुरुआत गर्म पानी पीने से हो, या काढ़ा पीने से हो, या हर्बल टी पीने से हो, या वीट ग्रास जूस पीने से हो। हम आपको चाहते हैं कि आप सुबेरे थोड़ी देर योगा कर लें, थोड़ा देर टहल लें, थोड़ा देर टहलने योगा करने से पहले ठंडे पानी से अपना या तो पेट पोछ लें, या ठंडे पानी से अपना पैर धो लें, या 5 मिनट ठंडे पानी में बैठ के काटी स्नान ले लें। इसके बाद हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना इलाज, प्रकृति चिकित्सा का इलाज करा लें, 11:30-12 बजे भोजन कर लें, 1 बजे से लेके 3 बजे तक आराम कर लें, और फिर 3 से 5 फिर से इलाज करा लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, 6:30-7 बजे डिनर कर लें, और 9:30-9 बजे तक सो जाए, या 10 बजे तक। अब ये दिनचर्या हम एक प्राकृतिक चिकित्सालय में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये करेंगे। अब आदमी कहेगा यार ये तो जो अस्पताल में वही कर सकता है, हम घर पे कैसे करेंगे, ये तो उनके लिए है जो रिटायर हो गए हो, या तो उनके लिए जो बहुत बीमार है, हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। अच्छा अब हम ब्रह्म कुमारी का लाइफस्टाइल देखते हैं, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन है, तो 4 बजे जब मेडिटेशन है तो मतलब बिस्तर तो 3:30 या 3:10 3:15 तक छूट चुका होता है। और ये रूटीन बहुत से लोग जो आश्रम में रह रहे हैं या कार्य कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी जो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति से कहिए कि 4 बजे उठना बड़ा मुश्किल है तो कहेगा अरे इसमें कौन सी बात है, ये तो मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूं। फिर वही एग्जाम्पल लूंगा, सामने श्री भैया है, कहिए चाय पियेंगे, बोले नहीं नहीं वो तो मैंने छोड़ दिया। अरे कब छोड़ा? अरे मुझे छोड़े तो 15 साल हो गए। मतलब आदमी जो रूटीन फॉलो कर सकता है वो रूटीन उसके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता है। हम जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो बहनें काम कर रही हैं, जो भाई काम कर रहे हैं, प्लीज सुबेरे आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, इवन आप कॉर्पोरेट जॉब में हो कहीं पे भी हो, उससे 15-20 मिनट पहले उठ जाइए। उठते ही चाय पीने की जगह थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए, थोड़ा चल फिर लीजिए। वो जो आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा बचाया है सुबह जल्दी उठ के, उसको फिजिकल फिटनेस में लगा लीजिए। आप देखेंगे 6, 7, 8, 10 दिन आपको बड़ी परेशानी होगी, 11वें दिन से आपको अच्छा लगने लगेगा, स्पेशली 2 वीक्स खत्म होने तक, क्योंकि 2 वीक्स में हैबिट डेवलप हो जाती है। आप वो 15 मिनट अपने शरीर को दे दीजिए। आप जो टिफिन ले जा रहे हैं उसमें हल्का भोजन लेना शुरू करिए। आप जो रात में आकर अपने घर पे भोजन कर रहे हैं उसमें सिर्फ आधा रोटी या एक और खाना उतना कम करिए। एक टाइम मान लीजिए कि मैं 10 बजे के बाद अपने शरीर के अंदर कुछ भी नहीं डालूंगा। ठीक है भाई, जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं उनके बारे में नहीं, पर एक जनरल बात कर रहा हूं कि 10 बजे के बाद मैं कुछ भी भोजन नहीं करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10:30 11 बजे तक, मतलब मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि 10:30 बजे तक मैं जरूर सो जाऊं, मैं उसको 11 न बजने दूं, 10 आइडल हो जाएगा, पर प्लीज 10:30 बजे तक सो जाओ। और आप अगर ये करना शुरू करेंगे, जिस दिन आप 10:30 बजे रेगुलर सोना शुरू करेंगे बिना एफर्ट किए, जो आप 15 मिनट पहले उठ रहे थे, यही चीज आप आधी घंटा पहले अपने आप उठने लगेंगे और आप अपने शरीर के साथ कुछ पॉजिटिव काम करने लगेंगे। आपको किसी भी आश्रम में जाने की, किसी भी चिकित्सालय में जाने के लिए, किसी भी डिटॉक्स प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप जिस समय भी उठ रहे हैं उससे आधी घंटा 45 मिनट पहले उठ जाएं, ये उन लोग के लिए है जो लेट उठ पा रहे हैं, अरे मेरे पास समय नहीं है मैं बड़ा परेशान हूं, ये उनके लिए है। तो जनरल पब्लिक जो ये मेरी बात सुन रही है उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेंगे, आपके शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, आप इसमें काम चला सकते हैं। युद्ध में जो सैनिक लड़ रहे हैं वो तो बोलते हैं मैं 24 घंटे 48 घंटे नहीं सो रहा। अभी आश्रम में जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसकी जो देख रेख में व्यक्ति लगे रहते हैं, वो गेस्ट को रिसीव करना, उनको कमरा देना, जगह देना, वो 24 घंटे कोई ना कोई भाई बहन वो काम करते रहता है। तो कभी कभी की बात अलग है, पर एक जनरल रूटीन में प्लीज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज और 15-20 मिनट्स एक्सरसाइज, ये करते ही आप एक अपने आप प्राकृतिक लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देंगे। और थोड़ा सा कम खाना है बस थोड़ा सा, और जो एक अंग्रेजी शब्द है निबलिंग मतलब कुतरते रहना, और बिंज ईटिंग मतलब झटके में बहुत ज्यादा खाना, यही 2 चीज छोड़ दीजिए। इवन कॉर्पोरेट कल मैं अपने बच्चों को बोलता हूं स्कूल के लिए लेट हो रही है, झटके में दूध पी लिया, प्लीज बेटा 2 मिनट लो, वो दूध जो तुम पी रहे हो वो तुम्हारे शरीर के लिए है, अगर तुम उसको झटके में पी जाओगे बेटा उसका स्वाद लेके पियो कि तुम्हारी स्वाद इंद्रियां खुश हो, तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे जाए, तुमको अच्छा लगे। वो पापा टाइम नहीं है बेटा, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। तो हमको वो एक झटके से खूब सारा खाना, खूब सारा पीना, उसको बंद करना है, कुतरते रहना। अच्छा अच्छा बैठे हैं, खाली हैं, अरे थोड़ा नमकीन ले आओ, अच्छा चाय ले आओ। ऑफिस में आप देखिए, हम लोग ने एक आदमी रख रखा है जो पूछता रहता है, चाय लाएं पानी लाएं, चाय लाएं पानी लाएं, चाय लाएं पानी लाएं। अब आप पानी ले आओ, अच्छा चाय ले आओ, अच्छा चाय के साथ थोड़ा नमकीन ले आओ, अच्छा नमकीन ले आओ, थोड़ा बिस्किट ले आओ। भूख नहीं है उस चीज की, हम खा रहे हैं। तो जो चीज भी हम खा रहे हैं उसको हमको बचाना पड़ेगा। सो प्लीज, प्राकृतिक जीवन अगर आपको जीना है, हेल्दी जीना है, तो बिंज ईटिंग, बिंज ड्रिंकिंग और निबलिंग, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी खाना पीना और उतरते रहना, खाते रहना, आप कितनी भी एक स्टार्टर जो आजकल हर जगह खाने में शुरुआत, पहले क्या है, स्टार्टर अच्छा होना चाहिए। भैया 15-20 साल पहले तो स्टार्टर था ही नहीं, आदमी सीधे आके भोजन करके चला जाता था। तो हमने ये सारी चीजें अपने आप अपने भोजन को अच्छा करने के लिए डाल दी। आप फॉरेन में जाइए, हम लोग यहाँ खाना खाने के पहले कहते हैं ना कि अरे जरा सूप ले आओ, कुछ नाश्ता ले आओ, उसके खाने के बाद कहते अब खाना ले आओ। फॉरेन में तो वही सैलेड और वही सूप तो खाना हो गया, वो खत्म, भोजन खत्म हो गया। सो हमें कुछ बेसिक चीजों का बस ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रख लेंगे तो हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
0: बहुत ही सुंदर सी बातचीत आज हमें समझ में आ रही है कि इस बातचीत से क्या चीजें व्यक्ति को स्वयं के लिए कर सकता है, समझ में आ रहा है। ज्यादा कुछ ना सही तो अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए सिर्फ अपने सोने के समय और उठने के समय में थोड़ा फासला लेना शुरू करेंगे। अगर आप जितने बजे भी सो रहे हैं उससे आधा घंटा पहले सोएं, जितने देर में उठ रहे हैं उससे आधा घंटा पहले उठें। सिर्फ आप अपनी घड़ी को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ रहे हैं। और भोजन के बारे में जो आपने बात बताई कि सुबह उठ के अगर जो ये थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल रहा है, थोड़ा सैर कर लें, थोड़ा सा हम अपने लिए गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना शुरू करें, और भोजन के प्रति सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा खाना नहीं है, एक साथ सब कुछ अंदर नहीं ले लेना है, और साथ ही साथ सदा मुंह चलाते नहीं रहना है कि वक्त है, कुछ मिल रहा है तो सब कुछ खाते रहें, वो चीज ना हो। इन चीजों पर ध्यान देने की आपने बात आज कही। डॉक्टर साहब, प्रश्न तो और भी हैं मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। मगर दोस्तों, आज मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा से ये जो बातें निकली हैं वो स्वयं के लिए आज से करना शुरू करें और देखें कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद कितने मददगार हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में है और ये कोशिशें हमें स्वयं करनी होगी। आज की बातचीत में यही रुकते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और आप सभी श्रोता मित्रों को नई जानकारियां दी जो सहजता से हम सभी कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे और एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अब हमने खुद को पहचान लिया, उस परमात्मा से भी जान पहचान हो गई, एक रिश्ता कायम हो गया, परम धाम के दर्शन भी कराए, उसके साथ रोज की बातचीत है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं और उन्हीं सवालों को एक बार फिर तलाशते हैं इसी कार्यक्रम में। और हर बार की तरह हमारे साथ इस सफर की हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
4: ओम शांति
3: सिस्टर शिवानी। बात वहीं आ जाती है कि जब मैं वहां इतनी खुश थी या वो परम धाम मेरा है तो मैं नीचे क्यों आई, क्यों मैं वहीं नहीं रह सकती थी?
4: जैसे एक बीज है, उस बीज के अंदर उस पौधे में क्या फल लगेगा, क्या फूल लगेगा, सारी नॉलेज है एक जड़ सीड के अंदर। लेकिन जब तक वो सीड बोया नहीं जाता है, उसमें से वो वृक्ष नहीं निकलता, फल फूल पत्ते इतना खूबसूरत जो सारा बन जाता है।
3: हाँ,
4: वो उसमें से निकलता है लेकिन उसको बोने के बाद। इसी तरह मैं आत्मा, मेरे अंदर ये सारा कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, लेकिन जब तक मैं कॉस्ट्यूम नहीं लेती हूँ तब तक मैं वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। हम हर एक आत्मा के अंदर, एवरी सोल हैज थ्री थिंग्स इन कॉमन। वन इज अवेयरनेस, यू नो, लाइक व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टाइम,
3: या
4: जागृता, अवेयरनेस ऑफ माई सेल्फ एंड ऑफ अदर्स। एंड वंस आई हैव दैट अवेयरनेस देन देयर इज रिलेशनशिप्स। और संबंधों में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये सारा दिन हमारा चल रहा है, लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है क्रिएटिविटी। एवरी सोल इज वेरी क्रिएटिव। व्हाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स। ये हमारी रचना है, हम अपने संकल्पों को रचते हैं। तो ये तीनों चीजें, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट हमें भी बहुत सारे यूथ ईमेल लिखते हैं कि आई डोंट नो माय पर्पस ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे ऐसे लगता है मेरे जीवन का कोई, यू नो, एंड दे एक्चुअली आस्क कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। सो वी आर लीडिंग अ लाइफ वेयर वी आर फाइंडिंग द नीड टू आस्क समवन एल्स that you know what is the purpose of my life,
3: because even I don't understand. mere paas bhi sawal hai ki mera lakshya kya karne aayi hu main,
4: you know, goals alag hai ki hum apne jeevan ke goals bana sakte hain, short term, long term, साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, दोज आर गोल्स ऑफ लाइफ, या उनको हम कह सकते हैं एम्बिशन इन लाइफ कि मुझे क्या करना है मटीरियलिस्टिकली, प्रोफेशनली, पर्सनल लेवल पर। लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ, इट्स टू लिव लाइफ। Purpose of life is nothing but to come down here and to live this life. But how to live this life? With that awareness. You know, if you really want to find that purpose. Purposeless kyun lagne lagti hai jeevan? Jab hum in teen baaton par dhyan nahi de rahe hain. Awareness, relationships aur creativity. Hum jo karna chahte hain, hum jeevan mein wohi karein jo banna chahte hain. Lekin wo purposeful tab lagne lagega when we are doing all that with awareness.

0: Who am I?
1: जानते
0: सो
1: हो
0: आई एल एक्सपीरियंस ऑल दोज वैल्यूज वाइल आई एम डूइंग इट. दूसरा क्रिएटिविटी, तो सारा जो मेरे अंदर पोटेंशियल है आई कैन एक्सप्रेस दैट एंड देन आई कैन एक्सपीरियंस दैट टू माई हाइएस्ट पोटेंशियल. हर एक के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अब हम उसको कितना यूज करते हैं. एंड तीसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि व्हाइल आई एम ऑन दिस जर्नी आई शुड हैव दैट एक्सचेंज ऑफ प्योर लव विद एवरी सोल दैट आई कम इन कॉन्टैक्ट. अगर मैं ये तीन चीज़ों पर ध्यान दूँ तो मेरी लाइफ बहुत पर्पसफुल हो जाएगी. तो मुझे आत्मा के अंदर ये जो एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है वो हम ऊपर बैठ कर नहीं कर सकते हैं.
1: That is why we need to come.
0: It's dormant, no? वो सुषुप्त अवस्था है. लेकिन टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई नीड टू कम डाउन. मुझे एक कॉस्ट्यूम चाहिए और मुझे एक स्टेज चाहिए. एंड वो मुझे इस सृष्टि पर मिलता है, इस स्थूल वतन में आके मिलता है. सबसे पहले मैं आत्मा शरीर लेती हूँ और फिर मुझे ये रंगमंच मिलता है. मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करके फिर मैं अपना वो फुल पोटेंशियल आई कैन एक्सप्रेस, आई कैन मूव, आई कैन वर्क, आई कैन डू एवरीथिंग,
1: आई कैन गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस.
0: एब्सोल्युटली राइट. नाउ इट्स ईच वन टू देयर ओन. लेकिन वही अपना बेस्ट पोटेंशियल लाने के लिए बाहर आई नीड टू नो द पोटेंशियल. यू नो, हमें बाहर का सब ज्ञान है लेकिन मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है वो ही नहीं पता, तो फिर उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे.
1: लेकिन वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी एक्टर अगर मिले, बिकॉज मेरा थिएटर बैकग्राउंड अगर है तो थिएटर में जब भी हम स्टेज पे होते हैं हर एक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, देना चाहता है. देता है या नहीं दैट सेकेंडरी, देना चाहता है. कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा आज की दुनिया में जो ये कहे कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करना
0: ordinary.
1: चाहता, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट.
0: राइट.
1: तो मैं जब ये कैरेक्टर मुझे, मैं इस अवेयरनेस के साथ आई हूँ यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो फिर मैं गलतियाँ कैसे करती हूँ?
0: मैं गलतियाँ करना नहीं चाहती हूँ. यू नो दैट इज़ फॉर श्योर कि जो हम अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ईच वन वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट. सही और गलत इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए ये कई बार क्वेश्चन बीच में आकर रुक जाता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही या गलत.
1: कौन तय करेगा?
0: That's a big question, right? Who will now decide for me what is right and what is wrong? आज फिजिकल रूप से अगर देखें तो लॉज बने हुए हैं एंड पूरा डिपार्टमेंट्स हैं, सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है, पुलिस फोर्स है. फॉर वॉट? फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. वाई आर वी नीडिंग सो मेनी पीपल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि वी आर सेल्फ आर नॉट बींग एबल टू डू इट. तो कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर वो मेंटेन करता है, कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर रूल इम्पोज कर रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. और वो तब होता है जब मनुष्य आत्मा खुद ये शायद भूल चुकी है या उस पे चलने की उसके अंदर शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमारे ऊपर वो रूल इम्पोज किया जाता है. शायद जब ये सृष्टि पर आत्मा सबसे पहले आई होगी, व्हेन इट वाज प्योर, इट हैड द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड इट ऑलवेज परफॉर्म्ड राइट. एंड दैट्स व्हाई देयर मस्ट हैव बीन नोबडी देयर टू इम्पोज द रूल के व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. बट टुडे वी नीड अदर पीपल to impose rules on us. So I think each one of us knows what is right and wrong. जब हम कुछ गलत कर भी रहे होते हैं शायद अंदर कोई एक इनर वॉइस जिसको कहते हैं.
1: यहाँ पर अब एक और बात जो कही, बहुत ज्यादा कही जाती है कि what is right for you may not be right for me.
0: Right.
1: You know, like एक आज का एक बहुत relative term है सही और गलत.
0: Right.
1: कि आपके लिए जो सही है हो सकता है वो मेरे लिए गलत
0: Right.
1: हो या मेरे लिए सही ना हो. लेकिन क्या ये संभव है? जो सही है वो सही ही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा.
0: I think so, yes. Because, but again, you know, we cannot impose this on anybody else. But ये हमें अपने आप से पूछना होगा. लेकिन I think कि जब भी हम कुछ करते हैं तो अंदर से एक thought या जिसको एक inner voice कहे वो हमें बताने के लिए है कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दबा देते हैं. You know, झूठ बोलने लगे हैं किसी बात से बचने के लिए. तो ऐसे थोड़ी है कि अंदर नहीं पता है. यू नो वी नो व्हाट वी आर डूइंग, बट उस टाइम ऐसे लगता है झूठ बोल दो जल्दी से काम हो जाएगा. यू नो, सच बोलेंगे अभी तो डांट पड़ेगी, झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, इतने सारे आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे. तो हम समझ कर भी गलत वाला कर्म चूज करते हैं. बट इट्स नॉट दैट वी डिडंट नो. Now nobody needs to tell me right then whether it's right or wrong. I know it. तो कहीं ना कहीं एक guilt अंदर फिर बैठना शुरू हो जाता है. अब हमारे ऊपर है कि क्या हम उस आवाज को सुनकर अपने को परिवर्तन की तरफ लेकर चलते हैं या कहीं हम उसको दबा देते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बार बार उस आवाज को दबा दिया तो फिर वो आवाज भी शायद जो कहते हैं ना स्किल्ड हिज कॉन्शियस,
1: वो जो हम संस्कार की बात कर रहे थे कि एक हैबिट बन जाती
0: बुद्धि,
1: है,
0: हाँ, तो फिर वो बुद्धि
1: को बीच में आने ही नहीं देते.
0: एब्सोल्युटली वो आने नहीं देते. लेकिन सही या गलत हम सबको पता है एंड उसी का तो ये सारा खेल है. यू नो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग द होल डे इट्स एक्शन. वी परफॉर्मिंग सो मेनी एक्शंस देन वी आर रिएक्टिंग टू सो मेनी एक्शंस. वन इज आई परफॉर्म माई एक्शंस, सेकेंड इज यू परफॉर्म सम एक्शन, आई रिएक्ट टू योर एक्शन, एंड थर्ड इज वी कम इन टू इंटरक्शन. ये सारा दिन चल रहा है एंड इसी को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं. एंड इसी अब ये एक्शन और रिएक्शन किस नियम अनुसार चल रहा है, हाउ इज इट गवर्न्ड, कि वॉट आई एम एक्टिंग और वॉट आई एम प्रोजेक्टिंग आउटसाइड और वॉट आई एम एक्सप्रेसिंग, वॉट रिटर्न विल आई गेट टू इट, ये शायद हमें नहीं पता है. और इसलिए फिर बहुत सारे सही और गलत और ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो वी डोंट नो द लॉज और वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज और मे बी वी आर अवेयर बट वी डोंट कीप इट इन आवर कॉन्शियसनेस.
1: यहाँ एक सवाल ये आता है कि जब हमने बात ये की कि हमें इस सृष्टि पे हमें उतरना जरूरी था क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि हम स्टिल नहीं रह सकते, बहुत क्लियर ये बात होती है. तो परफॉर्म करने अवेयरनेस के साथ हम परफॉर्म करने अपनी क्रिएटिविटी के लिए हम यहाँ आए. लेकिन जो ये पूरी सृष्टि है उसके कुछ लॉ ऑफ नेचर की बात जो होती है, हु हैज क्रिएटेड दिस होल नेचर आल्सो, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन व्हिच आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव.
0: थ्री थिंग्स आर इटर्नल, सोल, गॉड एंड दिस ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, दीज आर इटर्नल हियर. नोबडी क्रिएट्स दीज थ्री थिंग्स. दीज थ्री थिंग्स आर इटर्नल एंड दैट्स वाई दे आर नॉट क्रिएटेड, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड. नहीं तो अगर इनको कोई क्रिएट कर सकता है फिर से तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. तो ये तीन चीजें इटर्नल हैं. लेकिन ये तीन चीजें वर्क कैसे करती हैं, एंड हम सब सोल्स जब एक दूसरे के साथ कर्म में आते हैं तब कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं. जैसे आपने कहा लॉ ऑफ नेचर तो है, एंड देन वन इज द स्पिरिचुअल लॉज. All our actions and reactions and interactions, they are working according to certain laws. And if we know the law, तो फिर law के अनुसार अगर हम चलेंगे तो फिर कोई गलती नहीं होगी.
1: तो हमें वो law कौन बताएगा?
0: That is, इसको जैसे हम सब लोग इसको जानते भी हैं, this is what is called the law of karma, karmic philosophy, कि कर्म के जो नियम हैं वो बहुत क्लियर हैं, ये हमें सब पता भी है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है कि ये कर्म मेरी वजह से हुआ है. हम अपने कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं और कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं.
1: क्योंकि अगेन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, मे बी वी हम उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देखना नहीं चाहते, या हम देखना नहीं चाहते कि हम क्या गलत कर रहे हैं इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. लेकिन अगेन अगर हम देखें ससुर शिवानी तो बहुत सा कंफ्यूजन भी है, बहुत सी धारणाएं हमें डाली गई हैं बचपन से, ये सही ये गलत, ये है लॉ, ये कह रहा है लॉ, या कार्मिक लॉ ये है, कार्मिक डेथ्स ये है, कार्मिक थ्योरी ये है, जो कभी भी क्लैरिटी के साथ अभी तक नहीं आ रही थी. तो एक उम्मीद कि कहीं एक क्लैरिटी दिखेगी.
0: फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हर कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना.
1: यहाँ एक सवाल जो बहुत सारे हम सबके साथ आता है जिंदगी में कि आपने कहा कि अपने कर्म की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने तो जिंदगी में अच्छा ही किया है, मैंने आज तक कभी गलत नहीं किया. नहीं पर मैं सोचती हूँ कि मैंने तो गलत किया नहीं कभी किसी के साथ, और किया होगा तो अनजाने में किया होगा, मैं जानती ही नहीं तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई हैव नेवर बीन बैड, इट्स नॉट मी हू इज सेइंग इट,
0: एवरीवन,
1: एंड आई हैव आल्सो सेड इट,
0: या
1: आई हैव आल्सो सेड इट, आई हैव आल्सो सेड कि मैंने जानते बूझते कभी गलत नहीं किया हुआ हो. और ये कहा जाता है कि अगर आपने जानबूझ के गलती नहीं की तो वो मानी नहीं जाती है, ये भी एक बिलीफ लेके हम चलते हैं.
0: इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इंडिया में आप ड्राइव करते हैं तो कौन सी साइड पे ड्राइव करते हैं?
1: राइट साइड
0: पे. अब आप यूएस जाएंगे तो वहां पे ड्राइव करेंगे
1: लेफ्ट.
0: वहां जाकर अगर आप राइट पे ड्राइव करें तो वो क्या आपको फाइन नहीं करेंगे? आप कहेंगे बट आई एम सॉरी आई डिडंट नो दैट दिस इज द लॉ, वी आर सॉरी बट यू आर स्टिल गोइंग टू बी फाइंड फॉर इट. यू नो सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट टेकन एज एन एक्सक्यूज कि आपको पता ही नहीं है कि ये नियम है,
1: तो वो माफी वाला नियम नहीं चलता है.
0: नहीं, हमें अपनी सब गलतियों के अकाउंट सेटल तो करने ही पड़ेंगे. यू विल स्टिल बी फाइंड फॉर इट. तो हम ये कहें कि मुझे पता ही नहीं था कि ये नियम है एंड इस तरह से इट वर्क्स, तो मुझे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, दैट विल नॉट हैपन. गलती गलती है. लॉ को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी पनिशमेंट तो हमें मिलनी मिलनी.
1: कहा जाता है कि माफी मांग ली जाए या इफ वी से सॉरी. सी आई जस्ट वांट टू निगेट ऑल दोस थिंग्स, यू नो. या मैं जानना चाहती हूं,
0: नो इट्स ट्रू. सी इट्स अ लॉ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, कि जो चीज है वो नीचे की तरफ ही आने वाली है. अब एक बच्चा सुपरमैन की मूवी देखता है और जाकर टेरेस पे जाकर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. ही इज ट्राइंग टू ब्रेक अ लॉ, राइट. तो शायद वो एक सेकंड के लिए ऊपर की तरफ जा भी जाए, लेकिन उसके बाद ही कैन नॉट ब्रेक अ लॉ. तो जहां भी हम लॉ तोड़ने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो लॉ तोड़ नहीं सकते हम. वी ट्राई टू ब्रेक अ लॉ, वी विल एक्सपीरियंस पेन बिकॉज वी गेट पनिश्ड फॉर इट. सो इट्स नॉट रियली पनिशमेंट कि हमें कोई और पनिश करता है, लेकिन जहां भी हम लॉ ब्रेक करेंगे हमें दर्द होता है. इसी तरह ये भी लॉज बने हुए हैं. ये तो साइंटिफिक लॉज है या नेचुरल लॉज है, स्पिरिचुअल लॉज, कि जो हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलना ही है. इसके अगेंस्ट अगर हम जाने की कोशिश करें तो भी हमें दर्द होगा ही. वी ट्राई टू ब्रेक द लॉ कि नहीं, मेरे साथ अच्छा ही होगा, इवन इफ आई डू रॉन्ग टू पीपल, इट विल नॉट हैपन. एंड एवरीथिंग इज वेरी एक्यूरेट, जैसे चल रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. जब हमें वो समझ में आने लग जाता है कि हाउ द लॉ वर्क्स, सी द लॉ ऑफ ग्रेविटी, once we came to know how it works, we could use it to do so many things.
1: Actually, we could build on it, you know.
0: Kitna kuch, sirf wo ek law pata lagne se. Law pehle bhi existing tha, lekin hume awareness nahi thi us law ki, to humne usko use nahi kar paaye.
1: Aur hume kitna punish kiya khud ko bhi. Kitni sari hamare sath accidents hue, kitna kuch hua.
0: Absolutely. Ab isi tarah ye karmic law hai. Iski jab awareness hogi aur hum isko har karam karte samay dhyan mein rakh kar chalenge, to we will be able to do wonders. And agar isko hum bhool jate hain, jaise aapne kaha hame to pata hi nahi tha, to punishment fir bhi milegi. Wo to milni hai. We cannot escape that. So we will have to take responsibility first of every action. And jaise humne kaha, life is responses, lot of responses. Ab hum kaisa response dete hain kisi situation ko ya kisi vyakti ko, that means energy that I am giving out. The law says, as you sow, so shall you reap. Aap jaisa karma ka beej boenge, wohi aapko return mein milne wala hai. To jo response hum denge, तो वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी हैव गिवन आउट, द सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी आई विल गेट बैक. ये लॉ है, इसको हम तोड़ नहीं सकते. अब इसको हम समझ के चलना शुरू कर सकते हैं. अगर हम इसको समझ कर चलना शुरू कर देंगे तो आप देखो सारी चीजें चेंज होने लगेंगे. हमारे कर्मों के ऊपर जो हमारा अटेंशन है वो आने लगेगा. आई अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी व्हिच आई गिव आउट, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, words, actions, anything. कई बार जैसे हम आपने कहा ना, हमने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया. क्या हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा?
1: सोचा
0: सोचा, लेकिन हमने सोचा ये नहीं काउंट होगा.
1: हमने सोचा कि शब्द या कर्म ही काउंट होगा. थॉट भी कर्म है एक्चुअली.
0: थॉट भी तो एक एनर्जी है. सी इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. We're talking of a spiritual law. So it is exchange of energy. कि आप जो energy बाहर देंगे वो ही energy आपके पास वापस आने वाली है. तो वो जरूरी नहीं है शब्दों द्वारा हो या कर्म द्वारा हो. कर्म starts here. My creating a thought is also a karam. And then it comes out in the form of action. लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ कर सोच रही हूँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल खराब है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल गुस्से वाले हैं, ये है, दिस इज नॉट एनर्जी. एंड आई मे बी टॉकिंग वेरी नाइसली टू यू, बट हाउ मच नेगेटिव एनर्जी. और ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ भेजी कहाँ जाएगी? आपको हिट करेगी. आपके अंदर वो सारी थॉट्स पहले क्रिएट करेगी और फिर वो उतनी इंटेंसिटी से वापस आएगी. अब जब वो वापस आती है मेरे पास तो मुझे लगता है ये सारा मेरे पास कहाँ से आ रहा है. You know, you have people throwing all their negative energy at you. and you wonder what have I done to these people. You know, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ. You know, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया. That's when the awareness of the law helps. Mm. That जो आपके पास वापस आ रहा है, it's only a reflection of what you have sent out. तो सबसे पहले कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि ये मेरी जिम्मेवारी है. जो भी मैं कर रही हूँ इस टाइम वो मेरी जिम्मेवारी है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेवारी है. थिंग्स विल बिकम वेरी सिंप्लीफाइड. और सबसे सिंपल चीज जो हो जाएगी, क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, कब, एवरीथिंग विल फिनिश. बिकॉज द सारी जो टेंशन है ना, दीज आर दिस क्वेश्चंस. व्हाई, why did this happen to me, what have I done. You know, kisi ke saath kuch ho jata hai, kehte maine aisa kya kiya tha jo mere saath kuch aisa hua. To ye questions sare samajh khatam ho jate hain, and uske liye hame samajhna padega ki how it works. You know, kaise ye sara scenario create hua, kaise aaj main jis sthiti mein hu ya jis paristhiti mein hu, ye meri zimmedari किस तरह से बनती है, ये हमें सोल कॉन्शियसनेस से समझ में आता है. कि आत्मा मीन्स माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, MIS. यू नो, जैसे IT में हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो दिस इज अ वेरी नाइस MIS दैट वी हैव हियर, बट वी नीड टू रिमेम्बर दैट सिस्टम एवरी टाइम. तो वी सॉ दैट आई क्रिएट अ थॉट, थॉट पे डिसीशन लेते हैं इंटेलेक्ट, एंड वो एक्शन में आता है. जैसे ही एक्शन में आया, that creates an impression on the sanskar. अब जो संस्कार पे impression create हुआ, उससे ही
1: एक नया thought,
0: next thought create करते हैं, फिर वो action में आता है. So it is continuously a cycle. तो हर step पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे past संस्कार्स recorded हैं, उनको हम express कर रहे हैं, क्योंकि उस संस्कार के आधार पे अगला संकल्प क्रिएट हो रहा है, फिर वो बाहर एक्शन में आ रहा है. तो एट एवरी स्टेप आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट आई हैव स्टोर्ड इनसाइड, एंड एट द सेम टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सेट ऑफ थॉट, डिसीशन एंड संस्कार्स. इट बिकम्स अ कंटिन्यूस साइकिल.
1: इन क्वाइट अ लॉट एक्चुअली. कितने संस्कार हम स्टोर कर सकते हैं या हम निकालते
0: हर क्षण, हर क्षण चल रहा है ना, ये हर क्षण चल रहा है. तो यू इमेजिन कि ये जो स्टोर हाउस है कितना डीप होगा, और क्या क्या नहीं इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ. अब अगर हमें समझ में आ जाए कि हर क्षण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो जो पास्ट स्टोर किया हुआ है उसके आधार से मेरा प्रेजेंट बन रहा है, और जो मैं अभी प्रेजेंट बना रही हूँ उसके आधार से मेरा
1: फ्यूचर
0: बनने वाला है. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो किसके हाथ में है?
1: मेरे अपने हाथ में.
0: So destiny
1: is in my hands.
0: Destiny is in my hands. Everything is happening at the same time. So every action is a result of my thought, decision, action. This has come. It's my thing. It's my past impression se wo aaj action mein aaya. And every result that is happening, it's a fruit of that action.
1: Actually, yes. You know, abhi jo hua hai mere saath, hota ye hai ki main wo resentment leke baithi rehti hu. Kuch bhi hua ho.
0: Right.
1: I have this resentment कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
0: right.
1: और उसी से आगे, क्योंकि ये present है,
0: right.
1: This resentment, this anger, maybe not on a person, but maybe, you know,
0: it can be for anything. See, situation. जैसे आपने anger कहा, right? Let's say मैंने एक thought create किया गुस्से का, किस आपके प्रति, let's say एक thought create किया गुस्से का. जैसे ही वो thought create किया, वो decision और वो word या action में आ जाएगा. Action में आने के बाद वो इम्प्रेशन स्टोर हो जाएगा, संस्कार बनेगा. संस्कार में क्या स्टोर हुआ? द इमोशन दैट आई फील राइट नाउ, एंड जो मैंने एक्सप्रेस किया था ना एंगर अभी आपको, उसका पूरा इम्प्रेशन एक ये अंदर बन जाएगा. तो द संस्कार ऑफ एंगर हैज जस्ट गॉट स्टोर्ड इनसाइड दिस स्टोर हाउस. अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू अगेन,
1: और ये सिचुएशन सेम हो जाती है,
0: सिचुएशन या व्यक्ति जब वो सेम आते हैं, तो आप जैसे ही मुझे दिखोगे आप ट्रिगर करोगे उस चीज को. आप कारण नहीं बनते हो, जो हम लोग कहते हैं ना उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, नहीं, वो ट्रिगर जरूर बनते हैं कि आप अगर नहीं आओ मेरे सामने तो वो संस्कार
1: दबा
0: है, वो दबा रहेगा. लेकिन जैसे ही आपको देखा मैंने, तो जैसे ही आपको देखा, आपसे मिले, तो वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्डेड हुआ था वो ट्रिगर हो जाएगा. अब वो थॉट में भी अगर क्रिएट हुआ, कि आई थिंक एंग्रीली अबाउट यू, दैट थिंकिंग
1: विल रीच आउट,
0: रीचेज आउट दैट एनर्जी अगेन

0: कम्स बैक अगेन अनदर इम्प्रेशन. तो जो पहले वाला इम्प्रेशन था वो फिर से
1: रीइन्फोर्स
0: हो गया, राइट. तो माय संस्कार आफ्टर मीटिंग यू इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. अब मैं इस बार आपको मिले, आज पहली बार शायद वो संस्कार बना, लेकिन वो इमेज मैं अपने अंदर कैरी कर रही हूँ. नेक्स्ट टाइम आप मिले, आप फिर से ट्रिगर किया. अब लेट्स से चेंज द कॉस्ट्यूम. I leave this body, you leave the body, and we take two different costumes. Hmm. And then we meet again. Theek hai? Maybe in two different roles altogether. Two different costumes altogether. But wo sanskar to yahan pe merged hai na? Wo impression to banai hua hai ki is soul ke prati mera kya impression hai? Ek negative image hai jo meri bani hui hai. Ab jaise hi aap mere saamne fir se aayenge,
1: main pehchan lungi.
0: Haan. आप पहचानते नहीं है कि ये वही वाली सोल है, लेकिन वो एनर्जी एक्सचेंज किस लेवल का है कि वो सोल जैसे ही मेरे सामने आती है वो वापस वही वाला ट्रिगर कर देगी. तो वापस आपको देखते ही, देखते मतलब आत्मा लेवल पर, जैसे ही आप आत्मा मेरे सामने फिर आते हैं एक अलग नाम रूप में सारा कुछ, आप मेरे अंदर वो ही गुस्से वाला संस्कार ट्रिगर करते हैं. और तब हम कहते हैं पता नहीं ये मुझे अच्छे नहीं लगते, इनसे मिलकर हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ,
1: इस जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली. अगर देखा
0: वी नॉट फाइंडिंग द रीजन देन वी से पता नहीं यही ऐसे. एंड आई कन्वीनियंटली पुट द ब्लेम ऑफ हाउ आई एम फीलिंग ऑन टू यू.
1: She is like that.
0: You know, so I get very irritated when I meet her every time. It can happen the opposite. I feel very nice every time I meet you. That's because I've stored a very positive sanskar. So wo har image jo store hoti gayi hai, wo reinforce hoti jati hai.
1: Aur ye life, the life chalta ja raha hai. Okay, this is what karmic account.
0: This is karmic account. Aur isliye kai baar kaiyon se milke बहुत अच्छा लगता है और कईयों से मिलके हम थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ.
1: अच्छा, ये हमने एक पहले लॉ की तरफ या एक लॉ हमने जो समझा है कि जैसा कि हम जैसा बोएंगे, तो ये हम बात सुनते सदियों से आ रहे हैं, लेकिन आज अगर हम कर्म की डेफिनेशन पे देखते हैं तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हम दे रहे हैं या जो कर रहे हैं वही हमें वापस मिलेगा. और ये जन्मों से परे है, ये पूरा एहसास जो है ये जन्मों के परे है. क्या हम ये जो हमने कर्म किया है, जैसे हम ये कह रहे थे कि माफी मांग के किया जा सकता है, हम तो सुनते आ रहे हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है, पनिशमेंट है ही या जो भी जिस भी बात को कहा जाए, पर क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या
0: इसको सेटल किया जा सकता है, सेटल कर सकते हैं अकाउंट को? Yes.
1: वो सेटल कैसे करना है, क्योंकि वो आज के इस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है,
0: क्योंकि अकाउंट बहुत सारे.
1: हाँ, और एक वो एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई. सी, अभी तक हम इस बात को नहीं जान रहे थे कि क्यों हो रहा है ये, तो सब ठीक ठाक था. आज अगर हमें समझ में आता है कि हाँ ये हो रहा है, ये कुछ है प्रॉब्लम और ये हो सकता है कार्मिक हो, तो वो और प्रॉब्लम तंग करेगी, वो तब तक और ज्यादा परेशानी होती रहेगी जब तक कि हम उसे सेटल करने का या काटने का जो भी फिनिश करने का एक प्रोसीजर नहीं सीख सकते. तो अगली कड़ी में वो प्रोसीजर तक जरूर पहुंचेगी, नहीं तो तब तक वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा. सचा शिवानी, आज जो पूरा हमने जाना इसको और हर तरह के लॉज को जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये लाइफ, जो पूरा कार्मिक क्षेत्र है, कार्मिक कॉन्सेप्ट है, उसको गवर्न कर रहे हैं, उसका एक खुलासा हुआ आज. बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक फिलॉसफी है ये जरूर काम कर रही है, और हम में से हर कोई ये चाहता है कि इन अकाउंट्स को सेटल किया जाए. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके दिल में उठ रहा है, आपका स्वागत है. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3444666 9873 666 555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अगली कड़ी में आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे, क्योंकि किस तरह से अपने जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उन्हें हम सेटल कर सकते हैं, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो बाकी आत्माओं के साथ, बाकी व्यक्तियों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात. नमस्कार.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बीता हुआ कल हो या फिर आज हर बात

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूं पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। आशना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। भारतीय संस्कृति में पितृ पक्ष माने श्राद्ध का समय केवल परंपराओं का निर्वाहन करेंगे ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़कर अपने पूर्वजों के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक अत्यंत पवित्र अवसर है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर गले में खराश है, नाक में से पानी बहता हो, तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने जा रही हूँ, बहुत ही जल्दी आपको सुनाएंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है, क्या बनाना है आप बताइए, श्राद्ध में क्या बनाया जाता है, अगर वो चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, नहीं तो हम अपनी पसंद की रेसिपी सिखाएंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, भारतीय संस्कृति में श्राद्ध का समय केवल परंपराओं का निर्वहन करने का नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़कर अपने पूर्वजों के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के प्रकट करने का एक अत्यंत पवित्र अवसर है। कैसे? तो आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। वर्तमान समय में इस आध्यात्मिक कालखंड को केवल एक कर्मकांड या रीति रिवाज तक सीमित मान लिया जाता है, जबकि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक आयाम है मनसा सेवा, मन की शक्ति द्वारा पूर्वजों और संपूर्ण विश्व की सेवा। आइए, बहुत ही सुंदर आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ है, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका सीधा अर्थ है श्रद्धांजलि। जिन पूर्वजों के कारण आज हमारा वजूद है, जिनकी दी गई शिक्षाएं, संस्कार और प्रेरणाएं हमारे जीवन का मुख्य आधार है, उनके प्रति अपने मन के उद्गार प्रकट करना ही सच्चा श्राद्ध है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यद्यपि हमारे प्रियजन उस शरीर में आज नहीं है जिन्हें हम माता पिता या दादा दादी के रूप में जानते थे, परंतु वे ऊर्जा के रूप में सृष्टि में कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है। ठीक उसी प्रकार जैसे भौतिक दुनिया में कोई हमसे दूर विदेश में बैठा हो और अचानक याद करने पर उनका फोन आ जाता है, जिसे हम टेलीपैथी या मन का मन से कनेक्शन कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं और पवित्र यादें भी उन तक सूक्ष्म रूप में अवश्य पहुंचती है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुआ। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध पक्ष का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के 15-16 दिन को अशुभ या नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। यह हमारे जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत करने का समय है। रुकावटों और पितृ दोष का निवारण कई बार पूर्वजों की अतृप्त इच्छाएं या उनके साथ हमारे कुछ अनसुलझे कर्म वर्तमान जीवन में रुकावट का कारण बनते हैं, जिसको पितृदोष कहते हैं। इन दिनों में उन्हें तृप्त करने से वे नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती है। नए कार्यों की शुरुआत से पहले की तैयारी ठीक वैसे ही जैसे किसी भी बड़े शुभ कार्य से पहले हम पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने कुल के देवी देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट करना आवश्यक होता है, ताकि मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाए। तीसरी बात यह है कि मनसा सेवा क्या है? तो देखिए, भौतिक साधन जैसे भोजन कराना, तर्पण करना, दान पुण्य करना अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि विधान से मन को संतुष्टि मिलती है। परंतु यदि अंदर मन में पूर्वजों के प्रति सच्चे भाव, सफाई और सम्मान न हो, तो केवल धन से किया गया कार्य उतना प्रभावी नहीं होता। आत्मा स्थूल पदार्थ या धन नहीं, बल्कि सूक्ष्म भावनाएं और कंपन कैच करती है। मनसा सेवा का अर्थ है अपने मन की तरंगों, शुद्ध संकल्पों और प्रेम पूर्ण भावनाओं के माध्यम से पूर्वजों और समस्त आत्माओं तक शांति, सुख और दिव्यता पहुंचाना। फिर चौथी बात है, पूर्वजों की मनसा सेवा करने की विभिन्न बहुत बहुत सी विधियां है, तो इसमें पहली विधि बताना चाहूंगी, देह अभिमान को छोड़ करके शांत स्थिति बनाना। तो कुछ पलों के लिए अपने सभी बाहरी कार्यों को रोक करके एकांत में बैठ जाइए, अपने शरीर के भान से भी परे जाकर अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह शांत और हल्का कर लीजिए। दूसरी विधि है पूर्वजों का स्मरण और कृतज्ञता ज्ञापन। अपनी स्मृति में अपने उन सभी पितरों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या अन्य संबंधियों को इमर्ज करिए, मतलब अपने सामने साक्षात अनुभव करिए, जिनके कारण आपका जीवन संवरा है। उनके द्वारा दिए गए संस्कारों और प्यार को याद करते हुए उनके प्रति हृदय से आभार और सम्मान प्रकट करें। देखिए, तीसरी विधि है सर्वोच्च शक्ति माने परमपिता परमात्मा को माध्यम बनाना। महसूस करिए कि हम सब की तरह सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमारे ठीक ऊपर सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है। बेहद के पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हमारी ये सभी प्रिय आत्माएं जहाँ भी जिस रूप में भी है, यदि उनके मन में कोई अतृप्त इच्छा या कामना शेष है तो आप उनकी उस मनोकामना को पूरा करें। चौथी विधि बता रही हूँ, दिव्यता शांति और सुख की किरणें प्रवाहित करना है। कैसे करना है? मानसिक रूप से ये विजुलाइज करना है। महसूस करें कि परमपिता परमात्मा से निकलती हुई अत्यंत सुखद पवित्र और शांति की किरणें हमारे उन पितरों तक पहुंच रही है। वे किरणें उनकी हर अतृप्ति को तृप्त कर रही है, उनके जीवन यात्रा को सुगम और सफल बना रही है तथा उन्हें सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर रही है। पांचवी विधि है क्षमा याचना और पश्चाताप का निवारण। यदि उनके जीवन काल में अनजाने में आपने उनका दिल दुखाया हो या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो तो इन दिनों में मन से उनसे क्षमा मांग लीजिए। इससे आपके मन का भारीपन और पश्चाताप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। छठी विधि है दुआएं प्राप्त करना और मुस्कुराहट देखना। महसूस करिए कि तृप्त होकर वे पूर्वज आपको आशीर्वाद और दुआएं दे रहे हैं। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है और उनकी दुआएं आपके वर्तमान जीवन को आगे बढ़ा रही है। फिर आगे की विधि बता रही हूँ, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व की मनसा सेवा। केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपना

हुए दुनिया की उन सभी अतृप्त अचानक दुर्घटनाओं या आत्महत्या का शिकार हुई आत्माओं के लिए भी शुभ भावना रखनी है। मानसिक रूप से संकल्प करना है संसार की समस्त आत्माएं शांत हो जाए, सब निर्विकारी बने, सबका जीवन खुशियों से भर जाए। तो निष्कर्ष यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्राद्ध के ये विशेष दिन केवल कर्म कांड का औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि का महान अवसर है। जब हम सभी विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को मनसा सेवा के जरिए शांति और प्रेम प्रदान करते हैं, तो उनकी अहेतुत कृपा और दुआएं हमारे जीवन के हर मार्ग को सुगम और मंगलमय बना देती है। आइए इस पितृ पक्ष से प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने पूर्वजों और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मनसा सेवा करने का जरूर हम दृढ़ संकल्प करें। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुनते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने जा रही हूँ कि गले में खराश है, नाक से पानी बहता हो तो क्या करेंगे। यहाँ गले की खराश के लिए मैं आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए, नमक का पानी गले के संक्रमण के लिए सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है। ठीक है, तो नमक के पानी से गरारे करिएगा। ये सूजन को कम करेगा, बलगम को ढीला करेगा और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करेगा। तो नमक वाले पानी से हम गरारा क्यों करते हैं, इसका कारण आप जान गए हैं। ये गले को क्या करता है, गले की सूजन को कम करता है, बलगम को ढीला करता है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। फिर देखिए दूसरा उपाय। हाँ, आपको बता देती हूँ कि कैसे आप घरारा करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पानी में आप नमक मिलाइए। ठीक है, 30 सेकंड तक घरारे करिए, फिर थूक दीजिए। तो ऐसे आपको 3-4 बार करना है। और अगर पानी नवसे का है तो और भी अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा दो मौसम हो रहा है ना, तो नवसे का पानी लीजिएगा। दूसरा उपाय है शहद और गर्म पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, इसमें प्राकृतिक जीवाणुरोधी और सुखदायक गुण होते हैं। ये गले को कोट कर सकता है, जलन और दर्द को कम कर सकता है। इसलिए नव सेके पानी में थोड़ा सा शहद डाल करके आप लीजिएगा। फिर भी और भी इसका उपाय अच्छी तरह बता देती हूँ। गर्म पानी या फिर हर्बल चाय में 1-2 चम्मच शहद मिलाना है, फिर धीरे धीरे घूट घूट करके पीना है। गले की जलन के लिए ये सबसे आरामदायक घरेलू उपचारों में से एक है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इससे खराश खत्म होगी, ठीक है, और गला तर रहेगा, सूखी खांसी भी नहीं होगी। तो गर्म पानी या हर्बल चाय में 1-2 चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे घूट घूट करके पीजिएगा। गले की जलन के लिए सबसे आरामदायक घरेलू उपचारों में से एक है, और ये गले की खराश को ठीक करता है और सूखी खांसी भी। फिर देखिए, अदरक की चाय भी आप ले सकते हैं। कैसे, ताजा अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालिए, फिर छान लीजिए और इसे गर्म करके मतलब सहता सहता पीजिए। ठीक है, और ज़्यादा अगर आप लाभ चाहते हैं तो इसमें शहद और नींबू मिला दीजिए। गले के संक्रमण के उपचार में अदरक की चाय बहुत ही सुंदर उपाय है। तो ताजे अदरक के टुकड़ों को पानी में उबाल लीजिए, छान लीजिए और इसे गर्म गर्म ही पीजिए। ठीक है, हाँ, अगर और भी आप चाहते हैं कि ज़्यादा लाभ मिले तो इसमें शहद और नींबू भी मिला सकते हैं। तो ये गले के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर देखिए, भाप लीजिएगा आप। तो भाप लेने से गले के सूखे ऊतकों को नम करने में मदद करता है भाप, और नाक के मार्ग को साफ करता है, जिससे जलन और जमाव से राहत मिलती है, फिर नाक में वो जमता नहीं है कफ। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपने सिर पर तौलिया रख करके गर्म पानी के कटोरे से भाप लीजिए। ऐसा दिन में 2 बार 10 मिनट तक करना है। ठीक है, फिर बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हो। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। इसको हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। गोल्डन मिल्क के नाम से प्रसिद्ध ये पारंपरिक उपाय हल्दी की उपचारात्मक शक्तियों को गर्म दूध के साथ मिलाकर संक्रमण से लड़ता है और गले को आराम पहुंचाता है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1 कप गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए, रात को सोने से पहले पीजिए। ये गले के दर्द के लिए बेहतरीन उपाय है। फिर लास्ट आपको बता रही हूँ उपाय कि आप हाइड्रेटेड कैसे रहेंगे। तो हाइड्रेटेड

आया है, आप आजमा सकते हैं और स्वयं को ठीक कर सकते हैं, पर सारे के सारे एक साथ नहीं आजमाना है, इन सब में से एक, ठीक है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है? इंट्रो अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें जवाब दे दिया था। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज का प्रश्न फिर से दोहरा रही हूँ। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत ही संक्षिप्त में आपको जवाब देना है, ठीक है? और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है। जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके, कहते हैं ना, ईश्वर के भरोसे करना सीख लेता है, तब भीतर की गहरी शांति उतरते हुए महसूस होती है। क्या कहेंगे आप? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती, और यही शक्ति धीरे धीरे हृदय को सच्ची खुशी से भर देती है। तो जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके ईश्वर के भरोसे कार्य करना सीख लेता है, तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। क्या कहेंगे? हेलो,
1: हाँ दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहुत अच्छे दीदी, सब चल रहा है। आज चौथा दिन हो गया है
0: जी,
1: चार सात हो गया है, लेकिन भी चलो ये कहानी सब में तो अच्छा जो है इसको याद करने का एक दिन भी रहता है
0: जी।
1: तो विषय भी बहुत अच्छा है कि क्या होता है, हम ऐसे वैसे कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है तो ऐसे सोचते सोचते सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सारे सवाल हमारे दिल में माइंड में घुस रहे हैं
0: जी।
1: और फिर हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं कि अब तो कैसे करेंगे, कौन से पूछेंगे, लेकिन हम कुछ क्यों पूछना नहीं है, हम भगवान के भरोसे छोड़ देना है। लेकिन स्थिति क्या है कि हम ऐसे विचारों से अच्छा है भगवान के साथ ही बात कर लेंगे, भगवान हमारा जो काम आपके भरोसे हम कर रहे हैं तो आप हमारा काम जरूर पूरा कर देना, तो हो ही जाता है दीदी, ऐसे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम देखो तो हम तो जब बचपन से ही तो ऐसा ही रहे कि सभी कुछ सब कुछ होता है तो भगवान के भरोसे छोड़ ही देते हैं और हो ही जाता है कोई सब काम। देखो आज कोई किसी की कोई शादी होती है दीदी, इसके पास होता नहीं है कुछ, सभी के पास पैसा नहीं होता, सभी का पैसा टैलेंट नहीं होता है, फिर भी सबका ये मालिक पूरा कर देता है
0: जी, जी,
1: चाहे
0: जी।
1: पैसा हो ना, सभी का प्रसंग पूरा हो ही जाता है, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं तो काम हो ही जाता है।
0: बिल्कुल,
1: पैसा ही आ जाता है, काम भी हो जाता है, लोग साथ में मदद वाले ही आ जाते हैं
0: जी,
1: लेकिन हमको विश्वास रखना है कम करते हैं हमारा काम हो ही जाएगा, बस ऐसा विश्वास रखवाना
0: जी,
1: बस पैसे हो ना हो, आपके पास कोई साथीदार हो ना हो, फिर भी हो जाता है
0: जी,
1: तो बस भगवान के भरोसे छोड़ दो, आपका काम हो ही जाता है, लेकिन हमको विश्वास रखना है मेरा काम परमात्मा पूरा कर देगा, क्योंकि हमने तो बचपन से एक ही बात सीखी है, और सभी कोई भी बात मेरे माताजी का साथ, कई हमारे घर में कई सारे मेहमान आते हैं, हमने सभी को बुलाया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा काम कैसे होगा, नहीं हो जाएगा
0: जी,
1: सभी एक अच्छे खुशी लेके गए हैं यहाँ से, सबको एक अच्छा आनंद मिल रहा है पूरे दिन
0: जी,
1: तो बस ऐसे ही करना है, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए,
0: मेहनत करनी है और विश्वास, वो कहते हैं ना कि मेहनत हम करेंगे तो वो फल तो मिलना ही है, फिर चिंता नहीं करनी, फिर ईश्वर के भरोसे छोड़ देना, हमारा कर्म हमें करना है,
1: करना है बस, क्योंकि बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको भी कर्म तो करना है, मेहनत तो करनी है, हम ऐसे बैठेंगे तो ऐसे को थोड़ा भगवान काम कर देते हैं,
0: ऐसे तो हर चीज छोड़ करके हम बैठ जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा,
1: नहीं चलेगा, भगवान ने पूरा काम कर दिया, लेकिन पूरे दिन वो भगवान की भक्ति करते थे और जहाँ जाते थे वहाँ एक भगवान परमात्मा के साथ रहते
0: जी
1: करते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने सभी का संकट भगवान आके कर दिया, भगवान ने
0: जी तो सारे संकट हरे, लेकिन परीक्षाएं भी तो कितनी आई,
1: हाँ परीक्षा भी आती है दीदी, दिखते हैं कहते ना कि भाई आप चाहे कितने भी करो लेकिन परीक्षा तो आएगी, ऐसे नहीं तो आप ऐसे ही आपका काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको बस विश्वास रखना है, परमात्मा हमारा साथ ही है, हमारे पास है,
0: जी
1: फिर भी कर्म करते जाइए और भगवान पर विश्वास रखिए, आपका काम हो ही जाता है, बराबर अच्छा कोई काम हो जाता है तो हमारा के लिए होता है, कष्ट हो जाए।
0: जी
1: जी नमस्ते,
0: चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, विषय भी अच्छा है तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो प्रश्न का जवाब भी आपको देना है, विषय में भी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती और यही शक्ति धीरे धीरे हृदय को सच्ची खुशी से भर देती है। क्या कहेंगे आप? कोई यहाँ जादू मंत्र नहीं होता है कि अरे हम चलो थोड़ा से तकलीफ आई, संकट आया, अरे भगवान आप हमारे ये संकट टाल देना, हम तो आपके या दरबार में बैठे हैं, अब आप संभालो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं। कर्म हमें करना है, कर्म के साथ हम ईश्वर को भी याद करें और फिर करने के बाद ईश्वर पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाइए कि चलो आज का ये काम हो गया, अब ईश्वर को अर्पण है, अब भगवान ही संभाले आगे, तो अच्छी तरह संभालेंगे। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलिए हमने किया है लेकिन उसका परिणाम जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिला है, लेकिन क्या होगा, लेकिन हम उस परिस्थिति में डगमगाएंगे नहीं, वो परिस्थिति हमें हराएगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने अच्छा किया, आज नहीं तो इसका कल इसका फल अच्छा मिलना ही है, तो हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान कोई जादू मंत्र से नहीं हमारा ठीक कर देता है कि चलो जैसे ही हमने कहा कि ये हो जाए और जादू मंत्र से हो गया, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जब हम धैर्यता बनाए रखते हैं, अपने कर्मों पर पहले तो विश्वास करना सीखिए, हम मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं तो सफलता मिलनी ही है, फिर आप निश्चिंत हो जाइए ईश्वर को सौंप करके कि भाई मेहनत हमने कर ली, फल आपको देना है। हेलो
2: हेलो उषाबेन जी, कंचन भाई।
0: हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हो आप?
2: नमस्कार, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, और सुनाइए कैसे हो?
2: पे है, दो दिन से प्रोग्राम नहीं था
0: जी,
2: लाइव प्रोग्राम तो आज तो अभी मैंने देखा कि लाइव प्रोग्राम है तो 10 बजे से सुन रहा था
0: जी,
2: और विषय भी बहुत अच्छा है कि भरोसा, यही है।
0: हाँ जी विषय मैं दोहरा देती हूँ फिर से, देखिए विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। और स्टार्टिंग है, जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता है तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है।
2: विश्वास,
0: हाँ जी भरोसा,
2: हाँ
0: विश्वास,
2: हाँ विश्वास तो ठीक है, गंदी संसार में है तो कोई दूसरे का विश्वास रखना है, लेकिन कोई कोई इसे एक कर सकता है, बाकी विश्वास ये नहीं होता, पूरा विश्वास रख के हम कुछ काम करते हैं तो
0: ईश्वर पर भरोसा करना है हमें, तो कोई लोगों पर तो नहीं करना है,
2: हमें एक भरोसा एक परमात्मा से, एक अच्छे हमारे कर्मों
0: जी
2: कर्म है, कर्म अच्छे करेंगे तो हमें जरूर इसका मिलेगा, भरोसा तो कोई समर्थ ही करना है। भजन में नहीं बोला कि तारो भरो सुमन रे, तारो भरो सुबरी रे, का ही भरोसा रखना है, लेकिन क्या है कि मेरी भगवान कब हमें कुछ ये जाए हो जाए सर। आगे भी देखो गजराजा जा रहे हुआ पिया था काला सरोवर, तो गजराजा ने क्या किया था कि भाई हर रोज सरोवर में जाके कमल भगवान को याद करके कमल जल चढ़ा था। एक दिन ऐसा आया कि भाई ने पैर पकड़ लिया
0: जी,
2: तो उसके कुटुंब सभी परिवार किनारे पे थे लेकिन कुछ न कर पाए। तो गजराजा ने फिर अथाह प्रयत्न तो हमने किया इसमें, लेकिन नहीं छुड़ा पाया पैर, तो सुनते कमल लेके तो भगवान ने आवाज परिचित लगा भगवान को कि भाई तो मुझे पुकारना, क्योंकि हर रोज भगवान को याद करता था, तो छुड़ाया गया। तो हमें क्या है कि भाई सामान्य बातों से आजकल मनुष्य हे भगवान आ जाओ हमारा काम कर दो ऐसा कर दो, तो ये तो कैसे संभव है, होना चाहिए
0: जी,
2: करना चाहिए तो मदद में आएगी, इतना मैं
0: जी जी।
2: बाकी विश्वास तो के दिन हो विश्वास
0: जी
2: ठीक है
0: हाँ जी। और आज और के प्रश्न का जवाब देंगे?
2: हाँ प्रश्न का जवाब तो मैंने पढ़ा है, अब दूंगा।
0: ठीक है ओके, बहुत बहुत आभार आपका।
2: हाँ जी।
0: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुको है, रुको रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती, तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से आपको सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। और सब ठीक है?
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है जी। और बहुत अच्छी बातें सुन रहा मैं, दोस्तों ने भी बहुत अच्छी तरह से इस विषय के बारे में बताया, तो मैं भी दो बातें कहूंगा दीदी कि जो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी अच्छा बुरा या जो भी हो वो स्वीकार कर ले और भगवान पर भरोसा रखे। हम चलो भगवान पर भरोसा रखे या ना रखे, हमारे जीवन में तो परिस्थिति आएगी ही आएगी, क्योंकि जीवन का यही तो सार है
3: जी।
4: और कई लोग ऐसे भी, और मैं भी पहले ये सोचता था कि जरा थोड़ा सा जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता तो कह रहे भगवान क्या मेरे ही जीवन में ये है वो। और कई सारे ऐसे लोग हैं तो इतने अमीर हैं, तो इतनी सुख सुविधा और इतने अमीर, और हमको ऐसे जन्म क्यों दिया। वैसे मैं पहले सोचता था, और कई लोग ऐसे सोच भी रहे होंगे, किसी की हाथ पैर मतलब अपंग है तो वो भी अपने जीवन में स्वीकार कर लिया कि चलो जो भी, विश्वास रखा भगवान पर, जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, और चलो थोड़ा सा बुरा भी साथ हुआ तो भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि चलो भगवान पर विश्वास ही रखना कि जो भी कर रहा है चाहे कर रहा है, और हमारे पिछले कर्म या कर्मों का फल वो मिल रहा है वो एक तो स्वीकार ही कर लेना चाहिए दीदी
3: जी।
4: और ना कि कोई भगवान को खोसना और विश्वास नहीं तोड़ना अपने आप, क्योंकि अपने आप पर लोग विश्वास तो हमारा तोड़ते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है, तो हम क्यों खुद अपना ही विश्वास तोड़े कि चलो ये हमसे नहीं होगा और ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन अब ठीक नहीं है। इसे नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन में जो भी है स्वीकार करना चाहिए, भगवान पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास रखना चाहिए, और हो सके तो जितना आध्यात्मिक में अपना जीवन बिताए ताकि हम परिस्थिति बुरी परिस्थिति का सामना कर सके दीदी
3: जी।
4: जी जी दीदी, और सभी दोस्तों को नमस्कार, और प्रश्न का जवाब मैंने भेजा है।
3: हाँ जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है, जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता है तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती, और यही शक्ति धीरे धीरे हृदय को सच्ची खुशी से भर देती है। हेलो
5: हेलो, ऑन एयर दीदी?
3: हाँ जी नमस्ते, ऑन एयर है आप।
5: जो आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार, हमारे दोस्त सुरेश जी जोड़ाना, सुरेश जी धानेरा, कंचन भाई, सभी दोस्तों ने अच्छा जवाब दिया है। मैं भी शॉर्ट में बोलता हूँ। देखो, हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा है, भगवान है, और उसको उनके ऊपर अगर हमने विश्वास रखा और विश्वास रख के पूर्ण अधिकार उनको सुपुर्द कर दिया और कर्म करते रहे, जैसे कर्मने वाली फल के अपेक्षा न रहते हुए कर्म करते रहे, मेहनत करते रहे, तो परमेश्वर हमको फल जरूर देगा, क्योंकि उनकी याद में हमने काम किया है, कर्म किया है और उनके ऊपर भरोसा रखा है। वो हमारे पिता है, वो हमको साथ जरूर देगी, कोई भी परिस्थिति आओ उसमें से हम निकल जाएंगे और जीवन सफल बन जाएगा। ये शॉर्ट में बताया है, सभी को नमस्कार कीजिए। ओम शांति, ओम शांति
3: जी। बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और आज के विषय में अपनी राय व्यक्त करते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है, संक्षिप्त में जवाब देना है आपको, और विषय तो अच्छा है ही है। तो जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता, भाई हमने अपना कर्म कर लिया है ना, अब क्यों फिर कारण क्या होगा, कैसे होगा, किसने ऐसा कर दिया, क्यों हुआ, अरे छोड़िए ना ये सब, क्या क्यों, सभी हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बस आप अच्छा सा कर्म करके ईश्वर को ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हो जाइए, तभी मन में सच्ची शांति मिलेगी, सुकून का एहसास होगा, सभी का अनुभव होगा। कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो कितने निश्चिंत रहते हैं, है ना। चलिए, जैसे हमारे श्रोता बंधु बता रहे कि हमने श्राद्ध किया, सभी बहुत ही आराम से आए, मेहमान लोग बहुत ही खुश होकर के गए, संतुष्ट होकर के गए, उनको खिला पिला कर भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो ऐसा कहा गया। तो बिल्कुल यही तो सच्ची खुशी है कि हमने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म की वजह से लोग भी खुश होके गए, हमने ईश्वर की याद में किया और छोड़ दिया भगवान के ऊपर कि भगवान आपने अच्छी तरह कराया, धन्यवाद, और निश्चिंत हो गए, तो सुकून का एहसास तो होता ही है ना, सच्ची शांति मिलती ही है। इसलिए कर्मों पर भरोसा करिए, ठीक है, कर्म अच्छे करिए और ईश्वर पर छोड़िए। फिर भी देखिए, कभी कभी क्या है, हम 100% अच्छा कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, हमने भरोसे छोड़ा, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि चलो भगवान अब आप संभालोगे, हो सकता है उस समय हमारा काम पूरा नहीं हुआ हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमने अच्छा किया है और ईश्वर को भी पता है कि हमने अच्छा किया है, तो वो परिस्थिति हमें हिलाएगी नहीं, आई है भाई चलो ठीक है, अच्छा करने के बाद भी अगर बुरा हिस्से में आया है तो कितने दिन टिकेगा, नहीं टिकेगा। हेलो,
6: जय माता जी, जय श्री हरि।
3: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्ते, कैसे हो सुरेश भाई?
6: ठीक है।
3: हाँ जी,
6: आप सुनाइए।
3: बस हम भी अच्छे हैं।
6: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन की देर शुभकामना मंगल कामना। और आज आजकल तो कौवों के दिन आ गए
3: जी,
6: खीर के दिन आ गए ना,
3: बिल्कुल साथ का तो चल ही रहा है। और आज का विषय है, जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता है, तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। क्या कहेंगे आप?
6: बिल्कुल सही बात है ना। देखिए इस जीवन में है ना सच्चा साथी तो भगवान ही है, उस पर भरोसा, उस पर मन लगाइए, उस पर भरोसा कीजिए। किसी और से भरोसा करने से बेहतर है कि उस पर भरोसा कीजिए, और जो भी है, जो भी परिस्थिति है उसको ऑल वेल करते हुए आगे बढ़िए। ताकि देखिए वो तो सुख दुख तो एक चक्र है, तो वो तो चलता ही रहेगा। चुनौती आता है जिंदगी, जीवन जीवन का दूसरा नाम ही चुनौती है, चुनौती है, तो चुनौती तो आती ही रहेगी
3: जी।
6: मगर उन परिस्थितियों से जो सीख लेता है ना वही सच्चा जीवन है। कुछ ना कुछ उससे सीखने को जरूर मिलेगा, और वो आगे आपके काम आएगा।
3: जी, ना दीदी जी,
6: मतलब आपका कुल मिला के आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अगर आपका विश्वास की गाड़ी डगमगा गई तो फिर जीवन वही रुक जाएगी, जीवन की गाड़ी
3: जी।
6: क्योंकि विश्वास इंसान को मतलब एक सक्षम बनाता है। विश्वास एक मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब स्ट्रांग बनाता है विश्वास। और जब इंसान विश्वास स्ट्रांग बन जाता है ना तो कोई भी परिस्थिति हो उसे जीत पाता है
3: जी।
6: उस परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाता है, तो वही तो असली जीवन वही है। बाकी तो जिंदगी तो हम जीते हैं, मगर जिंदगी परिस्थितियों मतलब विभिन्न परिस्थितियों को जो विश्वास रख के अपने को स्ट्रांग बनाता है उसे ही जीवन कहते हैं
3: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
6: क्या है प्रश्न?
3: श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है?
6: ऑफलाइन दो
3: भले दीजिए,
6: क्या भी दो
3: नहीं, भले आपकी इच्छा हो, ऐसे भले समय नहीं मिले तो अभी दे सकते हैं। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ आपको बताना है।
6: हाँ नहीं, आप बोले तो ऑफलाइन दो, आप बोले तो अभी दो।
3: दे दीजिए अभी, क्योंकि अब ऐसे ही थोड़ा समय बढ़ता जा रहा है।
6: अभी लिंक तो आएगा ना?
3: लिंक हो गए?
6: नहीं अभी ब्रेक तो आएगा ना, अभी देख लीजिए पहले।
3: ठीक है चलो। हाँ
6: ओके चलो, जय माता
3: जी। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और कहने का भाव यही है, बहुत ही सुंदर सभी श्रोता बंधुओं ने इस विषय को स्पष्ट किया है। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई परिस्थिति का कारण जानने के बजाय आप अच्छे कर्म करिए और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि अब आपको संभालना है। हमारी कोशिश हमने कर ली, संभालना आपको है, ठीक है? तो शांति का एहसास भी होगा, सुकून भी मिलेगा। और परिस्थितियाँ कभी कभी बदलती नहीं है, लेकिन क्या होता है हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि परिस्थितियाँ हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा हम भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं, फिर भी कभी कभी काम हमारा नहीं हो पाता है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो भी वो समस्या हमें समस्या नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये होना ही है और हो ही जाएगा। इतना भरोसा करेंगे तो सचमुच में हो ही जाएगा, ठीक है? और अब फिर से सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूँ जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज महाराष्ट्र के स्वादिष्ट दाल बड़े बनाएंगे। ठीक है भाई, आप तो कोई कहते नहीं है लेकिन हमारे श्रोता बंधु के डिमांड है सुभाष भाई महाराष्ट्र से कि दाल बड़े बनाना सिखाइए, तो सोचा कि चलिए दाल के बड़े आज आपको सिखाते हैं, महाराष्ट्रियन दाल के बड़े। सामग्री में आप लिख लीजिए, पेन और डायरी जरूर लीजिएगा और लिखिएगा, एक कप चने की दाल, ठीक है, फिर दो तीन हरी मिर्च, फिर छोटा टुकड़ा अदरक का, थोड़ा हरा धनिया ले लीजिए, आप आधा चम्मच जीरा ले सकते हैं, आधा चम्मच सौंफ ले सकते हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और चुटकी भर हींग। तलने के लिए लेना है तेल। तो ये हो गई सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। चने की दाल कितनी ली है हमने, एक कप, दो तीन हरी मिर्च, फिर एक टुकड़ा अदरक का लेना है, थोड़ा हरा धनिया लीजिएगा, आधा छोटा चम्मच जीरा लेना है तो आधा छोटा चम्मच ही सौंफ लीजिएगा, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और चुटकी भर हींग, आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है तलने के लिए। अब दाल के बड़े कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे। चने की दाल को आप क्या करेंगे, 3-4 घंटे तक भिगोकर पानी में अच्छी तरह से निकाल दीजिए, ठीक है। फिर दाल को मिर्ची और अदरक के साथ दरदरा पीस लीजिए, पानी बहुत कम डालना है, ठीक है। फिर इसमें आप धनिया, जीरा, सौंफ, हींग, नमक ये सब मिला दीजिए। अब इस मिश्रण को 2-3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लीजिए और फिर इससे बड़े हल्के और कुरकुरे मतलब बनेंगे, इसलिए फेंटना अच्छा है, जितना फेंटेंगे ना उतना ये कुरकुरा बनेगा, अंदर से नरम ऊपर से कुरकुरा। तो अब आप क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा गीला करके छोटे छोटे बड़े बनाइए और बड़े बना करके अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर और तेल गरम करिए। तेल गरम हो जाए तो आप हाथों में बड़े बनाते जाइए, अगर आप चाहे तो बीच में खड्डा भी कर सकते हैं, खड्डा करके जैसे हम मरका बनाते हैं ना ऐसे आप खड्डा करके फिर तेल में छोड़ते जाइए। फिर दूसरा ले लीजिए भाग, फिर आप इसी तरह बना करके आप तेल में छोड़ते जाइए ऐसे, फिर पलटी लगानी है दोनों तरफ से, अच्छे सुनहरे सुनहरे हो जाए उसके बाद आप निकाल दीजिए, फिर दूसरे बड़े बना दीजिए। तो इस तरह दाल के बड़े बनाए जाते हैं, जिसकी विधि फिर से दोहरा रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, उसके बाद उस पानी को निकाल देना है, ठीक है। फिर इस दाल को आप मिक्सर में डालिए और इसके साथ ही आप अदरक और हरी मिर्च भी डाल करके थोड़ा सा कुरकुरा पीसना है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुरकुरा भी नहीं लेकिन बारीक भी नहीं, ठीक है, दरदरा पीसना है। और फिर इसमें अब ये आप निकाल दीजिए एक बर्तन में इसको, फिर इसमें जीरा, धनिया, सौंफ, हींग और नमक ये सब मिला देना है। फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 मिनट 5 मिनट फेंटिए, ताकि इससे बड़े हल्के और कुरकुरे बनेंगे। तो जितना फेंटेंगे उतना अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरे बनेंगे। अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डाल दीजिए, वो तेल गरम होता रहेगा, इधर आप हाथ में थोड़ा सा दोनों हाथों को गीला कर लीजिए, गीला करके आप छोटे छोटे बड़े बनाइए और आप चाहे तो बीचों बीच खड्डा करके भी आप तल सकते हैं, बिना खड्डे के भी तल सकते हैं, वो आप पर छोड़ा, ठीक है। और मध्यम आँच पर आपको तलना है, सुनहरा कुरकुरा होने तक तलना है, दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गया दाल के बड़े। अब इसको आप गर्मा गर्म जो बड़े निकाले हैं हमने, उसको आप हरी चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो पहले आप अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा, उसके बाद ही भोजन स्वीकार करिएगा। तो आज की रसोई में महाराष्ट्र का चटपटा स्वाद, जो आपको कुरकुरे दाल के बड़े सिखाए हैं, ज़रूर बना करके खाइएगा। और बच जाए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरे दिन भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक ब्रेक लेकर के आएंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप आजमा सकते हैं आराम से। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो विषय आज आपको रेसिपी में महाराष्ट्रियन बड़ा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है। आज हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने जवाब दिया है, वैसे सही जवाब दिया है। सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई धानेराव से, दीपा जी कपासन से, संगीता जी चित्तौड़गढ़ से, अलका जी कपासन से और शोभा सोमानी कपासन से। तो आप सभी ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया है, सही जवाब है। ढेर सारी तालियां आप सभी के लिए। और इसका संक्षिप्त जवाब मैं आपको बता रही हूँ कि आज के प्रश्न का संक्षिप्त जवाब है, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका सीधा अर्थ है श्रद्धांजलि। ठीक है। और आप विषय में जुड़े, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से भी विषय में जुड़े हैं, तो आप सभी के लिए फिर से तालियां। और आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी। मनुष्य में ज्ञान का अंधकार होने से उनके अंदर भ्रम बना रहता है, जिस कारण अधिकतर दुखी रहते हैं। उसकी निवृत्ति प्रथम ज्ञान से होती है। अगर ज्ञान होगा तो अंधकार मिट जाएगा। अब मैं आपको श्राद्ध पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही सुंदर पहेली के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। श्राद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं, अपनों को याद करने का त्योहार है। श्राद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं, अपनों को याद करने का त्योहार है। जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, उनका जीवन भर आभार है। जो चले गए इस दुनिया से, उनकी यादें साथ रहती है। जो चले गए इस दुनिया से, उनकी यादें साथ रहती है। उनकी कही हुई छोटी छोटी बातें जीवन को राह दिखाती है। दादा दादी की वो कहानियाँ, माँ बाबा के संस्कार। दादा दादी की वो कहानियाँ, माँ बाबा के संस्कार, आज भी मन के आंगन में करते हैं उनका दीदार। पिंडदान और तर्पण अपनी जगह, भाव सबसे महान। पिंडदान और तर्पण अपनी जगह, भाव सबसे महान। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब जीवितों का करे सम्मान। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब जीवितों का करे सम्मान। बुजुर्गों के चरणों में बैठे, उनकी बातें प्यार से सुने, उनके आंखों की चमक बने, उनके सपनों का हम चुने। जो बीत गए उन्हें श्रद्धा से याद करे हर बार। जो बीत गए उन्हें श्रद्धा से याद करे हर बार। और जो आज हमारे पास है उन्हें दे प्रेम और सत्कार। और जो आज हमारे पास है उन्हें दे प्रेम और सत्कार। यही श्राद्ध का सच्चा संदेश, यही रिश्तों का मान। पूर्वजों की यादों को दिल में रख करे अच्छे कर्मों का दान। पूर्वजों की यादों को दिल में रख करे अच्छा कर्मों का दान।
1: भरोसा कर तू भगवान।
2: ये क्या है माँ जी? ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
2: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
2: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए।
2: वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू। बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल। सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है।

0: जाह्नवी, क्या है ये? तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
1: दादी, लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ। This song does not has riz.
0: चीज? क्या चीज नहीं है? अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
1: चीज नहीं दादी, रीज, रीज।
2: अरे बेटा, हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं। तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो, या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
1: पापा, प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
0: अरे, ये कैसी अंग्रेजी है? पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
3: दादी, जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
0: तो कौन बजा रहा है ये गाना? जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है।
3: दादी, चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
4: जाह्नवी, क्यों फंसा रही है वीरू को?
3: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
2: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर, गाना बंद करेंगे आप? पीर पीर।
5: अरे, किसने मेरा गाना बंद किया?
2: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
5: अरे बड़े बड़े चाचू, आप? अच्छा किया गाना बंद कर दिया। किसने चलाया था ये गाना?
1: तुमने।
5: हाँ, वो बड़े चाचू, वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
2: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
0: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा। सुन, तू कर वो क्या कहते हैं, भूम भूम भूम, तू कर।
1: भूम नहीं दादी, ग्रू।
0: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ, वही वही। अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
2: माँ, आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
0: देख वीरेंद्र, तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के। आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
3: और हम क्या है दादी?
6: इस सवाल का जवाब है किसी के पास। पोते को टोको नहीं, रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौर शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
7: राजकुमारी, ओ राजकुमारी, कहाँ मर गई?
8: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
7: राजकुमारी, आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
8: जेठानी जी, नाश्ता तो बन गया।
7: अच्छा, आज नाश्ता इतने जल्दी बन गया?
8: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
7: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
9: बड़ी भाभी, वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
7: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
9: कम उम्र?
2: हाँ हाँ हाँ, भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
7: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
9: बड़ी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
2: लो आ गए वो।
10: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाईसा।
11: हाँ, बढ़िया बढ़िया,
10: बहुत अच्छा।
11: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक।

0: वाह आज तो मजा आ गया।
1: सूरजमल बेटा बड़ा समझदार,
0: आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
2: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये। इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
1: शांति,
0: थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
2: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
3: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
0: शांति चुप हो जा। जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
2: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
4: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है?
2: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
4: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर पैसे कमा।
2: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
0: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
5: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
6: हाँ जाती हूँ।
5: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
6: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
5: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
6: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
5: इसी बात का तो डर है।
6: हा? कुछ कहा आपने?
5: नहीं नहीं बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
6: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
5: क्या?
6: अरे मजाक कर रही थी।
5: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
7: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
5: चल ठीक है अब नाश्ता करने चले।
8: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
7: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
9: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
10: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खरे बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानती हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हों। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं, इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इनवाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे तो। हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की और वहां का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
1: हाय संदीप, थैंक यू सो मच। आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी, एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
1: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने ही लिखा था।
0: पता नहीं, अभी तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
1: सो ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ, एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई। तो मेरी काफ़ी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, लाइफ से लेके, इस विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके, जो आई थिंक सबके साथ होती है। कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले, तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा। एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले, तो
0: अच्छा।
1: हाँ, बिल्कुल दिल वालों की दिल्ली बन गई।
0: दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
1: यस, टोटली।
0: तो थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और बाप की ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी, और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: Sure. So, I come from a business family,
0: ओके
1: and मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है, और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो यूएस में सेटल्ड है.
0: ओके
1: तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ, एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी स्टिल कनेक्टेड. बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन,
0: ओके
1: एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी. एंड
0: अच्छा
1: एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें मेरे को चेक भी कराया था, और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद एमडी है. लेकिन जब सेकंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा. तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज़ तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज़ ही
0: एग्जैक्टली
1: ज्यादा समझ
0: एग्जैक्टली
1: आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल. फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो उसमें आई चेकअप भी होता था, और वो मुझे सबसे डरावना लगता था क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्केरी थी, और मेडिकल रूम के होती आई गेस. एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना, तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
0: मैम, उनको पता भी
1: कैसे.
0: नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है, नहीं दे पा रहा है,
1: राइट
0: तो उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
1: हाँ,
0: नॉलेज नहीं होता।
1: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, जान पूछ के तंग करने के लिए. बट तो यही सिलसिला चला, और हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे. तो जब मैं 9 ईयर्स की थी, तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही. तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी, उनको ही वापस दिखाया. तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है. फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए, और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है. तो तब हम लोग का वहां से शुरू हुआ, बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से. एंड तकलीफें बहुत रही, क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा, रही टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभाले, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी. तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी.
0: नहीं थी।
1: बट धीरे धीरे करके वही एक्स्ट्रा टाइम, बड़ा फॉन्ट, बट ये सब मेरा मेनली विद टाइम डिटोरिएट हुआ. तो बोर्ड्स में जाते जाते मेरे को ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, पहले इतना दिक्कत था नहीं. एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे रहे, तो मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला. उनकी नोट्स मिले, उनकी नोटबुक से ही मैं कॉपी करती थी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत पहले ही दिखना बंद हो गया था. एंड ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं हमेशा बहुत सोशल और बहुत आउटगोइंग थी, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी था. एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थी, बट वही धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें थोड़ी छूट गई.
0: टूट गई।
1: राइट. एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफ़ी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी, और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया. क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर्स और ये सब अवेलेबल है. और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया.
0: अच्छा
1: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई. वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी, क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
0: वर्किंग थी
1: उसने
0: राइट।
1: मेरा राइट तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया. जब कुछ चीज़ ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी. तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ. फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई. अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा.
0: अच्छा
1: राइट. इसी वजह से, क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी. और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था. उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं.
0: ये जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, ये कब की बात रही होगी?
1: 2010 की.
0: 2010 की। बताइए, मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं पे प्रॉब्लम हो गई।
1: बिल्कुल. एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल
0: बहुत
1: में कितने
0: नहीं।
1: छोटे छोटे होते हैं, फिर भी
0: बहुत
1: सबने इतना सपोर्ट किया. और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं जाके। तो वहाँ पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोपा भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ। तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीज़ें बहुत की क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी,
0: अरे
1: राइट
0: वाह,
1: मैं काफ़ी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे, बहुत मज़े आते थे मुझे।
0: समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
1: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे। तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था, तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे। तो तब वहां से मेरा शुरू हुआ और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना।
0: क्या बात है।
1: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो इमिजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा पुश किया टू डू मोर।
0: बेसिकली वो 5 से 5-6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
1: नहीं, क्रिएटिव
0: आपका
1: फील्ड्स
0: क्रिएटिविटी
1: में,
0: आपकी पूरी तरह से चालू थी।
1: राइट मैं डांस भी सीखा, पियानो सीखा, मैंने और काफी कुछ किया होगा, अब मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम मेरा काफी एफ, मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था
0: हाँ, तो पता
1: कुछ।
0: नहीं था ना कि ऐसे किसी दिन इंटरव्यू में भी बताना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट हाँ लकीली बस इसके आगे छोटा ही है कि लकीली बस 2019 में जाके सोचा नहीं करना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, आगे कुछ हासिल करना जरूरी है। तो मैंने बस सोचा, वापस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, खत्म किया, फिर एक विजन एड एक करके एक वो है एनजीओ, वहां से मैंने अपना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया। एंड देन आई वॉज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विथ अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 ईयर्स, और उसके साथ साथ मैं काफी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए। और एज आई सेड राइट, क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है, तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज का काफी शौक है। लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था, सबसे पहले हमारी बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर शुरू
0: क्या बात है।
1: हुई थी।
0: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और
1: राइट
0: मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
1: राइट यस। तो आई थिंक
0: तो
1: लास्ट आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट?
0: हाँ जी,
1: तो एज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ, सो ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे और वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
0: ठीक से कर रहे हो कि
1: सपोर्ट
0: नहीं कर रहे
1: ये तो हाँ पूछना बनता
0: हो? आगे ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता चला।
1: नहीं, एक्चुअली फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से। सो ही हैज इज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स। एंड
0: अच्छा।
1: हमारे काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती है, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस। तब हम
0: ओ, काम
1: दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए,
0: करना चाहिए। बहुत सही।
1: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ। एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल, एंड मेन स्ट्रीम की तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सकें। तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया। क्या
1: यस
0: बात है। और अभी कुछ आपको है आई साइट या नहीं? अभी टोटल लॉस?
1: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है, जैसे सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता,
0: ओके ओके
1: थोड़ी
0: ओके ओके
1: बहुत लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस।
0: चलिए, अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन पीयूष जी
1: यस
0: कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर।
1: हाँ
0: पीयूष जी,
2: जी
0: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस।
2: हाँ संदीप जी, तो मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था। सिमिलर स्टोरी है घर में, जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए, तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बताया था, थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम। तो
0: जी
2: उनको थोड़ा डाउट होने लगा, फिर डॉक्टर कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया, तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई मैक्यूलर डिजेनरेशन, पहली डायग्नोसिस थी उस समय।
0: अच्छा
2: और उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था, तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था, इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड देख के वैसे मैनेज किया, फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली क्या
0: अच्छा
2: होता है ना, जब आपका साइट, आपको नहीं पता एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसमें क्या होता है आपको भी नहीं समझ आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड, कहीं ना कहीं आई साइट वो तो पता है कि नेचुरली आई साइट वीक के कारण, अब हमें पता है कि चलो ठीक है उसके कारण हो रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो गया कि मुझे मुझे नहीं दिख रहा, आई थिंक मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है।
0: प्रॉब्लम है, राइट।
2: तो और टीचर्स ने भी कभी मतलब आई थिंक काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जरूरत होनी चाहिए, और ये मैंने उस
0: एग्जैक्टली
2: समय, हाँ उस समय रियलाइज किया। पर और जैसे मेघा का है, मेघा को स्कूल में स्पेशली इनिशियली मुझे इसको बहुत सपोर्ट मिला, मेरा इनिशियल फेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, टिल
0: अच्छा
2: सिक्स स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है वो, मतलब तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट था सिक्स स्टैंडर्ड तक। फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ। तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आंखों में आंखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर रहा पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा। तो वो बोले दूसरी तरीका को कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है। तो फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई पेरेंट के सामने, मतलब
0: बताइए,
2: कितनी
0: हद है,
2: कितनी
0: मतलब
2: इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट के
0: बताइए,
2: लिए।
0: मतलब कोई, हाँ, मदर बैठी हुई हैं और आपको एटलीस्ट कम से कम चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने 7th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज करा है। और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशियली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चों को समझाना। और वहाँ पे एक और चीज़ मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स की
0: अच्छा,
2: काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले।
0: क्या बात है।
2: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ 7th स्टैंडर्ड में, और डे वन से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीज़ें बदल गई, वहाँ भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में, तो पहले 2-3 साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं।
0: आगे
2: तो
0: बढ़ाएं जी।
2: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से, मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होता है टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से, वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
0: जी
2: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन, मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाए। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे। 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल, जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
0: वाह क्या
2: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो

0: इसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी, तो मेरी प्रिंसिपल ने एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टाल नहीं या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो तो पता ही था हमें, तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी आईआईएम रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली
0: तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला मुझे स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला चलो ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
1: कौन से ईयर में आपने आईआईएम किया पीयूष जी?
0: 2013 से 15, 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
1: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
0: हाँ, पर आप ये
1: तो
0: नहीं मतलब
1: वहां का
0: ऐसा,
1: एक्सपीरियंस तो कैसा थोड़ा बताएं, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
0: बिल्कुल
1: आईआईएम का? क्योंकि हर
0: बिल्कुल
1: कोई जा नहीं पाता आईआईएम, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
0: हाँ
1: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
0: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था, पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड, इस टाइम से मेरे मन में हमेशा था कि मुझे एमबीए करना है, पता मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि एमबीए करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था, तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो, वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू आईआईएम रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, डे वन से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट अब मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप लोग समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी
1: क्या
0: इस यहाँ तक मैं, इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे
1: क्या बात है।
0: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए ही वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे, पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
1: ट्रस्ट
0: वापस दे तो
1: मतलब
0: दे देगा ना
1: उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई, और मैंने उनको बहुत, मैं दो, क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ द बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया, तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट मैं भी, मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए, चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
1: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका, या कुछ था आई साइड
0: मतलब
1: आपको?
0: आप समझ लो 5%, 4-5% कुछ
1: और
0: साइट बची
1: अभी
0: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है, लगभग 1-2% साइट
1: अच्छा,
0: मेरा है।
1: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं।
0: बिल्कुल
1: अच्छा, फिर ये वहां से आईआईएम से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
0: हाँ,
1: रन करने के बारे में कब सोचा, और कैसे ये शुरुआत हुई?
0: ये मैंने एक्चुअली सोचा आईएम करते हुए ही,

0: जब मैं आईआईएम में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था। तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में। तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया। और कई लोग मेरे से पूछते भी थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं। पहले तो उनको पता आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था। मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया। और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है। स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था। और फाइनेंशियल एडवाइस, पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को। तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है। तो वही मेरा एक्चुअली मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ। मुझे जॉब करने की
1: वाह,
0: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
1: बिल्कुल सही.
0: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने एमबीए फिनिश की। एमबीए के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था, वो मैंने फ्रांस में किया था, ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने। वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही जो मेरा रूममेट था इधर आईआईएम रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो 3 महीना
1: वाह.
0: हमने वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली। तो फिर मैं जब वापस आया, 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, या अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा। एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया। अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ। मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं। और
1: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
0: जॉब अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में। अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डे वन से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो डे वन से। पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे।
1: वेरी गुड. चलो करेंगे. अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास जॉब. चलिए, वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमरा ही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से. तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर. तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है. तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
2: ये हम आज ही दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
1: थोड़ा थोड़ा. हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत
2: सो
1: कहाँ से हुई मिलने की?
2: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी। इवन इन 2024 तक यही सच था। व्हाट्सएप
1: अच्छा.
2: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट,
1: नमस्कार.
2: बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, एंड हम उनके फ्रेंड के ही रुके हुए थे। सो आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहती है तुम यू नो यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
1: सही
2: मिलता है ना।
1: है.
2: तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना एनजीओ है, दिल्ली में रहते हैं और इनके काफी फ्रेंड्स हैं।

0: एज के ही थे, तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई. 2 दिन का प्लान था.
1: सिस्टर के साथ गए अकेले? अरे
0: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ सारे विजुअली
1: अच्छा,
0: इम्पेयर्ड ही थे. अब वो मेरे, नहीं, अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना यहाँ, वैसे भी यूएस में, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे अकेले
1: जरूरी
0: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता.
1: है, निकलता है, बिल्कुल सही
0: हाँ,
1: है।
0: और अब जॉब भी कर रहे हो, तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग.
1: कहाँ का ट्रिप था वो ओमेगा जी? दिल्ली
0: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने एक,
1: का
0: हाँ
1: ही था?
0: जी,
1: ओके ओके।
0: गुड़गांव में एक होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं, तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, तो खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन. तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
1: हाँ
0: को
1: वही,
0: बोल
1: मैं भी मन में वही सोच
0: के.
1: रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा।
0: देखो, चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है. प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब तो मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो यू नो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
1: आपकी
0: अच्छी
1: तो कहानी
0: फैमिलीज.
1: सिमरन से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा
0: हाँ, तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया था.
1: राज पता नहीं राखे जा जरूर आ गया।
0: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना. बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ. तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी, तो
1: अच्छा
0: हाँ, और ये भी वहां सबको जानता था, तो ये भी इनवाइटेड था. तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना तैयार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया. वहां पे एकदम एंट्री मारी
1: ओहो
0: एंड हाँ बिल्कुल आया. एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन, आपको फील होता है हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है.
1: मतलब कुछ तो है।
0: हाँ. ये पीयूष
1: कुछ
0: को
1: है
0: ज्यादा
1: कुछ
0: लगा था
1: कुछ
0: वैसे, आप इससे पूछना जब इसकी बारी आएगी.
1: लेकिन
0: एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम एक दूसरे
1: आपको तो
0: के.
1: कुछ पता थोड़ी था कि ये सिंगल है कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको? लेकिन
0: सिंगल था ये पता था, क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, और बाकी सब हम सिंगल ही थे. एंड
1: अच्छा, मतलब
0: हाँ
1: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है या बायो क्या है वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिला के?
0: नहीं, सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई है, चंद्रशिला ट्रेक के लिए गए थे,
1: अच्छा
0: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है.
1: बहुत शौक है, राइट।
0: तो आई वॉज लाइक एक वी आई कम्प्लीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था बिल्कुल, दो तीन चार चीजें,
1: और आपने
0: तो
1: सोचा होगा यार YouTube पे जिसको देखा वो यही मिल गया।
0: हाँ बिल्कुल. मैंने कहा ये अच्छा टाइम है पूछने का कैसे. तो जब इससे साइड बाय साइड हम बैठे थे, इससे बात होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ सोच के बात शुरू किया नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से भी नहीं थे, एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी दिल्ली छोड़ के यू नो जाऊंगी,
1: कहीं
0: तो
1: जाऊंगी?
0: वो क्वेश्चन ही नहीं था कभी. बट मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए कैसे ट्रैक कर रहे हो और क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बस बात शुरू हुई और हमारी बात होती गई, और हमें अच्छा लगा एक दूसरे का कंपनी, तो नंबर शेयर किए, फिर वी स्टेड इन टच, एंड फिर बस चीजें बदलती गई, तो दिस इज हाउ वी मेट. एंड
1: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका। और पीयूष
0: यस
1: जी
2: हाँ जी
1: आपको भी कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था?
2: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6-7 बजे, 8-9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज़्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
1: अरे भाई
2: बाय
1: साहब,
2: साइड बैठ के.
1: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा। गेट
0: हाँ, वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा.
1: टुगेदर जो है सफल हो गया।
2: बिल्कुल. नहीं, मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है. मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है, हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ 2-3 लोगों को ही जानता था. फिर आई थिंक बिजनेस

0: की वजह से ही, काम की वजह से ही पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज ने, जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा। तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में, हाँ
1: उसी ट्रिप में?
0: नहीं
1: नहीं
0: उस ट्रिप
1: नहीं
0: नहीं, ये
1: उससे
0: थोड़ी
1: पहले
0: थोड़ी
1: पर्पल
0: पुरानी, उससे आई थिंक,
1: फेस्ट के टाइम ना,
0: उससे
1: उससे
0: दो
1: पहले की बात।
0: साल मतलब हम
1: अच्छा
0: मिले 2024, ये 2022 की बात है।
1: की
0: टू
1: बात है।
0: थाउजेंड
1: ओके।
0: ट्वेंटी टू में हम, मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ। फिर जॉर्ज के साथ तो मैंने, जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है। फिर उन्होंने मुझे एक बार, ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में,
1: जी
0: 2024 में, उन्होंने जनवरी के महीने में
1: हाँ,
0: हुआ
1: सेम
0: था।
1: योर। हाँ
0: हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने, अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए, और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर। तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस। तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा। और गोवा में ही, आई थिंक गोवा में जब हम, मैं गया था तभी मैं सबसे ज़्यादा लोगों से मिला। और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सको, चीज़ें डिस्कस कर सको। तो वहाँ पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले, और वहाँ से फिर मेरा काफ़ी इस कम्युनिटी में भी काफ़ी जान पहचान लोगों से हुआ। और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से। और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ। और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई।
1: ये वो भी थोड़ा डिग्रेस हो गया। आई थिंक ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया, तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वही मिला था। सो द सेम ईयर जब मैं उस पूरे बताइए
0: ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
1: कहाँ,
0: फेस्ट पे मिला।
1: कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
0: सही में।
1: गुड़गांव। हाँ,
0: सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है, लिखा होता है, तो हो ही जाता
1: तो हम थे
0: है।
1: गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के।
0: बिल्कुल।
1: और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा?
0: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं, देखिए हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती। पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं, और शादी की सोचें। हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे, और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं।
1: अरे
0: आप
1: भाई
0: समझ लो
1: साहब,
0: ऐसे,
1: इसने
0: या आप समझ लो नवंबर,
1: डिसाइड किया था,
0: चलो इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है, 15 दिन बाद इसने
1: अच्छा।
0: डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो मतलब
1: हाँ नहीं,
0: आप
1: मैं
0: समझ
1: वही
0: लो
1: पूछ
0: दो
1: रहा हूँ,
0: महीने
1: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले?
0: इसने प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में, आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है।
1: नहीं कि
0: एंड आई
1: मुझे
0: थिंक
1: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है।
0: नहीं, सही बात है। आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो, एक होता है, आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा होता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज़ आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है, फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता। एंड अब ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफ़ी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो
1: हाँ
0: इसको यू नो किसी चीज़ में कन्वर्ट करा जा सकता है। बट आई थिंक
1: यार, मेघा जी, मैं पूछने वाला ये था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी का नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
0: बिल्कुल, आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है, हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा। काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं एवरीथिंग। और मेरा क्या था कि, और ये आई थिंक काफ़ी लोगों का होता है, हम आई थिंक पहले भी इसके बारे में, आप और हम शो से पहले बात कर रहे थे, कि विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो के आपको ये लगता है यार कोई साइटेड मिल जाए। और
2: ऐसा ही था मतलब पहले, और मेरे एज आई सेड राइट, मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स या कम्युनिटी में कोई कनेक्शन था नहीं. मैं हमेशा मेन स्ट्रीम
1: आपके सर्कल में मेन स्ट्रीम के लोग ही थे।
2: राइट, तो हमेशा वही रहे हैं और वही मेरे लाइफ का पार्ट भी रहे हैं. उसी ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स के साथ, साइड फ्रेंड्स के साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट कभी कुछ पैन आउट हुआ नहीं. फिर एक सर्टेन एज के बाद आके तो यही लगा कि देखो, शादी जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए तो नहीं करनी थी. करती तो इसलिए करती कि हाँ, कोई सच्चा मिला तो. एंड जैसे सबके साथ होता है, मेरे पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज में भी किया, जैसे पोर्टल्स वगैरह पे दो तीन लोगों से मिली, कुछ साइटेड कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से. पहले तो पेरेंट्स का यही था कि नहीं, साइटेड से ही करो, तुम दो विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मैनेज करोगे जिंदगी, बहुत डिफिकल्ट होगी. और वही मेरा भी माइंड फ्रेम था. बट और फिर काफी लोगों से मिली, बट किसी से कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ. फिर धीरे धीरे करके यही सोच लिया कि ठीक है, नहीं होएगी तो नहीं होएगी. अब ठीक है, कभी कोई मिल गया तो देखा जाएगा. अरेंज मैरिज तो नहीं करूंगी, और बाकी कुछ होगा तो वील सी इन द फ्यूचर. तो वही माइंडसेट हो भी गया था. एंड पेरेंट्स भी आई थिंक यही सोच लेते कि ठीक है, हमारे साथ खुश है तो हमारे साथ ही रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसी माइंडसेट में ही आई थिंक चलते चलते, बट सडनली पीयूष के साथ इट जस्ट हैपेंड कि वो एकदम क्लिक हुआ. ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ कि बस 2 महीने में ही सब कुछ हो गया. सोचा ही नहीं कि अरे 2 साल की जरूरत भी है. अब
1: डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगा मेगा जी? नहीं,
2: इतना टाइम तो चाहिए. दो दो महीने से कम तो बहुत कम है.
1: पीयूष ने कहा ना 15 डेज बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
2: अब थोड़ा टाइम तो लगता है. अब एक्चुअली जैसे
1: जब कभी मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे?
2: हाँ, वो तो था ही ऑफ कोर्स. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट या किसी को लाइक करता है या नहीं करता. जब हम मीटिंग हमारी हुई, हमने काफी बात की, तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है. जैसे आपने पूछा भी था ना सेट की, तब वहाँ सब सिंगल ही थे. बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है, और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है. तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे, एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही. फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हो, यार खुद ही बोल दे तो सही रहेगा. हाँ,
1: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना पड़े।
2: तो देखो लाइक
1: अपना काम,
2: लाइक हाँ जी
1: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
2: हाँ, सही में कि हाँ ना बोलो खत्म. तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली. एंड जब इनने प्रपोज किया, ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप. पहले शादी का था माइंड में, बट पहले देखा था कि ठीक है, अभी तक मिले एक ही बारी है, मिलके थोड़ा पता चलेगा. तो ही प्रपोज्ड, एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे. उस टाइम इनको एनएबी से एक अवार्ड मिल रहा था, तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए, टाइम स्पेंड कर पाए. तो उस टाइम बस मिलके लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार, जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है, इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. तो ही मेट माई फैमिली, मम्मी पापा से मिला, इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं, इसके भैया, तो उनसे मैं मिली. एंड हमें काफी पॉजिटिव फीलिंग आई. तो हाँ, तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है, शादी कर सकते हो इससे.
1: ओके, वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई।
2: लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया.
1: तो नवंबर से अप्रैल तक, मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
0: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था, तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ. तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो, दो वीआई की शादी तो बहुत मुश्किल है, ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा, इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ढूंढ ले, भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले. बट ऐसे फिर और वीआई कपल, जो एक और वीआई कपल से, विजुअली इम्पेयर्ड कपल से मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने खुश हैं, और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिलके कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके, ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं. तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था, फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं इस ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए। तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया, जब नवम्बर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था, उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में, बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख लें, उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है। तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले, हम ये क्या इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे, सब मिले और फिर वही ट्रिप में ही डिसाइड कर लिया। आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर ली और फिर मई में शादी।
1: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले, चूंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है, या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
0: देखिए पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैं, बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना, मेघा ने बताया कि कुछ न किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी, इतना मैंने सोचा नहीं कभी। लेट 20s में ही मैं रियलाइज़ करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं, और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे, साइटेड ही देख रहे थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे, बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था। और कोई रिश्ता आता भी नहीं तो आपके मन में डाउट होता है, बोले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना, मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा, जबकि लव मैरिज अगर नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता। तो वो एक फेज था जिसमें ये था, बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए, मैं ओपन हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू
1: कोई
0: या
1: दिक्कत
0: प्रॉब्लम
1: नहीं।
0: नहीं है। और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला, समझा कि काफ़ी अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश हैं और काफ़ी चीज़ों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था।
1: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है,
2: हाँ जी
1: और मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं, जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों VI हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्या रीजन है इसके पीछे?
0: आई फील दोनों का कॉन्फिडेंस, मेघा का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये चीज़ों को कितने अच्छे से करती है, शी इज सो कॉन्फिडेंट, अगर इसको देखोगे आप हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, शी इज कॉन्फिडेंट, और मिल के बात करने का तरीके से लगा कि कोई फील ही नहीं होता इसको कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कई बार लो लगता है कि ये मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज्ड है खुद, कई बार ऐसा लगता है, बट मेघा से मिलके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई थिंक मेघा ने भी मेरा जब ट्रैकिंग वाला स्टोरी सुना और ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
2: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है। आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते, आप ना ये सोचते हो कि ठीक है हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में जिंदगी भर, बट वो मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज है। और वो ठीक है आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है। तो जब मैं पीयूष से मिली तब मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ
1: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
2: जी
1: और लेकिन हो सकता है 1,000 में से एक दो लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में, बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को, यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे, उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में, तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
2: आई डोंट थिंक मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे. एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो, तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज्यादा लगता है फील, क्योंकि एक चीज करते करते एकदम से उस चीज को नहीं कर पाना और उस वजह से काफी चीजों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस. बट आई से हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं, तो हमें वही जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डिप्रेसिंग फेज और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ तो देखो
1: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हुए भी आइसोलेशन में रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए व्हेन इट कम्स टू अ वाइट केन. जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज करने के लिए, क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है. बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना टू वॉक विद अ वाइट केन.
1: व्हाइट कैन।
2: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के ये नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है, और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, वाइट केन यूज करो कितना आसान हो जाएगा. बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज है टू एक्सेप्ट. तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज को एक्सेप्ट करना. एंड अब बल्कि हम दोनों ऑनेस्टली बताऊं तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था. बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं, हम डिनर्स लंचेस शो सब जाते हैं अकेले और हम वाइट केन लेके जाते हैं. एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ वाइट केन तो यूज करना ही है और हमें वो नॉर्मल लगता है. तो
1: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जी।
2: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि जैसे हम बिल्कुल जैसे पीयूष भी आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है एंड हमें बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों बहुत फूडी हैं, एक तो ये कैलकटा से हमें दिल्ली से हो तो दोनों को खाने का शौक बहुत है
1: शौक है ही बिल्कुल।
2: एंड हम लोग को काफी
1: अच्छा,
2: ऐसे
1: आप दोनों
2: मतलब
1: के बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इश्यू तो नहीं आया?
2: नहीं, हम दोनों
1: क्योंकि
2: वेजिटेरियन
1: अच्छा फिर
2: है.
1: ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉनवेज थोड़ा ज्यादा चलता है।
0: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही मेरे बर्थ के पहले ही यहाँ सेटल हो गई थी कैलकटा में. तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं.
1: वेरी
0: और
1: नाइस।
0: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है, तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीज़ें जो आपको पसंद है बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर होगी. और जैसे आप मान लो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक्साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है एक शादी में या मतलब एक रिलेशनशिप में, तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है और ऐसे कई चीज़ें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज़ नहीं है. बट जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं और उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है.
2: मतलब ये मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड है और एक साइटेड है, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बट वही एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है. आई फील एज ए सेक लाइक माइंडेडनेस, कंपैटिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है. अब चाहे विजुअली
1: बहुत
2: इम्पेयर्ड हो
1: बढ़िया,
2: साइटेड हो, डजेंट मैटर.
1: काफी सीरियस बातें हो गई। जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
2: बिल्कुल किया. एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था. एंड
1: ओ
2: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया. हमने सोचा इंडिया में ही पहले कहीं सोचा चले जाए क्योंकि इजी रहेगा, राइट? इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है. बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार, बाहर जाने का मन है तो चलते हैं. वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे. बट
1: सही
2: ट्राई
1: है।
2: नहीं है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं. तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है, बाली चलते हैं, क्लोज है, अगर कुछ हुआ
1: इंडोनेशिया।
2: भी तो. हाँ जी, यही सोचा, क्लोज है, कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं. एंड यू नो, वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए. खुद से इसने अपनी आइटिनरी सेट की.
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमराही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेघा राखेजा के साथ, लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ।
2: ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं.
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तुरंत हाँ भी भर दी। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, 9414151415 पर। और रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और पीयूष।
2: थैंक यू.

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीके किरण जी हैं। और आप विशेष पंचकुला में अपना ब्रह्म कुमारीज का सेंटर संभालते हैं। काफी लंबे समय से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आपने काम किया है और कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी विशेषताओं में आप गीत भी गुनगुनाते हैं। तो आपके बहुत सारे गीत नए आपने बनाए, कुछ एल्बम्स आपने बनाए हैं जो संस्था को डेडिकेट किया है। और आज हम लोग आपके बारे में और आपकी कुछ विशेषताओं के बारे में और पंचकुला के बारे में कोशिश करेंगे कि हम लोग आपसे अच्छी बातें सुन पाए। तो आप सभी की तरफ से विशेष हमारे आज के मेहमान जिन्हें आप देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत दिन से स्वागत है। नमस्ते जी, किरण जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: जी। चलिए, हमारे साथ हिमाचल से आर्टिस्ट संतोष जी भी जुड़ गए हैं अपना हारमोनियम के साथ। ओम शांति संतोष जी। और मैं चाहूंगा कि दीदी के स्वागत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप छोटा सा डेडिकेट करें, एक मुखड़ा एक अंतरा उनके स्वागत में।
1: जरूर।
0: आप हिमाचल
1: कौन
0: से हैं और आप पंचकुला से हैं, बहुत ही नजदीक हैं शायद।
1: सा?
0: जी, ओम शांति।

0: ओम शांति
1: ओम शांति जी,
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: ओम
1: आपको। अच्छा लगा
0: शांति।
1: हमें। और हमारे साथ कुछ मेहमान, वरुण जी और शिवम जी, रामलाल जी, सभी ने याद भेजा है। बीके, बीना जी, रीना जी, सभी ने याद भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी को। आइए मैं सीधे आपको बीके किरण जी से जोड़ना चाहूंगा। नमस्ते, स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा वर्तमान में आप किस जगह पे हैं, थोड़ा सा बताइए अपने उस स्थान के बारे में।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: वर्तमान समय लगभग 11 साल से मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर रायपुर आली एक कस्बा है, जहाँ
1: अच्छा,
0: पर सेंटर सेंटर के जिम्मेवारी बाबा ने दी है, परमात्मा ने दी है, तो वो संभाल रहे हैं। और 11 सालों से यहाँ पर सेवा शुरू हुई और परमात्मा ने जैसे ड्यूटी लगाई तो यहाँ पर आना हुआ। ज्यादा बड़ा कस्बा तो नहीं है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा कस्बा है जहां पर मैं अभी वर्तमान में रह रही हूँ। वैसे 25 साल से समर्पित जीवन ब्रह्मा कुमारीज में टीचर के रूप में बिताया। अम्बाला से ज्ञान मिला और अम्बाला कैंट के विभिन्न सेवा केंद्रों से होते हुए 11 साल से रायपुर रानी सेवा केंद्र की जिम्मेवारी संभाल रही।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि पंचकुला में या विशेष जहां पर आप हैं, वहां पर किस तरह का खास बात, जैसे कहते हैं ना, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, अपनी एक विशेष शैली होती है। तो मैं चाहूंगा कि वहां की कुछ ऐसी यूनिक चीजें बताएं कि वो स्थान को रिप्रेजेंट करें।
0: पंचकुला ट्राई सिटी में एक शहर है जिसमें मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला एक
1: हाँ
0: साथ
1: हाँ
0: ही है। और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये कस्बा है जहाँ रायपुरानी, जहाँ मैं रह रही हूँ। और ये बहुत मशहूर है, एक किला है यहाँ। ये रायपुर रानी एक रानी के नाम से मशहूर है, जहाँ तक सुना गया है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे इस कस्बे के अंदर। तब यहाँ राजा का राज्य था और जब गुरु गोविंद सिंह जी आए तो राजा ने उनको ज्यादा भाव नहीं दिया, ज्यादा सम्मान नहीं दिया। और जब वो थोड़ा आगे चले गए तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे संत आए थे, तो रानी को पता चला, तो रानी यहाँ से पैदल निकल के गई उनके पास, उनके पीछे पीछे गई। और रानी ने बहुत सम्मान दिया और सम्मान के साथ उनको महल में लेके आई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनको ये कहा कि आज से ये रायपुर आपके नाम से मशहूर हो जाएगा, तो इसीलिए रायपुर रानी कहा गया। पहले ये सिर्फ रायपुर था लेकिन इसके बाद ये रायपुर रानी बन गया। और यहाँ
1: अरे
0: पर एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के नाम से जब वहां जो जहाँ वो रुके थे वहां पर गुरुद्वारा है और सभी लोग जाते हैं, काफी मशहूर है।
1: जी, अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे जुड़े, क्या कोई कहानी रही या फिर आपके परिवार में से कोई थे जिनको देखकर आपको आना?
0: हाँ, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता था, मैंने कभी सुना भी नहीं था अपनी लाइफ में कि ब्रह्मा
1: जी
0: कुमारीज भी कोई संस्था है। अचानक से एक्चुअली पापा एयरफोर्स में थे तो उन्होंने जाना शुरू किया, उनके कोई मित्र थे जिन्होंने उनको बताया और उन्होंने जाना शुरू किया। और हमें नहीं पता था एक्चुअली, जब वो घर में आते थे तो वो बातें बताते थे लेकिन ना हमें पता था ब्रह्मा कुमारीज क्या है, ना उससे पहले हमें हम किसी ब्रह्मा कुमारीज को हमने कभी देखा भी, सफेद साड़ी वालों को हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन जब पापा आकर बताते थे सेंटर से कि ये सुनाया, ऐसे ऐसे दीदियां रहती हैं वहां पे, तो हमारा भी मतलब इंटरेस्ट जागा कि हम भी जाकर देखें। तो पापा
1: अच्छा
0: मम्मी तो
1: अच्छा
0: जाते थे कोर्स करने के लिए और हम संडे के संडे जाते थे, लेकिन छोटे थे, मैं एक्चुअली +1 में पढ़ती थी तब, और भी भाई
1: अच्छा
0: बहन
1: अच्छा
0: छोटे थे तो हम संडे को वैसे ही देखने जाते थे। और सेंटर का माहौल बहुत अच्छा लगता था, बहुत पीसफुल लगता था, पर ज्ञान समझ नहीं आता था, ना ही हमें सुनने का इंटरेस्ट था, बस वैसे ही चले जाते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़ने लगे संस्था से, तो वहाँ संस्था सेंटर से एक भाई आते थे हमारे घर पे आके, वो कोर्स करवाते थे, तो जब वो कोर्स करवाते थे उनकी बातें में बहुत अपील करती थी, प्रैक्टिकल लगती थी, तो हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछते थे और उन सवालों का जवाब भी हमें मिलता था। तो जब जब सवालों का जवाब मिलता था तो हमारा और इंटरेस्ट बढ़ता गया, अगले दिन के लिए हम और सवाल इकट्ठे कर लेते थे, भक्ति से जुड़े, समाज से
1: अच्छा
0: जुड़े बहुत सारे सवाल, तो वो सवालों का जवाब, हर सवाल का जवाब मिलता था। और जो वो प्रैक्टिकल में हमें होमवर्क दे के जाते थे, जब हम वो करते थे तो हमें बहुत अच्छा फील होता था और वो प्रैक्टिकल लगता था। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और हमने सेंटर जाना शुरू कर दिया। और सेंटर जाते रहे, वैसे तो कॉलेज में जाते थे तो छुट्टी नहीं होती थी, तो संडे के संडे जाते थे, लेकिन फिर पापा की ट्रांसफर हो गई बैंगलोर और मैं तब बीए फर्स्ट ईयर कर चुकी थी, और मुझे था कि मेरे पास म्यूजिक सब्जेक्ट था और
1: अच्छा
0: म्यूजिक मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। और जब ट्रांसफर बैंगलोर हो गई तो वहाँ कर्नाटक म्यूजिक और यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक, वहाँ भाषा की बड़ी प्रॉब्लम थी और मुझे ग्रेजुएशन करना था म्यूजिक में, तो यहाँ अंबाला में कृष्णा दीदी थे, तो मैं जा रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि आप सेंटर पे रुक जाओ। मैंने कहा दीदी अभी तो मुझे पढ़ना है, तो कहते कोई नहीं सेंटर पे
1: बिल्कुल.
0: रह के पढ़ लो। तो मैंने कहा सेंटर पे रह के पढ़ सकते हैं क्या, तो बस ऐसी बात हुई और उसके बाद मैं चली गई बैंगलोर। पर
1: अच्छा
0: बैंगलोर में
1: अच्छा
0: जाके देखा कि लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे वो दीदी की बातें याद आती थी कि यहीं रह के पढ़ लो, उन्होंने तो वैसे ही कह दिया था। तो मैंने पापा को कहा कि मैंने पढ़ना है आगे, और एक्चुअली सारा परिवार ज्ञान में होने के कारण खान पान की भी धारणा थी, तो हॉस्टल में अलाउड नहीं करते थे, तो दीदी को फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं आके पढ़ूँ, तो क्या मैं सेंटर पे रह सकती हूँ। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, छुट्टी दी कि आप सेंटर पे रह के पढ़ सकते हो। और मैंने 2 साल सेंटर पे रह के ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की और कॉलेज जाती थी, और मुझे सेंटर का बहुत सहयोग मिला। हाँ वैसे अलाउ नहीं करते, लेकिन मुझे 2 साल सेंटर पे रहने को मिला और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बहुत अच्छे से समझने को मिला। उसके पहले शायद मैं इतना नहीं समझ पाई थी, हाँ लेकिन उस जब मैं रही सेंटर पे तो ब्रह्मा कुमारीज की दिनचर्या, ब्रह्मा कुमारीज का रूटीन, ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य सब मुझे क्लियर हुआ। और ग्रेजुएशन
1: बिल्कुल.
0: करते करते मैंने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि मुझे यही जीवन जीना है। हाँ ग्रेजुएशन के बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, तो इस तरह से ये लक्ष्य मैंने डिसाइड किया। क्योंकि जब नजदीक से देखा बहनों की लाइफ तो पता चला कि इससे अच्छा जीवन हो नहीं सकता। जब हम समाज के लिए, देश के लिए और परमात्मा के लिए कुछ कर पाए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाए, हाँ ऐसा जीवन और कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए ऐसा डिसीजन मैंने उसी टाइम ले लिया था।
1: जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया. आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है, और डॉक्टर संगीत जी भी आ गए हैं, संगीत रघुवंशी जी.
2: ओम
1: नमस्ते,
2: शांति।
1: ओम शांति.
2: ओम
1: कैसे हैं
2: शांति।
1: डॉक्टर साहब? चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देखकर, क्योंकि हमारे साथ आज के सारे गेस्ट जो हैं संगीत में माहिर हैं और गीत गुनगुनाने का शौकीन है. तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर संगीत रघुवंशी जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक आध गीत, कोई भी जो आपके मन के भाव हो, वो आज किरण जी को सुनाएंगे, क्योंकि हमेशा किरण जी को सुनते हैं हम लोग. जी

0: पीछे मन दौड़ने लगता है। हो गया,
1: बहुत बढ़िया यजमान जी, चलिए बहुत ही खुशी हुई। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, आप किस तरह की सर्विसेस अभी दे रहे हैं?
0: मैं डेंटल सर्जन हूँ और करीब करीब सभी प्रकार की सर्विसेज यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। मैं गाजियाबाद में करता हूँ प्रैक्टिस
1: जी जी
0: और एक साल से करीब करीब मैं इस ज्ञान में आया हूँ।
1: क्या बात है। अच्छा मैं चाह रहा था कि क्या डेंटल कैंपेन भी लगा सकते हैं पब्लिक सेवा के लिए, सर्विसेज के लिए?
0: लगा सकते हैं, पहले
1: जी
0: ये लायंस क्लब वगैरह के थ्रू या रोटरी के थ्रू।
1: अच्छा,
0: मेरी काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता।
1: चलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वैसे जनरल कैंप जो है लगते हैं, आई कैंप्स लगते हैं, पर बहुत कम देखा कि डेंटल का कुछ कैंपेन ऐसा लगा हो लोगों को।
0: नहीं सर, डेंटल कैंप बहुत लगते थे।
1: हाँ
0: जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस दौरान
1: जी
0: कम
1: जी
0: से कम मैंने करीब 7-8 कैंप्स तो तभी किए थे मैंने फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: उसके बाद जब प्रैक्टिस में आया तो प्रैक्टिस में भी काफी कैंप्स किए, बहुत ज्यादा कैंप्स किए थे मैंने,
1: ओके
0: काफी कॉमन है डेंटल कैंप तो। और
1: चलिए
0: आपका स्कूल्स में लगता है स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम बोलते हैं SDHP,
1: अच्छा, हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो भी
1: हाँ
0: काफी लगाए थे हम लोगों ने।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से किरण जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। किरण जी मैं चाहूंगा कि ओम शांति, आध्यात्मिक जीवन शैली को सभी लोग चाहते तो अपनाना, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं एक का छोटा सा गैप रहता है कि भाई अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, तो वो चीज आपके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि आपको बाद में करना चाहिए सब कुछ इतना जल्दी कर लिया आपने?
2: एक्चुअली जब प्राप्ति अभी चाहिए तो फिर करना बाद में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना।
1: बिल्कुल
2: कहते हैं
1: बिल्कुल
2: जब करेंगे तभी मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो करना तो पहले होता है और
1: जी
2: प्राप्ति
1: जी
2: बाद में होती है। तो ऐसा कभी लगा भी नहीं, और बचपन से ही जैसे मन में एक चाहत थी कि वो जीवन नहीं जीना जो दुनिया जी रही है, कुछ अलग से कुछ कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, कुछ अलग सा जीवन हो, लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है। तो एक मन में एक मतलब शादी को लेकर भी डर था कि नहीं शादी नहीं करानी है तो, लेकिन क्या करना है ये भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय शादी ना कराना, आज तो बच्चे रहते हैं लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो
1: बिल्कुल
2: मन में था और भगवान ने वो रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे चल के बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे मन की इच्छा थी वो मेरी पूरी हुई। और इस जीवन में चलते हुए इतनी प्राप्ति हुई है, इतना कुछ मिला है कि हम ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब हम अपना जीवन एक सही दिशा में जीते हैं तो उस दिशा में हमें अनेक प्राप्तियां होती है, और वो जीवन के उम्र के अंतिम पड़ाव में हमें प्राप्ति नहीं चाहिए, प्राप्ति पूरे जीवन में चाहिए। तो जब हर समय हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, तो अंतिम पड़ाव में क्यों करना है? करना भी तो तभी है ना। तो इसलिए जब करेंगे तो मुश्किल नहीं है। कोई भी कार्य जब हम दूर से दूसरों को करते हुए देखते हैं तो शायद वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम खुद से उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, हाँ, किसी कार्य को करने के लिए जब हम ठान लेते हैं तो फिर मुश्किल नहीं लगता है। और मुझे अपनी लाइफ में कभी कोई मुश्किल ऐसी नहीं आई। हाँ, परीक्षाएं तो बहुत आती है, परिस्थितियां तो बहुत आती है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगी या मैं इस रास्ते पे चल नहीं पाऊंगी, बल्कि मुझे ये रास्ता बहुत सहज लगता है। और मैं तो हर किसी को यही कहूंगी, करके देखो, चल के देखो, अपने आप सहज होता जाएगा। दूर से देखने से मुश्किल लगता है, पर जब इस मार्ग पे उतरते हैं तो सहज होता जाता है, तो सबके लिए सहज है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और कई लोग ऐसे मानते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, दिल साफ रखो, तो इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है क्या?
2: गाइडेंस तो बहुत जरूरी है ना, और
1: जी
2: सही गाइडेंस आध्यात्म के अलावा कहीं से मिल नहीं सकती। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा हमें, हम बच्चों को गाइड करते हैं, हम आत्माओं को गाइड करते हैं, जीवन जीने की सही कला सिखलाते हैं, और वो सही कला सीख कर ही तो हम कुछ कर पाते हैं। और जब तक हम आध्यात्म को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो जीवन हम नहीं जी पाएंगे जो हम चाहते,
1: जी
2: सेटिस्फेक्शन
1: जी
2: नहीं होगी। और मैं ये देखती हूँ कि हम जो जीवन जी रहे हैं हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, और जो आत्मा की जरूरत है, आध्यात्म का मतलब ही है आत्मा की जरूरत की पूर्ति। दुनिया वाले शरीर की जरूरत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की जरूरत कौन पूरी करेगा? उसके लिए तो परमात्मा से ही जुड़ना होगा, और परमात्मा की सही पहचान आध्यात्म के द्वारा, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दिया जा रहा है। तो सभी जरूर सुने, समझें, और उसको एडॉप्ट करके चलेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते।
1: जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र जो हैं आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक चेतना को फील कर रहे होंगे और उसको इम्प्रूव करने के लिए काम भी करेंगे आगे चल के। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जहाँ पर जैसे कुछ लोग हमारे जो है मोटिवेशनल होते हैं, जिनको देख के हमको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है, तो हम उस मार्ग को या उनकी बातों को अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति रहे जिनको देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिला और आप उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़े?
2: एक्चुअली सारी दीदियां ही मेरे लिए मोटिवेशन रही हैं, लेकिन जब मैंने इस मार्ग पे मैं चली तो
1: जी
2: मुझे नारी शक्ति का पहले पता नहीं था कि नारी शक्ति क्या क्या कर सकती है। जब इस आध्यात्मिक मार्ग पे आए तो पता लगा कि नारी कितना सशक्त होकर कार्य कर रही है, उसके पहले नहीं पता था। तो एक
1: अच्छा।
2: नारी, हाँ जी, तो अपने जैसे हमारे कृष्णा दीदी हैं, और वो प्रजापिता ब्रह्मा के टाइम से ही ज्ञान में है, उनकी शक्ति को देखा, उनके सेंटर चलाने के ढंग को देखा, लव एंड लॉ के बैलेंस को देखा, और उनके संरक्षण में पले बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उनसे प्रेरणा लेके इस जीवन को इस मार्ग पर लाया, और आज आज वो हमारे बीच है और हमें कदम कदम पे गाइड करते हैं। कहीं भी कुछ भी जरूरत होती है तो उनकी गाइडेंस लेते हैं, और उनकी गाइडेंस से ये जीवन बहुत सरल, सहज और आसान होता चला जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जीवन में कई बार हम लोग जो है ना कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग कुछ गुरु हैं या फिर लीडर्स हैं, उनको देख के भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे किसी गुरु या फिर किसी को पढ़ा होगा आप, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनसे आपने कुछ सीखा या जाना?
2: एक्चुअली कभी इस जन्म में ना भक्ति की ना गुरु किया, लेकिन किसी के भी अच्छे विचार जो प्रैक्टिकल हैं वो तो मोटिवेट करते ही हैं, और उन विचारों को अगर हम अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम प्रैक्टिकल में फील करते हैं कि उन विचारों का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। तो सभी का सम्मान है, लेकिन प्रॉपर मैं किसी गुरु को कभी भी ऐसे फॉलो नहीं किया। सभी का सम्मान है, हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है, रोल है, और जिनकी जो बातें अच्छी लगती है वो सुनते हैं, समझते हैं, और उसको प्रैक्टिकल जब जीवन में लाते हैं तो उससे बहुत कुछ प्राप्ति होती है।
1: जी, चलिए, काफी अच्छी बात आपने बताया, और किस तरह से आपने सभी दीदियों को देखकर आपको मोटिवेशन मिला, इसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप एकाध गीत भी आप गुनगुनाएं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। संतोष जी भी
0: जरूर
1: मुस्कुरा रहे हैं कि भाई दीदी को सुनने को मिलेगा।
2: अपने एल्बम का ही एक गीत है, एल्बम
1: जी
2: का नाम ही है जब से तेरा प्यार मिला, और गीत भी है जब से तेरा प्यार मिला, मैं वही थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ।
1: जी जी स्वागत।
2: जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला,

0: ना।
1: चलिए, बहुत बहुत सुनकर बहुत ही आनंद आया आपके गीत को सुनकर, अच्छा लगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि पंचकुला के बारे में आपने ऐतिहासिक बातें तो बताई, वहाँ का जीवन शैली या फिर वहाँ पर किस तरह के ज़्यादा लोग रहते हैं, यूथ के बारे में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आप सोशल एक्टिविटीज सेंटर के माध्यम से या किसी और एक्टिविटीज के साथ आप एनजीओ के साथ जुड़ के कुछ सेवाएं करते हो, तो उनके बारे में बताइए।
0: हाँ, एक्चुअली ये कस्बा है जिसके अंदर लगभग 84 गांव हैं। तो
1: अच्छा।
0: वो, हाँ जी, एक ही इसी कस्बे के अंदर छोटे बड़े लगभग 84 गांव हैं। और
1: अच्छा
0: ये 84 गांव की जिम्मेवारी, सेवा कहें, बाबा ने दी है। तो गांव गांव में जाके प्रदर्शनी लगाते हैं, या नशा मुक्ति का प्रोग्राम करते हैं, या लोकल जैसे कॉलेज है, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूथ के लिए सेंटर पे भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं। अभी हमने एक पद यात्रा निकाली थी अपने ही जोनल, सब जोनल लेवल पे। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए जिसमें यूथ के लिए भी प्रोग्राम हुए, महिलाओं के लिए भी प्रोग्राम हुए। और ये पद यात्रा लगभग 8-10 सेंटरों

0: औरों को भी मुक्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो टाइम टू टाइम हम ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, गांव में भी जाते हैं और सेंटर पे भी
1: अच्छा
0: सभी को बुलाते हैं।
1: सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लोगों को नशा मुक्त करने का अभियान आप चला रहे हैं अपने गांव में, कस्बों में। निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है आज के समय में, और सरकार भी इसके लिए खास सोशल जस्टिस विभाग जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान को इस वर्ष के लिए विशेष प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त बनाने का संकल्प है। तो निश्चित तौर पे आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान भी होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बातें मिलाकातें, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और विशेष हमारे साथ पंचकुला से बीके किरण जी हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं। तो आइए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। लोग जैसे कि पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव बातें सुनना चाहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसा आ जाता है तो वहां पर व्यक्ति वो सब भूल जाता है और परिस्थिति से एक संघर्ष या लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें वो ऐसे सिचुएशन में भी हमें पॉजिटिव बने रहें? आप कोई एग्जाम्पल दे के हमें अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार कोशिश करके बहुत बार ये चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि हर बार हम लोग पीछे रह जाते हैं।
0: नहीं, पॉजिटिविटी भी एक एक खुराक है, और जहां तक मैं समझती हूँ, अगर ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो
1: जी
0: संपूर्ण
1: जी
0: पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, ये सभी को पता है। लेकिन जब तक इस ज्ञान की रेगुलरिटी ना हो, जब तक हम रेगुलर तौर पे इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे, तो जीवन की परिस्थितियों से लड़ने की जो ताकत चाहिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है और वो हमें नेगेटिव कर देती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि परिस्थितियों का सामना न कर सकने की वजह से लोग ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान वो शक्ति क्रिएट करता है, शक्ति जनरेट करता है। अगर हम इस ज्ञान को सही रीति समझ जाते हैं और इसको रेगुलर तौर पर, जैसे शरीर के लिए भोजन कितना जरूरी है, पानी कितना जरूरी है, इसी तरह से ये ज्ञान आत्मा के लिए, मन के लिए बहुत जरूरी है। और हम शरीर को तो खुराक रेगुलर तौर पर देते हैं, तभी इससे कार्य ले पाते हैं, इसको चला पाते हैं। इसी तरह से अगर मन को, आत्मा को खुराक मिलती रहे पॉजिटिविटी की, तो ये हर शहर में जो सेंटर खुला है, ये इसीलिए खुला है ताकि हर किसी को वो खुराक मिले। तो हर कोई आधा घंटा निकाल कर अगर सेंटर पे आते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स को फील भी करते हैं और उससे एनर्जाइट होते हैं, और वो एनर्जी लेकर अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी आए। लेकिन परमात्म शक्ति उनके जीवन में कार्य करती है और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत उन्हें मिलती है, हिम्मत और उत्साह उनके जीवन में बढ़ता जाता है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि
1: जी
0: शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है परिस्थितियां बहुत है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि परिस्थितियां बहुत होती है पर व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। उसकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि परिस्थितियों का असर उसके लाइफ में नहीं पड़ता। लेकिन वो रेगुलर तौर पर अगर हम सेंटर से जुड़े और पॉजिटिविटी की खुराक लेते रहे तो तभी हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा कि ये बातें जो है हमें याद रखना है, और रेगुलर अगर पॉजिटिविटी को हम लोग धारण करते हैं या सुनते हैं, निश्चित तौर पे वो असर होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, समझदार हैं, अध्यात्मक भी कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन के टाइम पे वो चीजें एक्शन में नहीं दिखाई देता। तो वो ऐसे सिचुएशन को या ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहिए?
0: एक एक तो है सुनना और दूसरा है उसको समझना। अगर हम, क्योंकि सुनते तो लोग भी हैं, कोई सत्संग में जा रहे हैं,
1: जी
0: कोई कहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं उसका असर हमारे मन पर कितना है। आप देखिए, कोई किसी की बात जब हमारे मन को छू जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है ना। किसी की कोई नेगेटिव बात भी अगर हमारे मन को छू जाती है तो हमारा जीवन नेगेटिव की तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो मन को छूना बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी हम

0: सुनते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करें, और जब उसको समझ लेते हैं और वो बातें हमारे मन को टच करती हैं, तो उन बातों का असर परमानेंट रहता है। बाकी सुना हुआ तो भूल भी जाता है, उसका असर भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो बात हमारे मन तक पहुंच जाती है, अंतर मन तक पहुंच जाती है, उसका असर शायद लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होता है, और उससे हमें
1: जी
0: शक्ति
1: जी
0: मिलती रहती है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और हमारे सोलंकी सर जो हैं वो भी याद कर रहे हैं, और बड़े प्यार से ओम शांति ब्रह्म कुमारी किरण बहन जी, आपका बहुत बहुत सराहनीय कदम और प्रेरणादायक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण है और उत्साहवर्धक है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं लिख के भेजा है। थैंक यू कर्नल साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने लिख के भेजा, धन्यवाद। चलिए, अब फिर से मैं चाहूंगा कि अगर आपके मानस पटल पर जो हमें देख रहे हैं, आपको कोई सवाल दीदी से पूछना है, तो वेलकम है। आप कमेंट सेशन में आप कोई सवाल पूछना हो तो पूछिएगा जरूर, आपको टाइम देते हैं 2 मिनट का, और तब तक हम लोग संतोष जी से एक और गीत सुनते हैं, है ना।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। और रमेश काका जो है विशेष आपको याद कर रहे हैं, बाबा संतोष भाई जी, वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग है।
0: जी
1: अफ्रीका में रहते हैं और रेडियो मधुबन को रेगुलर इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते भी हैं। सोलंकी सर ने भी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं दी हैं, बहुत ही अच्छा गीत आपने सिलेक्टेड सॉन्ग्स। चलिए अब मैं चाहूंगा कि दीदी से एक बहुत ही प्यारा सा संदेश सुन के हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं। जी किरण जी, स्वागत है और एक संदेश सुनाइए।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: मैं सभी सुनने वालों से यही चाहूंगी, यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप रेडियो मधुबन सुनकर अपने जीवन को भी मधुबन जैसा बनाए, मधुरता और मतलब एक त्याग और मधुरता का संगम। तो ये रेडियो मधुबन जो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत प्रेरणादायी कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो ये रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और सभी को बहुत प्यारा प्यारा गीत भी सुना रहे हैं और सभी भाई बहनों को एक मंच से उनका परिचय करवा रहे हैं। तो इस रेडियो मधुबन के लिए मेरी बहुत शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सदा आगे बढ़ते रहें, सदा उन्नति करते रहें, बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचे और सुनने वाले भी सभी के जीवन में बहुत सुख, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद का झरना सदा बहता रहे। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच किरण दीदी जी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने अपने अनुभव के हमारे साथ साझा किया। और निश्चित तौर पे हमारे जो मित्र हैं जो सुन रहे थे, उन सभी को भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से मोटिवेशन मिला होगा। और खास करके युवा साथी जो यंग गर्ल्स हैं, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम अपना पढ़ाई भी जारी रखें या फिर अध्यात्म करें या फिर करियर को बनाएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उनके मन में रहती हैं। लेकिन आपको सुनने के बाद शायद उनको रास्ता मिल गया होगा कि ऐसा नहीं है, हम लोग अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और हमारी जो इच्छा शक्ति हो उसको प्रबल करें और अध्यात्म की तरफ आपको आना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप इसके लिए भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार, किरण दीदी एंड संतोष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।

0: सबके पास लुक्स है, ब्राइट स्किन टोन है।
1: ज्योति के डार्क स्किन टोन की वजह से उसके फ्रेंड्स हमेशा उसका मजाक बनाते और वो दुखी हो जाती थी।
0: मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ? ज्योति चल यार, लोगों की बातों को इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए।
1: ज्योति अपनी दोस्त की बात से खुश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फ्रेंड्स ग्रुप दोबारा देखता है और उसे देख जोर से हंसते हैं और ज्योति फिर से नाराज हो जाती है। ये समस्या सिर्फ ज्योति की नहीं है। जैसे ज्योति का स्किन टोन डार्क है, वैसे ही हम सब के शरीर में कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या होती है। किसी के कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए हैं, या कोई गंजा है, कोई जरूरत से ज्यादा लंबा है, तो किसी की हाइट बहुत ही कम है, कोई अपने वेट से परेशान है, और इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी बीमारियों से लोग परेशान होते हैं। देखा जाए तो आज के समय में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है।
2: You are precious just the way you are. It is more important how you see yourself than what others think. Har insaan ki apni khasiyat hoti hai. You have a lot that makes you special. Learn to accept and love yourself.
1: क्योंकि ये हमारा कलयुग का शरीर है, जिसे हमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पाया है। इसीलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है। इसे आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। जब हम खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी कुछ भी कहे, हमें बुरा नहीं लगता। यहाँ तक कि शरीर की बीमारियां भी हमें दर्द का एहसास नहीं कराती। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है, जिससे हम शरीर के भान को भूल जाते हैं। आइए अब समझते हैं हाउ टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। हमें खुद को चलते फिरते या दिन भर के काम करते समय बीच बीच में याद दिलाना होगा। क्या याद दिलाना होगा?
3: विजुअलाइज योर लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। ये लाइट मैं हूँ।
1: परमात्मा से मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। इस तरह जब हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और समस्याएं छोटी लगने लगती है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हमेशा स्टेबल और पावरफुल बनाए रखेगी। चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल टू अनलॉक योर ट्रू स्ट्रेंथ एंड पावर।
4: ओम शांति। मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते

0: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तैयार है ना मीना से मिलने के लिए? क्या कहा? बिल्कुल तैयार है। तो फिर चलो मिलते हैं मीना से, जो अपने भाई राजू के साथ स्कूल जा रही है।
1: मीना, कल रात की बारिश के बाद सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है ना? ठंडी ठंडी हवा, गीली मिट्टी की खुशबू और घास भी कितनी हरी हरी है।
2: हरी हरी है मगर पानी से भरी है।
1: अरे मीना, वो देखो, पुंगाराम चाचा इसी तरफ आ रहे हैं। नमस्ते पुंगाराम चाचा।
3: खुश रहो बच्चों।
4: चाचा, आप ये घड़ा लेकर कहाँ से आ रहे हैं?
3: मीना बेटी, तुम्हारी चाची और बेला दोनों की ही तबीयत खराब है और वो घर पर आराम कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कुएं से पानी भर लाऊं।
1: और इसी बहाने आपकी सैर भी हो गई सुबह सुबह।
3: हाँ भाई राजू, वो तो है।
1: पता है चाचा, नर्स बहन जी ने एक बार हमें...
3: अरे नर्स बहन जी से याद आया, बेला ने कहा था कि पीने का पानी साफ करने के लिए नर्स बहन जी से कुछ लाना है। मगर क्या? कोई छोटी सी चीज जिसका नाम क से शुरू होता है। क्या नाम था
1: चाचा? कहीं बेला दीदी ने आपको...
3: चलो नर्स बहन जी से ही पूछ लूंगा। तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी।
0: और जब मीना और राजू स्कूल पहुँचे,
5: मीना रानो देखो क्लास में कितना पानी भर गया है।
6: मगर दीपू, क्लास में इतना पानी आया कहाँ से?
7: वहाँ उस टूटी हुई खिड़की से।
8: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते बच्चों।
6: बहन जी, ये पानी?
7: हाँ मिली, कल रात की बारिश का पानी इस टूटी हुई खिड़की से अंदर आकर जमा हो गया।
6: वो देखिए बहन जी, दरी तो मेज के ऊपर पड़ी है और गीली भी नहीं हुई।
9: मगर दरी को मेज पर किसने रखा?
7: रोशनी, कल शाम को जाते वक्त मैंने ही दरी को मेज पर रखा था।
6: वो क्यों बहन जी?
7: वो इसलिए मीना, क्योंकि उस समय मौसम बहुत खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बरसात होगी और फिर मेरा ध्यान क्लास की टूटी हुई खिड़की पर गया, जहाँ से बरसात का पानी अंदर आ सकता था। बस फिर दरी को गीला होने से बचाने के लिए मैंने उसे मेज पर रख दिया।
6: बहन जी, अपनी सूझबूझ हमें भी सिखाइए ना।
2: हमें भी सिखाइए ना, मुश्किल से बचाइए ना।
7: हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है। बस आने वाली स्थिति के बारे में पहले से ही सोचो और अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखो। पर अभी हमें ये सोचना है कि हम क्लास से ये सारा पानी बाहर कैसे निकालेंगे।
6: हाँ बहन जी, क्यों ना हम एक डिब्बा ले आए और फिर उसकी मदद से हम क्लास में जमा हुआ पानी एक बाल्टी में इकट्ठा कर लेंगे।
5: हाँ, और फिर हम वो पानी बाहर मैदान में फेंक सकते हैं या शौचालय में।
7: दीपू, सुमी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम सब मिलकर क्लास से पानी बाहर निकाल देंगे।
2: पानी बाहर निकाल देंगे, सूखी नदी बिछा देंगे।
0: और सभी बच्चे क्लास से पानी निकालने में जोर शोर से जुड़ गए।
6: बहन जी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी क्लास में बाढ़ आ गई हो।
5: पर बहन जी, मेरे पिताजी ने तो बताया था कि बाढ़ में बहुत सारा पानी होता है।
7: तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल ठीक बताया है सुनील। बाढ़ की स्थिति में घर और खेत पानी में डूब जाते हैं और बाढ़ तब आती है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या किसी नदी का पानी आसपास के इलाकों में जमा हो जाता है।
5: बहन जी, अगर बाढ़ आई तो हमें क्या करना चाहिए?
7: सुनील, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। बच्चों, एक काम करते हैं, तुम्हें बाढ़ से जुड़े हर सवाल का जवाब अपने आप मिल सकता है, वो भी बिना पूछे।
5: वो कैसे बहन जी?
7: देखो, मैं तुम्हें हर जवाब से जुड़ा एक संकेत देकर तुम्हारी मदद करूंगी, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो शुरू करें?
8: जी बहन जी।
7: मेरा पहला संकेत है कि मेज पर रखी दरी जो गीली होने से बची।
6: मैं समझ गई बहन जी।
7: बताओ सुमी।
6: जैसे ऊंची मेज पर रखी दरी खराब नहीं हुई, उसी तरह बाढ़ की स्थिति में हमें किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए, जैसे कि छत पर या किसी ऊंची जमीन पर, जहां हम सुरक्षित रह सके।
7: शाबाश सुमी।
5: बहन जी, मुझे तो लगता है की बाढ़ की स्थिति में हमें अपने पास खाना और पीने का पानी भी रखना चाहिए, ताकि अगर ज्यादा समय तक घर से दूर रहना पड़े तो परेशानी ना हो।
10: शाबाश दीपू, तुमने तो मेरे अगले संकेत से पहले ही उसका जवाब दे दिया, मगर ये जवाब अभी पूरा नहीं है। ध्यान से सोचो बच्चों, इसे पूरा करने का संकेत भी दीपू के जवाब में ही छुपा है।
1: दीपू का जवाब है खाना और पीने का पानी, तो इसका मतलब है, मैं समझ गई बहन जी, आज सुबह पोंगाराम चाचा ने पानी को साफ करने के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था?
10: हाँ हाँ मीना, याद करो। शाबाश।
1: हाँ याद आया, वो नर्स बहन जी के पास क्लोरीन की गोलियाँ लेने जा रहे थे, लेकिन उन्हें गोलियों का नाम याद नहीं आ रहा था और मैं भी उन्हें नहीं बता पाई।
10: लेकिन तुमने ये बात अब क्यों कही?
1: वो इसलिए बहन जी, क्योंकि खाने के सामान और पीने के पानी के साथ साथ हमें जरूरत पड़ेगी क्लोरीन की गोलियों की, जिनसे हम पीने के पानी को साफ कर सके।
10: शाबाश मीना, इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं था, मगर तुमने तो इसे झट से बूझ लिया।
5: लेकिन मीना, तुम्हें ये बात कैसे पता?
1: हाँ, तुम्हें कैसे मालूम मीना?
8: हमें भी बताना।
10: मैं बताती हूँ बच्चों, बाढ़ की स्थिति में साफ जल साधनों जैसे नलके से लिया हुआ पानी भी साफ नहीं होता, उसमें आसपास की गंदगी मिल जाती है जिसमें कीटाणु होते हैं।
5: कीटाणु तो बीमारियाँ फैलाते हैं ना बहन जी?
10: हाँ दीपू, और इस गंदे पानी को पीने से बहुत सी बीमारियाँ होने का खतरा रहता है, इसीलिए जरूरी है कि बाढ़ की स्थिति में हम पानी पीने से पहले उसे क्लोरीन की गोली की मदद से साफ करें।
9: बहन जी, तब तो हमें ज्यादा से ज्यादा गोलियों की जरूरत होगी, ताकि पानी बिल्कुल साफ हो सके, है ना?
10: नहीं सुमी, एक मटका पानी साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन की एक गोली डालना ठीक रहता है।
9: अच्छा,
5: सिर्फ एक गोली?
1: एक गोली से सारा पानी साफ हो जाएगा?
10: हाँ बच्चों, और गोली डालने के आधे घंटे बाद हम वो पानी पी सकते हैं। क्लोरीन की गोली डालने से पानी में जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और पानी पीने के लिए साफ हो जाता है।
5: लेकिन बहन जी, अगर क्लोरीन की गोली ना मिले तो क्या हमें गंदा पानी ही पीना पड़ेगा?
10: नहीं सुनील, पानी को उबाल कर और किसी साफ कपड़े से छान कर भी पीने के योग्य बनाया जा सकता है।
5: ये देखिए बहन जी, बातों बातों में हमें पता भी नहीं चला और सबने मिलकर क्लास से पानी भी साफ कर दिया।
10: हाँ दीपू, न सिर्फ हम सबने मिलकर क्लास से पानी साफ किया, बल्कि हमने ये भी सीख लिया कि बाढ़ की स्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए, ताकि वक्त आने पर हम पूरी तरह तैयार रहें।
0: भाई वाह, आज तो क्लास में मजा आ गया। चलो अब देखें कि ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
2: कभी बाढ़ जो आए, रखना खास ख्याल।
1: पानी उबालो और फिर छानो और क्लोरीन का करो इस्तेमाल।
0: भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गीत।
11: बुंचिक

0: गाना तो बहुत बढ़िया था। अब देखते हैं कि मीना की बहन जी आज क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं।
1: प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। मैं तुम्हें एक चीज से जुड़ी दो कड़ियाँ बताऊंगी और तुम्हें बताना है वो चीज क्या है। तो शुरू करें।
2: जी बहन जी।
1: पहली कड़ी है, खेतों में करता हूँ काम।
3: मेरे बाबा,
4: मेरे बाबा,
5: मेरे पिताजी।
1: नहीं बच्चों, पहले पूरी कड़ी तो सुन लो। खेतों में करता हूँ काम, मेरी सवारी करना बच्चों की शान।
6: बैल। यही है ना सही जवाब बहन जी?
1: नहीं दीपू, सही जवाब कुछ और है। शुरू से बताती हूँ। खेतों में करता हूँ काम, मेरी सवारी बच्चों की शान। खेत को मैं जोतता हूँ, ईंधन से मैं चलता हूँ।
7: ओह, मैं समझ गई बहन जी। इस पहेली का सही जवाब है ट्रैक्टर, जो खेत जोता है और ईंधन से चलता है।
1: शाबाश सुमी। और ट्रैक्टर की सवारी करना किसे पसंद है? मतलब सभी को। तो बच्चों, कैसा लगा आज का खेल? मजा आया ना?
2: जी जी।
0: लगता है आप सबको भी खूब मजा आया। तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी दोस्त मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना।
8: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

हंसी मजाक नोक झोंक चलता ही रहता है। पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है। यही तो प्यार है।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: TIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 14वां पाठ जब धरती कांपी, पृष्ठ संख्या 131। एक बुरा सपना। ओह क्या हुआ? ओह बचाओ बचाओ जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गईं। वे भागी आईं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह यह तो सपना था, 6 साल पहले। असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं।

पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जज्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। पृष्ठ 132। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगीं। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। चर्चा करो और लिखो। क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। पृष्ठ 133। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयां भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीजों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रख कर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छतें बनाई। पृष्ठ 134। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। चर्चा करो। जस्मा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए
तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा? तुम कहाँ रहोगे? ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? लिखो, अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजों की सूची कॉपी में बनाओ, जैसे जस्मा का घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है आदि। क्या क्या करें? संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। पृष्ठ 135। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल आओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करोगे। चित्र में एक लड़का है जो एक मेज के नीचे बैठा है और उसने दोनों हाथों से मेज के पैर पकड़ रखे हैं। आओ इसी तरह तुम भी करो अभ्यास। करना है क्या? जब हो भूकंप का आभास। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग एक दर्जन बहुमंजिली इमारत थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। पृष्ठ 136। लिखो, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? क्या अंतर होता? ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे, तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी? ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। किन किन की मदद की जरूरत पड़ी? जैसे कुत्ता, काम में मदद, उसने क्या काम में मदद की, सूंग कर जानना कि लोग कहां दबे हैं। इसी तरह आप भी तालिका बनाएं। चर्चा करो, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? ऐसा कब कब देखा है? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता, तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते? क्या अकेले डर लगता? सभी त्योहार और खास मौके किसके साथ मिलकर मनाते इत्यादि। लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठे करो। उन्हें कॉपी में चिपकाओ। पृष्ठ 137।
तुम्हारी समाचार।

ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर रिपोर्ट तैयार करो। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो। सूची इस प्रकार हो: पता और फोन नंबर, जैसे दमकल केंद्र, पता, फोन नंबर, नजदीकी अस्पताल, पता, फोन नंबर, एम्बुलेंस, पता, फोन नंबर, पुलिस थाना, पता, फोन नंबर। पृष्ठ 138। पहचानो संकट के समय को। इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। हम क्या समझे? बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी? चित्र देखो। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला बाहर बच्चों को पढ़ा रही है। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं बताओ, और लिखो बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा। जब धरती कांपी। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 14वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: शिवांशी, तुझे पता है मैं बड़े होके ना अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
2: हाँ, रखूंगी तो मैं भी, पर बड़ी होके तुम क्या बनोगी?
1: मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी, सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करेगी, बिल्कुल फ्रेंडली डॉक्टर बनूंगी।
2: और मैं बड़े होके तो अपने देश के लिए कुछ करूंगी। बड़े होके क्या करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना आपसे?
3: हाँ जी,
2: है ना, बार बार पूछते ना, बड़े होके क्या बनोगे, क्या बनोगे। स्कूल में भी पूछते हैं, जो मिलते हैं वो भी पूछते हैं, ऐसा होता है?
3: हाँ,
2: होता है ना। तो क्या बनेंगे वो तो चलो एक बात है, लेकिन बड़े होना होता कैसा है? चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज देखते हैं बड़ों की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? ठीक है?
3: हाँ हाँ,
2: ठीक है। चलो तो फिर एक बार बता दो, आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग?
4: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
5: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
2: ओके, आप लोग को क्या लगता है बड़ा होना? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे होने और बड़े होने में क्या अंतर होता है, क्या लगता है आप लोगों को?
5: जब हम बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, और जब हम छोटे होते हैं जिम्मेदारियाँ कम होती है। अगर हम कुछ गलती करते तो वो माफ भी हो जाती है।
2: ओके
7: दीदी, जब छोटे होते हैं ना तब खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ घर का काम करना ये करना है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ऐसा होता है हाँ अब खेलना कूदना कहाँ है, तो बस घर का काम ही है।
2: ओके
4: दीदी, जब छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है बड़े बंदों की लाइफ आसान होती होगी, और जब बड़े होते हैं तो लगता था कि छोटे बच्चे ही होते हैं।
2: अभी जैसे आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अच्छा, बड़े होना क्या होता है, क्या लगता है कितनी एज में बड़े हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी आप बड़े हो गए?
4: 18+।
2: ओके, आप लोगों को क्या लगता है कब बड़े हो जाते हैं?
6: दीदी, जब जॉब करने लगते हैं तो बड़े हो जाते हैं।
7: वैसे तो कभी बड़े होते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, पर मेरे को 25 लगता है।
2: ओके, आपको क्या लगता है?
5: मुझे 17+।
2: ओके, ठीक है। तो जब आप लोग 17, 18, 20, 25 के हो जाओगे तब कैसे होगे आप लोग, क्या क्या करोगे? ऐसी कोई चीजें हैं जो तब कर सकते हो और अभी नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें कर सकते हो और तब शायद नहीं कर पाओगे?
4: दीदी, जब 18+ के हो जाते हैं तो हमारा गाड़ी का लाइसेंस बनता है, तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं।
2: ये तो है।
5: और हम वोटिंग भी कर सकते हैं।
2: वोटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लगता है, बड़े होना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे होना ज्यादा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है?
5: बच्चे रहना ज्यादा अच्छा होता है।
2: ओके,
7: बच्चे रहना ही होता है, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब अगर कोई गलती भी कर दे बड़ी छोटी तो माफी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना फिर ही हम मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक कर दें या कोई बड़ी गलती कर दें तो माफ़ी मिल जाती है या फिर डांट पड़ जाती है थोड़ा। तो अगर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद अगर वही गलती रिपीट करें तो उस बात की हमें बड़ी सज़ा मिलती है।
2: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
5: दीदी, छोटे होना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे में ना मम्मी पापा का प्यार मिलता है, कि बड़े हो जाते हैं फिर तो बिजी हो जाते हैं, मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं होता है किसी के पास।
2: ओके, वैलिड पॉइंट है, टाइम बचपन में ज्यादा मिलता है ना मम्मी पापा के। राघव, आपको क्या लगता है, बड़े होना अच्छा है कि बच्चे होना अच्छा है?
4: बच्चा होना अच्छा है।
2: क्यों?
4: क्योंकि उधर हम खेल सकते हैं और खेलते हैं तो सबको खुशी भी मिलती है।
2: खेलने में मजा तो आता है ना। तो बड़े लोग नहीं खेलते क्या?
4: नहीं, वो कभी कभी खेलते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं खेलते।
7: वो बस कोई महीने में एक दिन खेलते हैं, कोई मतलब जिस दिन छुट्टी हो या फिर कहीं बाहर काम ना हो फिर ही खेलते हैं, और उस टाइम भी अगर उनको कुछ और काम अर्जेंट आ गया तो वो भी नहीं खेलते।
5: और मतलब जब उनके ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के उस टाइम पे महीने में एक बार कभी दो बार जाते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ, या फिर उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आता है तो
2: तब नहीं खेल पाते हैं।
5: नहीं।
2: शिक्षा, आपको क्या लगता है बड़ों के लिए खेल होते हैं या बच्चों के लिए ही होता है?
5: दीदी, खेल तो कोई भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेल है ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं। खेल तो बड़े लोग भी खेलते हैं, बस वो बिजी रहते हैं इस वजह से नहीं खेल पाते हैं।
2: बट खेलना अच्छा लगता है बड़े लोगों को, लगता है आपको?
1: हाँ, उनको खेलना अच्छा लगता है।
4: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मॉल में खेलने के लिए जगह बना रखी थी, तो सब बड़े है ना खेल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन की लाइफ ही जी रहे हैं। मतलब वो बारी बार खेल ही रहे थे,
2: इतना मजा आ रहा था। ओके, अच्छा आप लोगों को लगता है बड़े होने के कुछ फायदे होते हैं जो सिर्फ बड़े होके ही मिलते हैं, अभी नहीं मिलते हैं आप लोगों को, ऐसा लगता है? बोलो।
7: बड़े होके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जो बस हमें बड़े होने के बाद ही मिलते हैं, छोटे बच्चे में नहीं मिलते।
2: तो कुछ फायदा क्या है लेकिन इसका, फायदा क्या लगता है आपको?
7: फायदा वोटिंग का तो ये फायदा है कि हाँ हम अपनी खुद की, हमारा जो लीडर है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमारा लीडर ही यही होगा। और
2: पर्सनल लाइफ में कोई फायदे लगते हैं आप लोगों को बड़े होने के?
1: दीदी बड़े होके हमारी खुद की एक आईडी बन जाती है, जैसे कि लोग जब हम छोटे होते हैं तो जानते हैं कि है ना उनकी बच्ची है, ऐसे बड़े होते हैं ना तो मतलब ऐसे बड़े हो जाते हैं तो पहचानते हैं, खुद के नाम से पहचाने जाते हैं,
2: खुद के नाम से पहचाना जाता है। हाँ,
7: और अगर हम बड़े होकर कुछ बन भी जाते जैसे कोई आईएएस आईपीएस, तो मतलब पहले जब हम अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को भी हमारे नाम से जाना जाता होगा,
2: कुछ बन जाते हैं।
7: हाँ, तो कि हाँ ये उनके पापा है, उनकी मम्मी है,
2: वो अच्छा लगता है, प्राउड
7: ऐसे लगता है कि उस क्या बताए।
2: ओके,
5: बड़े होने के बाद अपनी एक प्रॉपर्टी जो भी है घर में थोड़ा बहुत अपना चलने लग जाता है, बचपन में ऐसे कुछ नहीं कि जो मम्मी बोलती है वही करना है,
2: अपनी चलती नहीं है ना बचपन में,
5: नहीं।
2: और बड़े होके अपनी बात कह सकते हो,
5: बात कह सकते हो,
2: और जो करना है वो कर सकते हो।
5: हाँ।
2: ओके, राघव क्या लगता है आपको?
4: दीदी बड़े होना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर अपनी खुद की आईडी बनती है वो एक अच्छी चीज है।
2: वो एक अच्छी चीज है। ओके, और जैसा अभी हर्षिता ने भी बोला ना कि अपनी आप थोड़ी चलती है अपनी, अभी तो सिर्फ सुनना पड़ता है ना, बच्चों को तो बड़ों की बात माननी भी चाहिए क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या लगता है?
5: ये भी ठीक है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उनकी बात मानना भी अच्छी बात है।
2: लेकिन अपनी कोई बात अगर आपको सही लगती है तो उनके सामने बोलनी चाहिए या नहीं?
5: नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं।
2: गुस्सा करते हैं
5: या फिर मम्मी डांटेगी, कैसे नहीं बोलना चाहिए था।
2: लेकिन अगर हम कायदे से प्यार से बोले तो
5: हमें फिर ऐसे प्यार से बोले, लड़ते हुए नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर वो कभी मतलब कभी कभी ऐसे हाँ ये भी बराबर है ऐसे
2: बोल सकते हैं ना, तो मतलब बड़ों से हम अपनी बात थोड़ा प्यार से अलग से जाके बोल सकते हैं, पर अपने दिल की बात तो बोलनी चाहिए,
5: ऐसा तो करना ही है,
2: करना है ना। बिल्कुल, और क्या लगता है आप लोगों को बड़े होने के फायदे और क्या होते हैं, पर्सनली बताओ, क्या नुकसान लगते हैं तो नुकसान भी बता सकते हो।
7: नुकसान तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा टाइम नहीं बना पाते, जैसे बचपन में जैसे हम उनके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, फिर बड़े होके वो सब नहीं मिलता क्योंकि बड़े होके मतलब जॉब में लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, तब पूरे दिन तो अलग ही रहते हैं, मतलब अलग कहीं जॉब पे जा रहे तो उधर रहते हैं, रात को आते हैं तो लेट आते हैं, पेरेंट्स खाना खा चुके होते हैं या फिर कई बार नहीं खाया होता, तो बस एक बाय चांस कोई एक दो टाइम ऐसा होगा जिससे एक साथ बैठ के खाएंगे। और छुट्टी के दिन भी ऐसे कई लोग होते हैं कि छुट्टी होती है तो हाँ चलो आज बाहर घूमना चल पड़ते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते।
2: और कोई फायदा नुकसान बड़े होने का जो लगता है?
1: बड़े होने का नुकसान तो है कि देखो सबसे बड़ी बात तो जब छोटे थे तब पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाते थे, बड़े हो जाते तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि साथ में बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। अभी है ना जैसे कि मेरे पापा हैं वो दादी से मिलने भी है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है उनको, या फिर है ना एक दिन लेट चले जाएंगे अपनी दुकान पे काम के लिए, कभी कभी ऐसा दिन होता है रात को वो बहुत लेट सोने के जगह दादी से मिलने चले जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं उनसे, इतने बिजी रहते हैं दादी, इसीलिए पापा से कभी कभी काम की भी नहीं कहती है क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो फोन लगाती है तो भी बात नहीं हो पाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़े होके अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते,
2: ये तो अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा है चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना।
7: जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है। छोटे होने के टाइम चाहे कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े चलेगा, पास हो जाते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब पास से बस कुछ नहीं होता, पास हुए तो बस यही मानते हैं कि फेल के बराबर ही माना जाता है अब तो, पहले पास टॉप पे था पहले के टाइम पे, अब पास मतलब फेल के बराबर है, रैंक आना चाहिए टॉप 10 में, तो अब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है,
2: कंपटीशन बहुत आ जाता है
7: और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है बड़ों। यूपीएससी का एग्जाम है उसमें कितना स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ फर्स्ट पे आना है सेकंड पे आना है, बट स्ट्रेस बहुत हो जाता है, फिर कई बार हेल्थ भी खराब हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में।
2: तो अभी नहीं लगता आप लोगों के पास स्ट्रेस है?
7: अभी तो बस स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, फिर तो बढ़ता जाएगा अब तो आगे आगे चल के।
2: ओके
5: दीदी, मेरे एक मामा और मामी है, वो दोनों जॉब करते हैं, इतना स्ट्रेस है कि मेरी जो मामी की आंखें है ना वो पूरे ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना वैसे पूरे एकदम काली काली हो गए, उनको इतना स्ट्रेस होता है। और कभी कभी ना वो मेरे अंकल के से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस होता है जॉब का।
2: तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े होके स्ट्रेस बढ़ जाता है, है ना?
5: हाँ, अगर कोई अपने को मतलब बड़े होके आईएएस बनना है या फिर डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे कुछ बनना है, तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है।
2: वो कंपटीशन भी है, स्ट्रेस भी लगता है।
5: और जैसे उसने कहा बड़े होने के बाद वो टेंशन बढ़ता ही चला जाता है, टेंथ से शुरू होता है तो टेंशन बढ़ता है।
2: तो कभी कम होता है आपको लगता है, बड़ों का टेंशन कम भी होता है कभी?
5: हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है,
2: वरना बढ़ता है ज्यादातर।
5: बढ़ता ही है
6: दीदी, फैमिली का टेंशन में मतलब जो जॉब वगैरह करता है उसका टेंशन तो तभी कम होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठे अपना जो बात दिल में होती है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब अच्छा लगता है। मेरे पापा को इतना स्ट्रेस रहता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें दादी के पास जाना ही पड़ेगा टाइम निकाल के, फिर वो वहाँ पे जाएंगे। जिस दिन उन्हें स्ट्रेस होगा ना वो हम लोगों से भी हंसते नहीं है सामने में, वो बस ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, पापा से बोलो पापा खाना खा लो, हाँ खा रहे बिल्कुल खोए रहते हैं, अपने संकल्प चलते रहते हैं उनके। वो दादी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर दादी के यहाँ से बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए आते हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है।
2: मम्मी तो मम्मी है ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाए।
5: हाँ, जैसे कि उसने कहा कि अभी वो दादी के पास जाते हैं तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फ्रीली जाना चाहिए, उनको अभी उतना सा टाइम देके जा रहे हो तो भी उनको टेंशन में भरा रहे हो, हाँ ऐसे था फिर क्या करूँ मैं अब। तो फिर पेरेंट्स के पास ऐसे जाना ही नहीं मिलता जिसमें अगर हम फ्रीली बात कर रहे कि हाँ कैसे हो कैसे हो, वैसे नहीं टेंशन में जा रहे हम लोग।
2: पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है?
5: हाँ, उनको भी थोड़ी टेंशन आ जाती है, पहले से
2: टेंशन
5: है उनको, बड़े थे उस टाइम पे भी टेंशन था, अभी ये भी उनको टेंशन दे रहा है, पर अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है वो उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, फिर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, जैसे उसने कहा कि मुस्कुराते हुए आते हैं फिर।
2: कितनी अच्छी बात है मुस्कुराना, तो अगर लेकिन फिर टेंशन तो कम करनी पड़ेगी, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना?
5: वो तो है, कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा।
2: ठीक है, तो और तरीके ढूंढ सकते हैं मतलब?
5: और टेंशन कम करने के ऐसे नहीं कि एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपका एकदम मूड सैड है, एंग्री हो आप, तो आपको मतलब कभी कभी बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं करता है, तो फिर उससे अच्छा आप मुस्कुराते रहो तो कोई बात करेगा तो फिर अपने आप वो टेंशन भूल ही जाओगे आप।
2: ओके, मुस्कुरा के बात करोगे तो टेंशन भूल जाओगे।
7: दीदी, जैसा कि अभी इन दोनों ने कहा, इसने शिक्षा ने कहा कि पेरेंट्स को बता के हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, फिर हर्षिता ने कहा कि पेरेंट्स को बताने से उनका टेंशन बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका टेंशन नहीं बढ़ता, बल्कि हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ उस टेंशन को कम कैसे करें। वो पेरेंट्स बात अपने दिल तक नहीं लेके जाते, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपने बच्चों को बताते हैं, थोड़ा टेंशन लेंगे तो ही सॉल्यूशन बताएंगे। जो उनके बेटे हैं उनको इतना टेंशन है, उनको कुछ और सूझ नहीं रहा।

0: अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो फ्री माइंडेड है, उनको थोड़ा सा टेंशन मिलेगा तो उनको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा. तो उनको टेंशन थोड़ा सा देना ही हो, मतलब उनके लिए टेंशन वो थोड़ा सा है, बट जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है.
1: सोल्यूशन
0: वो
1: ज्यादा मिलता है।
0: सॉल्यूशन देंगे फिर वो.
1: राघव आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता राघव, बड़ों के बारे में कुछ, बड़े होने के बारे में फायदा नुकसान कुछ तो लगता होगा, बड़े होकर ये करूंगा ये करूंगा कभी नहीं सोचा? कभी नहीं, बस बच्चे होना ही अच्छा है। चलो
2: हाँ
1: वो भी अच्छी बात है।
2: दीदी, बड़े होके एक फायदा भी है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर पाते हैं. जैसे वो हमारी करते थे वैसे हम भी उनके लिए कभी कुछ लेके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं. फैमिली के लिए जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आओ, पापा आए घर पे आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे बड़े हो जाते हैं. तो वो जब उनके है ना इनकम हो जाती है, वो जब कमाने लगते हैं तो वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं सबको, तो उनको भी खुशी मिलती है अंदर से कि हमने कुछ तो अच्छा किया है.
1: कुछ करना है मतलब बड़े होके ना पेरेंट्स के लिए,
2: हाँ
1: वो चीज अच्छी है।
2: हमारे ना जब 4th का गैदरिंग था ना तब एक थीम थी, उसमें मेरी एंकरिंग थी. वो ना एक 1st की छोटी बच्ची थी और उसकी और मेरी एंकरिंग थी, छोटे रहना ज्यादा अच्छा होता है, छोटापन कभी नहीं भूलना चाहिए. जिंदगी में 3 टाइम आते हैं, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है बूढ़े होते हैं वो. तो और ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमारे पेरेंट्स की केयर करते हैं जैसे वो हमारी केयर करते थे, तो वैसे ही कह सकते हैं.
1: ओके दैट्स ऑल्सो नाइस। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी लगता है
2: नहीं, बिल्कुल नहीं लगता.
1: किसी को? लगता है
2: नहीं
0: दीदी, लगता नहीं है, बस बड़े होते जाते हैं. कब पूरा साल बीत जाता है पता ही नहीं लगता. ऐसे लगता है कि अभी तो कल नया साल शुरू था और आज खत्म भी हो गया.
2: और दीदी बचपन में ऐसे लगता है जब हम 1st 2nd में होते कि यार वो 4th के बच्चे 5th के बच्चे कितनी शाइनिंग मारते हैं, हमको भी उनके जैसे बड़े होने. पर बड़े होने का ऐसा लगता है यार अभी बच्चे अच्छे थे, हम क्यों नहीं बच्चे हैं.
1: और शिक्षा को क्या लगता है, बड़े होने का मन करता है कि नहीं करता है?
2: दीदी मुझे नहीं होता बड़े होने का मन, क्योंकि मुझे तो है ना बस अपने मम्मी पापा के साथ रहना है. बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज या जॉब के लिए दूर जाना होता है उनसे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना. दीदी हमको ना टाइम तो निकालना ही चाहिए, जैसे कभी हम रात को लेट आते हैं और अगर वो उठे होते हैं तो हमको उनके पास जाना चाहिए, और अगर वो सो रहे होते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठ के जितने बजे अपने पेरेंट्स उठते हैं को उनके पास जाके नमस्ते करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए.
1: बिल्कुल, उनका आशीर्वाद तो हमें हमेशा चाहिए ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। बिल्कुल सही बात है,
0: माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है.
1: हाँ, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सच में कितनी प्योर होती हैं, हमारे लिए कितनी पावरफुल होती हैं, उनसे ज्यादा हमारा भला और कौन सोच सकता है?
2: मेरे जो मामा मामी उनको लिटरली टाइम भी नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के पास जाने, वो दूर रहते रहते तो है बारामती में बचपन से, पर अभी वो जॉब करने के लिए बैंगलोर पुणे ऐसे कंटिन्यूअसली उनकी इधर से उधर उधर से इधर, फिर बॉस की सुनो. वैसे लगते में तो ऐसे लगते कि बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना करना पड़ता है, वो नहीं लगता अपने को.
1: बहुत मेहनत होती है, बिल्कुल.
2: दीदी एक बार ना मैंने यही सुना था कि ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मैं उनके पैरों के अंदर देखने लग गया था. फिर मैंने उनसे पूछा स्वर्ग नहीं दिख रहा मुझे,
1: तो मिला नहीं मिला फिर?
2: नहीं मिला.
1: क्या बोलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो लिटरल नहीं होती है लेकिन उनका मीनिंग भावना से जुड़ा होता है ना? स्वर्ग मतलब क्या, बहुत सुंदर दुनिया है ना, उनके पास हमारी सबसे सुंदर दुनिया होती है, हमारा जिसमें भला ही भला होता है, हमारा जिसमें अच्छा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता.
2: दीदी हमको बड़े होके ना कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए. मान लो कि हमको किसी ने नौकरी से निकाल दिया और हमको किसी से कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको नौकरी ढूंढती रहनी चाहिए.
1: हाँ, बड़े होके कभी कभी गलत काम करने लगते हैं ना, बच्चे होके तो सुन लेते हैं, किसी ने डांट दिया तो मान भी लेते हैं गलती.
2: दीदी कई कई बच्चे भी चोरी करते हैं.
1: बच्चे भी करते हैं
2: दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा है वो भी चोरी करता था, तो हमारी एक म्यूजिक मैम है उन्होंने बोला कि पुलिस बुलाया हमने, और पुलिस किसी काम से आई थी उनको कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको सच्ची लगा कि पुलिस आ रही है तो वो जाके छुप गया कहीं.
1: तो बच्चों को डरा दिया जाता है ना कभी कभी, लेकिन बड़े नहीं समझते ऐसे. पर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आपने बताया ना, कि जॉब ढूंढते रहना चाहिए लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए.
0: दीदी वो पुलिस तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट आई थी,
1: अच्छा.
0: गर्ल्स से मिलने आई थी वो.
1: ओके, तो बच्चे को डरा दिया कि ताकि वो नहीं करे ना इसलिए।
0: बच्चे को डरा दिया पर वो मिलने गर्ल्स से आए थे।
2: दीदी कहते हैं ना कि अगर किसी पर्सन के पास सब कुछ है, एक भी कमी नहीं है उसकी जिंदगी में, पर अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है ना तो उसके पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि वो बेघर है ऐसे।
1: बड़े भी हो जाओ तो मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे ना तो कभी कभी आप बिजी भी हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। जैसे आपने बताया ना आपके पापा निकालते हैं टाइम, स्पेशली निकालते हैं, अगर निकालना चाहें क्यों नहीं निकाल सकते हैं, है ना। आप लोग भी देखते हो अपने घर पे निकालते हुए।
2: दीदी जैसे कि मैंने अभी कहा उनका जो प्यार होता है ना वो ऐसे होता है कि जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे जैसे अच्छा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी तो वक्त हो गया है गुड बाय करने का, कुछ बोलना चाहते हो? जब बड़ों को, मान लो आपको आपके बड़े वर्जन को फ्यूचर में जाके कुछ कहने का मौका मिले तो उनको क्या बोलोगे?
2: दीदी मैं तो ये कहूंगी कहना चाहे कितना भी है ना बिजी हो जाओ, कितना भी कितने भी दूर चले जाओ, पर कभी मम्मी पापा को नहीं भूलना, अपने पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करना है दूर रह के भी।
0: पेरेंट्स को तो भूलना ही नहीं है पर अपने बचपने को भी कभी नहीं भूलना, अगर बचपना मर गया तो जीना ही बेकार है।
2: मम्मी पापा के पास हम जब भी जाते हैं, पेरेंट्स को दूर भी रहते ना तो एक बार दो बार कम से कम कॉल तो कर लेना चाहिए, वीडियो कॉल, एक महीने में नहीं एक हफ्ते में एक बार कर लो सिर्फ।
1: आप क्या बोलोगे अपने फ्यूचर सेल्फ, बड़े राघव को क्या बोलोगे? अभी आपको मान लो यहाँ पे एक विंडो मिले जिसमें से जाओगे तो आपको बड़ा राघव मिलेगा जो 18 प्लस होगा, 20 इयर्स का होगा, तो उसको क्या बोलोगे?
2: मैं उसको बोलूंगा कि ना अपने बचपने को कभी मत भूलना, जैसे हमने बचपन में मस्ती की थी वो कभी मत भूलना, और ऐसे ही चलते रहना।
1: ऐसे ही चलते रहना, बस बचपन वाले राघव को छोड़ नहीं देना, है ना।
2: और मम्मी पापा से भी मिलते रहना।
1: मम्मी पापा को भूल नहीं जाना, ओके ठीक है।
0: कभी भी पैसों के पीछे भी नहीं भागना, पेरेंट्स के साथ ही रहना। अगर पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो पेरेंट्स दूर हो जाएंगे,
1: तो पेरेंट्स के पास रहना पैसों के पीछे नहीं।
2: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि एक बंदा था और वो पैसे कमा रहा था सिर्फ, और वो पैसे कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मैं कभी पैसे खर्च ही नहीं किए।
1: तो इसीलिए उनको स्पेंड भी करना, क्या कहना चाहते हो आप फिर?
2: कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
1: तो फ्यूचर राघव अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट जरूर लेना, है ना, और उनका केयर करना, भूलना नहीं है। ओके डन। तो चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना तब फिर ये सुनिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आप बचपन में अपने को क्या कहना चाहते थे। तो ये वाले जो एपिसोड है ना ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आपको सुनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि बड़े कैसे होना है। आप
0: जैसे कि अब हम अभी रेडियो में आते हैं वैसे हम आते रहेंगे और 9 इयर्स बाद हम यही ऑडियो सुनेंगे।
1: अच्छा 9 इयर्स बाद या 10 इयर्स बाद कैसे हो गए आप, कैसे, क्या वैल्यूज होंगे, क्या चीज होगी जिस पे आप फोकस करोगे, कैसे हो गए, क्या लगता है क्या कर रहे हो गए उस टाइम या कैसे हो गए उस टाइम?
2: दीदी ये तो पता नहीं क्योंकि ये तो फिर फ्यूचर हो गया है।
1: फ्यूचर सोच के बताओ क्या लगता है फ्यूचर शिक्षा कैसी होगी?
0: दीदी ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी फिर तो।
1: आपको क्या लगता है ताकि आप बाद में जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसा लगता
2: है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए टाइम जरूर निकाल पाऊंगी।
1: ओके कैसे होगे, क्या वैल्यूज होंगे आपके अंदर, कैसे रहते होगे, कहाँ रहते होगे, क्या करते होगे, कुछ लगता है?
0: दीदी मैं तो मेरा बचपना तो कभी नहीं भूलूंगी, जैसे अभी हंसती खेलती रहती हूँ वैसे भी बड़े होके भी रहूंगी और बड़े होके देश के लिए कुछ करूंगी।
1: ओके
2: दीदी जब भी हम दोनों फ्री आएंगे तो हम तो खेलने चले जाएंगे बैट और बॉल उठा के,
1: बड़े होके भी ना। तो ये फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस है भाई, बैट बॉल नहीं उठाना भूलना। हाँ
0: दीदी फुटबॉल उठाना भी नहीं भूलेंगे,
1: पक्का
0: पक्का प्रॉमिस।
2: दीदी बास्केटबॉल भी नहीं तो और दीदी बैडमिंटन भी नहीं।
1: ओके बड़े होके गेम्स खेलना जरूरी है।
2: यस उससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा।
1: गेम्स से स्ट्रेस
2: उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी।
1: बड़े होके फिट रहना है। ओके
2: ऐसे नहीं कि ज्यादा भी ओवरवेट हो गया या फिर एकदम पतले हो गए।
1: ओके कर ली हमने ढेर सारी बातें और थोड़ा फ्यूचर में भी विजिट करके आ गए, तो मुझे लग रहा है जब बड़े हो जाएंगे बच्चे बिल्कुल अभी जैसे रहने वाले हैं और बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं और ढेर सारे गेम्स खेलने वाले हैं।
2: दीदी अभी जैसे नहीं रह सकते तब तो बैट और बॉल भी फ्यूचर वाले आ जाएंगे।
1: हाँ तो फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट वाले बैट बॉल से खेलना।
2: दीदी आपने हम सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आपको बड़े होके कैसे लगता है, कि बचपन ज्यादा अच्छा होता है या फिर बड़े होना ज्यादा अच्छा लगता
1: है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप लोगों को लगता है ना सेम, बचपन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बचपन में हम बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत ईजी होती है हमारी लाइफ की, हमें पढ़ना है खेलना है यही दो चीजें होती है हमारी लाइफ। लेकिन बड़े होके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम सिंपल कर सकते हैं बट कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको सिंपल करना, है ना?
2: और कुछ अथॉरिटीज बताइए जिसको आप बड़े होकर के बाद आपको मिली है।
1: हाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हो, है ना, आप कैसे रहना चाहते हो, आप किस चीज को किस तरीके से आप रिलेशंस को अपने बनाना चाहते हो, निभाना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। और हाँ जैसे आप लोगों ने बात की वोटिंग राइट्स और वो सब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, वो भी आपको एक बेनिफिट होता है।
0: दीदी आप बड़े ही हो तभी तो आप हमारे साथ बच्चों की दुनिया में बातें कर रहे हो।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा और आप लोगों को फ्यूचर में।
0: हाँ।
1: चलो अभी फिलहाल तो वक्त हो गया है गुड बाय कहने का दोस्तों को, क्योंकि अब भाई आगे के प्रोग्राम्स भी तो सुनाने हैं उन्हें, और हम मिलेंगे बच्चों की दुनिया की अगली कड़ी में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: तो बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय। रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं जंगल में एल्मो।
5: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

0: वाह, हर सुबह की तरह नाश्ता और साथ साथ कहानी भी बढ़िया है।
1: हाँ, आखिर पोती किसकी है? आज सुबह का डायलॉग सुनो। बोली, दादी जैसे ही खरगोश टोई टोई कूद कर छुप गया और उसके कान टुई टुई खड़े हो गए।
0: काफी नए बोल सीख भी रही है।
1: और मजे की बात तो ये है कि जो सीखना बाकी है उसके लिए आवाजें टोई टोई, घिच पिच, ये हुआ फिर वो हुआ, जोड़ जोड़ कर पूरी कहानी सुना देती है।
0: काफी मजा आता होगा आपको उससे बातें करके। वैसे एल्मो भी आजकल
2: हमारा शहजादा चंगू जंगल में खो गया है।
1: कोई नया खेल लगता है। मेरी खीर जरूर चख लेना एल्मो। अच्छा लुई, बाद में बात करते हैं।
2: टकपक टकपक टकपक, अरे ये घोड़े पर कौन आया?
0: लगता है एल्मो जंगल पहुंच गया है। क्या पापा भी एल्मो के साथ जंगल की सैर करेंगे?
2: हाँ, एल्मो और पापा मिलकर कहानी बनाएंगे। पापा तैयार हैं?
0: तैयार हैं। कौन करेगा कहानी शुरू?
2: पापा करेंगे।
0: ओके। एक दिन पापा लोमड़ी और एल्मो
2: एल्मो बंदर
0: हाँ, दोनों घने जंगल में घूमने निकले। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी।
2: हरी हरी वाली
0: हरियाली एल्मो, यानी ढेर सारे पेड़ पौधे, हरे भरे।
2: हरियाली यानी जंगल में हरे हरे पेड़। जैसे हमारी खिड़की के बाहर जिनके पत्ते हवा से शू शू उड़ रहे थे।
0: जंगल में श्याओ श्याओ हवा चल रही थी। फिर क्या हुआ?
2: तभी एल्मो बंदर और पप्पा लोमड़ी को एक आवाज सुनाई दी। वाह वाह।
0: ओह, ये किसकी आवाज थी एल्मो?
2: करजपुर के राजा पप्पा शेर मंगू राज।
0: यानी शेर मंगू राज ने एल्मो और पापा को दहाड़ कर आवाज दी।
2: हाँ, दहाड़। वाह। पर शेर महाराज ने कहा, डरो मत, मैं तो बहुत उदास हूँ। मेरा बेटा शहजादा चंगू खेलते खेलते इस हरियाली वाले जंगल में कहीं खो गया है।
0: फिर एल्मो बंदर और पापा लोमड़ी ने महाराज से पूछा, महाराज चंगू गुम होने से पहले कहाँ खेल रहा था? और महाराज ने कहा, तालाब के पास।
2: और तभी कड़क जोर से आसमान में लाइट चमकने लगी।
0: ओ, डिश डिश यानी बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी।
2: बहुत जोर से बादल
0: गरजने लगे
2: और बिजली कड़कने लगी। महाराज ने कहा, सूरज डूबने से पहले अगर एल्मो और लुई चंगू को ढूंढ लाए तो उन्हें मिलेगी मीठी मीठी खीर।
0: स्वादिष्ट खीर। फिर पापा लोमड़ी और एल्मो बंदर चंगू को ढूंढने निकल पड़े। पहले वो तालाब पहुंचे
2: पर चंगू तो आता ही नहीं। वहाँ तो एक पेड़ पर फुर फुर एक चिड़िया थी और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुर फुर करके कूद रही थी।
0: फुर फुर फुदक रही थी।
2: हाँ, फुदक फुदक रही थी। और चिड़िया से पता चला कि चंगू ना घूमते घूमते एक पहाड़ी तक पहुँच गया था। उस पहाड़ी पर ढेर सारे हाथी एक साथ टीम की तरह रहते थे,
0: यानी हाथियों का झुंड।
2: झुंड मतलब?
0: झुंड यानी एक साथ रहने वाले ढेर सारे जानवर।
2: ओ हाँ, एल्मो बंदर ने दूरबीन से देखा और हाथी का झुंड ढूंढ निकाला।
0: सूरज डूबने ही वाला था। एल्मो और पापा तेजी से हाथी के झुंड की ओर बढ़ने लगे।
2: दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे, पप्पा से भी बड़ा पहाड़।
0: हाँ, यानी ऊंचा सा पहाड़।
2: ऊंचा पहाड़, जहाँ हाथियों के बीच एल्मो और पप्पा ने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा,
0: पर चंगू नहीं दिखाई दिया।
2: तभी एक झाड़ी के पास एक आवाज सुनाई दी।
0: कुर्राव।
2: आहा, शेर की दहाड़। लेकिन छोटू से शेर की शहजादा चंगू।
0: जो घूमते घूमते हाथियों के पास पहुंच गया था
2: और हाथियों का झुंड चंगू के साथ फुटबॉल खेलने लगा। एल्मो बंदर और पप्पा लोमड़ी भी खेलना चाहते थे,
0: पर जैसा वादा किया वैसे ही चंगू को वापस शेर महाराज के पास ले जाना था।
2: और एल्मो ने जंगल के रास्ते की ड्राइंग बनाई।
0: आहा, एल्मो ने जंगल का नक्शा बनाया है ना?
2: हाँ, नक्शा। और नक्शे को देखकर सूरज डूबने से पहले शहजादा चंगू अपने पप्पा के पास पहुंच गया। और एल्मो बंदर ने चंगू को कहा कि वो जब भी खेलने आए अपने पप्पा को भी साथ ले आए।
0: हाँ, और शेर महाराज ने एल्मो और पापा को दी मीठी मीठी स्वाद भरी खीर।

0: कहानी हुई खत्म,
1: अब खीर होगी हजम।
2: लो कर लो बात, कहानी की कहानी और नए बोल भी।
1: और तो और, घर में पड़ी चीजों का मजा भी। खेल खेल में बिस्तर को पहाड़ बनाया और कपड़ों के ढेर को झाड़ी। एल्मो ने पहले तो कई ऊट पटांग आवाजों में कहानी सुनाई, तुकबंदी करी, पर जो भी नए शब्द सीखे उन सब को कहानी का हिस्सा बना लिया। आपकी फर्स्ट क्लास खीर को भी।
3: सेसेमे वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 4, खाएं आम 12वें महीने, पृष्ठ 35. कुछ बच्चे खाने के डिब्बे में खाना देखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं. नीतू बोली, अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है. अमन बोला, नीतू आलू की सब्जी लाई है. प्रीति ने कहा, मैं भिंडी लाई हूँ. अमन ने कहा, नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं. प्रीति बोली, हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए. अरे तुम ये भिंडी ले लो ना. चर्चा करो, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है?

नहीं होंगी। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगा? तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गईं। दुकान पर काफी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? पता करो। खाने की किन्हीं दो चीजों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? पृष्ठ 37। खाना कैसे होता है खराब? प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने पर तालिका को रोज भरो। दिन एक, ब्रेड में बदलाव, छूने से, गंध से, हैंड लेंस से देखने में, रंग में। इसी तरह 6 दिन की तालिका बनाओ। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बनाओ। पृष्ठ 38। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीजों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। चीजें, दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज लहसुन। घरेलू उपाय, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। दूसरा उपाय, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। उपाय 3, उबालते हैं। उपाय 4, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांडरा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयापुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा, इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांडरा यानी आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांडरा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। पृष्ठ 39। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो।

0: यहां दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। पृष्ठ 40। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा कर दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। लिखो, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? भाइयों ने मामीडी तांडरा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। पृष्ठ 41। तुमने कितनी तरह के अचार के बारे में
1: रामा कहूं के राम दे
0: बातचीत करो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: संकल्प के कमरे का दरवाजा खोलते ही वीना का मन किसैला सा हो गया। कितना बेतरतीब सा करके रखा है। धुले कपड़े चादर की गठरी से बाहर निकलकर ऐसे चढ़ा रहे थे मानो कह रहे हो, बहुत तहजीब पसंद हो ना, अब अपने बेटे को थोड़ा सलीका सिखाओ तो जाने। चादर झटकारने के लिए तकिया उठाया था कि देखा तकिए के नीचे रोमांटिक पत्रिका रखी हुई है। पन्ने पलटे तो मन घृणा से भर उठा। ये मेरा ही बेटा है, घिन आती है इसकी सोच पर मुझे। सोचने को मजबूर हो जाती हूं कि क्या वाकई बच्चों के गुण अवगुण, आदतें, संस्कार माता पिता की जींस पर ही निर्भर करते हैं। संकल्प के पापा और मैं तो ऐसे नहीं थे, फिर ये हमारा बेटा ऐसे कैसे हो गया? चादर झटकार कर वीना ने मैगजीन जस की तस तकिए के नीचे रख दी। कमरा थोड़ा सलीके से करके वो बाहर आई, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने संकल्प कॉलेज का बैग पकड़े खड़ा था। हाय मॉम, कैसी हो, क्या कर रही हो?
3: मैं तो ठीक हूं बेटा,
2: चाय बना रही हूं, पिएगा मेरे साथ?
3: अरे मेरे मन की बात कह दी मॉम, आप चाय बनाओ जल्दी से, बहुत थकान सी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूं।
2: बिना दो कप चाय और बिस्किट ट्रे में ले आई। संकल्प टॉवल से मुंह पोंछकर चाय का कप उठाता है।
3: कैसा रहा कॉलेज बेटा,
2: आज तो 4 घंटे लेट आए हो, कोई खास वजह है?
3: अरे मॉम, आज हम लोग ना कॉलेज के बाद ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होने वाले है ना, कॉलेज में ही डिस्कशन चल रहा था या फिर कहीं और गए थे तुमसे?
2: अरे मॉम, कॉलेज में नहीं थे, ये बिट्टन मार्केट कैफे में गए थे, पेट पूजा के साथ काफी कुछ डिस्कस किया, बहुत मजा आया।
3: वाह मॉम, चाय तो बहुत ही जायकेदार बनी है, बहुत दिन बाद आपके हाथ की चाय पी है।
2: तुम्हारे पास समय ही कहाँ है बेटा, कॉलेज, दोस्त, सहेलियां, कॉम्पिटिशन, पता नहीं और भी क्या क्या।
3: आपको क्या लगता है मॉम, मैं क्या टाइम पास करता हूँ बाहर जाकर?
2: नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे हाँ, तुमको पता है शमिता आंटी आई थी कल शाम घर पर, बहुत परेशान सी थी अपनी बेटी के बारे में लोगों से सुन सुनकर।
3: क्यों माँ, ऐसा क्या कर दिया बेटी ने?
2: अरे अपने किसी दोस्त के साथ घूमने या यूं ही कहीं ग्रुप डिस्कशन के लिए कहीं गई होगी, अब किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने देखा होगा तो बताया कि तुम्हारी बेटी किसी आवारा से लड़के के साथ घूमते दिखी, कॉलेज बैग पीठ पर टांगे हुए। अब सुनकर शमिता को समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को कैसे समझाए कि वो गलत राह पर जा रही है।
3: अरे मॉम, ये लड़कों का क्या जाता है, उनको तो रोज रोज नई नई गर्लफ्रेंड चाहिए घुमाने के लिए, और लड़कियों का क्या है, 2-4 तोहफे दो पट जाती हैं, फिर बदनामी की भी फिक्र नहीं होती उन्हें।
2: हाँ बेटा ठीक कहते हो, लड़कियों को भले ही समझ नहीं आता होगा,
3: पर लड़कों के गर्लफ्रेंड बनाने के फितर और टाइम पास की मानसिकता के कारण लड़कियों की जिंदगी तो दागदार बनी जाती है। माता पिता के लिए जिंदगी भर तिल तिल मरने का सबब। क्या तुम्हारी बहन या घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो तुमको गवारा होगा, वीना ने कहा। अरे इन लड़कियों को कहा किसने कि 100-200 के तोहफों के लिए अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी में जहर घोलें? और समझाए भी तो कौन इन बेवकूफ लड़कियों को, इनका अपना विवेक तो होता नहीं और लड़के इन्हें मोहरा बनाकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। मेरी बहन बेटी ऐसा करे ना तो मैं सरे बाजार दो हाथ जोड़कर उसका घर से बाहर निकलना बंद करा देता, संकल्प कहता कहता उत्तेजित हो गया। संकल्प, मैं समझाऊंगी उन लड़कियों को, दो उन लड़कियों का नंबर तो मुझे अभी इसी वक्त। किनकी बात कर रही हो मॉम, मैं शमिता आंटी और उनकी बेटी को जानता तक नहीं।
4: अरे मेरे जलेबी से सीधे साधे भोले भाले बेटे, मैं शमिता आंटी की बेटी की नहीं, मैं उन बेवकूफ लड़कियों की बात कर रही हूँ जो गाहे बगाहे तुम्हारी बाइक पर तुम्हारे कंधों पर झूलते हुए रोज तुम्हारे साथ घूमा करती हैं। कम से कम 2-4 लड़कियों की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाए ना।
3: अब मॉम आपने कब देख लिया मेरे साथ लड़कियों को घूमते हुए?
4: मैंने नहीं देखा बेटा, पर आए दिन तुम्हारे ऐसे मनोरंजक दौरों के बारे में अपने लोगों से सुन सुनकर थक चुकी हूँ, इसीलिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर तुम्हारी मानसिकता को जरा टटोला मैंने। बेवकूफ वो लड़कियां हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है कि तुम जैसे लड़के अपने माँ बाप को मूर्ख समझकर दूसरे की बेटियों को खिलौना बनाकर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तबाह कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, दूसरे की बेटियों की जिंदगी का नासूर बनाकर तुम कुछ समय के लिए तो खुश हो सकते हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंतस में कहीं ना कहीं ऐसे गलत कामों की नकारात्मकता का असर ना दिखाई पड़ता। I'm sorry, mom. तुम सच कहती हो, हम लोग आपस में ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने की शर्त लगाते हैं और सारा समय उन्हें घुमाने फिराने गिफ्ट खरीद कर देने जैसे बेतुके कामों में जाया कर देते हैं। आई प्रोमिस यू मॉम कि अब इन कामों में अपना समय जाया नहीं करूंगा, अपने करियर और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाऊंगा, पक्का मॉम। ये हुई ना बात, जब तुम अपनी बहन और बेटियों के साथ ऐसे घिनौने काम की कल्पना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी लड़कियां भी तो किसी की बहन बेटी है ना, और अगर सभी लड़के बात समझ जाएं तो शायद किसी माँ को ऐसी कहानियां गढ़ने का कारण ही ना मिले। हाँ मॉम, एंड थैंक यू, क्योंकि आपके कारण मेरी बुद्धि पर चढ़ी धुंध अब छट गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए मेरे लाल, एंड थैंक्स मॉम फॉर द टी, लव यू।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और 30 सितंबर आज है विशेष, आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इसलिए मनाया जाता है, हर साल 30 सितंबर को सेंट जोरम के पूर्व पर मनाया जाता है। और सेंट जोरम बाइबल के अनुवादक थे जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। 1953 में स्थापित होने के बाद ये दिवस FIT अंतर्राष्ट्रीय अनुवादकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। और 1991 में FIT ने आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विचार शुरू किया ताकि दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा मिले। ये दिवस विभिन्न देशों में अनुवाद कार्य का महत्व प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। भूमंडलीकरण की प्रगति के युग में अनुवाद कार्य तेजी से बढ़ रहा है, तो आइए इनके बारे में, इस दिवस के बारे में और जानकारी आगे बताता हूँ मैं। और अभी आपको सीधे आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बात करें तो पीवी मेनन, गुरुजड़ा अप्पा राव, ऋषिकेश मुखार्जी, MC चलांग, पंडित श्रद्धा राम शर्मा, दीपा मलिक, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही माधव राव सिंधिया, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, रामानंद चटर्जी, अल्ताफ हुसैन अली, राव वीरेंद्र सिंह, इन सभी का पुण्य दिवस है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर विचार के साथ, फिर मिलते हैं। और विचारों की जो सुंदरता है, जब आप उसके बारे में सुनना शुरू करेंगे, विचार करना शुरू करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और कहते हैं सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए, तब आप सफल हो सकते हैं, है ना कमाल के विचार। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संवाद में भाषा विशेषज्ञ रूप में कार्य करके विकास तथा वैश्विक शांति को बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस द्वारा साहित्य व वैज्ञानिक कार्य के शुद्ध तथा स्पष्ट अनुवाद कार्य को भी अति आवश्यक माना जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा विशेष रूप से 2017 में प्रस्ताव 71-228 को पारित करके स्थापित किया था। देश को निकट लाने, संवाद में सहायता करने तथा सहयोग के लिए अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और ये विश्व शांति तथा विकास में काफ़ी योगदान देता है। बाइबल के अनुवादक सेंट जोरम के त्यौहार के कारण 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस चुन लिया गया और फिर बाइबल का अनुवादक सेंट जोरम ने उन्हें अनुवादकों का संरक्षण मना जाता है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के अन्य दिवस महत्वपूर्ण होते हैं उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी महत्वपूर्ण बताया गया है और इस दिवस के माध्यम से देशों की भाषाओं में हो रहे अनुवाद कार्य और अनुवादकों का भाषांतरकरों का विशेष भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संस्थानों को भूमिका में महत्वपूर्ण जो है दायित्व निभाने के लिए और दुनिया भर के अनुवाद समुदाय के बीच एकता को बढ़ाने के लिए भी ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। तो चलिए इसके भारत में अनुवाद का महत्व अगर देखा जाए तो भारत में विभिन्न धर्म जाति और वर्ग के लोगों को उनका मिश्रण ही नहीं बल्कि भाषाओं का भी विविधता है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्न प्रांतों में भाषाओं की बोली बदल जाती है लेकिन इनके भाव यथावत रहते हैं जिन्हें हमें समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती रहती है और इसी चीज़ को ध्यान में रख के अनुवाद दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अंग्रेजी को ही समझते हैं हिंदी। कई बार रेलवे में सामान्यता जो चीज़ें हो रही हैं, अंग्रेजी शब्दों को ही हम हिंदी समझ लेते हैं, जिनमें स्टेशन को, स्थानक और ट्रेन को लोहपत गामिनी कहा जाता है। इसी प्रकार स्टेशन मास्टर, स्थानक स्वामी या फिर स्थानक विशेषज्ञ, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, विशेष रूप से स्थानक अधीक्षक, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग जो है कुछ शब्दों का अंग्रेजी में ही इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि यही चलता है। रेल को हम लोग कभी भी लोहपथ नहीं समझते हैं, है ना। बोलने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, रेल को रेल ही बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लेटफॉर्म को लोहपत गामिनी विश्राम मंच, ये हिंदी में हो गया। थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए लोग जो है हिंदी की जगह पर अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। सिग्नल, संकेतक, संकेतक ये शब्द भी शायद आपने नहीं उपयोग में लाया होगा। अप डाउन, उद्यान निदान, रिजर्वेशन आरक्षण, स्लीपर कोच, शयनयान, टीटीई यात्रा प्राधिकरण, पत्र चाल निरीक्षण, इंजन, लोहपत गामिनी स्वनिधित कर्षण यंत्र। तो ये सारे, इसके अलावा भी आम जन के जीवन में कई शब्दों को हम हिंदी समझते हैं जो वास्तव में अंग्रेजी शब्द होते हैं। तो इसीलिए ये अनुवाद दिवस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें हिंदी अपनी भाषा के बारे में, अपने ट्रांसलेशन के बारे में पता हो, भले आप बोले नहीं, इसके लिए भी ये दिन ज़रूरी है। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी को ये बातें आज समझ में आ गया होगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं पीवी मेनन के बारे में बात करना चाहूंगा अभी आपके लिए। और ये विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बहुत ही पॉपुलर अधिकारी, भारतीय सिविल सेवा में एक क्लर्क की तरह अपना करियर आरम्भ करने वाले मेनन ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल के वैधानिक सलाहकार के पद तक पहुंचे, और जब अंतरिम सरकार विफल रही तो मेनन ने ही भारत के विभाजन की सलाह दी। भारत के विभाजन और फिर रियासतों के एकीकरण में पीवी मेनन की अहम भूमिका रही। सरदार पटेल के सहयोगी के रूप में वो याद किए जाते हैं। हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर कश्मीरी, सबकी कहानी में मेनन का नाम जरूर आता है। पीवी मेनन का 30 सितंबर 1893 को केरल के मलबार क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे और बचपन में अपनी पढ़ाई को बोझ घर वालों के ऊपर से उठाने के लिए मेनन घर से भाग गए थे। पहले रेलवे में कोयला जोक, फिर खान खनिक और बेंगलुरु तंबाकू कंपनी में मुंशी का काम करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में निचले स्तर से अपनी जीविका शुरू किया। अपनी मेहनत के सहारे पीवी मेनन ने अंग्रेजी सरकार से सबसे उच्च प्रशासनिक सेवा का पद अलंकृत किया और भारत के संविधान के मामले में पीवी मेनन पंडित थे। वायसरायों के अधीन काम करते समय वे सुदृढ़ देशभक्त थे। उनकी पत्नी श्रीमती कनकम्मा थी। उनके दो पुत्र थे पंगुनी और अनंत मेनन और पंगुनी शंकरन मेनन। सरदार पटेल के कहने पर ही पीवी मेनन ने भारत विभाजन, राज्यों के एकीकरण और सत्ता हस्ताक्षरण पर पुस्तक लिखी थी। भारत की आज़ादी के बाद प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नेता और मंत्री अच्छी नज़रों से नहीं देखा करते थे। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात पैठी होती थी कि ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे। यहाँ तक कि नेहरू भी इन नौकरशाहियों से दूरी बना के रखते थे। शायद यही कारण था कि पीवी मेनन ने सरदार पटेल की मृत्यु के बाद अवकाश ले लिया था। रियासतों के एकीकरण में उनका योगदान रहा। सालों की परमतंत्रता के बाद भारत जब आज़ाद होने वाला था, तब सदियों की गुलामी के बाद स्वाधीनता की जो भूगोल होने वाला था, अंग्रेज अब देश छोड़ कर जाने वाले थे। सदियों की लड़ाई के बाद अब देश की आज़ादी का सपना साकार होने वाला था, लेकिन इस सपने के साकारीकरण के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। भारत में बसे अलग अलग 565 छोटे बड़े रजवाड़ों रियासतों के एकीकरण की, इन रियासतों के विलय के बिना आज़ाद मुल्क की कल्पना बेमानी थी। आखिर इन रियासतों को भारत में विलय के लिए मानना इतना आसान भी नहीं था। इतिहास में इस अस्मरणीय कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता रहा, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि अगर भारत के तत्कालीन सलाहकार पीवी मेनन नहीं होते तो शायद अकेले वल्लभ भाई पटेल भी भारत को एक करने में थोड़ी सी मुश्किलें हो पाता। तो ये विशेष रूप से मेनन जी की सहायता से ये काम पूरा हो गया। और प्रेरक प्रसंग की बात करें तो 1947 में पीवी मेनन ने, जो एक हिंदू थे, जब दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने पाया कि जो भी पैसा वह साथ लाए थे सब चोरी हो गया था। उन्होंने एक वृद्ध सिख से 15 रुपए की मदद मांगी। उस सिख ने मेनन को पैसे दिए और जब मेनन ने पैसे लौटाने के लिए उस सिख से उसका पता पूछा तो उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूँगा। इस प्रकार जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम हर उस ईमानदार व्यक्ति की मदद करते रहोगे जो तुमसे मदद मांगेगा। इस घटना के कारण 30 साल बाद और मेनन की मृत्यु के बस 6 सप्ताह पहले एक भिखारी मेनन के बेंगलोर स्थित आवास पर आया। मेनन ने अपनी बेटी से अपना बटवा मंगाया और 15 रुपये निकाल कर उस भिखारी को दिए। वह अभी भी उस कर्ज को चुका रहे थे। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए खास सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, पीवी मेनन की बातें आपको सुना रहा था और पीवी मेनन, सरदार पटेल और पीवी मेनन के बीच का रिश्ता अमूल्य था और मेनन अपने पटेल के बाएं हाथ जैसे थे और आज़ाद भारत की एकता में महत्वपूर्ण योगदान जो है निभा चुके थे। हर राजनीतिक अंग्रेजी सरकार के नीचे काम करने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों से बहुत मुश्किल फील करते थे और कुछ अंग्रेजी प्रशासनिक अफसरों को सेवा से वंचित करना चाहते थे क्योंकि उनकी गिरफ्तारी में इन्हें अफसरों का हाथ था। पंडित नेहरू तक को प्रशासन के इन कर्मचारियों से सदा प्यार नहीं रहा, लेकिन पीवी मेनन को सन 1991 में ओडिशा के राज्यपाल का स्थान दिया गया। कुछ समय वे वित्त आयोग के सदस्य भी रहे। सरदार पटेल के देहांत के बाद पीवी मेनन ने नवनिर्मित भारतीय प्रशासन सेवा से इस्तीफा ले लिया था और सेवानिवृत्ति के बाद पीवी मेनन बेंगलुरु में रहने लगे थे और 31 सितंबर 1965 को उनका निधन हो गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि किसी ने आज तक पीवी मेनन की आत्मकथा नहीं लिखी है। रियासतों के एकीकरण के बारे में जब बात होती है तो सरदार पटेल की सहायता करने वाले पीवी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेटस में लिखा है, भारत एक भौगोलिक इकाई है, फिर भी अपने पूरे इतिहास में वह राजनीतिक दृष्टि से कभी एक रूप हासिल नहीं कर सका। आज देश के इतिहास में पहली दफा एकल केंद्र सरकार की रीट कैलाश से कन्याकुमारी और काठियावाड़ से कामपुर आसाम का पुराना नाम तक पूरे देश को संचालित करती है। इस भारत के निर्माण में सरदार पटेल ने भूमिका अदा की। सरदार पटेल जानते थे कि यदि आप एक बेहतरीन अखिल भारतीय सेवा नहीं रखेंगे तो आप भारत को एकजुट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए राज्यों के पुनर्गठन का काम प्रारंभ करने से पहले उन्होंने स्टील फ्रेम या भारतीय सिविल सेवा में विश्वास व्यक्त किया। सरदार पटेल ने शाही रजवाड़ों के साथ सहमति के जरिए एकीकरण का एक अथक रूप से प्रयास किया और उन्होंने उसमें शाम दाम दंड और बेद की नीति अपनाने में भी कोई संकोच नहीं किया। सरदार पटेल और उनके सहयोगी पीवी मेनन ने यथास्थिति समझौतों और विलेखों के प्रत्यारूप तैयार किए जिनमें विभिन्न शासकों से अनुरोधों और मांगों को शामिल किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें पीवी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें। तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ और उसके बाद एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बात करते हैं ऋषिकेश जी के बारे में। हिंदी फिल्मों में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया। यही कारण है कि उनकी सत्यकामा, आशीर्वाद, चुपके चुपके और आनंद जैसी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों

पढ़ाई के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर एक गर्ल्स कॉलेज में मैथ और साइंस पढ़ाने लगे, पर कुछ ही वक्त में ये नौकरी छोड़नी पड़ी। वजह उनके दादाजी बने। दादाजी को पसंद नहीं था कि वो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाएं, लिहाजा साल 1945 में एक अच्छी खासी टीचर की नौकरी छोड़कर कोलकाता के न्यू थिएटर में 60 रुपए महीने की पगार में बतौर लैब असिस्टेंट काम करने लगे, और यहीं से शुरू हुआ ऋषिकेश मुखर्जी का द ऋषिकेश मुखर्जी बनने का सफर। ये वो डायरेक्टर थे जिनकी फिल्मों के किरदार आम आदमी जैसे दिखते थे, कहानी हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती थी। ये खूब हंसाते, खूब रुलाते भी थे, और इन सबके बीच वो जिंदगी की फिलॉसफी समझा जाते। आज कहानी ग्रेट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की, जो जिंदगी के आखिरी वक्त बीमारियों से जूझते जूझते दुनिया छोड़कर चले गए। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। ऋषिकेश मुखर्जी कोलकाता के न्यू थिएटर पहुंचे तो उनकी मुलाकात फिल्म एडिटर बीएन सरकार से हुई। उन्होंने इनसे फिल्मों की एडिटिंग करना सीखा। साल 1947 में बंगाली फिल्म तथाति में बतौर एडिटर काम किया तो इनके काम पर ग्रेट फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय की नजर गई। साल 1952 की माँ, 1953 की 2 बीघा जमीन और परिणीता, साल 1954 की विराज बहू, साल 1955 की देवदास, साल 1958 की मधुमति, इन फिल्मों के विमल रॉय डायरेक्टर थे जिसकी एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने की। कुछ फिल्मों में वो विमल रॉय के असिस्टेंट डायरेक्टर भी बने। ऋषिकेश मुखर्जी की एडिटिंग इतनी शानदार थी कि डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी और डायरेक्टर नितिन बोस भी अपनी फिल्मों की एडिटिंग इन्हीं से कराते। साल 1983 की फिल्म कुली की एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने की थी। बतौर एडिटर ये उनकी आखिरी फिल्म थी। साल 1957 ऋषिकेश मुखर्जी मुंबई के अंधेरी में एक कमरे के मकान में रहा करते थे। गुरु के रूप में विमल रॉय थे और दोस्त मिले उम्र में 2 साल छोटे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने ही ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्में डायरेक्ट करने की सलाह दी। साल 1957 की मुसाफिर उनकी पहली फिल्म थी जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में दिलीप कुमार, किशोर कुमार, निरूपा राय, नजीर हुसैन जैसे एक्टर थे। इन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया उसे पहले किसी ने नहीं देखा था। फिल्म मुसाफिर 3 कहानियों को जोड़कर बनाई गई थी। तीनों के मूड अलग थे पर लोकेशन एक थी। एक किराए के कमरे में रहने वाले किराएदारों की खुशी, गम, सभी तरह के एहसास फिल्म के जरिए दिखाए गए। ऋषिकेश मुखर्जी का तरीका अलग था। वो लोगों को हंसाते हंसाते रुला भी जाते। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1959 में राज कपूर की फिल्म अनाड़ी डायरेक्ट। कहानी थी अमीर हीरोइन और गरीब हीरो की। फिल्म सुपर हिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला। ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर की दोस्ती और गहरी होती चली। आलम यह था कि वो चाह कर भी साल 1973 की फिल्म आनंद में राज कपूर को बतौर हीरो नहीं ले पाए, क्योंकि वो राज कपूर को फिल्म में भी मरता नहीं देख सकते। ऋषिकेश मुखर्जी अपने मिजाज का सिनेमा बनाना चाहते थे, इसलिए बड़ी बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट करने के ऑफर मिले पर उन्हें ठुकरा दिया। एक्टर बलराज साहनी के अनुरोध पर उन्होंने साल 1960 की फिल्म अनुराधा डायरेक्ट की। फिल्म में एक औरत के जज्बात और उसके एहसास को बड़ी उम्दा तरीके से दिखाया गया था। इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला और ऋषिकेश मुखर्जी के बॉलीवुड में पैर जम गए। ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1962 की देवानंद की फिल्म असली नकली डायरेक्ट की। इस तरह से इन्होंने अपने दौर के सभी बड़े एक्टर दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के साथ काम किया। आने वाले वक्त में छाया, मेम दीदी, आशिक, सांझ और सवेरा, बीबी और मकान, गबन, मजली दीदी जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट। साल 1966 की अनुपमा और साल 1968 की आशीर्वाद जैसी फिल्मों में इन्होंने पिता और बेटी के रिश्ते की अनोखी कहानी को अलग अंदाज में पेश किया। ऋषिकेश मुखर्जी समाज की बुराइयों के प्रति बेहद संजीदा थे, जिसका दर्द साल 1969 की फिल्म सत्यकाम में उभरा, जब फिल्म के हीरो धर्मेंद्र इन सभी के खिलाफ आवाज उठाते। ऋषिकेश मुखर्जी जिंदगी जीने की फिलॉसफी भी दे गए साल 1971 की फिल्म आनंद के जरिए, जिसमें कैंसर मरीज राजेश खन्ना जिंदगी के बचे दिनों में लोगों में खुशियां बांटना चाहता है। ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन का ही कमाल था कि फिल्म का आखिरी सीन देखने के बाद राजेश खन्ना की माँ बेहोश हो गई थी। फिल्म आनंद ने ही राजेश खन्ना को बुलंदियों पर पहुंचाया। अमिताभ बच्चन को भी डॉक्टर बनर्जी यानी बाबू मुशाए के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड भी मिला। साल 1971 में ही फिल्म गुड्डी से एक्ट्रेस जया बच्चन को भी एक्टिंग का मौका दिया। अभिमान, मिली, अलाप, नौकरी,
गोलमाल, नमक हराम और चुपके चुपके, ये वो फिल्में हैं जो कभी

0: भुलाई नहीं जा सकती। अपने चार दशक के सफर में करीब 45 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की। इनकी फिल्मों के किरदार आम आदमी की तरह होते जो बिल्कुल अपने जैसे लगते। उस दौर का हर कलाकार इनके साथ काम करना चाहता। इनसे सभी प्यार भी करते और डरते भी थे, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी एक टीचर थे जिन्हें अनुशासन में रहना पसंद था। साल 1980 की फिल्म खूबसूरत को ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने घर में शूट किया था। मुंबई के एक कमरे में रहने वाले ऋषिकेश मुखर्जी का घर अब बहुत बड़ा हो गया था, पर उनके साथ उनका अपना कोई नहीं रहता था। शतरंज खेलने के शौकीन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनके नौकर और कुछ पालतू जानवर ही रहते। पत्नी का निधन हुए 30 साल हो चुके थे और 3 बेटियों की शादी हो गई थी। एक गम था जो साथ था, छोटे बेटे का निधन और बड़ा बेटा विदेश में नौकरी करता था। कुछ दोस्त ही उनसे मिलने आते थे। 5 से ज्यादा टीवी सीरियल को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1998 में झूठ बोले कौवा काटे फिल्म डायरेक्ट की थी, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। 8 फिल्मफेयर और 7 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित ऋषिकेश मुखर्जी को साल 1999 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। दादा साहब फाल्के ने इंडियन सिनेमा की नींव रखी और सिनेमा में जान डालने वाले महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी जिंदगी के आखिरी वक्त बुढ़ापे और बीमारियों से जूझते जूझते 27 अगस्त साल 2006 को 84 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले।
1: तो ये थी कहानी ऋषिकेश मुखर्जी की आपके लिए। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए। आइए, ऋषिकेश मुखर्जी की कहानी आपने सुनी और मुझे लगता है कि आपने आनंद फिल्म तो देखी होगी, है ना? आनंद फिल्म की कहानी आप सभी को याद हो, राजेश खन्ना अमिताभ पर पिक्चराइज किया गया। उसमें एक सिंपल स्टोरी को जो है उन्होंने कितने अच्छी तरह से, एक राजेश खन्ना को जो बीमारी हो जाता है, उस बीमारी का इलाज पर अमिताभ डॉक्टर का काम करते रहते हैं और उनका एक दोस्त भी जो है विशेष रूप से सहयोगी बनते हैं, रमेश देव जो डॉक्टर रहते हैं, उनका इलाज करवाने के लिए हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं। और जया बहादुरी जो है इसमें काम करती हैं। और फिर बाबू मुशाय वाला जो शब्द है ये यहाँ से पॉपुलर हो गया है ना। और उसके बाद में अगर आपने बावर्जी फिल्म देखा होगा तो एक खाना बनाने वाले पर इतनी बड़ी फिल्म बनाना अपने आप में, ये सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी कर सकते हैं। और गुड्डी, ये भी बुड्ढा मिल गया, अभिमान फिल्म भी आपने देखा होगा, जिसमें पति पत्नी के बीच में जब दोनों गायक बनते हैं तो दोनों की चर्चा होती है, लेकिन और महिला होने के नाते जया बहादुरी को यानी फीमेल को ज़्यादा तवज्जो मिल जाता है, तो पुरुष जो है अभिमान में आ जाता है और उसे लगता है कि मेरा मान कम हो रहा है, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें जो है उतल पुतल हो जाती है और क्लाइमैक्स फिर बाद में दोनों मिल के गाते हैं तो सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, गोलमाल कॉमेडी वाला फिल्म अमोल पालेकर पर पिक्चराइज किया था। तो बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें आपको जो है कहीं ना कहीं घरेलू चीज़ें देखने को मिलता है। आइए, इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ दीपक मलिक के बारे में बात करते हैं और उसके बाद आपको एक और गीत की तरफ मैं ले चलने वाला हूँ। और सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो दीपा मलिक के बारे में अगर बात करूँ तो भारत की शॉर्ट फुट और जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वे तैराकी और मोटर रेसलिंग से जुड़ी विकलांग भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत की दीपा मलिक ने ब्राज़ील के शहर रियो में पैरा ओलंपिक खेलों में 2016 में शॉर्ट फुट में रजत पदक जीता है और उन्होंने 4.61 मीटर तक गोला फेंक और दूसरे स्थान पर रही। पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा मलिक पहली भारतीय महिला है। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर सन 1970 को हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत में बैंसवाल नामक गांव में हुआ था और दीपा कमर के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर है और उनके दो बच्चे भी हैं। 17 वर्ष पहले दीपा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई जब स्पाइनल ट्यूमर की वजह से उनका चलना फिरना तक बंद हो गया था। शॉर्ट फुट के अलावा दीपा जेबलिन थ्रोस, स्विमिंग जैसे खेल में भी हिस्सा लेती हैं। इसके अतिरिक्त वे एक बेहतर वक्ता भी है। दीपा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विमिंग में मेडल जीत चुकी है और 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बाला फेंक में दीपा मलिक के नाम पर एशियाई रिकॉर्ड है, जबकि गोला फेंक और चक्का फेंक में उन्होंने 2011 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। दीपा का रजत पदक भारत का पैरा ओलंपिक खेलों में तीसरा पदक है। उन्होंने पहले मरियप्पन थेंगवेल और वरुण सिंह भाटी ने पुरुषों की ऊंची कूद में क्रमांक स्वर्ण और कंस पदक जीते हैं। दिग्गज खिलाड़ियों द्वारा सराहना उनको मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रसिद्ध क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इतिहास रचने वाली दीपा मलिक की जमकर प्रशंसा की है। दीपा पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर ये कारनामा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हो गई है। उपलब्धियों की बात करें तो ये 36 की उम्र में 3 ट्यूमर सर्जरी और शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाने के बावजूद दीपा मलिक ने न केवल शॉर्ट फुट एवं जेबलिन थ्रो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हैं बल्कि तैराकी और मोटर रेसलिंग में भी कई स्पर्धा में हिस्सा लिया है। दीपा मलिक ने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। वे भारत की एक ऐसी महिला खिलाड़ी है पहली महिला है जिसमें हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया। वर्ष 2008 तथा 2009 में उन्होंने यमुना नदी में तैराक तथा स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सन 2007 में उन्होंने ताइवान तथा 2008 में बर्लिन में जेबलिन थ्रो तथा तैराक में भाग लेकर रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में भी दीपा मलिक चयनित की गई और पैरा ओलंपिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। तो ये थी कुछ खास बातें दीपा मलिक के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। अब देखिए, दीपा मलिक की कहानी सुनकर आपको मोटिवेशन तो मिला होगा। जिनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी उन्होंने जो है स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी उपलब्धि की और भारत को रिप्रेजेंट किया, अपने आप में कमाल की बात है कि नहीं, है ना। तो चलिए, इनके लिए सलाम बनता है, एक रेडियो मधुबन करता है इन्हें सलाम। आप सुनाए हैं सफ़र कार्यक्रम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

उठो, जागो, अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।

0: मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में एक छोटी सी कहानी के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और आशा करूंगा कि छोटी छोटी कहानियां हमें सीख देती हैं ना। तो एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वो बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुओं से काफ़ी लगाव था, बहुत प्रिय लगते थे। लेकिन एक बार की बात जरूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ के कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आज़ाद हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले में एक इच्छा मांगकर उसकी मदद करके वो आसानी से अमीर बन सकता है। ये सुनकर परी ने उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका भी दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि मैं जो कुछ भी छूं वह सोना हो जाए। बदले में इच्छा को भी उस परी ने तो उनकी मदद की इच्छा को उन्होंने इस वरदान को देकर उन्होंने पूरा भी कर दिया। अब इनके पास जादू की छड़ी हो गई थी, जो भी वस्तु छुएगा सोना बनेगा। जब इसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब वो लालची आदमी अपनी पत्नी बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर आया भाग भाग के। उसने हर समय पत्थरों के कंकड़ों को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तन होते देखा, जिसे देख कर तो वो बहुत ही खुश भी था। घर पहुंचने पर उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत चिल्लाने चीखने लगा। वह काफ़ी ज़ोर से रोने लगा, अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो गई थी। तो कहानी से सीख ये मिलता है साथियों, इस कहानी को बहुत बार सुना होगा लेकिन सीख को बार बार याद करना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना हमें हमेशा दुख प्रदान करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको एक सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा अभी, और महापुरुषों के विचार से आपको अवगत कराता हूँ। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वो चीज़ों को ही अलग तरीके से करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो। सलाम नमस्ते, खम्मा गणेशा।

मटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नक छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी बोली।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साइबर सुरक्षित भी होंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि रेडियो मधुबन कोशिश करता है आपके पास वो जानकारियां लाने का जो आपके लिए अहम है, महत्वपूर्ण है, साइबर जगत में रहने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो एकदम हम जानते हैं सितंबर महीना भी अब बस ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर आने वाला है और आने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें उसके साथ। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको मालूम है भाई, सर्दियाँ की जो मतलब गर्मियों का मौसम जाता है, सर्दियाँ हल्की हल्की भीनी भीनी सी शुरुआत होने लगती है। कहीं ना कहीं दिवाली का भी इंतज़ार होता है और भी बहुत सारे दिन आने वाले होते हैं। और हम जानते हैं इस साल के कुछ अंतिम महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट के 3 महीने बचे हैं। तो अगर आप अपना जो नया संकल्प 2026 में किया था उसे याद करना चाहें तो उसे दोहराने का भी ये अच्छा समय है। फिलहाल दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको ज़रूर काम आएंगी। वैसे आशा करते हैं कि कोई इस तरह का साइबर स्कैम आपके साथ ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कोशिश भी करे तो वो आपके साथ कर ना पाए, या आपके अपनों के साथ या आपके जानकार के साथ ना कर पाए। और इस तरीके से कैसे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को सही जानकारी दे सकते हैं, ये आपको पता चलेगा कुछ ही क्षणों में। बने रहिएगा हमारे साथ, यानी कि रेडियो मधुबन के साथ।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें सुरक्षित रहें। मैं हूं कविता। श्रोता, अपनी श्रृंखला में लगातार हम साइबर अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी गलत लिंक से आपका पैसा चला जाता है, किसी फ्रॉड ने आपका पैसा ठग ही लिया, तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो आता है कि अब क्या करें, शिकायत आखिर कहाँ करें। तो आज के इस कार्यक्रम में आपको यही सब जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं IPS कुश मिश्रा जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर शिकायत कहाँ करनी है, किस समय करनी है और क्या क्या सबूत हमारे पास होने चाहिए। तो क्या करें इन साइबर अपराधों के बाद, किसके पास जाएं, कहाँ शिकायत कराएं, आज इन्हीं सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कुश मिश्रा जी, IPS उत्तराखंड से। चलिए जानते हैं अपने इन सवालों के जवाब कुश जी के साथ। कुश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एक लंबी सीरीज साइबर अपराध पर हमारी चली और बहुत सारी जानकारी हमें अब तक इन श्रृंखलाओं के कार्यक्रम में मिली, लेकिन आज का हमारा विषय है कि फ्रॉड होने पर क्या करें, कहाँ पहला कदम उठाएं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब आपसे चाहिए। तो बताइए कि कभी कोई फर्जी लिंक आए, फ्रॉड हो जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना है, पहला कदम क्या है हमारा?
3: देखिए, सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करना है, एंड सबसे इजी जो चीज़ है 1930। आपके साथ कोई भी साइबर अपराध, साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम के शिकार अगर आप बनते हैं तो 1930 पे कॉल करिए और आप अपने जो आपके साथ फ्रॉड या क्राइम हुआ है उसकी जानकारी उसको दीजिए। वो बाकायदा 1930 पे जो ऑपरेटर्स बैठे होते हैं वो आपको प्रोसीजर बताएंगे, एंड ग्रेजुअली आपको बताएंगे कि कैसे आपको रिपोर्ट करना है, NCRP पोर्टल पे जाना है या लोकल साइबर सेल पे जाना है, ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे।
2: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक जो हमने एक एक रुपया करके पूंजी जोड़ी वो किसी भी हमारी जानकारी के अभाव से चली गई, तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, ऐसे में सोचते हैं कि अब करें क्या। तो ये जो देरी होती है, बहुत सारे लोग तो अवेयर भी नहीं हो पाते कि करना क्या है, बट क्या इसमें जो एक एक मिनट की देरी होती है वो भी रोल प्ले करती है क्या?
3: जी बिल्कुल, जरूर प्ले करती है रोल। पहली चीज, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, कॉल 1930, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, एंश्योर इमीडिएट सेफ्टी। आप उस फ्रॉडस्टर के साथ, उसके साथ सारे कॉन्टैक्ट, सारे कम्युनिकेशन को बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, अपने जो पासवर्ड्स हैं, चीज़ें, इनको अपडेट कर दीजिए। एंड तीसरी चीज़, प्लीज़ कोई एविडेंस डिलीट मत करिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि आदमी डर जाता है, सहम जाता है और सारे एविडेंस डिलीट कर देता है। बच्चे नॉर्मली कि मेरे पेरेंट्स मेरे को डांटेंगे, इवन ओल्ड पीपल टू सम एक्सटेंट कि यार दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज वाइज, उनको समझदार नहीं समझा जाएगा कि उनके साथ साइबर फ्रॉड कैसे हो गया, वो एविडेंस डिलीट कर देते हैं। बाद में पैसा रिकवर करने में या जस्टिस दिलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज है मैडम।
2: पर लेकिन अभी जैसे आपने जिन एविडेंस की बात कही कि एविडेंस डिलीट नहीं करने हैं और संपर्क सारा जो है वो फ्रॉडस्टर के साथ तोड़ देना है, पर हमारा तो शायद एक्सेस ही उनके पास है, कैसे, मतलब उसको ब्रेक कैसे करें?
3: एक्सेस देखिए, दो तरीके हैं बेसिकली। मैं अगर एक्सेस से आपका समझ पा रहा हूँ, एक्सेस आपके फोन का तभी है उनके पास जब आपने उनको दिया है। इधर वो कोई APK आपको भेजेंगे, पहले आपको झांसे में लाएंगे, वो आपके पास कोई APK भेजेंगे, आप उस APK को क्लिक करेंगे और आपका फोन उनके वो आपका फोन चला सकेंगे। सबसे पहली चीज, अपने फोन को ऑफ करो। फोन को ऑफ नहीं कर रहे हैं तो पासवर्ड और सारी चीजें, ईमेल और इन सारी चीजों के पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए। यहां से संपर्क खत्म हो जाएगा
2: जी।
4: दूसरा प्रश्न क्या था?
2: तो हमने इन श्रृंखलाओं में ये भी जाना कि अगर हम अपने फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, फ्लाइट मोड पर डाल दें, कुछ समझ ना आए तो ये कर सकते हैं क्या?
3: नहीं, डेफिनेटली ये कर सकते हैं आप, ये डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जैसे अब आपका बैंक का आईडी और पासवर्ड उनके पास है तो उनका फिर उसमें डिपेंड कुछ ये नहीं करता, वो अपने आप, अगर आपके फोन में एपीके लगी हुई है ऑलरेडी तो उनके फोन में ऑलरेडी बैंक आईडी, आप मैं कहीं से भी आपकी बैंक आईडी डालूंगा और यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा और खोल लूंगा और चला लूंगा। इमीडिएट स्टेप ये है कि आप तुरंत अपने अथॉरिटीज, बैंक अथॉरिटीज को या बैंक रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करिए कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं एंड प्लीज पासवर्ड चेंज करने में, या जो आपका ऑनलाइन एक्सेस पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग पासवर्ड होता है, इसको चेंज करने में वो आपकी मदद करेगा। एंड 1930 इट्स द मूल मंत्र
2: जी।
3: या
2: तो 1930 पर तो कॉल करना ही है, लेकिन अभी आपने एविडेंस नहीं हटाने की बात कही, कौन से एविडेंस की बात आप यहाँ कर रहे हैं?
3: देखिए, अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स हैं, हम मेनली उनको दो तरीके से तोड़ते हैं, एक फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड, एक नॉन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड में जो मोस्ट ऑफ द साइबर फ्रॉड्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गिफ्ट फ्रॉड एंड सेक्सटॉर्शन टू सम एक्सटेंट है। डिजिटल अरेस्ट में आपको क्या चीज़ डिलीट नहीं करनी है, अगर ऐसे कोई एपीके आपको देता है या कोई आपके साथ संपर्क साझा करता है फ्रॉडस्टर, उसकी कोई चैट्स है या चीज़ें हैं वो आपको डिलीट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में अगर आपको किसी ग्रुप में उसने जोड़ा है, इन जनरल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में क्या होता है, आपको एक ग्रुप में जोड़ते हैं, वो ग्रुप में जोड़ने के बाद वो आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, एको चेंबर क्रिएट करेंगे और कहेंगे मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है, मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा, तो आप सोचेंगे कि यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप भी लगाएंगे। उसमें बहुत सारी चैट्स जो आपकी एडमिन के साथ होती हैं, या एडमिन आपको कोई एपीके फाइल शेयर करता है कि इस लिंक को क्लिक करिए, और आपके पास एक सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक आएगा, डाउनलोड चीज आएंगी, आप उसको डाउनलोड कर लिए, तो वो सारे एविडेंस आपको डिलीट नहीं करने हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में। नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स जैसे कि इम्पर्सनेशन होता है बहुत सारी, और आपका फेसबुक पे आपको साइबर बुलिंग और इंस्टाग्राम पे साइबर बुलिंग की वो चीज़ें होती हैं, इन जनरल हम क्या करते हैं, या तो उसको ब्लॉक कर देते हैं या अपने चैट हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं। आप उसको सेव रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और पुलिस को आप दिखा सकें उसको
2: जी। तो ये 1930 पर जो कॉल करना है, क्या हम अपने उसी मोबाइल से कॉल कर सकते हैं जो हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड है?
3: बिल्कुल, आपको उसी से करनी चाहिए, कोई बात नहीं। 1930 इज द मोस्ट सिक्योर एंड सेफेस्ट थिंग, और हेल्पलाइन है, उस पर आप किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के नंबर से कॉल कर सकते हैं, अपने नंबर से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं
2: जी। बट बहुत सारे लोगों को सर कई बार नंबर ही ध्यान नहीं आ पाता कि किसी नंबर पे भी कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे हमें कॉल करना चाहिए, बट अगर किसी को ऑनलाइन अपनी शिकायत रजिस्टर करानी है तो वो कैसे करें?
3: अगर मान लीजिए आपको ये आसान सा नंबर 1930 याद नहीं हो पा रहा है, तो आप 100 नंबर पे कॉल करिए, 112 नंबर पे कॉल करिए, वहां भी अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया 112 नंबर चलता है, 100 नंबर चलता है, आप 100 नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए, नहीं तो अपने लोकल साइबर सेल्स, आसपास का जो लोकल थाना होता है, लोकल थाने पे कॉल कर लीजिए। लोकल थाना नहीं है, अगर बगल में साइबर सेल है उस पर कॉल कर लीजिए, अदरवाइज NCRP पोर्टल, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसको, अब जैसे आपको 1930 ही नहीं पता तो NCRP भी नहीं पता होगा, बट ऑब्वियस है 1930 नहीं पता, NCRP नहीं पता, कोई बात नहीं, थाने पे कॉल करिए, थाने वाले आपको ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर आपकी हेल्प डेस्क होती है, आजकल हर थाने में ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एवरीवेयर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताएंगे कि NCRP पे कंप्लेन कैसे करनी है।
2: सर आपने बहुत सारे ऐसे जो मामले हैं वो देखे हैं, आपने सुलझाए भी हैं बहुत सारे केसेस, आपको क्या लगता है कि आम नागरिक जो सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या रहती है हमारे एंड से, कि हमने कहीं पे ध्यान नहीं दिया और हमारे साथ फिर फ्रॉड हो गया? आपने अपने अनुभव में कुछ ऐसा देखा है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए।
3: देखिए, अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स हैं, जो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल फ्रॉड है और सबसे ज्यादा जो पैसे नुकसान कराता है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। हमने पाया कि अराउंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स में 40% जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का है। उसमें क्या है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने पैसे प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं ऐसी स्कीम्स ढूंढूंगा कि जहां मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या बढ़ जाए। अब उसमें क्या करते हैं, इनकी एक मॉडस ऑपरेंडी, स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है, ये आपके पास एक ये पॉपअप्स आएंगे, आपने अगर देखा कि अच्छा ये यार ये स्कीम है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसमें मैं लगाता हूँ पैसे और पैसे मेरे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, तो इनिशियली क्या करेंगे, आपको एक ग्रुप से जोड़ेंगे। अब उसमें सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप ये देखते नहीं है कि ये सेबी अप्रूव्ड है इन्वेस्टमेंट की नहीं है, जो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं इनकी की नहीं है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपने ये नहीं देखा और आप उसमें चले गए, मतलब तो आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, आप 5,000 रुपए लगाएंगे शुरुआत में, आपको 8,000 वापस भी आ जाएंगे, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, आपको 8,000 लगाएंगे 15,000 रुपए वापस आ जाएंगे, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट गेनिंग योर ट्रस्ट धीरे धीरे। ये बहुत लंबा ऐसे नहीं होता कि आज किया और आज ही हो गया, दो महीने तीन महीने एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये आपका जब ट्रस्ट गेन करेंगे, फिर आपको ये अलग अलग अकाउंट्स में पैसे मंगाएंगे। अब ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है, अगर मेरे से कोई कहे कि आज इस अकाउंट में पैसे डाल दो, कल उस अकाउंट में पैसे डाल देना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं होता। अगर कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है तो एक जेन्युइन अकाउंट में पैसे मंगाएगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बेसिकली जो सबसे खतरनाक, मेरे को सबसे ज़्यादा घातक जो पैसों के मामले में लगता है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। और इसमें आपको इन दोनों रेड फ्लैग से बचना है, पहली चीज़ सेबी अप्रूव, दूसरी चीज़ अगर वो आपसे अलग अलग अकाउंट में पैसे मंगवा रहा है तो आप पहले ही समझ जाओ, पहली बार में ही समझ जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो गया है। अब रही बात डिजिटल अरेस्ट की, डिजिटल अरेस्ट में भी ये आपको क्या बोलेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट है AI वॉइस स्पूफिंग का, उसमें जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ इंटरनेट पे होगी, तो मैं वहाँ से आवाज़ डाउनलोड करूँगा, AI मॉडल ट्रेंड होते हैं, उसमें मैं डालूंगा इस आवाज़ को और वही मैं कुछ भी चाहूँगा, कोई भी स्पीच टेक्स्ट टाइप करूँगा और वही सिमिलर मेरी आवाज़ में ही वो चीज़ निकलेगी। अब मेरी माँ घर पे है, उनको कॉल जाता है मेरी आवाज़ में, मेरी माँ ऑब्वियसली मेरी आवाज़ पहचान लेगी, कॉल जाएगा कि मम्मी मेरे को पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ पकड़ लिया है। माई मदर विल स्ट्रेट अवे बिलीव कि अरे ये तो मेरे बच्चे की आवाज़ है, प्लीज़ किसी को बताना मत, आप ये लीजिए पुलिस वाले से बात कर लीजिए। माँ का विश्वास जीत लिया। हाँ। अब पुलिस वाला वहां से अपना, जो नकली पुलिस वाला है वहां से अपना गेम शुरू करता है। तो हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर आपके पास आपके किसी सगे संबंधी की भी कॉल आ रही है, आप पुष्टि जरूर करो उसको कॉल करके, और उसके नंबर पे कॉल करके करिए कि पूछिए कि कहाँ है, वेट करिए, जज बिफोर यू एक्ट, सोचो और डिसीजन लो, दैट इज व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आवर साइबर सिक्योरिटी।
2: जी जी, तो ये क्या इन्हीं में वो सारे सबूत हैं जो हमें शिकायत करते समय देने हैं, जब शिकायत हम करेंगे तो कुछ हमारे पास होना भी चाहिए कि हम बताएं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है?
3: जी, आपसे जो पुलिस पर्सनल होगा वहाँ वो सारे सबूत आपसे लेंगे, जो जो उनको बताए गए हैं, जो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से सबूत मांगे जाते हैं। आमतौर पे इन जनरल मैं आपको बताऊँ, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आपके साथ होता है तो पहली चीज़ आपको किसी ग्रुप में जोड़ा गया, उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट, किस ग्रुप से जोड़ा गया है आपको, उस ग्रुप में 80 लोग हैं अगर, तो हमने बहुत सारे ऐसे ग्रुप स्टडी किए जिसमें कि पाया गया है कि 60 लोग तो उनके मेंबर होते हैं, तो दे क्रिएट अ काइंड ऑफ एन इको चेंबर, वो 60 लोग भी उस क्रिमिनल गैंग का पार्ट हैं। आप उन सबका स्क्रीनशॉट, उन सबके नंबर का स्क्रीनशॉट आप इकट्ठा करिए, अगर उस दौरान उस ग्रुप में कोई APK फाइल शेयर करी गई, आपको बोला गया कि आप ये चीज़ डाउनलोड करिए, इस APK फाइल को क्लिक करके वो APK फाइल रखिए एंड बैंक अकाउंट नंबर रखिए। और डिजिटल अरेस्ट के केसेस में क्या होता है जनरल, क्या पहले आपका ट्रस्ट नहीं होता, अगर मैं आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल करूंगा तो आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक नॉर्मल नंबर से कॉल करूंगा। वो नॉर्मल नंबर से कॉल करके, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप मैं आपका लड़का बनके मतलब आपको कॉल करूंगा, वो नॉर्मल नंबर आपको सेव रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो नॉर्मल नंबर डिलीट कर देते हैं या खो जाता है क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप ये चीज जरूर अवेयर रखिए कि आप क्या पता आपके साथ सीरियसली फ्रॉड हो रहा हो और वो जेन्युइन नहीं हो, तो वो नॉर्मल नंबर जरूर आप रखिए। एंड बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपको बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, जो भी आपको मैसेजेस की ट्रेल्स हैं, चैट्स हैं, सारी चीजें रखिए। अब जैसे गिफ्ट रिलेटेड फ्रॉड होता है, गिफ्ट रिलेटेड फ्रॉड में मोस्टली अफ्रीकन मूल के लोग हमने देखे कि ये फ्रॉड करते हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द अरेस्ट होते हैं उसमें क्या करते हैं, ये आपको फेसबुक पे फ्रेंड बनाएंगे।
2: अच्छा।
3: और इनकी DP कुछ और रहेगी, फेसबुक पे फ्रेंड बना के या इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बना के ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट गेन करेंगे और धीरे धीरे आपसे पैसा लेंगे, कैसे लेंगे कि यार मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट ला रहा था लेकिन अब यहाँ कस्टम वालों ने रोक लिया, नाउ दे आर आस्किंग, ये फीस मांग रहे हैं, 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं कि आप ये तभी छोड़ेगा, टैक्स लग रहा है, तो आप उसको 1,00,000 ट्रांसफर कर देंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे आपका ट्रस्ट गेन करके अलग अलग तरीके से आपसे वो मांगते हैं पैसे, पैसे की डिमांड करेंगे। अब इसमें जो आपका फेसबुक, अगर मान लीजिए फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी आपके पास, तो फेसबुक पे जो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी उसका एक यूआरएल होता है।
2: अच्छा।
3: वो यूआरएल का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए कि जी देखिए जी ये फेसबुक फ्रेंड था, ये आईडी थी, ये स्क्रीनशॉट है, उसके कोई भी चैट्स, उसने कोई अपना नंबर शेयर किया हो या कोई वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे कोई कॉल करी हो, वो जिससे भी जो भी आपको लगता है कि यार ये मैं पुलिस को दे सकता हूँ, वो सारी चीजें आप सिक्योर रखिए।
2: जी
3: जी।
2: लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा कि फ्रॉड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू लोग फंस जाते हैं और सबको ही जल्दी पैसा चाहिए, शॉर्टकट बहुत चाहिए लाइफ में, पर ये जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और धीरे धीरे पेमेंट आपको करते हैं, बट सर इसमें तो बहुत लंबा समय चला जाता है। आप तो हमेशा यहाँ पे समय की बात हम सुनते हैं कि समय रहते रिपोर्ट करें, तो अगर 5-6 महीने किसी को रिफंड आया है और फिर 6ठे महीने से नहीं आ रहा है, तो 6 महीने तो निकल गए, क्या उसके बाद भी शिकायत की जा सकती है?
3: देखिए हाँ, शिकायत तो कभी भी करी जा सकती है। मैं ये अब क्या होता है कि जैसे मैंने 50,00,000 रुपए जमा करवा दिए, फिर मैं जब अब मैं चाहता हूँ, इन जनरल क्या होता है कि अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा रिटर्न मेरे को मिले
2: जी।
3: अब उसमें मैंने देखी कंप्लेंट्स में, वादी क्या कंप्लेंट्स करते हैं जो हमारे कंप्लेनेंट्स होते हैं, कि जब वो 50,00,000 जमा कर चुके होते हैं, अब वो पैसा मांगने की बारी आती है, तब भी वो इनसे कन्वीनियंस फी, सर्विस फी और पैसे ठगते हैं। वो क्या करेंगे कि यार 5,00,000 रुपए और दीजिए तभी आपके 50,00,000 वापस मिलेंगे, क्योंकि ये टैक्स के पैसे हैं, हमको पहले लेने हैं। अब आप अगर वो चीज़ समझ जाते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप उसको रिपोर्ट करिए, तुरंत रिपोर्ट करिए 1930 पे या अपने किसी लोकल साइबर सेल पे। हाँ ये ज़रूर है कि अगर समय ज़्यादा हो गया है तो पैसे रिकवर कराना मुश्किल हो जाता है,
2: लेकिन और लोगों को फंसने से बचाया।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बिकम अ साइबर
2: वॉरियर, यहाँ पर एक अवेयर नागरिक बन के हम
3: अवेयर नागरिक बनिए, साइबर वॉरियर। अब आपके साथ नुकसान हो गया है, बाकी यत्र विश्वम नीरम भवते, बाकी हमारी पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है, तो आप दूसरे को भी अपनी फैमिली समझिए और उसको फ्रॉड से बचाइए।
2: जी, तो कुश मिश्रा जी यहाँ पर हम अपने कुछ लिसनर्स के जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लेते हैं। तो हम अपने पहले जो हमारे सवाल पूछेंगे हमारे कॉलर, उनके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पहले दर्शक, पूछेंगे अपना सवाल। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम अमन है।
2: बताइए आपका प्रश्न क्या है।
4: मैम मेरे को ये जानना था, क्या हम साइबर क्राइम हो जाए तो क्या हम नजदीकी साइबर कंप्लेंट कर सकते हैं?
2: नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप पूछना चाहते हैं?
4: जी मैम
2: जी। अभी आपका प्रश्न का जवाब हमारे जो हमारे एक्सपर्ट है वो आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए।
3: जी बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड अपने लोकल थाने पे या 100 नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड 1930 अगर हैंडी नहीं है, आपको याद नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोकल साइबर सेल पे या लोकल थाने पे कॉल करिए और वो आपको सारी जानकारी दे देंगे।
2: तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट ने आपके सवालों के जवाब दिए और इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे जो कॉलर हैं वो मौजूद हैं जो कि अपना प्रश्न पूछेंगे। जुड़ते हैं उनके साथ। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए।
5: मैम मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ है, पर मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए?
2: जी
3: कोई बात नहीं, योर आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ है, इट्स योर राइट एंड राइट टू प्राइवेसी। K.S. Puttaswamy judgment, Honorable Supreme Court has also termed it as it's a part of your fundamental right. So आप अपना नाम hidden रख सकते हैं, but जो जो आपके साथ crime हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप पूरे तरीके से दीजिए और जो जो evidences आपसे मांगे जाएं वो आप दीजिए और आपका साथ justice होगा।
2: जी, अब हम मुझे जानना है कि अगर किसी के साथ fraud हो जाए तो उसके बाद क्या हमारे जो पैसे चले गए हैं वो हमें मिल जाते हैं, किन कंडीशंस में वापस मिलते हैं, कुछ इसके बारे में भी बताइए।
3: अगर आपके साथ, देखिए इसमें क्या गोल्डन आवर रूल होता है, जितनी जल्दी अगर आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये पूरा बैंक्स का एक देयर इज अ स्पेशल रूम वेयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द स्टेट्स आर सिटिंग, जैसे ही अगर कोई बड़ा फ्रॉड होता है मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, तो वहां साइरेंस बजने लगते हैं.
1: अच्छा.
3: और ग्रेजुअली तुरंत ही वो रिप्रेजेंटेटिव एक्टिव हो जाता है और बैंक ऑफिशियल्स भी वहीं बैठे होते हैं.

0: रिकवर कराने में मदद कर पाएंगी।
1: सर ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे हम लोग जब किसी को ट्रांसफर करते हैं तो एक लिमिट होती है हमारी भी पैसा ट्रांसफर करने की,
0: जी
1: तो क्या ऐसे फ्रॉड फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी कोई ऐसी लिमिट है कि एक टाइम में कितना पैसा ट्रांसफर हो पाएगा यदि होता है तो?
0: जी देखिए, ये बहुत, ये बिल्कुल आपने बहुत सा वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं इनको पता है ये चीज़ कि एक लिमिट होती है, तो ये अकाउंट स्पेशल म्यूल अकाउंट्स जो ये अकाउंट्स मार्केट से या खरीदते हैं या कुछ करते हैं, ये लार्जर लिमिट्स वाले अकाउंट्स खरीदते हैं। जैसे कि कॉरपोरेट नियो, एक्सिस का एक एक्सिस बैंक का कॉरपोरेट नियो अकाउंट है, CMP ऑफ SBI, बंधन बैंक के, जो ये बड़ी लिमिट्स वाले अकाउंट्स हैं, जो 50 करोड़ 10 करोड़ की डेली लिमिट की ट्रांजैक्शंस वाले अकाउंट हैं, ये इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिशियरीज ऐड करेंगे, बेनिफिशियरीज ऐड करेंगे, 100 100 100 100 रुपये करके दिन में कम से कम 50,000 ट्रांजेक्शन्स करेंगे,
1: अच्छा
0: ये ऐसे करते हैं। यस मैम, तो एक ये चीज़ है। और आपसे क्या, जैसे मैं विक्टिम हूँ, मेरे से क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, जाओ अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँगा, या तो ये खुद ही कर लेंगे, आपसे APK लेंगे, आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड आपको, कि आपको कंप्लीटली इन्होंने झांसे में ले रखा है, या ये आपसे कहेंगे कि आप पर्टिकुलर बैंक में जाइए और वहां जाके पर्सनली डिपॉजिट करिए। तो अगर मैं पर्सनली डिपॉजिट करता हूँ उस बैंक अकाउंट में, तो कितने भी पैसे मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूँ, और जो ये अकाउंट देते हैं उस अकाउंट की लिमिट ये इंश्योर करते हैं कि वो अकाउंट की लिमिट इतनी हो कि अथॉरिटीज की नज़र में ना आ सके।
1: तो मतलब अगर मेरे पास मेरे अकाउंट में कोई भी अमाउंट है, 5 लाख 10 लाख, तो मैं भी विक्टिम बन सकती हूँ और मेरे साथी 10 के 10 उड़ा लेंगे एक
0: नहीं,
1: साथ?
0: ऐसे नहीं उड़ा सकते बिना आपके, जरा मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है अनटिल अनलेस आप उसको खुद ना गंवाएं। आपको ये बेवकूफ बनाते हैं, दीज आर साइबर ठग्स। ठगी आपको बिना आपको झांसे में लाए हुए नहीं करी जा सकती, आपके फोन में ही घुस नहीं सकते, आपसे ही परमिशन लेंगे, लेकिन आपको बेवकूफ बना के, इधर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड
1: जी
0: आपके साथ होगा, या आपको डराएंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि
1: बिल्कुल
0: मेरे 2 किलो चरस के साथ मैं पकड़ा गया, या मैं मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए मेरे अकाउंट आया है मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर इफ देर इज स्मोक, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो अगर ऐसा कुछ है तभी मैं झांसे में आऊंगा, नहीं तो आपके मैं ये इन ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं। हाँ, अगर APK फाइल गलती से आती है, कोई लिंक आता है मेरे पास, मैं उसको क्लिक कर देता हूँ और परमिशंस दे देता हूँ। आईफोन और अब आजकल ये फोन्स में फीचर आ रहे हैं कि वो परमिशंस मांगते हैं स्पेशल, अगर मैं उस परमिशन को ओके करूंगा तभी वो मेरे पासवर्ड्स और इन सब का एक्सेस ले पाएंगे, अदरवाइज कंप्लीटली सेफ है।
1: जी तो सर एक ये भी बता दीजिए कि जो भी आपके अब तक अनुभव है फ्रॉड होने वाले जो लोग हैं जिनके
0: हाँ
1: साथ
0: जी,
1: हो चुका है, किस तबके के वो ज्यादातर लोग होते हैं? मतलब अगर ये आप थोड़ी कैटेगरी, मतलब कौन होते हैं, कौन फंस जाते हैं जल्दी?
0: देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स की बात करें तो नॉर्मली जो हमारे अच्छा मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनको पैसे, जिनकी 20 लाख 25 लाख साल की एनुअल इनकम है और जिनको चाहिए कि मैं हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, बट थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव की वजह से, सेबी अप्रूवल और ये सारी चीज़ें जो मानक है RBI के, वो ना देखते हुए वो जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ ये
1: जी
0: धोखाधड़ी ज़्यादा होती है। और आमतौर पे जो सेक्सटॉर्शन और इसकी चीज़ें हैं, अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है इन जनरल, तो आपकी फ़ोटो को मैं लेके आपकी फ़ोटो AI से मॉर्फ करके एंड आपको फिर से मैं भेज सकता हूँ। एंड हमने ये भी देखा कि देर इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, हैव आई बीन पॉन्ड, आप उसमें अगर अपनी Gmail ID डालेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके कितने डेटा ब्रीचेज हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, 10% 5% 1% के डिस्काउंट्स के लिए वी जस्ट शेयर आर डेटा। हम अपना डेटा, फोन नंबर, Email ID, ये जो क्लॉथ डिपोज होते हैं, जैसे कि बड़ी लाइफस्टाइल पैंटलून्स, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना नंबर शेयर मत करिए, करिए इनकी जो पॉलिसीज हैं, बट अवेयर होके करिए, और अपना डेटा ऐसे ही मत लोगों को दे दीजिए,
1: जी
0: क्योंकि वहां से भी आपके डेटा ब्रीच होते हैं एंड ग्रेजुअली फिर आप विक्टिम बन सकते हैं।
1: जी तो अंत में जाने से पहले एक जो मूल मंत्र होगा आपका, वो क्या होगा हमारे सभी दर्शकों के लिए, सभी लिसनर्स के लिए, जो आप बताना चाहें?
0: देखिए, जागरूक रहिए एंड बिकम अ साइबर वॉरियर। अगर हम जागरूक को खोलें तो जज बिफोर यू एक्ट, अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन,

0: and guide your each and every things, guard your स्टेप्स एज इन अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट, अपने मतलब फोन में टू फैक्टर, जैसे व्हाट्सएप भी आजकल लोगों का हैक हो रहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन रखिए. एंड आर से अगर हम देखें तो रिपोर्ट इमीडिएटली, एंश्योर इमीडिएट सेफ्टी, आप अपने एविडेंस को बचा के रखिए. एंड अगेन आपका कीप लर्निंग एंड स्टे अवेयर. अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, बिकम अ साइबर वॉरियर, क्योंकि आपके साथ हो गया है. आप ये इंश्योर करिए कि आपके सगे संबंधियों, आपके दोस्तों के साथ ना हो.
1: जी, तो आज की जानकारी से ये बात साबित हो गई है कि पहले अवेयर हमें खुद होना है और उसके बाद हम किसी भी ठगी से बच सकते हैं यदि आपके पास प्रॉपर जागरूकता है, नॉलेज है। तो आज इस चर्चा में हमने जाना कि कैसे आपको जागरूक बने रहना है। कुश मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, साइबर अपराध का शिकार होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन चुप रहकर सहना जरूर आपकी गलती हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शिकायत करें। नंबर हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया, 1930 पर शिकायत करिए और गोल्डन आवर्स का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी ही जल्दी शायद आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो किसी भी फ्रॉड में ना फंसे, इन्हीं शब्दों के साथ हम यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मैं कनव हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया। इतना
2: तो हम रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: की जो बेली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया,

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह दीजिए।
1: अरे मोहन भैया राम राम।
2: राम राम भैया राम राम।
1: अरे मोहन भैया, तुम बार बार आगे पीछे देखा जा रहे, कौन आ रहा होगा?
2: कौन नहीं रहो, हम जो आज देखा जा रहे। आजकल के गाड़ी वाहन कितने रफ्तार में चला, अगर हम देख नहीं पाए कौन खो तो कौन आके हम ही में ठोक दे, हम हो जाए राम राम सब।
1: अरे यहाँ भैया ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, अरे कौन को इतना ही नहीं टिपे का तो जो कोई यहाँ जा रहा हो जाम ठोक दे।
2: आ रहा हूँ भैया, जो भूल गए तुम कि अपने फूल सिंह भैया के लड़का को का हाल भाव, तो कितनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हो, एक खोर संगे ले गो।
1: अरे हाँ भैया जा तो तुमने साँची कही, अगर सभी जने जा बात समझ जावे के तेज रफ्तार में गाड़ी चलावे को का अंजाम होते है, तो फिर कौन उसी भी परेशानी नहीं है न कौन कोई एक्सीडेंट हुई है।
2: अरे राहू भैया, ऐसा कोई है नहीं है जो अपन सभी खो जा जानकारी दे सके के गाड़ी चलावे के कितने नियम है और इनकी कितनी जानकारी है।
1: अरे भैया एक काम करो, अपन आज दरोगा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछे के तेज रफ्तार में गाड़ी चलावे को कौन नियम नहीं बनाए का, अरे अगर कौन नियम बनाए हैं तो उनकी काका। अरे राहू भैया एक काम करो, आज अपन दरोगा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछे के सरकार ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलावे वालन के लाने कोनो नियम नहीं बनाए का, वो कौन कौन सी धाराएं लागू होते हैं।
2: सही कह रहे, चलो अपन दरोगा जी के पास चल के जा पूछे कि के कितने नियम हैं गाड़ी चलावे के।
1: दरोगा जी राम राम।
3: अरे राम राम राम राम भाई। अरे रामू मोहन कैसे हो भाई, आज दोनों एक साथ आ रहे हो?
1: अरे दरोगा जी हमने सोची के हमारे दिमाग में एक बात आई कि ये इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं आदमी और इसे कहने कितनी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो जाते हैं, तो जाके लाने सरकार ने कोनो नियम बनाए हैं का, अगर बनाए हो तो बताओ।
3: अरे बार रामू तू तो बड़ी दुनिया की चिंता करने लगा, तूने आज सबसे पहली बार, तुम पहले व्यक्ति हो तुम दोनों जिनने पहली बार आके पूछा है कि गाड़ी चलाने के कितने नियम है। आज सुनो मैं आज तुम्हारे लिए विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि आज कितने नियम इसमें लागू होते हैं। भाई देखो, एक तो नियम ये है अपने यहाँ कि गाड़ी चालक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपनी साइड में गाड़ी चला रहा है या नहीं।
1: बिल्कुल साँची कह रहा है,
3: यानी कि भाई बाएं साइड में हमेशा चलना चाहिए उसे।
1: ठीक।
3: दूसरा नियम ये है रामू कि गाड़ी चलाने वाले को अपनी स्पीड पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल बढ़िया साहब,
3: मतलब नियम अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर वह शहर के अंदर है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी गाड़ी की स्पीड होना चाहिए।
1: हाँ।
3: तीसरा नियम यह है कि गाड़ी चलाते समय सिर पर हेलमेट का पहनना बहुत जरूरी है।
1: हेलमेट का साहब बोटो पास होता है?
3: हाँ हाँ हाँ,
1: ठीक
3: भाई,
1: ठीक,
3: उसी को हेलमेट बोलते हैं।
1: हाँ।
3: उससे हेलमेट से आदमी को बहुत सुरक्षा मिलती है, अगर किसी अकस्मात एक्सीडेंट में अगर फंसता है तो उसके सिर पर चोट आने से उसका बचाव होता है।
1: हाँ,
3: इसलिए हेलमेट का होना बहुत जरूरी है। चौथा नियम है कि सड़क के किनारे पर लगे सिग्नल बोर्डों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भाई हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि आगे रास्ता कैसा है। समझ रहे हो कि नहीं?
1: ठीक, बिल्कुल समझ रहे हैं
3: भाई। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, आजकल जो मोबाइल चल रहे हैं उन मोबाइलों से बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो एक साइड में पहले गाड़ी रोक लें, गाड़ी रोकने के बाद ही फिर मोबाइल पे बात करें और फिर आगे गाड़ी के रास्ते से चलें।
1: बहुत बढ़िया साहब, आपने जो बात बताई बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरे रामू एक बात और देखो कि गाड़ी चलाते समय अधिकतर लोग आपसी होड़ में लग जाते हैं, एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
3: ये नियम के खिलाफ होता है, इससे आदमी अधिकतर मौत के शिकार हो जाते हैं।
1: सही कह रहे हैं साहब,
3: ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है।
1: ठीक है साहब, आपने जो जानकारी दी हमें बताओ, और बताओ साहब कछु एक आध बात और हो तो और एक आध और बता दो।
3: अरे रामू गाड़ी चलाने के बहुत नियम होते हैं, भाई अपने ग्राम में जैसे नियम जितने ज्यादा लागू हों उतनी ही की बात रखो। भाई आप शहर में जाएंगे तो आपको रेड सिग्नल की आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन आप जाएंगे आप उसको डिटेल में आपको पता चलेगा।
1: ठीक है साहब।
2: हाँ साहब, अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई कि गाड़ी चलावे में कितनी सावधानी रखनी चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ भैया, दरोगा जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर सभी गाड़ी चलावे वाले इन सभी बातों को ध्यान रखें तो हम ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना से बच सकते हैं। दरोगा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर सभी गाड़ी चलावे बारे जब बात को समझ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहे, ध्यान रखें।
4: जी, गाड़ी चलाने वक्त नियमों का पालन जरूर करें, साथ ही साथ टू व्हीलर्स जैसी चीजों के में चलकर कहीं पहुंचने के दौरान हेलमेट लगाना कभी ना भूले। लोग बाग हेलमेट तो सर पर डाल लेते हैं लेकिन क्लिपिंग नहीं करते, इसका भी ध्यान रखें कि क्लिपिंग करना भी आवश्यक है। रैश ड्राइविंग सुरक्षा के लिए खतरनाक है। जी हाँ, रैश ड्राइविंग करने से जरूर बचें, और कोई कर रहा है तो उन्हें भी समझाएं कि प्लीज रैश ड्राइविंग ना करें, दूसरों की भी जान की रक्षा करें और अपनी जान की भी रक्षा अवश्य करें। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। चतुर किसान की कहानी आगे लेकर आ रहे हैं हम उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, पर उससे पहले एक खूबसूरत सा गीत है, सुन लेते हैं उड़ान में ही, फिर कहानी लेकर आएंगे आपके लिए।

0: का ध्यान रखते थे। इसी गांव में चौरंगी नाम का एक व्यक्ति था। उसकी आदत दूसरों की नकल करना, या यूं कहें कि वह जिस काम से औरों को लाभ होते देखता, बिना सोचे समझे करने लगता। उसकी इसी आदत के कारण कोई उसे नकलची कहता तो कोई अड़ंगीबाज। उसने अपने साथ वाले खेत में दूसरी बार बाजरे की बुआई होती देखी तो उसे लगा कि इस फसल से अधिक मुनाफा होता होगा।
1: सीताराम ने दूसरी बार बाजरे की बुआई कर दी, पिछली बार भी इसकी फसल अच्छी हुई थी, मोटे दाम मिले होंगे। चलो अब की मैं भी बाजरे की बुआई करूंगा।
0: चौरंगी को अपने खेत में बाजरे की बुआई करता देख सीताराम उसके पास आकर बोला,
2: अरे भाई तुम्हें पता है कि मैंने बाजरा बोया है, तो तुमने क्यों बोया?
3: ये कहाँ लिखा है कि अगर तुमने बोया है तो मैं नहीं बो सकता है?
2: तुम तो हर बार जौ की बुआई करते हो ना।
3: भाई मेरा खेत है, मैं चो जाए होगा है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई?
2: तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, दाम गिरा कर मानोगे, इस बार अच्छा नुकसान करवाओगे।
0: चौरंगी उसे कुछ नहीं कहता, मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। चौरंगी की पत्नी उसे बताती है कि पिछली फसल से बची हरी घास का कुछ हिस्सा अब तक पड़ा है, बारिश आने के आसार हैं, तो खराब होने से पहले उसे किसी पशुशाला में दे आए। तभी उसका इकलौता दोस्त नथु आ गया।
3: अरे चौरंगी, ये घास लेकर कहाँ जा रहा है?
4: ए, घर पर रखी रखी खराब हो जाएगी, तो सोचा गौशाला में दे आऊं। चल अब तू भी घास उठा, चल मेरे साथ चल।
2: चल भाई चल, नेकी और पूछ पूछ।
0: दोनों हरा चारा लेकर गौशाला में जाते हैं।

0: अरे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। गौओं के साथ रहने का अपना ही आनंद है। लो भाई ये चारा ले लो, 10 रुपए दे दो इसके।
1: पैसे काहे के?
0: इस चारे के और किसके?
1: मुझे लगा तुम दान के लिए लाए हो।
0: अरे छोड़ना यार, तू भी क्या, वैसे भी घास पड़ी पड़ी खराब हो जाती। आ देख यहाँ कितना सुकून है। हाँ नुकसान करा के बड़ा सुकून मिल रहा है।
2: दोनों गायों को चारा खिलाते खिलाते थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ एक कोने में चौरंगी का पड़ोसी शामू बैठा था।
0: चौरंगी देख उसे, वो शामू है ना तेरा पड़ोसी।
2: चौरंगी और नत्थू शामू के पास जाकर,
0: क्या भाई आज गौशाला में बड़े इत्मीनान से बैठे हो, खेत में नहीं जाना लगता है। मैं तो बस यहाँ यूं ही।
2: दोनों आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर गौशाला घूमकर वे बाहर की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि शामू गायों का गोबर इकट्ठा करके ले जा रहा है।
0: उत्तरी, तभी मैं सोचूं ये आजकल शामू के घर पर रोज रोज उपले और खाद कैसे बन रहे हैं।
2: वे दोनों वहां से चले गए। अगले दिन शामू की गौशाला पहुंचने से पहले ही चौरंगी गोबर ले आया। अरे ये क्या उठा लाए?
0: दिखता नहीं क्या, साथ वाले घर में देखो रोज उपले बन रहे, गोबर की खाद बन रही है। वो देखो सामने धूप में कितने सूख रहे हैं।
2: हाँ तो
0: आजकल बाजार में इनके अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो तुम भी ये बनाना शुरू कर दो। ऐसे ही पूरा दिन घर में फालतू की बातें बनाती रहती हो। यहाँ
2: ये क्या कह रहे हो, मैं पूरा दिन घर पर काम करती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये उपले और खाद वाद बनाऊं।
0: क्यों समय नहीं है, है? शामू की पत्नी को देखो कितनी मेहनत करती है।
2: उनकी तो मजबूरी है, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए ये कर रहे हैं। और हाँ अगर तुम्हारा ज्यादा मन है तो खुद बैठ कर बनाओ, मुझे तंग मत करना, कहकर वह अंदर चली गई। और चौरंगी चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। दूसरी ओर शामू को गौशाला से खाली हाथ लौटे देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ आज गोबर क्यों नहीं लाए?
0: अच्छा खासा घर चल रहा था, अब चौरंगी की नजर लग गई, मेरे जाने से पहले

0: ले ही वो सब गोबर उठा कर ले गया।
1: तो क्या हुआ, आप उनसे ही ले आओ ना, वो हमारी घर की हालत जानते हैं, मना नहीं करेंगे।
0: ठीक है, कोशिश करता हूँ। भाई तुम गौशाला से सब गोबर उठा लाए, अगर काम का नहीं है तो दोगे क्या?
2: लाया तो काम से हूँ, पर ये जो तुम्हारी भाभी है ये कुछ करने को तैयार नहीं, और मेरा तो तुम जानते हो मैं दिन रात व्यस्त रहता हूँ ना।
0: हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ।
1: चौरंगी गोबर की बाल्टी आगे कर देता है।
2: ये लो, 5 रुपए दे देना।
0: 5 रुपए? 5 रुपए क्यों, ये तो गौशाला में मुफ्त मिलता है।
2: अरे भाई मेरी मेहनत के, लेना तो लो वरना चले जाओ, इतनी दूर से उठा कर लाना कम बड़ी बात है क्या?
1: शामू उसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप उसे रुपये देकर बाल्टी ले जाता है। फिर चौरंगी खेतों की ओर चल दिया। वहां उसे नत्थू मिल गया, दोनों हाट घूमने गए। और फिर जंगल के रास्ते से वापस आते हुए उन्होंने पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते देखे। चौरंगी चलते चलते एक पेड़ के नीचे रुककर छत्ते को देखने लगा।
0: अरे क्या देख रहा है, एक मक्खी ने भी काट लिया तो पूरा सूज जाएगा।
2: हाट में देखा था ना, शहद सोने के भाव बिक रहा है।
0: तो
2: अच्छा काम है, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई खास झंझट नहीं, बस फायदा ही फायदा है इस काम में।
0: अबे चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, छत्ते में से मधुमक्खियों को भगाकर शहद निकालना कोई आसान काम है क्या? इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है भाई।
2: ए, मुझे सब आता है, मैं ये काम आसानी से कर लूंगा, बस तू मेरे साथ रहना ठीक है।
0: भाई मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत खतरा है, मधुमक्खियों का मामला है, मुझे तो सोचते ही डर लग रहा है।
2: तो क्या हुआ, हम मशाल जलाकर रखेंगे तो मक्खियां क्या बिगाड़ लेंगी भाई?
0: ना ना, मुझे तो डर लगता है भाई।
2: ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़कर सारा काम कर लूंगा, तू नीचे हाथ में मशाल लेकर खड़े रहना ठीक है।
1: अगले दिन भोर के समय चौरंगी और नत्थू मुंह को कपड़े से ढके, हाथ में बिना जली मशाल लिए छत्ते वाले पेड़ के पास आए।
0: अभी भी एक बार सोच ले, ये काम हमारे बस का नहीं है।
2: अरे मैं हूँ ना यार, ए? मुझे सब आता है, तू बस मशाल जलाकर उसे घुमाता रहियो ठीक है।
1: चौरंगी ने एक मोटी रस्सी से बाल्टी और मशाल बांधकर उसे अपने
3: बिल। दोस्तों ये आगे की कहानी इस गीत के बाद मैं जरूर लेकर आती हूँ।

0: कौन है वो चित्रकार? इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे। आगे की कहानी आपके लिए उड़ान
1: पर बांध लिया। फिर नत्थू को कुछ समझाकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। छत्ते के पास पहुंचते ही उसके आसपास कुछ मधुमक्खियां मंडराने लगीं, तो उन्हें वह हाथ से हटाता गया। छत्ते में हजारों मक्खियां थीं जो भिन भिन आ रही थीं। चौरंगी उन्हें हाथ से हटाता पेट वाली रस्सी को पेड़ से बांधने लगा, पर मक्खियां परेशान कर रही थीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले मशाल जला ली जाए। उसने पेड़ पर लटके हुए ही जेब से माचिस निकाल कर मशाल जलाई। उसमें आग लगते ही छत्ते तक आंच पहुंच गई। फिर तो मक्खियों के झुंड ने आतंक मचा दिया और संतुलन बनाने के चक्कर में चौरंगी की मशाल नीचे गिर गई। मशाल गिरते ही मधुमक्खियों ने चौरंगी पर चौतरफा धावा बोल दिया।
2: बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, हाय हाय मैं मर गया रे।
1: वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नीचे से नत्थू ये देखकर डरकर मशाल हाथ में लिए भाग गया। मधुमक्खियां चौरंगी से चिपक गईं। उसका चेहरा भी नहीं दिख पा रहा था और वह पेड़ से गिर गया। मधुमक्खियां उस पर मंडराने लगीं। तभी नत्थू बहुत से शहद निकालने वाले आदमियों के साथ आया। फिर सबने मिलकर मधुमक्खियों को मशाल से भगाया। चौरंगी का पूरा शरीर और मुंह सूज कर फूल गए और लाल हो गए। वह दर्द से तड़पने लगा।
3: तुम क्यों यहाँ आए? जिन्हें ये काम करना आता है उन्हें ही करने दो। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालना आसान नहीं है। हलवा खाने के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ती है। शायद तुम ये बात अब समझ जाओ।
4: ए लालच में आकर है किसी के काम में अड़ंगी डालोगे तो यही होगा भाई। बताओ,
3: बिना सोचे समझे मधुमक्खियों से पंगा ले लिया।
4: आए, मैं मर गया भाई, भाई।
3: तुमको शरीर के साथ साथ दिमाग के इलाज की भी जरूरत है भाई।
4: आए, मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं करूंगा, बचा लो भाई।
3: लगता है दिमाग का इलाज तो आज हो गया।
1: नत्थू चौरंगी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है पर वह उठा नहीं पाता। ये देखकर सभी लोग मिलकर चौरंगी को उठाकर अस्पताल छोड़ आते हैं।
3: मैंने कहा था ना, इस काम में बहुत खतरा है। देखो क्या हालत कर ली अपनी। अगर मैं समय पर सबको नहीं लेके आता तो क्या होता?
4: मैया कसम, अब ऐसा नहीं करूंगा।
0: देखा किस प्रकार मधुमक्खियों ने उनका काम इतना मुश्किल कर दिया। उसकी जान भी किसी न किसी तरीके से जा सकती थी, पर बच गई। दोस्तों की वजह से ही बच गई। लेकिन मिशन लाइफ जरूर सुन लीजिए अभी उड़ान में पहले।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए दोस्तों, कविता आपके लिए मधुमक्खी से जुड़ी ही। नन्ही सी तो रानी मधुमक्खी, कितनी प्यारी है तेरी चाल, फूलो फूलो पर तू मंडरा कर भरती जीवन की मिठास, गुंजन करती इधर उधर तुम मीठा मीठा शहल बनाती, धूप को धूप हो या छाँव सजीली अपने काम में मन को लगाती, परागण का तुम काम है करती, सबको देती एक नई आस, प्रकृति की इस सुंदरता में भरती तुम अनमोल मिठास, भरती तुम अनमोल मिठास। चलिए दोस्तों, रामा रामा रटते रटते
3: काम है नहीं, मैं यहाँ आपसे वही सीखने आया हूँ। मेरे पिताजी

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए
2: रेडियो मधुबन पर। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। What we are not realizing that weapon doesn't work. It's not providing any result. लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र

0: गुफा के पास पहुंचते ही चतुरक को जमीन पर शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। चतुरक तुरंत सावधान हो गया और गुफा से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वह समझ गया कि गुफा के अंदर कोई बड़ा जानवर मौजूद हो सकता है। चतुरक ने तय किया कि सच्चाई जाने बिना वह गुफा के अंदर नहीं जाएगा। अचानक चतुरक के दिमाग में एक अनोखी तरकीब आई। वह हल्का सा मुस्कुराया। अपनी तरकीब आजमाने के लिए चतुरक ने गुफा को आवाज लगाई।
1: ओ गुफा, मेरी प्यारी गुफा।
0: उसने दोबारा आवाज लगाई। आज तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? अंदर बैठा भैरव चतुरक की आवाज सुन रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चतुरक ने अपनी चाल आगे बढ़ाई।
1: रोज तो तुम मुझे आवाज देकर अंदर बुलाती हो।
0: अब चतुरक ने अपनी आखिरी चाल चली।
1: तुम नहीं बोलोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा।
0: भैरव सोचने लगा कि शायद यह गुफा सच में रोज चतुरक से बातें करती है। अब चतुरक ने अपनी आखिरी चाल चली।
1: तुम नहीं बोलोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा।
0: भैरव ने सोचा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका भोजन हाथ से निकल जाएगा। और तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज आई।
2: चतुरक, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
0: हाँ, आवाज सुनते ही चतुरक समझ गया कि गुफा के अंदर सचमुच शेर बैठा है। चतुरक मन ही मन हंस पड़ा। उसकी समझदारी ने उसे बड़े खतरे से बचा लिया था। चतुरक ने दूर से ही शेर को जवाब दिया।
1: मूर्ख शेर, गुफाएं कभी नहीं बोलती, तुमने खुद अपना राज खोल दिया।
0: चतुरक तेजी से जंगल की ओर दौड़ा। भैरव भी उसके पीछे भागने लगा।
3: चतुरक अपनी फुर्ती से पेड़ों और झाड़ियों के बीच निकल गया। भैरव पीछे रह गया।
0: कुछ दूर दौड़ने के बाद भैरव थककर रुक गया। चतुरक बहुत दूर निकल चुका था। भैरव समझ गया कि जल्दबाजी और बिना सोचे बोलने के कारण उसका शिकार निकल गया। दूसरी ओर चतुरक सुरक्षित जगह पहुंच चुका था। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। चतुरक ने मुस्कुराते हुए कहा,
2: संकट में घबराना नहीं, हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए।
4: बिल्कुल, संकट में घबराना नहीं, बुद्धि से ही काम लेना चाहिए और खुले हृदय से परमात्मा को याद करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अबू मलिक की मीठी आवाज में आगे का गीत आपके लिए उड़ान में।

खुले हृदय से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सभी उड़ान के साथ जुड़े हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहना चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। और आज है खास दिन, जी हाँ, सितंबर का आखिरी दिन। पितर पक्ष शुरू हो चुका है और अगले महीने त्योहारों की बरसात शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पितृपक्ष खत्म होते ही नवदुर्गा का भी आह्वान शुरू हो जाएगा। तो आज का दिन आपका अच्छा बीते, रात अच्छी बीते, कल सुबह आप बिल्कुल खुशी मन से ज़रूर जगें और रेडियो मधुबन ज़रूर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी को एक मंच एक स्टेज देते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को लेकर आबू रोड तहसील से दूरस्थ जगह पिंडवाड़ा का भी लास्ट, इसके बाद उदयपुर शुरू होता है और स्कूल का नाम है विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेली पिंडवाड़ा। आज इस विद्यालय में पहुंचे बच्चों को जो आवश्यकता था एक मंच, आज उन मंच का माध्यम से उनका हुनर उनका प्रतिभा बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं भाव और भावना को लेकर करियर को लेकर आज आपका पास पहुंच रहे हैं। हर रोज आपको कम्युनिटी से सामुदायिक से बच्चों का आवाज बड़ों का आवाज मनरेगा का आवाज आंगनबाड़ी में प्रशासन गांव के संग स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन सभी बात को लेकर हम पहुंचते। तो आज विद्यार्थी विकास में ईश्वर विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय बरेली का आवाज सुनने को मिलेगा। हमारा लिसनर ध्यान से सुने और हमारा बच्चों को मार्क भी दे सकते हैं जो कौन बच्चे अच्छा गीत प्रस्तुत किए और कोई इस स्कूल को विजिट करना चाहे भामाशाह का हिसाब से आकर देखे बच्चों को और उनका हुनर को आगे बढ़ाइए। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत छात्रा उपस्थित है, तो अपना आवाज सुनाएंगे क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद वो भी समझदार बन गए और समझदार बन के सभी एक ही साथ इतना बच्चे पार्टिसिपेंट करेंगे बहुत खुशी लग रहा है और इसका श्रेय तो संस्था को जाता है, संस्था का संस्था प्रधान और हमारा जो साक्षी दृष्टा रूप में हमारा सर उपस्थित है, सर देख रहे थे कार्यक्रम को। सर आपका परिचय दीजिए, बच्चों का एक वार्म अप हो जाएगा, बच्चे भी आपका आवाज को सुन के।
1: मैं इंदुराम देवासी वाइस प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरली।
0: सर आज अचानक कोई सूचना नहीं था फिर भी अचानक आए, अचानक में एवर रेडी रखकर हमें सहयोग दिए, तो ये आपका शब्द मेरा पास नहीं है लेकिन बहुत अच्छे इतना दुरुस्त जगह से आए तो इतना बच्चे एक ही साथ हाँ जी का पाठ किए, इसका श्रेय किसको जाएगा सर?
1: आप लोगों ने जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया और ईश्वरीय ज्ञान के बारे में व्यावहारिक जीवन के बारे में जो बच्चों को जानकारी प्रदान की, इससे निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित हुए हैं और उनका जो आत्मविश्वास है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़ेगा।
0: सर आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में पहले आपको मालूम था ये एक संस्था है जैसे आपका राजकीय विद्यालय सबको पता है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम कभी सुना है? ओम शांति को जानते हैं,
1: ब्रह्मा कुमारी के बारे में पहले से परिचित थे और हमारी विभाग की कहीं बैठके वगैरह भी वहाँ हो रखी है तो देखने का मौका मिला है जरूर जी।
0: तो आपको कितना आध्यात्मिक विद्यालय देखे और ये तो राजकीय विद्यालय, तो दोनों विद्यालय का सहयोग जो मिलेगा तो बच्चे आगे शारीरिक शिक्षा का साथ चरित्र निर्माण भी हो पाएगा और इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोशिश है रेडियो मधुबन का द्वारा आपके पास हम पहुंचे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल और ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज को भी रोक नहीं पाएंगे, एक प्रार्थना सत्र में सभी बच्चों का आवाज सुनेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सब सुन पा रहे खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेली का आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर को धन्यवाद देते हैं और ब्रेक का पहला में वार्म अप करा दिए। तत्पश्चात चलिए बच्चों को थोड़ा आवाज सुनेंगे। अपना नाम और कौन सा स्कूल से?
2: श्रीमान, मेरा नाम जीना कुमारी है। मैं कक्षा 12th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरली पिनवाड़ा।
3: श्रीमान, मेरा नाम पिंटी कुमारी है। मैं 12th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरली है।
1: आप कहाँ से आते? फली का नाम बताओ, गांव का नाम।
3: मैं बरली हॉस्टल में पढ़ती
1: हूँ। हॉस्टल, हाँ, तब तो इतना आवाज हो। तो हमारा श्रोता मित्र, हमारा जो आदिवासी समाज के जो बच्चे सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे, जरूर हॉस्टल में पढ़ाने से बच्चों का उमंग उत्साह आता है। तो हॉस्टल में बहुत कुछ शिक्षा होता है। नेक्स्ट।
4: श्रीमान, मेरा नाम पेपी कुमारी।
1: कौन सा क्लास?
4: 12th
1: क्लास, ओके।
5: श्रीमान, मेरा नाम रवीना कुमारी, क्लास 12, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरली पिनवाड़ा।
1: हॉस्टल में रहते आप भी?
5: हॉस्टल।
1: आपका प्रॉपर गाँव? हमारा गाँव का नाम
5: सिवेरा।
1: सिवेरा, वाह। नेक्स्ट।
6: श्रीमान, मेरा नाम आमदी कुमारी है।
1: और कहाँ से?
6: जूनावेड़ा से।
1: जूनावेड़ा, वाह। हॉस्टल में रहते तुम भी?
6: हाँ।
1: हॉस्टल में रहने से संगठन का जो बल है, जो देखने मिलता है, एकता है, होता है। चलिए उसका साथ ही हमारा सभी बच्चे नाम का साथ साथ देंगे। एक गीत प्रस्तुत हो गया, ठीक है।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति, स्वर और लय का साथ सब कुछ स्तब्ध कर दिया और आध्यात्मिकता जो शांति खुशी आनंद स्वर लय और साथ इतना बच्चे सामूहिक रूप में जब प्रस्तुत किए, ये तो एक दिन का प्रयास नहीं होगा, बहुत समय का प्रयास। और खासकर मुझे लग रहा सभी उनका ड्रेस कोड से पता चलता है यूनिट एकता, समूह में जो एकता सही में बच्चों का अंदर में, एक ने बोला सब ने हाँ जी और हमने बोला भाई आश्चर्य हो गया बच्चे, तो मैं बोलने के पहले सर हम कितना समय तक बोले हम तो कर सकते हैं क्योंकि हमें अभ्यास है और हमें करते हैं, तो बहुत खुशी का बात है। और इसका श्रेय तो माता पिता को जाता है और हम इतना दूरस्थ जगह से आए आबू रोड से आपके लिए आपका भजन के लिए, तो आपका आवाज ही आपका पहचान, आपका विद्यालय का पहचान और आपका व्यक्तित्व का पहचान मिला है। और हमारा श्रोता मित्र जरूर, मैंने पहले भी बोला था ईश्वर विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों को जाते, कोई बच्चे उल्हाना ना दे, ब्लेम नहीं करे जे हमारा पास रेडियो मधुबन आया नहीं और हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचा नहीं, बच्चे कभी उल्हाना नहीं देंगे जे आपका विद्यालय में भी रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर आपका विद्यार्थी विकास में आपका हुनर को आपका प्रतिभा को आज पहला बार इतना बच्चे एक ही साथ किए, ये इसका श्रेय तो हॉस्टल को जाता है छात्रावास को जाता है और उनका जो प्रभारी है जो इनको गाइड करते हैं उनको जाता है। क्या नाम बताएंगे ये सब प्रेरणा एकत्रित होने में कौन आपको आगे बढ़ाया बा, कौन प्रेरणा का सोच का नाम क्या है कौन बताएंगे? हाँ सर बताएंगे।
1: ये हमारे स्थानीय विद्यालय की बच्चिया है
0: जी,
1: वर्ली की, और इसमें कुछ बच्चिया यहाँ पास में जो टीएडी का हॉस्टल है
0: जी सर,
1: जनजातीय विभाग का, तो वहाँ पे भी रहती है और कुछ यहाँ जैसे दूर दराज से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से भी आती है। हमारे जो वर्ली पीओ के अंदर 10 से 11 स्कूल है।
0: क्या बात,
1: बिल्कुल प्राइमरी स्तर के हैं, एक दो स्कूल अपर प्राइमरी स्तर के भी हैं, तो वहाँ से पास आउट होने के बाद में इस स्कूल में आते हैं। और अभी जो इन्होंने सामूहिक जो प्रस्तुति दी है ये हमारे संस्कृत साहित्य के स्थानीय विद्यालय के अंदर अश्विन जी व्याख्याता है, वो इनको ये सारे श्लोक वगैरह का अभ्यास करवाते रहते हैं और बच्चे बड़ी रुचि के साथ में उसमें भाग लेते हैं और इनका बड़ा अच्छा अभ्यास है, ये और भी गा सकते हैं।
0: अरे वाह, वंस मोर और एक गीत होगा संगीत में, है ना बच्चे रेडी सभी? हाँ जी, ये सर। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आवाज को बुलंद करके दूसरा आवाज सुनेंगे और अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सब सुन पा रहे शाम को इस कार्यक्रम को। और खासकर जहाँ भी जाते हैं सभी बच्चों का आवाज लेते हैं और सबको अच्छा लगता है। तुम अपना नाम बता देखिए।
2: भावेश।
0: कहाँ से आता है भावेश?
3: सबला।
0: सबला फरी। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं, देते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी

0: भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर बच्चों का आवाज अचानक में आए, कोई सूचना नहीं था, प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे एवर रेडी, सदा जागरूक हुए हुए। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक परी आई है, परी को भी स्वागत करेंगे, जिसका नाम प्रीति है। प्रीत सबका साथ रखना चाहिए, तो हमारा प्रीति अपना बात को रखें। मैं कहूँ तो कम होगा, क्योंकि पहला बार मौका मिला। तो प्रीति अपना बारे में थोड़ा बताओ, आपको मान लीजिए आपका पहचान क्या है।
3: मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं गुकाश गांव से हूँ
2: जी,
3: और मैं हॉस्टल में रहती हूँ ठंडी बेरी।
2: यहाँ से कितने किलोमीटर ठंडी बेरी दूर उस जगह है?
4: 12-13
2: किलोमीटर है। कोई बात नहीं, ठंडी बेरी हमको भी जाना है स्कूल में। ठंडी बेरी दोस्त ठंडी बेरी है, एक तो ठंडी बेरी और एक पाली। चलिए बहुत अच्छा नाम तुम्हारा ठंडी बेरी, दो होने के चलते हमें कंफ्यूज हो रहा था कौन सा ठंडी बेरी। तुम सिरोही ठंडी बेरी में जाते जाते पाली वाली ठंडी बेरी में पहुंच गए थे एक बार, क्योंकि हम पहला बार आते, कोई उलाना ना दे, इसलिए सभी स्कूल में ठंडी बेरी में भी प्रोग्राम किए। तो चलिए हमारे ठंडी बेरी से हमारा एक छात्रा उपस्थित है जिसका नाम प्रीति है, तो कौन सा प्रस्तुति सुनाएगी, एक प्रेरणादायी गीत हो चाहे जो भी उनका मन में भाव का साथ प्रकाशित करेंगे। तो सुनिए हमारा श्रोता मित्र, ध्यान से सुनाइए।
3: श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, दोनों का

0: कृष्ण कहो दोनों का मतलब एक ही है।
1: सुंदर प्रस्तुति और सही में भक्ति भावना में ओतप्रेत होकर दिल का तार हृदय का तार भगवान तक पहुंचता है, परमात्मा तक पहुंचता है और इस तरह बच्चे कार्यक्रम के भाग लेते हैं बढ़ चढ़कर और हमें खुशी है। इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब देते हैं प्रस्तुतियां उनको मौका मिलना चाहिए। आज प्रीति को मौका मिला, प्रीति का चलते हम सब भगवान परमात्मा का साथ प्रीत निभाए, प्रीत निभा दिए सभी ने तो बहुत अच्छा। सबका दिल का तार परमात्मा तक पहुंचा, राम का साथ, राम कहे चाहे खुदा कहे चाहे अल्लाह कहे चाहे भगवान कहे, वो तो एक ही है, सबका मालिक है। और प्रीति हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप का आस है जो हमारा प्रीति जाकर हॉस्टल में रहे, तो क्या लक्ष्य रखे जीवन का एम, लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण दिखाई देगा, जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे। तो क्या सोचा माँ बाप का आस को पूर्ण करने के लिए, क्या चाहते हैं आप बड़े होकर, क्या बनना चाहते हैं?
0: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: क्या बात है,
0: ये मेरा मकसद है।
1: वाह, और जो सोचे मन में उसको ठान लिया, बुद्धि बोल गया यस यू कैन, आप कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर तो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन उसको कोई भी रास्ता में विघ्न आए, समस्या आए, कोई तकलीफ आए, उसको पार करना है, बुद्धि का काम है। चलिए बहुत अच्छा बात बताए, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। और जो भी भामाशाह सुन रहे, कोई भी मदद होगा, कुछ मदद चाहिए भामाशाह से, माता पिता से, शिक्षक से, क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना।
0: हाँ।
1: प्रीति मेहनत करते हैं?
0: हाँ।
1: कितने घंटा मेहनत करते हैं प्रीति? स्कूल में तो 5 घंटा पढ़ाई होता है, इसका 7 क्या करते हैं हॉस्टल में? अच्छे से पढ़ाई करते हैं।
0: हाँ।
1: जरूर कमाई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: एक का बाद एक आवाज को रोक नहीं पाए, और मैंने पहले भी बोला था जब सर वार्म अप करा दिए, पहले स्टार्टिंग कर दिए, सभी बच्चे भी बड़े को देखकर सीख जाते हैं, घर में भी सीख जाते हैं, लेकिन आज इतना दूरस्थ जगह में आए, आदिवासी बेल्ट में आए, प्रकृति का गोद में बसा हुआ गांव है, और हॉस्टल यहाँ जनजाति छात्रावास जिसमें बच्चियां रहते हैं, हमारा होनहार बच्चे परिया, तो एक लोकगीत हो और ये नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, एक आदिवासी लोकगीत जो कहते फेमस लीला मौर्य। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का। हमारा जो मुखिया है कौन, क्या नाम है?
2: सोनिया।
1: हाँ, सोनिया सुगना और सुरेश, ये तो भरमार है, और स्कूल में और गांव में सोनिया सुगना नाम रोशन करते हैं, और उसको धन्यवाद, उनका माँ बाप को भी धन्यवाद जो नाम किए। तो शुरू करिए, शुरू, सब बच्चे रेडी? यस सर।

0: बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति। हम आने का सफल हो गया, आने का सार्थक हो गया। इतना दूरस्थ जगह में और हमको आदिवासी गीत मिल गया, और एक नहीं दो नहीं पूरा अनगिनत सभी बच्चे को दिए। और हॉस्टल का बच्चे तो छात्रावास इसलिए बच्चे आते हैं, और उनका अनुशासन, बोलने का तरीका और संगठन का बल, एकता देखने को मिला। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। और किसी स्कूल का हो, चाहे मनरेगा माताओं का जो गीत है, आदिवासी गीत आपके पास रखते हैं, और प्रशासन गांव के संघ के कार्यक्रम को भी आपके पास रखते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, सभी को धन्यवाद देते हैं। और हमारा सर को कौन भूल पाएंगे, स्टार्टिंग में वार्म अप कर दिया और लास्ट में भी क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम शुरू किए और अंतिम में सर क्या कहना चाहेंगे, आप देखें बच्चों को, हमको देखें और हमारा कार्यक्रम को देखें, विष्णु पिता महोदय से, क्योंकि कर्णधार है, संस्था का वाइस प्रिंसिपल है। तो सर आप एक शब्द में क्या वार्ता, क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों का, माता पिता को हो, चाहे रेडियो मधुबन को हो, चाहे खुद को हो।
1: बिल्कुल, आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा है और बच्चों को मंच मिला है, क्योंकि ये एक ग्रामीण अंचल है और यहाँ दूर दराज में

0: इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं। तो बच्चों में यद्यपि शुरुआत में थोड़ी एजिटेशन थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको मोटिवेट किया तो ये सहज रूप से जुड़ते गए और इन्होंने अपने मन के भाव वो भले श्लोक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और इनका जो आदिवासी क्षेत्र में जो इनकी संस्कृति से संबंधित लोकगीत है उनकी प्रस्तुति के द्वारा इन्होंने कार्यक्रम के अंदर सहभागिता की है। मैं ब्रह्मा कुमारी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आत्मा, परमात्मा और विभिन्न जो आध्यात्मिक विषय हैं जिनके बारे में बच्चों को बहुत गहनता से बातें बताई। निश्चित रूप से बच्चे एकाग्रता के साथ में अपने अध्ययन को कर पाएंगे। जिस तरह से उनको मेडिटेशन के बारे में बताया, आज के समय में बहुत जरूरी है, जबकि सोशल मीडिया और फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह के इस्तेमाल करने से बच्चों की कहीं ना कहीं एकाग्रता भंग होती है और समय का जो सदुपयोग नहीं कर पाते। तो आज वास्तव में व्यवहारिक पहलू पर इनको बहुत बढ़िया से मोटिवेशन मिला है, इनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। तो ये जैसा कि प्रति ने बताया कि मैं भविष्य में बड़ी होकर
1: कॉन्फिडेंस
0: डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बिल्कुल उसका जो कॉन्फिडेंस है और इसमें जो ये बात बताइए, तो निश्चित रूप से वो उसके अनुरूप मेहनत करे तो बन भी सकती है। तो पुनः मैं ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे एक बिल्कुल पिछड़े और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र के अंदर बच्चों के बीच में आए और उनकी आवाज को बहुत दूर दूर तक फैलाने में, पहुंचाने में जो योगदान है उसके मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: सुना श्रोता मित्र लिसनर्स, ऐसे जब जाते हमें क्या चाहिए, एक हमारा कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए सर भी, हम जैसे बच्चों का भाव को, भावना को जन जन तक पहुंचाए सर भी, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और रेडियो मधुबन का गतिविधि को जन जन तक जो पहुंचाने के लिए शुभेच्छा दिए, प्रेरणा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपको, आपका स्कूल को और आपका विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हैं। आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बच्चे से हम थोड़ा बात करेंगे, जो बच्चे इससे प्रेरणा लेकर आज का कार्यक्रम को, चाहे आत्मा प्रबंधन हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो, आत्मज्ञान हो, उसमें कौन बहुत चीज बोलना चाहेंगे, दो शब्द बोलेंगे तो क्या आज सीखा, क्या नहीं था और क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। तो एक बच्चे हमें अपना नाम बताएंगे और क्या आज प्रेरणा मिला, क्या सीख मिला, बताओ तुम्हारा नाम और
2: मेरा नाम पिंटी कुमारी है।
1: आज जो कार्यक्रम हुआ तो आपको क्या सीख मिला?
2: हमें आज सीख मिला कि हम कौन है, ऐसे हमारे बारे में सीख मिला।
1: हाँ, हम कौन है और हमारे बारे में, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना, मैं कौन और मेरा
2: कौन,
1: मेरा तो एक ही है, गिरिधर गोपाल मेरा तो परमात्मा, मेरा तो बाप है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए लेते हैं आप सबसे इजाजत, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: नमस्कार और आदाब। और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें। दोस्तों, आज मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि आज मैं आप सभी के बीच में नहीं आ पाऊंगा। तो आज आप सिर्फ खुशी के नगमे सुनेंगे और हम दिल की बातें करेंगे फिर से सोमवार के दिन। सुनते रहिए प्यारे प्यारे नगमे दिल से। शुक्रिया।
1: नजरों से कह दो जी,

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार और आदाब। और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें। दोस्तों, आज मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि आज मैं आप सभी के बीच में नहीं आ पाऊंगा। तो आज आप सिर्फ खुशी के नगमे सुनेंगे और हम दिल की बातें करेंगे फिर से सोमवार के दिन। सुनते रहिए प्यारे प्यारे नगमे दिल से। शुक्रिया।
1: ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की हमारी बातचीत में हम हर एक एपिसोड में धीरे धीरे इस बात को समझते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य को हासिल करने की कुंजी कहीं दूर नहीं है, यह कोई कठिन तपस्या से हासिल करने वाली प्राप्ति नहीं है, अपितु कुछ आसान तरीके हैं अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के। अगर व्यक्ति इन सहज साधनों का उपयोग करेगा तो जीवन में रोग मुक्त रह सकता है, जीवन में स्वस्थ रह सकता है। यह तोहफा हम सभी अपने आप को दे सकते हैं। आज इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ परिवार बनाएं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान स्वस्थ रहकर दें। आइए आज इस चर्चा में स्वास्थ्य जगत के एक ऐसे एक्सपर्ट से ही इस विषय पर जानकारी हासिल करते हैं कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे अकेले के करने से क्या होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो इन चीजों की परहेज ले ली है, मैं ये चीज करता नहीं हूं या ये चीज खाता नहीं हूं या इस समय पर खाता हूं या मैं अच्छी चीजें ही खाता हूं जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है वो चीजें खाता हूं, मगर मेरे ही घर में सदस्य ऐसे हैं जो बेटाइम खा रहे हैं या अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं, तो मेरे बदलने से क्या होगा, मेरे एक के बदलने से क्या एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, ऐसे प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: मैं सबको ये बात बोलता हूं कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। हम ये ना सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और मेरे ठीक रहने से क्या होगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो हम कम से कम जो कूड़ा उठा रहा है व्यक्ति, उसको एक आदमी का तो कूड़ा कम उठाना पड़ेगा। यदि हम ट्रैवल करते समय अपना जो प्लास्टिक है, पानी है, कचरे का जो प्लास्टिक की बॉटल है, फल के छिलके हैं, खाने के पैकेट हैं, उसको इधर उधर ना फेंकें, तो हम बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए मदद लेंगे। अब इसी चीज को हम स्वास्थ्य के परिवेश में देखना शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में हमेशा ये कहा जाता है कि एक लड़के को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है एक लड़की को पढ़ाना, और उसका सीधे ये रीजन दिया जाता है कि वो लड़की जब शादी होकर जिस घर में जाएगी तो जो उसके संस्कार है, जो उसकी तैयारी है, वो पूरे के पूरे उस परिवार को मिलेंगे। यही सेम चीज मैं हेल्थ के लिए बोलता हूं। एक सिंगल आदमी अगर शुरू करे, आप अगर किसी भी पार्क में जाइए और वहां पे आप कस के हंसिए, आप देखिएगा दो चार लोग इसको देख के ही हंस देंगे, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि वो सिंगल आदमी के हाहा हाहा करने से सडनली महीने भर में या इवन हफ्ते भर में वहां 15-20 आदमी हंस रहे हैं, और इसी को कह दिया जाता है कि ये 15 लोग लाफ्टर योगा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक आदमी ने शुरू किया। आप पार्क में जाइए, एक आदमी दौड़ना शुरू करता है, एक आदमी बैक वॉकिंग करना शुरू करता है, एक आदमी हल्का फुल्का योगा करना शुरू करता है, उसका देखा देखी लोग शुरू कर देते हैं। भैया आप करने लगेंगे या कोई एक व्यक्ति करने लगेगा, उसको अगर उससे लाभ मिलेगा तो वो अपने घर में सबको बोलेगा, अरे भाई एक्सरसाइज किया जाए, उससे फायदा हो रहा है। या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने ऑफिस के डब्बे में थोड़ा अंकुरित थोड़े फल लेकर जाएगा, लोग पूछेंगे अरे यार ये क्या ले आए हो, इससे पेट थोड़ी ना भरेगा, पर वो बोले कि नहीं नहीं मैं पिछले 7-8 दिन से खा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, और खाना खाने के बाद जो थोड़ी सी नींद आती है ऑफिस काम करने में मुझे ठीक नहीं लगता है, अब इन फलों या इन हल्के अंकुरित चीजों को खाकर या हल्का भोजन करके मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस अच्छी चीज के बारे में जरूर बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल दूंगा, एक अभी नया फोन आया है, बड़ा महंगा फोन है, और मजाक मजाक में लोग बोलते हैं कि किडनी बेचनी पड़ती है उस फोन खरीदने के लिए। मैंने ये देखा है कि मेरे भी कुछ मित्रों के पास वो फोन आ गया है और वो दिन भर जब मिलिए तब उसकी तारीफ करते हैं, अरे ये फोन कितना अच्छा, अरे ये देखो कितनी अच्छी फोटो खींच रहा है, अरे ये कितना जल्दी चार्ज हो जाता है, अरे ये कितना बढ़िया है। वही सेम चीज आपके स्वास्थ्य के साथ है, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने लगेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मैं अपनी महिला बहनों को बोलता हूं, आप थोड़ा सा वजन कम कर लीजिए, आपका पूरा फ्रेंड सर्कल स्वस्थ हो जाएगा, वो सब परेशान हो जाएंगे, अरे इसका वजन कैसे कम हो गया, ये तो बड़ी मोटी थी, अरे ये कितनी सुंदर लग रही है, इसने वजन कम कर लिया, अरे इसके चेहरे पे क्या ग्लो आ रहा, अरे तुम क्या कर रही हो कि तुम इतनी सुंदर लगने लग रही हो। और सिर्फ वो महिला इतना ही बोलेगी कि मैंने भारी भोजन करना कम कर दिया है, मैंने पूड़ी कचौड़ी समोसे इमरतियां जलेबियां गुलाब जामुन लड्डू ये सब खाना इधर छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है, हम लोग ऋतु के अनुसार सब्जी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सिंपल रोटी खा रहे हैं, कभी कभी ज्वार बाजरा खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, रोज थोड़ा वॉक कर रहे हैं और हम इसीलिए इतना वजन कम कर लिए। आप देखिएगा उस पूरी मित्र मंडली में से 50 to 70 लेडीज या जेंट्स मोटिवेट हो गए वजन कम करने लगेंगे। श्री भैया रेडियो पे बात करते हैं, इनकी कोई एक अच्छी बात अगर किसी के दिमाग में जरा सा भी घर कर जाती है, वो मुझे मालूम है कि अगले सहज स्वास्थ्य प्रोग्राम में पूछ लेता है कि श्री भैया जो पिछली बार आप बोले थे वो जरा एक बार फिर से बोल दीजिए, श्री भैया फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर व्यक्ति थोड़ा सा एफर्ट करे और अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव ले आए, वो पूरे समाज में बदलाव ले आता है। मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा जहां पे डॉक्टर्स आए थे मेरे साथ माउंट आबू में। डॉक्टर्स बहुत बदनाम है कि वो देर तक जगते हैं और देर तक सोते हैं, मगर पहले दिन जो हॉल था जिसमें लोग सुबेरे मेडिटेशन करने आए थे वो 80% भरा हुआ था, सेकेंड डे इट वॉज 95% फुल, पूरे लोग एक ही दिन में, सोचिए एक दिन में, जो सुबेरे नहीं उठ सकते थे जो 7-8 बजे उठते वो सुबह वो 4 बजे उठ गए। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमने सोचा कि 3-4 दिन के लिए है या 3 दिन के लिए है, इसमें तो सुबेरे उठ के देखा जाए क्या फायदा होता है। तो हमारे वातावरण ने हमें मोटिवेट किया एक अच्छा काम करने की, यही चीज स्वास्थ्य के साथ है और आप उस वातावरण का पार्ट हैं। आप स्वस्थ होइए, आप स्वस्थ काम करिए, आप योग करिए, आप मेडिटेशन करिए, देखिए सब लोग अगल बगल वही करने लगते हैं और आप जिस चीज के लिए जो चीज करके खुश होते हैं उसके बारे में आप बहुत बात करते हैं। जैसे मैंने फोन का एग्जाम्पल दिया, आप अगर फल खा रहे हैं सब्जी खा रहे हो सबको बताते हैं, देखो यार मैं तो फल सब्जी खा रहा हूँ फल सब्जी खा रहा हूँ, अरे तुम्हारा वेट कम हो क्या, अरे मैं तो फल सब्जी खा रहा हूँ फल सब्जी खा रहा हूँ, अरे तुम थोड़े अच्छे लग रहे, अरे मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रोज योगा कर रहा हूँ, रोज प्राणायाम कर रहा हूँ, तो आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत बात करते हैं और स्पेशली वो पॉजिटिव अचीवमेंट हो तो प्लीज एक आदमी से भी बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: बिल्कुल, आप ये जब बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपनी अच्छी चीजों का बखान करते हैं, हमने कुछ अगर हासिल किया है तो वो चीज हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और स्वास्थ्य एक अच्छी चीज ही तो है। जब व्यक्ति के स्वास्थ्य में तरक्की होती है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो सामने नजर आता है लोगों को, और वो नजर आते आते जब आप लोगों को शेयर करते हैं तो फिर हम एक दूसरे को स्वस्थ बनाने के लिए, उन कदमों को साथ में उठाने के लिए मददगार बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। आपने अभी अभी बात कही कि जब हम सहज स्वास्थ्य में कोई बातचीत करते हैं और हमारे श्रोता मित्र किसी चीज को सुन लेते हैं, अगर उनको बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो दोबारा पूछते हैं कि भाई मैंने अभी अभी रेडियो पे एक कार्यक्रम सुना था, इसमें ये चीज कही गई, आप उसके बारे में बताइए, उस एपिसोड का हमें थोड़ा डिटेल्स दीजिए, ये एपिसोड पुनः कब प्रसारण होगा, ये इत्यादि चीजें हमारे दोस्त हमें मैसेज करके रेडियो स्टेशन पर पूछते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न आज हमारे पास आए हैं डॉक्टर साहब, जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे एक श्रोता मित्र ने प्रश्न भेजे हैं कि चाय और कॉफी के बारे में जब हम पिछले दिनों विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे, तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अगर व्यक्ति चाय या कॉफी पीता ही नहीं है, या फिर किसी भी कैफीनेटेड बेवरेज, यानी एक ऐसा पेय पदार्थ जिसमें कैफीन की मात्रा ही ना हो, और कैफीन हो ही नहीं, ऐसे चाय कॉफी या कोई कैफीन वाला पेय पदार्थ अगर हम नहीं पीते हैं, तो क्या इसका हमारे शरीर पर, खासकर हमारे मस्तिष्क पर कोई असर होता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
1: जो चीज हमारे शरीर में कभी नहीं गई, तो हमको उस चीज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हमारे शरीर को भी उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। हम चाय कॉफी को जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज की तरह समझें। आपको फ्रेंच लैंग्वेज अगर नहीं आती है, फ्रांसीसी भाषा बोलने नहीं आती, तो इसका मतलब आप फ्रांसीसी भाषा समझ भी नहीं सकते हैं। और अगर कोई फ्रांसीसी भाषा में आपको ज्ञान दिए चले जा रहा है, वो आपके किसी काम का नहीं है। हम ब्रह्म कुमारीज में बहुत सारे प्रोग्राम्स को मल्टी लैंग्वेजेस में लोगों को भेजते हैं, प्रसारित करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके बताते हैं। सिर्फ इसीलिए कि उस व्यक्ति को मालूम चल जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और उसको हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारा शरीर है। जिस शरीर ने कभी चाय, कॉफी या किसी निकोटीन चीज के पदार्थ को अपने अंदर नहीं लिया, उसको कुछ मालूम ही नहीं चलेगा कि उससे क्या इफेक्ट उसके शरीर पे पड़ता है। जैसे एक चीज मैं भी बोल सकता हूं आज कि मैंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है अपने पूरे जीवन में, तो आज तक मुझे उस चीज का टेस्ट मालूम ही नहीं है कि उसका स्वाद क्या है। बहुत सारे जो जान पहचानी मित्रगण उसे खाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ मुझे बताने की कोशिश करते हैं, पर मैं उसके बारे में कुछ समझता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी उसको खाया ही नहीं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो स्वाद कैसा होता है। हाँ, लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तुम नीम का पानी पियोगे तो वैसा लगेगा, या तुम करेले का पानी पियोगे तो वैसा लगेगा, या तुम कुछ ठंडा ठंडा पानी पियोगे और थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगेगा तो वैसा लगेगा। अब ये मैं इसको सुन लेता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, मगर मैंने कभी भी अपनी जिह्वा पे उसको रख कर कोशिश नहीं करी कि मैं पता करूं कि वो क्या चीज है। सो द सेम थिंग इज विथ टी एंड कॉफी एंड द इफेक्ट्स ऑफ टी एंड कॉफी ऑन योर बॉडी। मतलब आपके शरीर पे चाय और कॉफी, क्या जो उसके अंदर कैफीन और निकोटीन, जो कैफीन है, उसका क्या असर होता है, ये आपको कभी मालूम ही नहीं चलेगा। ना आपका दिमाग और आपका ब्रेन कुछ रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो चीज उसको कभी मिली ही नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई पहाड़ नहीं देखा, आप उसको समझाते रहिए ऊंचा होता है, ट्रायंगल होता है, हरा होता है, पेड़ लगे होते हैं, उसमें सड़क गोल गोल होती है। एक और स्टोरी हम लोग बचपन में सोचते थे कि चार अंधों को हाथी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, तो जिसको जो समझ में आया उसने बना दिया, या चार अंधों ने हाथी को पकड़ा तो जिसने पैर पकड़ा उसने सोचा हाथी, अच्छा अच्छा पेड़ के तने जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा अरे हाथी तो ब्रश की तरह होता है, जिसने सूंड पकड़ी, जिसने दांत पकड़े, सबने अलग अलग चीज सोची। तो वही चीज हमारे शरीर के साथ है। जो चीज हमारे शरीर के अंदर गई नहीं है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर में क्या होगा, ये हम बता ही नहीं सकते और हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और अगर आपके शरीर में नहीं गई है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव लक्षण है।
0: ये बात समझ में आती है कि हाँ, जब आपने कुछ कोई ऐसी खराब चीज को जो आपके शरीर के प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उस चीज को अपने शरीर में डाला ही नहीं है, तो आपके शरीर के लिए वो लाभप्रद चीजें ही मिली हैं, तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा। और जब आप इन बुरी चीजों को डालते हैं, तब आपको उसका प्रभाव और उसका असर देखने को मिलता है। अब हम ये भी देखते हैं कि एक सांस्कृतिक परिवेश के रूप में भी भारत में खास तौर पर हम चाय के आदी हैं। हम देखते हैं घरों में अगर कोई मेहमान आए, हम उन्हें चाय या कॉफी ऑफर न करें, खास तौर पर चाय ही अगर ऑफर नहीं करें, तो ऐसा देखा जाता है, अरे उन्होंने चाय के लिए भी नहीं पूछा, ये बात कही जाती है। और चाय और कॉफी पीने का ये रिवाज प्रचलन दुनिया के कई देशों में देखने को मिलता है। अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉफी का बड़ा प्रचलन है, इंग्लैंड में चाय का बड़ा प्रचलन है, भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में लोग अलग अलग प्रकार के चाय पीते हैं। अब चाय एक या कॉफी हर दिन सेवन करने वाला एक पदार्थ के रूप में बन गया है, और जो लोग चाय या कॉफी पी रहे हैं, उनकी दिन की शुरुआत या दिन में कई बार अगर वो चाय या कॉफी नहीं पिए तो उनका दिन पूर्ण ही नहीं होता। तो ऐसे में हमारे एक श्रोता मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर हम बहुत ज्यादा चाय या कॉफी या किसी कैफीन वाले पेय को एक लंबे समय के लिए पीते हैं, तो फिर उसका क्या असर होता है, ये चीज पूछते हैं।
1: कोई भी चीज अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो उससे वो चीज हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। छोटे चीजों से शुरू करूंगा। बच्चे को कहीं भी आप सुला सकते हैं। एक एडल्ट व्यक्ति, एक खासकर जिन्होंने 40 की उम्र को क्रॉस कर लिया है, वो एक बात बड़ी नॉर्मल बोलते हैं कि मुझे तो अपने बिस्तर पे ही नींद आती है। उसका रीजन ये नहीं है कि उस बिस्तर पे कुछ फूल लगे हैं या उस बिस्तर कुछ, वो आदत पड़ गई है उस एक जगह में ही सोने की। दूसरा इसका एग्जाम्पल देता हूं भैया, अपने आबू में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पूरे अपने माउंट में जगह जगह बैठ के मेडिटेशन करते हैं। क्यों? और आप जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं एक ही ये स्थान है जहां बैठ के मैं मेडिटेट करता हूं, मैं बाबा की बातों को स्मरण करता हूं, बाबा की जो टीचिंग्स हैं उनको लेता हूं और मैं अपने आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूं। और पता नहीं क्यों एक सिंगल जगह, यही एक जगह है जहां मेरा सबसे अच्छा मेडिटेशन होता है। तो वो स्थान उन्होंने सिद्ध कर लिया है अपने लिए। माउंट आबू पूरा का पूरा बाबा ने सिद्ध कर दिया, और उस सिद्ध स्पेस में से भी कोई एक पर्टिकुलर स्पेस उनके साधक ने सिद्ध कर ली। और एक एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं कि मैं इस मंदिर में जाता हूं मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं इस जगह जाता हूं मुझे बड़ी शांति मिलती है। मंदिर सबके लिए शांत है, मंदिर सबके लिए अच्छा है, मंदिर का हर कोना अच्छा है, मगर लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कोने में बैठकर मुझको ज्यादा अच्छा या ज्यादा शांति मिलती है। यही चीज चाय कॉफी के साथ है। उसकी आपको इतनी आदत हो गई है कि वो आपको अच्छी लगती है। इसके साथ साथ आप उसको अपने नित्य दिनचर्या का एक भाग बना लिए हैं, और वो नित्य दिनचर्या आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं हो पाती है तो आपको परेशानी महसूस होती। मैंने बहुत सारे साधकों से सुना है, आज का मेरा मेडिटेशन छूट गया, अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत सारे योगा करने वाले व्यक्तियों से पूछा है, स्पेशली जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और प्लेन में भी वो कुछ ना कुछ हिलते डुलते हैं, तो अगल बगल वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो भाई, तो बोलते नहीं, ये मेरा योगा करने का टाइम है, मेरा शरीर इस समय शांत नहीं बैठ पाता, मुझे कुछ हिल डुल लेने दीजिए। मैंने भैया स्टेशनों पे और इवन एयरपोर्ट्स पे लोगों को एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हुए देखा है कि वो उस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, माला फेरते हुए। भैया आपको कितने सारे लोग ट्रेन में मिल जाएंगे, प्लेन में मिल जाएंगे, एयरपोर्ट पे, स्टेशन में, बसों में मिल जाएंगे, एक उनकी आदत दिनचर्या हो गई है और वो जब तक उसको पूरा नहीं कर पाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यही चीज चाय और कॉफी के साथ है। आपके वो शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया है। चाय के अंदर का कैफीन, जो कॉफी के अंदर का कैफीन है, वो जब तक आपके शरीर में नहीं जाता है आप अच्छा नहीं फील करते। और इसीलिए क्योंकि वो जब जाता है आपके शरीर में, अच्छा हमारे शरीर में एक हार्मोन है उसका नाम है डोपामीन, जब ब्रेन में निकलता है तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है। और डोपामीन किसी भी चीज से निकल सकता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपको बारिश से अच्छा लगता हो तो डोपामीन उसमें निकल जाएगा, आपको फूल देख के अच्छा लगता है उसमें। बहुत सारे लोगों को एड्रेनालिन रश के साथ डोपामीन निकलता है, या तेज गाड़ी चलाने से, ऊपर कूदने से, स्विमिंग में छलांग, क्लिफ से छलांग लगाने में, स्काई डाइविंग करने से, ये सारी चीजें, क्रिकेट, एक फुटबॉल का गेम देखने से, जब कोई आपका खिलाड़ी आप मन माफिक जो आप चाह रहे हैं वैसा प्रदर्शन हो रहा, तो आप खुशी से झूमने लगते हैं। तो ये जो खुशी है ये डोपामीन से आती है, और हमारा चाय और कॉफी इस डोपामीन को बढ़ाने का काम करता है। वो हमारे जैसे ही निकलता है हमारे दिमाग से तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, और खुश के साथ साथ हम लोग टेम्परेरी रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो लोग लंबे समय तक चाय या कॉफी पी रहे हैं, वो लोगों को इस डोपामीन पीते ही वो खुशी निकलती है, जो उनके ब्रेन में डोपामीन निकलती है, और उस ब्रेन के डोपामीन जो है उससे उनको खुशी और जो है सेटिस्फैक्शन और टेम्परेरी रिलैक्सेशन होता है। तो इसीलिए चाय और कॉफी उस चीज के लिए, उस चीज को प्रदान करने के लिए उनके भोजन का अभिन्न अंग बन गई।
0: यानी ये बात समझ में आ रही है कि किसी चीज की आदत पड़ जाने से हमारे मस्तिष्क में वो चीज चली गई है, रच बस गई है कि अगर ये चीज पीने से या ये चीज करने से मुझे खुशी मिलती है या सुकून मिलता है, तसल्ली या रिलैक्सेशन मिलती है। प्रश्न ये भी है कि क्या फिजियोलॉजिकली शरीर में भौतिक रूप से कोई परिवर्तन ये चीजें करती हैं, या ये एक मानसिक चीज है?
1: करती हैं भैया। और कहा जाए कि चाय और कॉफी के साथ एक शब्द जोड़ा गया है, वो है एडिक्शन। आपको, आप उसके प्रति जो है वो आपके शरीर का नहीं, आपके मन का भी आकर्षण है। और जब वो आपको नहीं मिलती है तो आप बेचैन होने लगते हैं। पहला जो हमने बोला था, दिमाग को ठंडा करता है और खुशी देता है, रिलैक्स करता है। दूसरा, कुछ भी गर्म पीते हैं तो गर्म जहां भी शरीर में पड़ता है वहां हम लोगों को जो टेस्ट, जो भी चीज पे गर्म डालिएगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो टेस्ट बड्स हमारे बढ़ जाते हैं। भारतीय परिवेश में नॉर्मली चाय और कॉफी को मीठे के साथ जोड़ा जाता है कि हम लोग मीठी चाय, तो मीठा पीते ही अपने आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है। अच्छा, हम लोग टी नहीं पीते हैं, हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हम लोग मसाला चाय पीते हैं, जो विदेशी परिवेश में बोला है मसाला टी। और क्यों उसको मसाला टी बोलते हैं? क्योंकि हम उसमें चाय, दूध, चीनी, अदरक, इलायची, तुलसी पत्ता, केसर, काली मिर्च और जाने दो चार पांच चीजें और उसमें डाल देते हैं। तो जब हम इतना कुछ डालते हैं तो विदेशियों ने उसको मसाला टी का शब्द दे दिया। सो हम उस चाय को जब पीते हैं तो गर्म में ये सारी चीजें उसमें चली जाती हैं, तो इन सारी चीजों का अपना अपना इफेक्ट। तुलसी पीने से थोड़ा सा नाक खुलती है, काली मिर्च पीने से गला जो है वो ठीक होता है, अदरक इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारा, हाँ। तो कुछ भी गर्म है, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे एक पूरा का पूरा प्रोग्राम निकाल दिया जिसका नाम था चाय पे चर्चा।
0: बिल्कुल।
1: और सोचिए चाय हमारे भारतीयों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक चाय वाला बोलते हैं। सो चाय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दिमाग को ठंडा करती है, गले को आराम देती है उसके साथ, और वो एक मेंटली रिलैक्स करती है। सेकेंडली इसके अंदर जो कैफीन है वो हमारी जैसे ही रक्त संचार को बढ़ा देता है, तो जैसे ही रक्त संचार को बढ़ा देता है तो लोगों का पेट साफ होने के लिए जो आते हैं हमारी थोड़ा तेज चलने लगती है। तो सवेरे जब वो सो रही होती हैं, अभी उठी रहती हैं, आप हिल डुली रहते हैं, आपने चाय डाल दी तो उस चाय का निकोटीन उनको दौड़ाने लगता है, वो आते दौड़ने लगती है और आपका पेट साफ हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकली ये आपका पेट साफ कर देती हैं, आपको जगा देती हैं, डोपामीन आपके दिमाग में बहुत सारा रिलीज कर देती हैं। तो जो आप धीरे धीरे जग रहे थे आप एकाएक झटके से जग जाते। इसको एक लाइन और बोली जाती है भैया कि आपने एक कैफीन विप मारा है, मतलब आपने कैफीन का एक चाबुक मारा है अपने ऊपर उठने के लिए, तो ये उसको इफेक्ट करता है।
0: ये जो बात आपने अभी अभी कही वो समझ में आ रहा है कि ये

0: कैफीन का चाबुक हम मार रहे हैं जिसकी वजह से ये असर हो रहा है। बातें तो बहुत ही सुंदर समझ में आ रही हैं, मगर वक्त कहता है कि यहाँ रुकना होगा। आज आपने चाय कॉफी के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं, लंबे समय पर इसका इस्तेमाल करते रहने से क्या होता है, ये सारी चीजें समझाई। आशा करता हूं कि हमारे श्रोता मित्रों को ये बात समझ में आई है। अगर आप चाय कॉफी नहीं पीते हैं तो कृपया कोशिश नहीं करें। अगर आप पी रहे हैं तो आप समझें कि आपके शरीर पर यह क्या प्रभाव डालती हैं। सुबह सुबह उठकर अपने आप पर चाबुक चलाना कोई अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे इससे बाहर आने की कोशिश करें, और उसे कैसे किया जाता है इस पर हमने ऑलरेडी बातचीत की हुई है। आज की सेहत स्वास्थ्य में इतना ही। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, सेहत स्वास्थ्य में और बातें आप सुनते रहेंगे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब। तो चलो सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हाँ बच्चों, अब मनी दीदी और परी आ गए हैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए।
2: तो बातें हो रही है परी लोक के बारे में।
3: हाँ, और परी रोज नई नई बातें सुना रही है।
2: हाँ बच्चों, तो आज मनी दीदी कौन सी कहानी परी के बारे में सुनाऊं?
3: हाँ, कोई जादुई छड़ी की कहानी सुनाओ ना परी।
2: तो बच्चों, एक दिन पता है एक परी को एक जादुई छड़ी मिली और उसने सोचा अब तो इस जादुई छड़ी से मैं एक पल में सब कुछ बदल सकती हूँ।
3: अच्छा, वो छड़ी इतनी शक्तिशाली थी?
2: हाँ मनी दीदी, और तभी उसने क्या किया पता है? तभी जंगल में एक तेज आंधी आई, कई पेड़ गिर गए, छोटे छोटे जानवर तो डर गए थे।
3: अच्छा, तो वो परी ने ऐसे आंधी ले आई और जानवरों को भी डराया?
2: नहीं मनी दीदी, उसने परी ने जादुई छड़ी से नहीं डराया था, ये तो आंधी आई थी। तो परी ने क्या किया पता है?
3: अच्छा, क्या किया फिर?
2: अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर पेड़ फिर से खड़े कर दिए।
3: अरे वाह, फिर से खड़े हो गए पेड़, बहुत बढ़िया।
2: हाँ, और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया।
3: अरे वाह, तो वो अपनी जादुई छड़ी से ही ये सबकी मदद करने का काम किया होगा उसने।
2: बिल्कुल मनी दीदी, और फिर जंगल जो है वो फिर से साफ हो गया।
3: अच्छा, अरे वाह। तो बच्चों, इस कहानी से तो यही सीख मिलती है कि सबसे बड़ा जादुई जादुई छड़ी में नहीं है बल्कि प्रेम और साहस और मिलकर काम करने में है।
2: हाँ बच्चों, तो ये कहानी भी हमें समझाती है कि एकता में ही ताकत है।
3: सही कहा परी। तो चलो बच्चों, अभी कहीं जाना नहीं, अभी तो परी की और भी कहानी सुननी है, फिर बुक भी पढ़नी है तेनाली रामा की। तो चलिए बने रहिएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर,
2: सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों चलो बैठो, रेडियो के पास परी आ गई है नई कहानी लेकर के। और आज बच्चों आपको एक भेड़िये की कहानी सुनाएंगे। एक भेड़िया था और एक बार वो भेड़ों के झुंड से एक मेमने को उठा के ले आया। उसे लेकर वो जंगल की ओर जा रहा था कि मेमने ने उसे कहा, भेड़िया चाचा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खा जाओगे, पर मुझे खाने से पहले क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? भेड़िये ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा कौन सी है? तो मेमने ने कहा, चाचा मुझे पता है आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, मुझे बांसुरी की धुन अच्छी लगती है, इसलिए मुझे मारने से पहले आप मुझे बांसुरी की धुन सुना दो। भेड़िया बैठ गया और उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। सोचो बच्चों, भेड़िया बांसुरी बजाता होगा तो कैसा लगता होगा? थोड़ी देर के बाद जब भेड़िया ने बांसुरी बजाना बंद किया तो मेमने ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह वाह, बहुत सुंदर चाचा, आप तो उस गडरिये से भी अच्छी बांसुरी बजाते हो, इतनी सुरीली बांसुरी तो कोई भी नहीं बजा सकता, चाचा एक बार फिर से बजाओ ना। बच्चों मेमने की बातें सुनकर भेड़िया फूल कर कुप्पा हो गया। इस बार वो और जोश में आकर पहले से अपेक्षा ज्यादा ऊंचे सुर में बांसुरी बजाने लगा। और बच्चों क्या हुआ पता है? इस बार बांसुरी के स्वर गडरिये और उसके शिकारी कुत्तों के कानों में पड़ गए। गडरिया अपने शिकारी कुत्तों के साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। शिकारी कुत्तों ने भेड़िये को धरकर दबोचा और उसका काम तमाम कर दिया। और मेमना तो भागता हुआ भेड़ों के झुंड में फिर से जा मिल गया। तो देखा बच्चों, कहानी हमें क्या सीख देती है? धीरज और सूझबूझ से ही हम संकट को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों, कभी भी कोई गड़बड़ हो, प्रॉब्लम हो, तो धीरज से और सूझबूझ से काम लेना। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, हम पढ़ रहे हैं तेनालीरामा की अनोखी दुनिया और उसमें भी एक कहानी जिसका शीर्षक है सप्तद्वीप नौखंड, जिसमें पहले हमने पढ़ा कि महाराज विचित्र भानु जो कि सप्तद्वीप नौखंड राज्य के राजा हैं, अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर की समृद्धता को देखकर उनके मन में जलन की भावना आ गई है, ईर्ष्या की भावना आ गई है। और अचानक महाराज कृष्णदेव राय को ये संदेश मिलता है कि उनके गाँव में गायों की महामारी फैल गई है जिसमें बहुत सारी गायें मर रही हैं। अब तेनालीराम इस सच्चाई का पता लगाने वाला है कि क्यों ऐसी खबर फैलाई गई है जिसमें कहा गया है कि हिस्ट पुष्ट गायें ही बीमार हो रही हैं। हाँ तो बच्चों, तेनालीराम अगले दिन सशस्त्र बल के जवानों के साथ कुछ 5 अजनबियों को रस्सी में बांध कर महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ और फिर महाराज ने पूछा ये सब क्या है तेनालीराम। तो बच्चों अब आगे मैं बिना देर किए पढ़ना शुरू करती हूँ। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज यह सब एक बड़े षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है, कृपया इन गिरफ्तार लोगों को कारागार में डालने का आदेश दें। इन लोगों पर आरोप है कि ये भोले भाले ग्रामीणों को झांसा देकर उनकी गायें बहुत कम मूल्य पर खरीद रहे थे। इस काम में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, ये लोग उसी गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद तेनालीराम ने कहा, महाराज शेष बातें न्यायिक प्रक्रिया के समय हो जाएगी, इन लोगों को कारागार में डालने का निर्देश दें, इनसे बरामद हुई गायों को राज्य की गौशाला में रखने की व्यवस्था करा दें। भविष्य में गायें इन बदमाशों के अपराध का साक्ष्य बनेंगी, इन गायों के वास्तविक स्वामियों का नाम पता आदि सुरक्षा अधिकारी की पंजी में है, शेष बातें मैं बाद में करूँगा, अभी मुझे कुछ विशेष कार्य करने हैं जो राज्य हित में परमावश्यक है, इसलिए मुझे अनुमति दे। महाराज कृष्णदेव राय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते उससे पूर्व ही तेनालीराम मुड़कर तेजी से दरबार के बाहर चला गया। दरबार में थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, रस्सी में बंधे लोगों के 8 स्वरों से सन्नाटा टूटा। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई। महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज हम पड़ोसी राज्य के सप्तद्वीप नवखंड के मवेशी व्यापारी हैं, आपके राज्य में आकर हम पहली बार मवेशी खरीद रहे थे कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया। महाराज हमने कोई अपराध नहीं किया है, हम ग्रामीणों द्वारा बताए गए मूल्य पर ही उनसे उनकी गायें खरीद रहे थे कि हमें पकड़ लिया गया और हमसे खरीदी गई गायें छीन ली गई, महाराज न्याय करें। अब इसके पश्चात आगे क्या हुआ बच्चों ये तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में, तब तक कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: भाई रुको भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन है, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जल्दी जल्दी बैठो रेडियो के पास, परी और मनी दीदी आ गए हैं फिर से आपके लिए पहेली का जवाब लेकर। पिछली कड़ी में हमने पूछा था, ना मैं चलता ना मैं बोलता हूँ फिर भी मैं जीवन देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन वापस देता हूँ।
4: हाँ बच्चों, तो चलता भी नहीं बोलता भी नहीं और हमें ऑक्सीजन देता है तो वो है पेड़ पौधे, और अभी बारिश के मौसम में तो इतनी सुंदर चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो गई है ना, उसे देखकर आंखों को भी ठंडक पहुंचती है और अच्छी फ्रेश हवा, उसमें ऑक्सीजन भी मिलती है हमें।
3: हाँ बच्चों, देखा सही जवाब पेड़ पौधे। तो लिखो आज की पहेली, दिखती नहीं फिर भी शक्ति मेरी, घर घर रोशनी करूं, पंखा टीवी सब चलाऊं, बताओ मैं कौन कहलाऊं।
4: तो बच्चों सही जवाब इसका क्या है वो तो सोचो, क्या हो सकता है जिसके कारण हमारे घर में लाइट पंखे कूलर एसी सब चलता है, और जब वो नहीं होती है तो ना लाइट चलता है ना पंखा ना कूलर, तो क्या चीज है वो? जल्दी से अपना सही जवाब हमें 94-14-15-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
3: बिल्कुल बच्चों, तो करना क्या है याद है ना, भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना नहीं भूलना, उसके बाद ही सोना।
4: हाँ तो चलो फिर हम भी करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट, गुड बाय, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। आशना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। भारतीय संस्कृति में पितृ पक्ष माने श्राद्ध का समय केवल परंपराओं का निर्वाहन करेंगे ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़कर अपने पूर्वजों के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक अत्यंत पवित्र अवसर है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर गले में खराश है, नाक में से पानी बहता हो, तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने जा रही हूँ, बहुत ही जल्दी आपको सुनाएंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है, क्या बनाना है आप बताइए, श्राद्ध में क्या बनाया जाता है, अगर वो चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, नहीं तो हम अपनी पसंद की रेसिपी सिखाएंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, भारतीय संस्कृति में श्राद्ध का समय केवल परंपराओं का निर्वहन करने का नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़कर अपने पूर्वजों के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के प्रकट करने का एक अत्यंत पवित्र अवसर है। कैसे? तो आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। वर्तमान समय में इस आध्यात्मिक कालखंड को केवल एक कर्मकांड या रीति रिवाज तक सीमित मान लिया जाता है, जबकि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक आयाम है मनसा सेवा, मन की शक्ति द्वारा पूर्वजों और संपूर्ण विश्व की सेवा। आइए, बहुत ही सुंदर आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ है, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका सीधा अर्थ है श्रद्धांजलि। जिन पूर्वजों के कारण आज हमारा वजूद है, जिनकी दी गई शिक्षाएं, संस्कार और प्रेरणाएं हमारे जीवन का मुख्य आधार है, उनके प्रति अपने मन के उद्गार प्रकट करना ही सच्चा श्राद्ध है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यद्यपि हमारे प्रियजन उस शरीर में आज नहीं है जिन्हें हम माता पिता या दादा दादी के रूप में जानते थे, परंतु वे ऊर्जा के रूप में सृष्टि में कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है। ठीक उसी प्रकार जैसे भौतिक दुनिया में कोई हमसे दूर विदेश में बैठा हो और अचानक याद करने पर उनका फोन आ जाता है, जिसे हम टेलीपैथी या मन का मन से कनेक्शन कहते हैं, ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं और पवित्र यादें भी उन तक सूक्ष्म रूप में अवश्य पहुंचती है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुआ। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध पक्ष का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व, पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के 15-16 दिन को अशुभ या नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। यह हमारे जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत करने का समय है। रुकावटों और पितृ दोष का निवारण कई बार पूर्वजों की अतृप्त इच्छाएं या उनके साथ हमारे कुछ अनसुलझे कर्म वर्तमान जीवन में रुकावट का कारण बनते हैं, जिसको पितृदोष कहते हैं। इन दिनों में उन्हें तृप्त करने से वे नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती है। नए कार्यों की शुरुआत से पहले की तैयारी ठीक वैसे ही जैसे किसी भी बड़े शुभ कार्य से पहले हम पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने कुल के देवी देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट करना आवश्यक होता है, ताकि मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाए। तीसरी बात यह है कि मनसा सेवा क्या है? तो देखिए, भौतिक साधन जैसे भोजन कराना, तर्पण करना, दान पुण्य करना अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि विधान से मन को संतुष्टि मिलती है। परंतु यदि अंदर मन में पूर्वजों के प्रति सच्चे भाव, सफाई और सम्मान न हो, तो केवल धन से किया गया कार्य उतना प्रभावी नहीं होता। आत्मा स्थूल पदार्थ या धन नहीं, बल्कि सूक्ष्म भावनाएं और कंपन केज करती है। मनसा सेवा का अर्थ है अपने मन की तरंगों, शुद्ध संकल्पों और प्रेम पूर्ण भावनाओं के माध्यम से पूर्वजों और समस्त आत्माओं तक शांति, सुख और दिव्यता पहुंचाना। फिर चौथी बात है, पूर्वजों की मनसा सेवा करने की विभिन्न बहुत बहुत सी विधियां है, तो इसमें पहली विधि बताना चाहूंगी, देह अभिमान को छोड़कर के शांत स्थिति बनाना। तो कुछ पलों के लिए अपने सभी बाहरी कार्यों को रोक करके एकांत में बैठ जाइए, अपने शरीर के भान से भी परे जाकर अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह शांत और हल्का कर लीजिए। दूसरी विधि है पूर्वजों का स्मरण और कृतज्ञता ज्ञापन। अपनी स्मृति में अपने उन सभी पितरों, माता पिता दादा दादी नाना नानी या अन्य संबंधियों को इमर्ज करिए, मतलब अपने सामने साक्षात अनुभव करिए, जिनके कारण आपका जीवन संवरा है। उनके द्वारा दिए गए संस्कारों और प्यार को याद करते हुए उनके प्रति हृदय से आभार और सम्मान प्रकट करें। देखिए तीसरी विधि है सर्वोच्च शक्ति माने परमपिता परमात्मा को माध्यम बनाना। महसूस करिए कि हम सब की तरह सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमारे ठीक ऊपर सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है। बेहद के पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी ये सभी प्रिय आत्माएं जहाँ भी जिस रूप में भी है, यदि उनके मन में कोई अतृप्त इच्छा या कामना शेष है तो आप उनकी उस मनोकामना को पूरा करें। चौथी विधि बता रही हूँ दिव्यता शांति और सुख की किरणें प्रवाहित करना है। कैसे करना है? मानसिक रूप से ये विजुलाइज करना है। महसूस करें कि परम पिता परमात्मा से निकलती हुई अत्यंत सुखद पवित्र और शांति की किरणें हमारे उन पितरों तक पहुंच रही है। वे किरणें उनकी हर अतृप्ति को तृप्त कर रही है, उनके जीवन यात्रा को सुगम और सफल बना रही है तथा उन्हें सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर रही है। पांचवी विधि है क्षमा याचना और पश्चाताप का निवारण। यदि उनके जीवन काल में अनजाने में आपने उनका दिल दुखाया हो या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो तो इन दिनों में मन से उनसे क्षमा मांग लीजिए। इससे आपके मन का भारीपन और पश्चाताप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। छठी विधि है दुआएं प्राप्त करना और मुस्कुराहट देखना। महसूस करिए कि तृप्त होकर वे पूर्वज आपको आशीर्वाद और दुआएं दे रहे हैं। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है और उनकी दुआएं आपके वर्तमान जीवन को आगे बढ़ा रही है। फिर आगे की विधि बता रही हूँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व की मनसा सेवा। केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए दुनिया की उन सभी अतृप्त अचानक दुर्घटनाओं या आत्महत्या का शिकार हुई आत्माओं के लिए भी शुभ भावना रखनी है। मानसिक रूप से संकल्प करना है संसार की समस्त आत्माएं शांत हो जाए, सब निर्विकारी बने, सबका जीवन खुशियों से भर जाए। तो निष्कर्ष यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्राद्ध के ये विशेष दिन केवल कर्म कांड का औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि का महान अवसर है। जब हम सभी विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को मनसा सेवा के जरिए शांति और प्रेम प्रदान करते हैं तो उनकी अहेतु कृपा और दुआएं हमारे जीवन के हर मार्ग को सुगम और मंगलमय बना देती है। आइए इस पितृ पक्ष से प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने पूर्वजों और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मनसा सेवा करने का जरूर हम दृढ़ संकल्प करें। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुनते हैं गीत। तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने जा रही हूँ कि गले में खराश है, नाक से पानी बहता हो तो क्या करेंगे। यह गले की खराश के लिए मैं आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए, नमक का पानी गले के संक्रमण के लिए सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है, ठीक है। तो नमक के पानी से गरारे करिएगा, ये सूजन को कम करेगा, बलगम को ढीला करेगा और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करेगा। तो नमक वाले पानी से हम गरारा क्यों करते हैं, इसका कारण आप जान गए हैं। ये गले को क्या करता है, गले की सूजन को कम करता है, बलगम को ढीला करता है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। फिर देखिए दूसरा उपाय, हाँ आपको बता देती हूँ कि कैसे आप गरारा करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पानी में आप नमक मिलाइए, ठीक है, 30 सेकंड तक गरारे करिए, फिर थूक दीजिए। तो ऐसे आपको 3-4 बार करना है। और अगर पानी नवसे का है तो और भी अच्छी बात है, अभी थोड़ा सा दो मौसम हो रहा है ना, तो नवसे का पानी लीजिएगा। दूसरा उपाय है शहद और गर्म पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए इसमें प्राकृतिक जीवाणुरोधी और सुखदायक गुण होते हैं, ये गले को कोट कर सकता है, जलन और दर्द को कम कर सकता है। इसलिए नव सेके पानी में थोड़ा सा शहद डाल करके आप लीजिएगा। फिर भी और भी इसका उपाय अच्छी तरह बता देती हूँ, गर्म पानी या फिर हर्बल चाय में 1-2 चम्मच शहद मिलाना है, फिर धीरे धीरे घूट घूट करके पीना है। गले की जलन के लिए ये सबसे आरामदायक घरेलू उपचारों में से एक है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इससे खराश खत्म होगी, ठीक है, और गला तर रहेगा, सूखी खांसी भी नहीं होगी। तो गर्म पानी या हर्बल चाय में 1-2 चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे घूट घूट करके पीजिएगा। गले की जलन के लिए सबसे आरामदायक घरेलू उपचारों में से एक है और ये गले की खराश को ठीक करता है और सूखी खांसी भी। फिर देखिए अदरक की चाय भी आप ले सकते हैं, कैसे, ताजा अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालिए, फिर छान लीजिए और इसे गर्म करके मतलब सहता सहता पीजिए, ठीक है। और ज्यादा अगर आप लाभ चाहते हैं तो इसमें शहद और नींबू मिला दीजिए। गले के संक्रमण के उपचार में अदरक की चाय बहुत ही सुंदर उपाय है। तो ताजा अदरक के टुकड़ों को पानी में उबाल लीजिए, छान लीजिए और इसे गर्म गर्म ही पीजिए, ठीक है। हाँ, अगर और भी आप चाहते हैं कि ज्यादा लाभ मिले तो इसमें शहद और नींबू भी मिला सकते हैं। तो ये गले के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर देखिए भाप लीजिएगा आप, तो भाप लेने से गले के सूखे उत्तकों को नम करने में मदद करता है भाप, और नाक के मार्ग को साफ करता है, जिससे जलन और जमाव से राहत मिलती है, फिर नाक में वो जमता नहीं है कफ, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपने सिर पर तौलिया रख करके गर्म पानी के कटोरे से भाप लीजिए, ऐसा दिन में 2 बार 10 मिनट तक करना है, ठीक है। फिर बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हूँ, आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, इसको हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। गोल्डन मिल्क के नाम से प्रसिद्ध ये पारंपरिक उपाय हल्दी की उपचारात्मक शक्तियों को गर्म दूध के साथ मिलाकर संक्रमण से लड़ता है और गले को आराम पहुंचाता है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1 कप गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए, रात को सोने से पहले पीजिए, ये गले के दर्द के लिए बेहतरीन उपाय है। फिर लास्ट आपको बता रही हूँ उपाय कि आप हाइड्रेटेड कैसे रहेंगे। तो हाइड्रेटेड रहना गले की खराश को ठीक करने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है।
तरल पदार्थ आपके गले को नम रखते हैं और विषाक्त पदार्थ या जलन पैदा करने वाले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो इसमें क्या क्या पीना है आपको बता देती हूँ। गर्म पानी पीजिएगा, हर्बल चाय पीजिएगा, शोरबा या पतला जूस ले सकते हैं आप। हाइड्रेटेड रहना गले की खराश के लिए सबसे आसान उपचारों में से एक है, जिसका आप रोज एक अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सारे उपचार आपको बताया है, आप आजमा सकते हैं और स्वयं को ठीक कर सकते हैं, पर सारे के सारे एक साथ नहीं आजमाना है, इन सब में से एक, ठीक है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है? इंट्रो अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें जवाब दे दिया था। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का प्रश्न फिर से दोहरा रही हूँ, श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत ही संक्षिप्त में आपको जवाब देना है, ठीक है? और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके, कहते ना ईश्वर के भरोसे करना सीख लेता है, तब भीतर की गहरी शांति उतरते हुए महसूस होती है। क्या कहेंगे आप? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती, और यही शक्ति धीरे धीरे हृदय को सच्ची खुशी से भर देती है। तो जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके ईश्वर के भरोसे कार्य करना सीख लेता है, तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। क्या कहेंगे? हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बहुत अच्छे दिन चल रहा है, आज चौथा दिन चल रहा है
0: जी,
1: चार सात हो गया है, लेकिन ये भी चलो ये कहाँ है सब, तो अच्छा जो है इसको याद करने का एक दिन भी रहता है
0: जी।
1: तो हाँ, तो विषय भी बहुत अच्छा है, क्या होता है हम ऐसे

0: तो हो ही जाता है दीदी, ऐसे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम देखो तो हम तो जब बचपन से ही तो ऐसा ही रहे कि सभी कुछ सब कुछ होता है तो भगवान के भरोसे तो छोड़ ही देते हैं और हो ही जाता है कोई सब काम। देखो आज कोई किसी की कोई शादी होती है दीदी, इसके पास होता नहीं है कुछ, सभी के पास पैसा नहीं होता, सभी का सबका टैलेंट नहीं होता है, फिर भी सबका ये मालिक पूरा कर देता है
1: जी जी,
0: चाहे पैसा हो ना, सभी का प्रसंग पूरा हो ही जाता है, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं तो काम हो ही जाता है।
1: बिल्कुल,
0: पैसा ही आ जाता है, काम भी हो जाता है, लोग साथ में मदद वाले ही आ जाते हैं
1: जी।
0: लेकिन हमको विश्वास रखना है तो कम करते हैं तो हमारा काम हो ही जाएगा, बस ऐसा विश्वास रखवाना
1: जी।
0: बस पैसे हो ना हो, आपके पास कोई साथीदार हो ना हो, तो फिर भी हो जाता है
1: जी।
0: तो बस भगवान के भरोसे छोड़ दो, आपका काम हो ही जाता है, लेकिन हमको विश्वास रखना है कि मेरा काम परमात्मा पूरा कर देगा, क्योंकि हमने तो बचपन से एक ही बात सीखी है। और सभी कोई भी बात मेरे माता जी का सुधार, कई हमारे घर पे कई सारे मेहमान आते हैं, हमने सभी को बुलाया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये मेरा काम कैसे होगा, नहीं हो जाएगा
1: जी।
0: और सभी एक अच्छे खुशी लेके गए हैं यहाँ से, सबको एक अच्छा आनंद मिल रहा है पूरे दिन
1: जी।
0: तो बस ऐसे ही करना है, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, आपको भी मेहनत तो करनी है,
1: मेहनत करनी है और विश्वास, वो कहते हैं ना कि मेहनत हम करेंगे तो वो फल तो मिलना ही है,
0: मिलना
1: फिर चिंता नहीं करनी, फिर ईश्वर के भरोसे छोड़ देना, हमारा कर्म हमें करना है,
0: करना है बस, ठीक है। ऐसा बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको भी कर्म तो करना है, मेहनत तो करनी है, हम ऐसे बैठेंगे तो ऐसे को थोड़ा भगवान काम कर देते
1: हैं, ऐसे तो हर चीज छोड़ करके हम बैठ जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा,
0: नहीं चलेगा। देखो नरसिंह मिलता था, भगवान ने पूरा काम कर दिया, लेकिन पूरे दिन वो भगवान की भक्ति करते थे और जहाँ जाते थे वहाँ एक भगवान परमात्मा के साथ रहते
1: जी
0: करते थे, लेकिन फिर भी ने सभी का खुद भगवान के कर दिया भगवान ने
1: जी। तो जो सारे संकट हरे, लेकिन परीक्षाएं भी तो कितनी आई।
0: हाँ परीक्षा भी आती है दीदी, दिखते हैं कहते ना कि भाई आप चाहे कितने भी करो लेकिन परीक्षा तो आएगी, ऐसा नहीं है तो आप ऐसे ही आपका कर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको बस विश्वास रखवाना रखना है, परमात्मा हमारा साथ ही है, हमारे पास है
1: जी।
0: फिर भी कर्म करते जाइए और भगवान पर विश्वास रखिए, आपका काम हो ही जाता है, बड़ा बड़ा सा कोई काम हो जाता है तो हमारा के लिए होता है, बस हो जाए
1: जी।
0: ठीक है, नमस्ते,
1: चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है, आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, विषय भी अच्छा है तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो प्रश्न का जवाब भी आपको देना है, विषय में भी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती, और यही शक्ति धीरे धीरे हृदय को सच्ची खुशी से भर देती है। क्या कहेंगे आप? कोई यहाँ जादू मंत्र नहीं होता है कि अरे हम चलो थोड़ा सा तकलीफ आई, संकट आया, हे भगवान आप हमारे ये संकट टाल देना, हम तो आपके या दरबार में बैठे है, अब आप संभालो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं। कर्म हमें करना है, कर्म के साथ हम ईश्वर को भी याद करें और फिर करने के बाद ईश्वर पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाइए कि चलो आज का ये काम हो गया, अब ईश्वर को अर्पण है, अब भगवान ही संभाले आगे, तो अच्छी तरह संभालेंगे। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलिए हमने किया है लेकिन उसका परिणाम जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिला है, लेकिन क्या होगा, लेकिन हम उस परिस्थिति में डगमगाएंगे नहीं, वो परिस्थिति हमें हराएगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने अच्छा किया आज नहीं तो इसका कल इसका फल अच्छा मिलना ही है, तो हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान कोई जादू मंत्र से नहीं हमारा ठीक कर देता है कि चलो जैसे ही हमने कहा कि ये हो जाए और जादू मंत्र से हो गया, ऐसे नहीं होता है, लेकिन जब हम धैर्यता बनाए रखते हैं, अपने कर्मों पर पहले तो विश्वास करना सीखिए, हम मेहनत से लगन से काम

0: कर रहे हैं तो सफलता मिलनी ही है, फिर आप निश्चिंत हो जाइए ईश्वर को सौंप करके कि भाई मेहनत हमने कर ली, फल आपको देना है। हेलो
1: हेलो शबन जी, कंचन भाई।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हो आप?
1: नमस्कार, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, और सुनाइए कैसे हो?
1: आज ठीक है, अच्छे है, दुकान पे है, दो दिन से प्रोग्राम नहीं था
0: जी,
1: लाइव प्रोग्राम, तो आज तो अभी मैंने देखा कि लाइव प्रोग्राम है, तो 10 बजे से सुन रहा था
0: जी।
1: और विषय भी बहुत अच्छा है कि भरोसा, यही है।
0: हाँ जी, विषय मैं दोहरा देती हूँ फिर से, देखिए विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। और स्टार्टिंग है जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता है, तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है।
1: विश्वास,
0: हाँ जी भरोसा,
1: हाँ
0: विश्वास,
1: विश्वास तो ठीक है, गंदी संसार में है तो कोई दूसरे का विश्वास रखना है, लेकिन कोई कोई इसे ये कर सकता है, बाकी विश्वास ये नहीं होता। पूरा विश्वास रख के हम कुछ काम करते हैं तो ये नहीं हो पाता कभी कभी, दोस्तों का मित्रों का कोई।
0: ईश्वर पर भरोसा करना है हमें, तो कोई लोगों पर तो नहीं करना है।
1: हमें एक भरोसा एक परमात्मा से करते हमारे कर्मों, कर्म है, कर्म अच्छे करेंगे तो हमें जरूर इसका ये मिलेगा। भरोसा तो कोई समर्थ ही करना है। भजन में नहीं बोला कि चारो भरो सुमन हरियल राय, चारो भरो सुबरी रे, तो एक भगवान का ही भरोसा रखना है। लेकिन क्या है कि भगवान कब हमें कुछ ये जाए हो जाए सर, आगे भी देखो गजराजा जा रहे हुआ पिया था चाला सरोवर, तो गजराजा ने क्या किया था कि भाई हर रोज सरोवर में जाके कमल भगवान को याद करके कमल चढ़ा था। एक दिन ऐसा आया कि भाई मन ने पैर पकड़ लिया
0: जी,
1: तो उसके कुटुंब सभी परिवार किनारे पे थे लेकिन कुछ न कर पाए, तो गजराजा ने फिर अथाह प्रयत्न तो हमें किया इसने देखा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया पैर, तो सुनते कमल लेके तो भगवान ने आवाज परिचित लगा भगवान को कि भाई तो मुझे पुकारना, क्योंकि हर रोज भगवान को याद करता तो छुड़ाया गया। तो हमें क्या है कि भाई सामान्य बातों से आजकल मनुष्य हे भगवान आ जाओ हमारा काम कर दो ऐसा कर दो, तो ये तो ये कैसे संभव है, आवाज परिचित होना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे करना चाहिए करना चाहिए तो मदद में आएगी, इतना मैं तो
0: जी जी।
1: बाकी विश्वास तो ये दिन हो विश्वास
0: जी
1: ठीक है।
0: हाँ जी, और आज और के प्रश्न का जवाब देंगे?
1: हाँ प्रश्न का जवाब तो मैंने पढ़ा है, अब दूंगा।
0: ठीक है, ओके, बहुत बहुत आभार आपका।
1: हाँ जी।
0: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से. अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे. तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे, और रोड पे कोई हो न हो सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे, और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से, आपको सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, और सब ठीक है?
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है
3: जी।
4: और बहुत अच्छी बातें सुन रहा मैं, दोस्तों ने भी बहुत अच्छी तरह इस विषय के बारे में बताया, तो मैं भी दो बातें कहूंगा दीदी कि जो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी अच्छा बुरा या जो भी हो वो स्वीकार कर ले और भगवान पर भरोसा रखे। हम चलो भगवान पर भरोसा रखे या ना रखे, हमारे जीवन में तो परिस्थिति आएगी ही आएगी, क्योंकि जीवन का यही तो सार है
3: जी।
4: और कई लोग ऐसे भी, और मैं भी पहले ये सोचता था कि जरा थोड़ा सा जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता तो कह रहे भगवान क्या मेरे ही जीवन में ये है वो। और कई सारे ऐसे लोग हैं तो इतने अमीर हैं, तो इतनी सुख सुविधा और इतने अमीर, और हमको ऐसे जन्म क्यों दिया। वैसे मैं पहले सोचता था, और कई लोग ऐसे सोच भी रहे होंगे, किसी की हाथ पैर मतलब अपंग है तो वो भी अपने जीवन में स्वीकार कर लिया कि चलो जो भी विश्वास रखा भगवान पर, जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, और चलो थोड़ा सा बुरा भी साथ हुआ तो भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि चलो भगवान पर विश्वास ही रखना कि जो भी कर रहा है चाहे कर रहा है, और हमारे पिछले कर्म या कर्म का फल वो मिल रहा है वो एक तो स्वीकार ही कर लेना चाहिए दीदी
3: जी।
4: और ना कि कोई भगवान को खोजना और विश्वास नहीं तोड़ना अपने आप, क्योंकि अपने आप पर लोग विश्वास तो हमारा तोड़ते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है, तो हम क्यों खुद अपना ही विश्वास तोड़े कि चलो ये हमसे नहीं होगा और ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन अब ठीक नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी है स्वीकार करना चाहिए, भगवान पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास रखना चाहिए, और हो सके तो जितना आध्यात्मिक में अपना जीवन बिताए ताकि हम परिस्थिति बुरी परिस्थिति का सामना कर सके दीदी
3: जी।
4: जी जी दीदी, और सभी दोस्तों को नमस्कार, और प्रश्न का जवाब मैंने भेजा है।
3: हाँ जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है, जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता है तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती, और यही शक्ति धीरे धीरे हृदय को सच्ची खुशी से भर देती है। हेलो
5: ऑन एयर दीदी।
3: हाँ जी नमस्ते, ऑन एयर है आप।
5: तो आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार, हमारे दोस्त सुरेश जी जोड़ाना, सुरेश जी धानेरा, कंचन भाई, सभी दोस्तों ने अच्छा जवाब दिया है। मैं भी शॉर्ट में बोलता हूँ। देखो, हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा है, भगवान है, और उसको उनके ऊपर अगर हमने विश्वास रखा और विश्वास रख के पूर्ण अधिकार उनको सुपुर्द कर दिया और कर्म करते रहे, जैसे कर्म वाली फल के अपेक्षा न रहते हुए कर्म करते रहे, मेहनत करते रहे, तो परमेश्वर हमको फल जरूर देगा, क्योंकि उनकी याद में हमने काम किया है, कर्म किया है और उनके ऊपर भरोसा रखा है। वो हमारे पिता है, वो हमको साथ जरूर देंगे। कोई भी परिस्थिति आओ, उसमें से हम निकल जाएंगे और जीवन सफल बन जाएगा। ये शॉर्ट में बताया है, सभी को नमस्कार दीदी। ओम शांति, ओम शांति
3: जी। बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और आज के विषय में अपनी राय व्यक्त करते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है, संक्षिप्त में जवाब देना है आपको। और विषय तो अच्छा है ही है। तो जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़ करके परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता, भाई हमने अपना कर्म कर लिया है ना, अब क्यों फिर कारण क्या होगा, कैसे होगा, किसने ऐसा कर दिया, क्यों हुआ, अरे छोड़िए ना ये सब, क्या क्यों, सभी हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बस आप अच्छा सा कर्म करके ईश्वर को ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हो जाइए, तभी मन में सच्ची शांति मिलेगी, सुकून का एहसास होगा, सभी का अनुभव होगा। कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो कितने निश्चिंत रहते हैं, है ना। चलिए, जैसे हमारे श्रोता बंधु बता रहे कि हमने श्राद्ध किया, सभी बहुत ही आराम से आए, मेहमान लोग बहुत ही खुश होकर के गए, संतुष्ट होकर के गए, उनको खिला पिला कर भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो ऐसा कहा गया, तो बिल्कुल यही तो सच्ची खुशी है कि हमने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म की वजह से लोग भी खुश होके गए, हमने ईश्वर की याद में किया और छोड़ दिया भगवान के ऊपर कि भगवान आपने अच्छी तरह कराया, धन्यवाद, और निश्चिंत हो गए, तो सुकून का एहसास तो होता ही है ना, सच्ची शांति मिलती ही है। इसलिए कर्मों पर भरोसा करिए, ठीक है, कर्म अच्छे करिए और ईश्वर पर छोड़िए। फिर भी देखिए, कभी कभी क्या है, हम 100% अच्छा कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, हमने भरोसे छोड़ा, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि चलो भगवान अब आप संभालोगे, हो सकता है उस समय हमारा काम पूरा नहीं हुआ हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमने अच्छा किया है और ईश्वर को भी पता है कि हमने अच्छा किया है, तो वो परिस्थिति हमें हिलाएगी नहीं, आई है भाई चलो ठीक है, अच्छा करने के बाद भी अगर बुरा हिस्से में आया है तो कितने दिन टिकेगा, नहीं टिकेगा। हेलो,
6: जय माता जी, जय श्री हरि।
3: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्ते, कैसे हो सुरेश भाई?
6: ठीक है।
3: हाँ जी,
6: आप सुनाइए।
3: बस हम भी अच्छे हैं।
6: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामना, मंगल कामना। और आज आजकल तो कौवे के दिन आ गए
3: जी,
6: खीर के दिन आ गए ना,
3: बिल्कुल साथ का तो चल ही रहा है। और आज का विषय है, जब मन हर परिस्थिति का कारण पूछना छोड़कर परमात्मा पर भरोसा करना सीख लेता है, तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। विश्वास परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलता, लेकिन वह हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। क्या कहेंगे आप?
6: बिल्कुल सही बात है ना। देखिए इस जीवन में है ना सच्चा साथी तो भगवान ही है, उस पर भरोसा

0: उस पे मन लगाइए, उस पे भरोसा कीजिए। किसी और पे भरोसा करने से बेहतर है कि उस पे भरोसा कीजिए, और जो भी है, जो भी परिस्थिति है, उसको ऑल वेल करते हुए आगे बढ़िए। ताकि देखिए, वो तो सुख दुख तो एक चक्र है, तो वो तो चलता ही रहेगा। चुनौती आता है जिंदगी, जीवन जीवन का दूसरा नाम ही चुनौती है। चुनौती है तो चुनौती तो आती ही रहेगी
1: जी।
0: मगर उन परिस्थितियों से जो सीख लेता है ना, वही सच्चा जीवन है। कुछ ना कुछ उससे सीखने का जरूर मिलेगा, और वो आगे आपके काम आएगा।
1: जी
0: मतलब आपका कुल मिला के आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अगर आपका विश्वास की गाड़ी डगमगा गई तो फिर जीवन वही रुक जाएगी, जीवन की गाड़ी
1: जी।
0: क्योंकि विश्वास इंसान को मतलब एक सक्षम बनाता है। विश्वास एक मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब स्ट्रांग बनाता है विश्वास। और जब इंसान विश्वास स्ट्रांग बन जाता है ना, तो कोई भी परिस्थिति हो उसे जीत पाता है
1: जी।
0: उस परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाता है। तो वही तो असली जीवन वही है। बाकी तो जिंदगी तो हम जीते हैं, मगर जिंदगी परिस्थितियों मतलब विभिन्न परिस्थितियों को जो विश्वास रख के अपने को स्ट्रांग बनाता है, उसे ही जीवन कहते हैं
1: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे।
0: क्या है प्रश्न?
1: श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है?
0: ऑफलाइन दो
1: भले दीजिए,
0: अभी दो
1: नहीं, भले आपकी इच्छा हो, ऐसे भले समय नहीं मिले तो अभी दे सकते हैं। श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ आपको बताना है।
0: नहीं, आप बोले तो ऑफलाइन दो, आप बोले तो अभी दो।
1: दे दीजिए अभी, क्योंकि अब ऐसे ही थोड़ा समय बढ़ता जा रहा है।
0: अभी लिंक तो आएगा ना?
1: लिंक हो गए?
0: नहीं, अभी ब्रेक तो आएगा ना, अभी देख लीजिए पहले।
1: ठीक है, चलो। हाँ,
0: ओके, चलो, जय माता
1: जी। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और कहने का भाव यही है। बहुत ही सुंदर सभी श्रोता बंधुओं ने इस विषय को स्पष्ट किया है। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई, परिस्थिति का कारण जानने के बजाय आप अच्छे कर्म करिए और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि अब आपको संभालना है। हमारी कोशिश हमने कर ली, संभालना आपको है, ठीक है? तो शांति का एहसास भी होगा, सुकून भी मिलेगा। और परिस्थितियाँ कभी कभी बदलती नहीं है, लेकिन क्या होता है, हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि परिस्थितियाँ हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा हम भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं, फिर भी कभी कभी काम हमारा नहीं हो पाता है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो भी वो समस्या हमें समस्या नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये होना ही है और हो ही जाएगा। इतना भरोसा करेंगे तो सचमुच में हो ही जाएगा, ठीक है? और अब फिर से सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज महाराष्ट्र के स्वादिष्ट दाल बड़े बनाएंगे। ठीक है भाई, आप तो कोई कहते नहीं है लेकिन हमारे श्रोता बंधु के डिमांड है सुभाष भाई महाराष्ट्र से कि दाल बड़े बनाना सिखाइए, तो सोचा कि चलिए दाल के बड़े आज आपको सिखाते हैं, महाराष्ट्रीयन दाल के बड़े। सामग्री में आप लिख लीजिए, पेन और डायरी जरूर लीजिएगा और लिखिएगा, एक कप चने की दाल, ठीक है, फिर दो तीन हरी मिर्चें, फिर छोटा टुकड़ा अदरक का, थोड़ा हरा धनिया ले लीजिए, आप आधा चम्मच जीरा ले सकते हैं, आधा चम्मच सौंफ ले सकते हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और चुटकी भर हींग। तलने के लिए लेना है तेल। तो ये हो गई सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूं। चने की दाल कितनी ली है हमने, एक कप, दो तीन हरी मिर्च, फिर एक टुकड़ा अदरक का लेना है, थोड़ा हरा धनिया लीजिएगा, आधा छोटा चम्मच जीरा लेना है तो आधा छोटा चम्मच ही सौंफ लीजिएगा, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और चुटकी भर हींग, आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है तलने के लिए। अब दाल के बड़े कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे। चने की दाल को आप क्या करेंगे, 3-4 घंटे तक भिगोकर पानी में अच्छी तरह से निकाल दीजिए, ठीक है। फिर दाल को मिर्ची और अदरक के साथ दरदरा पीस लीजिए, पानी बहुत कम डालना है, ठीक है। फिर इसमें आप धनिया, जीरा, सौंफ, हींग, नमक ये सब मिला दीजिए। अब इस मिश्रण को 2-3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लीजिए और फिर इसे बड़े हल्के और कुरकुरे मतलब बनेंगे, इसलिए फेंटना अच्छा है, जितना फेंटेंगे ना उतना ये कुरकुरा बनेगा, अंदर से नरम ऊपर से कुरकुरा। तो अब आप क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा गीला करके छोटे छोटे बड़े बनाइए और बड़े बना करके अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर और तेल गरम करिए, तेल गरम हो जाए तो आप हाथों में बड़े बनाते जाइए। अगर आप चाहे तो बीच में खड्डा भी कर सकते हैं, खड्डा करके जैसे हम मरका बनाते हैं ना, ऐसे आप खड्डा करके फिर तेल में छोड़ते जाइए। फिर दूसरा ले लीजिए भाग, फिर आप इसी तरह बना करके आप तेल में छोड़ते जाइए, ऐसे फिर पलटी लगानी है, दोनों तरफ से अच्छे सुनहरे सुनहरे हो जाए उसके बाद आप निकाल दीजिए, फिर दूसरे बड़े बना दीजिए। तो इस तरह दाल के बड़े बनाए जाते हैं, जिसकी विधि फिर से दोहरा रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, उसके बाद उस पानी को निकाल देना है, ठीक है। फिर इस दाल को आप मिक्सर में डालिए और इसके साथ ही आप अदरक और हरी मिर्च भी डाल करके थोड़ा सा कुरकुरा पीसना है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुरकुरा भी नहीं लेकिन बारीक भी नहीं, ठीक है, दरदरा पीसना है। और फिर इसमें अब ये आप निकाल दीजिए एक बर्तन में इसको, फिर इसमें जीरा, धनिया, सौंफ, हींग और नमक ये सब मिला देना है। फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 मिनट 5 मिनट फेंटिए, ताकि इससे बड़े हल्के और कुरकुरे बनेंगे। तो जितना फेंटेंगे उतना अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरे बनेंगे। अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डाल दीजिए, वो तेल गरम होता रहेगा, इधर आप हाथ में थोड़ा सा दोनों हाथों को गीला कर लीजिए, गीला करके आप छोटे छोटे बड़े बनाइए और आप चाहे तो बीचों बीच खड्डा करके भी आप तल सकते हैं, बिना खड्डे के भी तल सकते हैं, वो आप पर छोड़ा, ठीक है। और मध्यम आंच पर आपको तलना है, सुनहरा कुरकुरा होने तक तलना है, दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गया दाल के बड़े। अब इसको आप गर्मा गर्म जो बड़े निकाले हैं हमने, उसका आप हरी चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो पहले आप अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा, उसके बाद ही भोजन स्वीकार करिएगा। तो आज की रसोई में महाराष्ट्र का चटपटा स्वाद, जो आपको कुरकुरे दाल के बड़े सिखाए हैं, जरूर बना करके खाइएगा, और बच जाए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरे दिन भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक ब्रेक लेकर के आएंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: आप आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप आजमा सकते हैं आराम से। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो विषय आज आपको रेसिपी में महाराष्ट्रियन बड़ा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि श्राद्ध का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ क्या है। आज हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने जवाब दिया है, वैसे सही जवाब दिया है। सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई धानेराव से, दीपा जी कपासन से, संगीता जी चित्तौड़गढ़ से, अलका जी कपासन से और शोभा सोमानी कपासन से। तो आप सभी ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया है, सही जवाब है। ढेर सारी तालियां आप सभी के लिए। और इसका संक्षिप्त जवाब मैं आपको बता रही हूँ कि आज के प्रश्न का संक्षिप्त जवाब है, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका सीधा अर्थ है श्रद्धांजलि। ठीक है, और आप विषय में जुड़े, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से भी विषय में जुड़े हैं, तो आप सभी के लिए फिर से तालियां। और आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी। मनुष्य में ज्ञान का अंधकार होने से उनके अंदर भ्रम बना रहता है, जिस कारण अधिकतर दुखी रहते हैं। उसकी निवृत्ति प्रथम ज्ञान से होती है। अगर ज्ञान होगा तो अंधकार मिट जाएगा। अब मैं आपको श्राद्ध पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही सुंदर पहेली के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। श्राद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं, अपनों को याद करने का त्योहार है। श्राद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं, अपनों को याद करने का त्योहार है। जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, उनका जीवन भर आभार है। जो चले गए इस दुनिया से, उनकी यादें साथ रहती है। जो चले गए इस दुनिया से, उनकी यादें साथ रहती है। उनकी कही हुई छोटी छोटी बातें जीवन को राह दिखाती है। दादा दादी की वो कहानियाँ माँ बाबा के संस्कार, दादा दादी की वो कहानियाँ माँ बाबा के संस्कार, आज भी मन के आंगन में करते हैं उनका दीदार। पिंडदान और तर्पण अपनी जगह, भाव सबसे महान। पिंडदान और तर्पण अपनी जगह, भाव सबसे महान। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब जीवितों का करे सम्मान। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब जीवितों का करे सम्मान। बुजुर्गों के चरणों में बैठे, उनकी बातें प्यार से सुने, उनके आंखों की चमक बने, उनके सपनों का हम चुने। जो बीत गए उन्हें श्रद्धा से याद करे हर बार, जो बीत गए उन्हें श्रद्धा से याद करे हर बार, और जो आज हमारे पास है उन्हें दे प्रेम और सत्कार। और जो आज हमारे पास है उन्हें दे प्रेम और सत्कार। यही श्राद्ध का सच्चा संदेश, यही रिश्तों का मान। पूर्वजों की यादों को दिल में रख करे अच्छे कर्मों का दान। पूर्वजों की यादों को दिल में रख करे अच्छा कर्मों का दान।
1: भरोसा कर तू भगवान।
2: ये क्या है माँ जी? ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी।

0: रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हंसते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
1: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
2: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
3: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
4: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
3: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
4: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
5: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
4: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
3: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
6: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
3: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
6: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
7: जाह्नवी क्यों फंसा रही है वीरू को?
6: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
5: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, वीर वीर।
8: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
5: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
8: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
4: तुमने।
8: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
5: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
3: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम तू कर।
4: घूम नहीं दादी, ग्रू।
3: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
5: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
3: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
6: और हम क्या है दादी?
1: इस सवाल का जवाब है किसी के पास, पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
9: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
10: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
9: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
10: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
9: अच्छा आज नाश्ता इतने जल्दी बन गया?
10: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
9: अरे

0: ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
1: बड़ी भाभी, वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
0: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
1: कम उम्र?
2: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
0: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
3: बड़ी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
2: लो आ गए वो।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में।
5: हाँ,
4: चलो
5: बढ़िया है, बढ़िया,
4: बहुत अच्छा।
5: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक।
4: वाह, आज तो मजा आ गया। सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
6: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
4: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
6: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
5: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
4: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
6: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
7: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
6: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
7: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
6: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
4: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
2: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
8: हाँ जाती हूँ।
2: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है।
8: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
2: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
8: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
2: इसी बात का तो डर है।
8: हा? कुछ कहा आपने?
2: नहीं नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
8: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
2: क्या?
8: अरे मजाक कर रही थी।
2: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
1: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
2: चल ठीक है अब नाश्ता करने चलें।
9: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं। वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे। जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
3: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं। नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं। अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
10: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊजी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताईजी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी को एक मंच एक स्टेज देते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है, फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को लेकर आबू रोड तहसील से दूरस्थ जगह पिंडवाड़ा का भी लास्ट, इसके बाद उदयपुर शुरू होता है और स्कूल का नाम है, विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेली पिंडवाड़ा। आज इस विद्यालय में पहुंचे बच्चों को जो आवश्यकता था एक मंच, आज उन मंच का माध्यम से उनका हुनर उनका प्रतिभा बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं भाव और भावना को लेकर करियर को लेकर आज आपका पास पहुंच रहे हैं। हर रोज आपको कम्युनिटी से सामुदायिक से बच्चों का आवाज, बड़ों का आवाज, मनरेगा का आवाज, आंगनबाड़ी में प्रशासन गांव के संग स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन सभी बात को लेकर हम पहुंचते। तो आज विद्यार्थी विकास में ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय बरेली का आवाज सुनने को मिलेगा। हमारा लिसनर ध्यान से सुने और हमारा बच्चों को मार्क भी दे सकते हैं जे कौन बच्चे अच्छा गीत प्रस्तुत किए, और कोई इस स्कूल को विजिट करना चाहे भामाशाह का हिसाब से आकर देखे बच्चों को और उनका हुनर को आगे बढ़ाइए। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत छात्रा उपस्थित है, तो अपना आवाज सुनाएंगे, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद वो भी समझदार बन गए और समझदार बन के सभी एक ही साथ इतना बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत खुशी लग रहा है। और इसका श्रेय तो संस्था को जाता है, संस्था का संस्था प्रधान और हमारा जो साक्षी दृष्टा रूप में हमारा सर उपस्थित है, सर देख रहे थे कार्यक्रम को। सर आपका परिचय दीजिए, बच्चों को एक वार्म अप हो जाएगा, बच्चे भी आपका आवाज को सुन के।
1: मैं इंदुराम देवासी, वाइस प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरली।
0: सर आज अचानक कोई सूचना नहीं था, फिर भी अचानक आए, अचानक में एवर रेडी रखकर हमें सहयोग दिए, तो ये आपका शब्द मेरा पास नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इतना दुरुस्त जगह से आए, इतना बच्चे एक ही साथ हाँ जी का पाठ किए, इसका श्रेय किसको जाएगा सर?
1: आप लोगों ने जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया और ईश्वरीय ज्ञान के बारे में व्यावहारिक जीवन के बारे में जो बच्चों को जानकारी प्रदान की, इससे निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित हुए हैं और उनका जो आत्मविश्वास है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़ेगा।
0: सर आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में पहले आपको मालूम था ये एक संस्था है, जैसे आपका राजकीय विद्यालय सबको पता है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम कभी सुना है? ओम शांति को जानते हैं,
1: ब्रह्मा कुमारी के बारे में पहले से परिचित थे और हमारी विभाग की कहीं बैठकें वगैरह भी वहाँ हो रखी है, तो देखने का मौका मिला है जरूर जी।
0: तो आपको कितना आध्यात्मिक विद्यालय देखे, और ये तो राजकीय विद्यालय, तो दोनों विद्यालय का सहयोग जो मिलेगा तो बच्चे आगे शारीरिक शिक्षा का साथ चरित्र निर्माण भी हो पाएगा, और इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोशिश है रेडियो मधुबन का द्वारा आपके पास हम पहुंचे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज को भी रोक नहीं पाएंगे, एक प्रार्थना सत्र में सभी बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सब सुन पा रहे खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेली का आवाज।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर को धन्यवाद देते हैं और ब्रेक का पहला में वार्म अप करा दिए। तत्पश्चात चलिए बच्चों को थोड़ा आवाज सुनेंगे। अपना नाम और कौन सा स्कूल से?
2: श्रीमान, मेरा नाम जीना कुमारी है। मैं कक्षा 12th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरली पिनवाड़ा।
3: श्रीमान, मेरा नाम पिंटी कुमारी है। मैं 12th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ली है।
1: आप कहाँ से आते? फली का नाम बताओ, गांव का नाम।
3: मैं वर्ली हॉस्टल में पढ़ती
1: हूँ। हॉस्टल, हाँ, तब तो इतना आवाज हो। तो हमारा श्रोता मित्र, हमारा जो आदिवासी समाज के जो बच्चे सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे, जरूर हॉस्टल में पढ़ाने से बच्चों का उमंग उत्साह आता है। तो हॉस्टल में बहुत कुछ शिक्षा होता है। नेक्स्ट।
4: श्रीमान, मेरा नाम पैपी कुमारी।
1: कौन सा क्लास?
4: 12th
1: क्लास, ओके।
5: श्रीमान, मेरा नाम रवीना कुमारी, क्लास 12, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरली पिनवाड़ा।
1: हॉस्टल में रहते हैं आप भी?
5: हॉस्टल में।
1: आपका प्रॉपर गांव? हमारा गांव का नाम
5: सिवेरा।
1: सिवेरा, वाह। नेक्स्ट।
6: श्रीमान, मेरा नाम आमली कुमारी है।
1: और कहाँ से?
6: जूनाबेड़ा से।
1: जूनाबेड़ा, वाह। हॉस्टल में रहते तुम भी?
6: हाँ।
1: हॉस्टल में रहने से संगठन का जो बल है, जो देखने मिलता है, एकता है, होता है। चलिए उसका साथ ही हमारा सभी बच्चे नाम का साथ साथ देंगे। एक गीत प्रस्तुत हो गया, ठीक है।
7: या।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति स्वर और लय का साथ सबको स्तब्ध कर दिया और आध्यात्मिकता जो शांति खुशी आनंद स्वर लय और साथ इतना बच्चे सामूहिक रूप में जब प्रस्तुत किए ये तो एक दिन का प्रयास नहीं होगा, बहुत समय का प्रयास। और खासकर मुझे लग रहा सभी उनका ड्रेस कोड से पता चलता है यूनिट एकता समूह में जो एकता सही में बच्चों का अंदर में एक ने बोला सब ने हाँ जी और हमने बोला भाई आश्चर्य हो गया बच्चे तो मैं बोलने के पहले सर हम कितना समय तक बोले हम तो कर सकते हैं क्योंकि हमें अभ्यास है और हमें करते हैं तो बहुत खुशी का बात है। और इसका श्रेय तो माता पिता को जाता है और हम इतना दूरस्थ जगह से आए आबू रोड से आपके लिए आपका भजन के लिए तो आपका आवाज ही आपका पहचान आपका विद्यालय का पहचान और आपका व्यक्तित्व का पहचान मिला है। और हमारा श्रोता मित्र जरूर मैंने पहले भी बोला था इस पर विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों को जाते कोई बच्चे उल्हाना ना दे ब्लेम नहीं करे जे हमारा पास रेडियो माध्यम आया नहीं और हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचाया नहीं, बच्चे कभी उल्हाना नहीं देंगे जे आपका विद्यालय में भी रेडियो माध्यम इस तरह कार्यक्रम को लेकर आपका विद्यार्थी विकास में आपका हुनर को आपका प्रतिभा को आज पहला बार इतना बच्चे एक ही साथ किए ये इसका श्रेय तो हॉस्टल को जाता है छात्रावास को जाता है और उनका जो प्रभारी है जो इनको गाइड करते हैं उनको जाता है। क्या नाम बताएंगे ये सब प्रेरणा एकत्रित होने में कौन आपको आगे बढ़ाया बा कौन प्रेरणा का उसका नाम क्या है कौन बताएंगे? हाँ सर बताएंगे।
1: ये हमारे स्थानीय विद्यालय की बच्चियां है
0: जी
1: वर्ली की और इसमें कुछ बच्चियां यहाँ पास में जो टीएडी का हॉस्टल है
0: जी सर
1: जनजातीय विभाग का तो वहाँ पे भी रहती है और कुछ यहाँ जैसे दूर दराज से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से भी आती है। हमारे जो वर्ली पीओ के अंदर 10 से 11 स्कूल है।
0: क्या बात,
1: बिल्कुल प्राइमरी स्तर के हैं, एक दो स्कूल अपर प्राइमरी स्तर के भी हैं तो वहां से पास आउट होने के बाद में इस स्कूल में आते हैं। और अभी जो इन्होंने सामूहिक जो प्रस्तुति दी है ये हमारे संस्कृत साहित्य के स्थानीय विद्यालय के अंदर अश्विन जी व्याख्याता है वो इनको ये सारे श्लोक वगैरह का अभ्यास करवाते रहते हैं और बच्चे बड़ी रुचि के साथ में उसमें भाग लेते हैं और इनका बड़ा अच्छा अभ्यास है, ये और भी गा सकते हैं।
0: अरे वाह, वंस मोर और एक गीत होगा संगीत में, है ना बच्चे रेडी सभी? हाँ जी यस सर। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आवाज को बुलंद करके दूसरा आवाज सुनेंगे और अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सब सुन पा रहे शाम को इस कार्यक्रम को। और खासकर जहां भी जाते हैं सभी बच्चों का आवाज लेते हैं और सबको अच्छा लगता है। तुम अपना नाम बता देखिए।
2: भावेश।
0: कहां से आता है भावेश? सबला फरी। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर बच्चों का आवाज अचानक में आए, कोई सूचना नहीं था, प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे एवर रेडी, सदा जागरूक हुए हुए। तो इस कार्यक्रम को साझा निकल हमारा साथ एक परी आई है, परी को भी स्वागत करेंगे, जिसका नाम प्रीति है। प्रीत सबका साथ रखना चाहिए, तो हमारा प्रीति अपना बात को रखें। मैं कहूँ तो कम होगा क्योंकि पहला बार मिले, पहला बार मौका मिला। तो प्रीति अपना बारे में थोड़ा बताओ, आपको मान लीजिए आपका पहचान क्या है।
3: मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं गुकाश गांव से हूँ
2: जी,
3: और मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
2: ठंडी
3: बेरी।
2: ठंडी बेरी, यहाँ से कितने किलोमीटर ठंडी बेरी दूर उस जगह है?
4: 12-13
2: किलोमीटर है। कोई बात नहीं, ठंडी बेरी हमको भी जाना है स्कूल में। ठंडी बेरी दोस्त ठंडी बेरी है, एक तो ठंडी बेरी और एक पाली। चलिए बहुत अच्छा नाम तुम्हारा, ठंडीबेरी दो होने के चलते हमें कंफ्यूज हो रहा था कौन सा ठंडीबेरी। तुम सिरोही ठंडीबेरी में जाते जाते पाली वाली ठंडीबेरी में पहुंच गए थे एक बार, क्योंकि हम पहला बार आते, कोई उलाना ना दे, इसलिए सभी स्कूल में ठंडीबेरी में भी प्रोग्राम किए। तो चलिए, हमें ठंडीबेरी से हमारा एक छात्रा उपस्थित है जिसका नाम प्रीति है। तो कौन सा प्रस्तुति सुनाएगी, एक प्रेरणादायी गीत हो चाहे जो भी उनका मन में भाव का साथ प्रकाशित करेंगे। तो सुनिए हमारा श्रोता मित्र, ध्यान से सुनाइए।
3: श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, दोनों का

0: कृष्ण कहो दोनों का मतलब एक ही है।
1: सुंदर प्रस्तुति और सही में भक्ति भावना में ओत प्रेत होकर दिल का तार हृदय का तार भगवान तक पहुंचता है, परमात्मा तक पहुंचता है। और इस तरह बच्चे कार्यक्रम के भाग लेते हैं बढ़ चढ़कर, और हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब देते हैं प्रस्तुतियां, उनको मौका मिलना चाहिए। आज प्रीति को मौका मिला, प्रीति का चलते हम सब भगवान परमात्मा का साथ प्रीत निभाए, प्रीत निभा दिए सभी ने, तो बहुत अच्छा। सबका दिल का तार परमात्मा तक पहुंचा, राम का साथ, राम कहे चाहे खुदा कहे चाहे अल्लाह कहे चाहे भगवान कहे, वो तो एक ही है, सबका मालिक है। और प्रीति हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप का आस है जो हमारा प्रीति जाकर हॉस्टल में रहे, तो क्या लक्ष्य रखे जीवन का एम, लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण दिखाई देगा, जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे। तो क्या सोचा माँ बाप का आस को पूर्ण करने के लिए, क्या चाहते हैं आप बड़े होकर, क्या बनना चाहते हैं?
0: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: क्या बात है,
0: ये मेरा मकसद है।
1: वाह, और जो सोचे हैं मन में उसको ठान लिया, बुद्धि बोलेगा यस यू कैन, आप कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर तो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन उसको कोई भी रास्ता में विघ्न आए, समस्या आए, कोई तकलीफ आए, उसको पार करना है, बुद्धि का काम है। चलिए बहुत अच्छा बात बताए, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। और जो भी भामाशाह सुन रहे, कोई भी मदद होगा, कुछ मदद चाहिए भामाशाह से, माता पिता से, शिक्षक से, क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना।
0: हाँ।
1: प्रीति मेहनत करते हैं?
0: हाँ।
1: कितने घंटा मेहनत करते हैं प्रीति? स्कूल में तो 5 घंटा पढ़ाई होता है, इसका 7 क्या करते हैं हॉस्टल में? अच्छे से पढ़ाई करते हैं।
0: हाँ।
1: जरूर कमाई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: एक का बाद एक आवाज को रोक नहीं पाए। और मैंने पहले भी बोला था, जब सर वार्म अप करा दिए, पहले स्टार्टिंग कर दिए, सभी बच्चे भी बड़े को देखकर सीख जाते हैं, घर में भी सीख जाते हैं, लेकिन आज इतना दूरस्थ जगह में आए, आदिवासी बेल्ट में आए, प्रकृति का गोद में बसा हुआ गांव है और हॉस्टल यहाँ जनजाति छात्रावास जिसमें बच्चियां रहते हैं, हमारा होबनार बच्चियां परियां, तो एक लोकगीत हो और ये नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, एक आदिवासी लोकगीत जो कहते फेमस लीला मौर्या। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का। हमारा जो मुखिया है, कौन, क्या नाम है?
2: सोनिया।
1: हाँ, सोनिया, सुगना और सुरेश, ये तो भरमार है, और स्कूल में और गांव में सोनिया सुगना नाम रोशन करते हैं। और उसको धन्यवाद, उनका माँ बाप को भी धन्यवाद जो नाम किए। तो शुरू करिए, शुरू, सब बच्चे रेडी? यस सर।

0: बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति। हम आने का सफल हो गया, आने का सार्थक हो गया। इतना दूरस्थ जगह में और हमको आदिवासी गीत मिल गया, और एक नहीं दो नहीं पूरा अनगिनत सभी बच्चे को दिए। और हॉस्टल का बच्चे तो छात्रावास इसलिए बच्चे आते हैं, और उनका अनुशासन, बोलने का तरीका और संगठन का बल, एकता देखने को मिला। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। और किसी स्कूल का हो, चाहे मनरेगा माताओं का जो गीत है, आदिवासी गीत आपके पास रखते हैं, और प्रशासन गांव के संघ के कार्यक्रम को भी आपके पास रखते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, सभी को धन्यवाद देते हैं। और हमारा सर को कौन भूल पाएंगे, स्टार्टिंग में वार्म अप कर दिया और लास्ट में भी क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम शुरू किए और अंतिम में सर क्या कहना चाहेंगे, आप देखें बच्चों को, हमको देखें और हमारा कार्यक्रम को देखें, विष्णु पिता महोदय से, क्योंकि कर्णधार है, संस्था का वाइस प्रिंसिपल है। तो सर आप एक शब्द में क्या वार्ता, क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों का, माता पिता को हो, चाहे रेडियो मधुबन को हो, चाहे खुद को हो।
1: बिल्कुल, आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा है और बच्चों को मंच मिला है, क्योंकि ये एक ग्रामीण अंचल है और यहाँ दूर दराज में इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं। तो बच्चों में यद्यपि शुरुआत में थोड़ी एजिटेशन थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको मोटिवेट किया तो ये सहज रूप से जुड़ते गए और इन्होंने अपने मन के भाव, वो भले श्लोक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और इनका जो आदिवासी क्षेत्र में जो इनकी संस्कृति से संबंधित लोकगीत है उनकी प्रस्तुति के द्वारा इन्होंने कार्यक्रम के अंदर सहभागिता की है। मैं ब्रह्मा कुमारी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आत्मा, परमात्मा और विभिन्न जो आध्यात्मिक विषय हैं जिनके बारे में बच्चों को बहुत गहनता से बातें बताई। निश्चित रूप से बच्चे एकाग्रता के साथ में अपने अध्ययन को कर पाएंगे। जिस तरह से उनको मेडिटेशन के बारे में बताया, आज के समय में बहुत जरूरी है, जबकि सोशल मीडिया और फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह के इस्तेमाल करने से बच्चों की कहीं ना कहीं एकाग्रता भंग होती है और समय का जो सदुपयोग नहीं कर पाते। तो आज वास्तव में व्यवहारिक पहलू पर इनको बहुत बढ़िया से मोटिवेशन मिला है, इनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। तो ये जैसा कि प्रति ने बताया कि मैं भविष्य में बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ,
0: कॉन्फिडेंस,
1: बिल्कुल उसका जो कॉन्फिडेंस है और इसमें जो ये बात बताइए, तो निश्चित रूप से वो उसके अनुरूप मेहनत करे तो बन भी सकती है। तो पुनः मैं ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे एक बिल्कुल पिछड़े और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र के अंदर बच्चों के बीच में आए और उनकी आवाज को बहुत दूर दूर तक फैलाने में, पहुंचाने में जो योगदान है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो सुना श्रोता मित्र, लिसनर्स, ऐसे जब जाते हमें क्या चाहिए, एक हमारा कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए सर भी, हम जैसे बच्चों का भाव को, भावना को जन जन तक पहुंचाए सर भी, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और रेडियो मधुबन का गतिविधि को जन जन तक जो पहुंचाने के लिए शुभेच्छा दिए, प्रेरणा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपको, आपका स्कूल को और आपका विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हैं। आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बच्चे से हम थोड़ा बात करेंगे, जो बच्चे इससे प्रेरणा लेकर आज का कार्यक्रम को, चाहे आत्मा प्रबंधन हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो, आत्मज्ञान हो, उसमें कौन बहुत चीज बोलना चाहेंगे, दो शब्द बोलेंगे, तो क्या आज सीखा, क्या नहीं था और क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, तो एक बच्चे हमें अपना नाम बताएंगे और क्या आज प्रेरणा मिला, क्या सीख मिला, बताओ तुम्हारा नाम और।
2: मेरा नाम पिंटी कुमारी है।
0: आज जो कार्यक्रम हुआ तो आपको क्या सीख मिला?
2: हमें आज सीख मिला कि हम कौन है, ऐसे हमारे बारे में सीखना।
0: हाँ, हम कौन है और हमारे बारे में, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना, मैं कौन और मेरा
2: कौन,
0: मेरा तो एक ही है गिरिधर गोपाल मेरा तो परमात्मा, मेरा तो बाप है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए लेते हैं आप।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानती हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हों। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं, इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इन्वाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे तो। हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, और वहां का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
1: हाय संदीप, थैंक यू सो मच। आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी, एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
1: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने लिखा था।
0: पता नहीं, अभी तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
1: सो ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ, एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई। तो मेरी काफी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, लाइफ से लेके, इस विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके, जो आई थिंक सबके साथ होती है। कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले, तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा। एंड एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले, तो
0: अच्छा।
1: हाँ, बिल्कुल दिल वालों की दिल्ली बन गई।
0: दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
1: यस, टोटली।
0: तो थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी, और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: Sure. So, I come from a business family,
0: ओके
1: and मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है, और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो यूएस में सेटल्ड है.
0: ओके
1: तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ, एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी स्टिल कनेक्टेड. बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन,
0: ओके
1: एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी. एंड
0: अच्छा
1: या एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें मेरे को चेक भी कराया था, और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद एमडी है. लेकिन जब सेकेंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा. तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज़ तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज ही
0: एग्जैक्टली
1: ज्यादा समझ
0: एग्जैक्टली
1: आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल. फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो उसमें आई चेकअप भी होता था, और वो मुझे सबसे डरावना लगता था, क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्कैरी थी, और मेडिकल रूम के होती आई गेस. एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना, तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
0: और उनको पता भी
1: कैसे.
0: नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है नहीं दे पा रहा है,
1: राइट.
0: तो उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
1: हाँ,
0: नॉलेज नहीं होता.
1: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, जान पूछ के तंग करने के लिए. बट तो यही सिलसिला चला, और हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे. तो जब मैं 9 ईयर्स की थी, तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही. तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी, उनको ही वापस दिखाया. तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है. फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए, और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है. तो तब हम लोग का वहां से शुरू हुआ, बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से. एंड तकलीफें बहुत रही, क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा, रही टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभाले, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी. तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी.
0: नहीं थी.
1: बट

0: राइट. एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी, और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया. क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर्स और ये सब अवेलेबल है. और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया.
1: अच्छा
0: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई. वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी, क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
1: वर्किंग थी
0: उसने
1: राइट
0: मेरा तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया. जब कुछ चीज़ ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी. तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ. फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई. अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा.
1: अच्छा
0: इसी वजह से, क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी. और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था. उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं.
1: ये जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया ये कब की बात रही होगी?
0: 2010 की.
1: 2010 की बताइए, मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए वहीं पे प्रॉब्लम हो गई।
0: बिल्कुल. एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल में कितने छोटे
1: होते
0: छोटे होते हैं, फिर भी
1: हैं
0: सबने इतना सपोर्ट किया. और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं
1: एग्जैक्टली
0: जाके. तो वहाँ पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोप अप भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ. तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीज़ें बहुत की, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था. मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी.
1: अरे वाह,
0: मैं काफ़ी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे. बहुत मज़े आते थे मुझे.
1: उस समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
0: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे. तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था. तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे. तो तब वहां से
1: क्या
0: मेरा शुरू, और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना.
1: बात है।
0: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो, इमीजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए. उन्हें हमेशा पुश किया टू डू मोर.
1: बेसिकली वो 5 से 5 6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
0: नहीं, क्रिएटिव
1: आपका
0: फील्ड से
1: क्रिएटिविटी
0: मैं
1: आपकी पूरी तरह से चालू थी।
0: मैं डांस भी सीखा, पियानो सीखा, मैंने और काफी कुछ किया होगा, मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम मेरा काफी एफ, मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था
1: हाँ तो पता
0: कुछ.
1: नहीं था ना कि ऐसे किसी दिन इंटरव्यू में भी बताना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बट हाँ, लकीली बस इसके आगे छोटा ही है कि लकीली बस 2019 में जाके सोचा नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, आगे कुछ हासिल करना जरूरी है. तो मैंने बस सोचा, वापस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, खत्म किया. फिर एक विजन एड करके एक वो है एनजीओ, वहां से मैंने अपना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया. एंड देन आई वाज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विथ अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 इयर्स. और उसके साथ साथ मैं काफी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए. और एज आई सेड, क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है. तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज का काफी शौक है. लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले, तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था. सबसे पहले हमारी
1: बात,
0: बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर शुरू
1: क्या बात है।
0: हुई थी.
1: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
0: यस. तो आई थिंक
1: तो
0: लास्ट, आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट?
1: हाँ जी जी

0: तो आज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ, सो ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे और वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
1: ठीक से कर रहे हो
0: सिचुएशन
1: कि नहीं कर रहे हो?
0: ये तो हाँ पूछना बनता
1: आगे ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता चला।
0: नहीं, एक्चुअली फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से. सो ही हैज इज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स. एंड
1: अच्छा।
0: हमारे काफी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस. तब हम
1: काम
0: दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए.
1: करना चाहिए। बहुत सही।
0: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल. एंड मेन स्ट्रीम के तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सकें. तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया। क्या
0: यस
1: बात है। और अभी कुछ आपको है आई साइट या नहीं? अभी टोटल लॉस?
0: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है. सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं
1: ओके
0: दिखता,
1: ओके
0: थोड़ी
1: ओके
0: बहुत
1: ओके
0: लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस.
1: चलिए। अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन पीयूष जी
0: यस
1: कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर। पीयूष जी,
2: हाँ जी
1: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस।
2: हाँ संदीप जी. तो मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था. सिमिलर स्टोरी है घर में. जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए. तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बताया था. थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम. तो
1: जी
2: उनको थोड़ा डाउट होने लगा. फिर डॉक्टर, कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया. तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई मैक्यूलर डिजेनरेशन. पहली डायग्नोसिस थी उस समय. और
1: अच्छा।
2: उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था. तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था. इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड दे के वैसे मैनेज किया. फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली क्या
1: अच्छा।
2: होता है ना, जब आपका साइट, आपको नहीं पता, एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है. तो उसमें क्या होता है, आपको भी नहीं समझ आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड. कहीं ना कहीं आई साइट, वो तो पता है कि नेचुरली आई साइट वीक के कारण, अब हमें पता है कि चलो ठीक है उसके कारण हो रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो गया, कि मुझे मुझे नहीं दिख रहा, आई थिंक मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है.
1: प्रॉब्लम है, राइट।
2: तो और टीचर्स ने भी कभी मतलब आई थिंक काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जरूरत होनी चाहिए. और ये मैंने उस
1: एग्जैक्टली।
2: समय, हाँ उस समय रियलाइज किया. पर और जैसे मेघा का है, मेघा को स्कूल में स्पेशली इनिशियली मुझे इसको बहुत सपोर्ट मिला. मेरा इनिशियल फेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था. टिल सिक्स
1: अच्छा।
2: स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है वो, मतलब. तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट था सिक्स स्टैंडर्ड तक. फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ. तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ. तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आंखों में आंखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर रहा पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा. तो वो बोले दूसरी तरीका को कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है. तो
1: अच्छा।
2: फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई. पेरेंट के सामने, मतलब
1: बताइए,
2: कितनी
1: हद
2: कितनी
1: है, मतलब
2: इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट
1: बताइए,
2: के लिए।
1: मतलब कोई, हाँ मदर बैठी हुई हैं और आपको एटलीस्ट कम से कम, चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय, फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने 7th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज कराया। और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशियली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चों को समझाने। और वहाँ पे एक और चीज़ मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स की
1: अच्छा,
2: काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले।
1: क्या बात है।
2: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ 7th स्टैंडर्ड में। और Day 1 से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीज़ें बदल गई, वहाँ भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में। तो पहले 2-3 साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं।
1: आगे
2: तो
1: बढ़ाएं जी।
2: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से, मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप, मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होते टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से, वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
1: जी
2: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन, मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाए। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे। 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल, जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
1: वाह, क्या
2: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया। फिर
1: बात।
2: ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने
1: अच्छा,
2: एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टालनी या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो तो पता ही था हमें। तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी IIM रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में।
1: डेफिनेटली
2: तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला मुझे स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला चलो ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ अगर टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
1: कौन से ईयर में आपने IIM किया पीयूष जी?
2: 2013 से 15, 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
1: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
2: हाँ, पर आप ये
1: तो
2: नहीं, मतलब
1: वहां का
2: ऐसा
1: एक्सपीरियंस तो कैसा, थोड़ा बताएं वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
2: बिल्कुल
1: IIM का,
2: बिल्कुल
1: क्योंकि हर
2: बिल्कुल
1: कोई जा नहीं पाता IIM, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
2: हाँ
1: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
2: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था, पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड इस टाइम से मेरे मन में हमेशा था कि मुझे MBA करना है, पता मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि MBA करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था। तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे, वो उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूंगा। वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू IIM रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, डे वन से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट अब मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी यहाँ तक मैं, इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे।
1: क्या बात है।
2: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए ही वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे, पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
1: ट्रस्ट,
2: वापस दे तो
1: मतलब
2: दे देगा ना।
1: वो उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई, और मैंने उनको बहुत मैं दो क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ द बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया, तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट मैं भी मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
1: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका, या कुछ था आई साइड
2: मतलब
1: आपको?
2: आप समझ लो 5%, 4-5% कुछ
1: और
2: साइट बची
1: अभी?
2: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है, लगभग 1-2% साइट
1: अच्छा,
2: मेरा है।
1: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं। अच्छा, फिर ये वहां से IIM से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
2: हाँ,
1: रन करने के बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत हुई?
2: ये मैंने एक्चुअली सोचा IIM करते हुए, जब मैं
1: अच्छा
2: IIM में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था, तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो, और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में, तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया, और कई लोग मेरे से पूछते भी थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं, पहले तो उनको पता आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था, मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया, और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है, स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था, और फाइनेंशियल एडवाइस, पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को, तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है, तो वही मेरा एक्चुअली मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ, मुझे जॉब करने की
1: वाह,
2: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
1: बिल्कुल सही।
2: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने MBA फिनिश की, MBA के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था, वो मैंने फ्रांस में किया था, ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने, वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही जो मेरा रूममेट था इधर IIM रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो 3 महीना हमने
1: वाह,
2: वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली। तो फिर मैं जब वापस आया 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है. इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, या अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा. एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया. अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए. मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ NRI क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ. मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं. और
1: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
2: जॉब अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में. अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डे वन से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो डे वन से. पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे.
1: वेरी गुड, चलो करेंगे. अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास. चलो चलिए, वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमराही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से. तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर, तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है. तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
0: ये हम आज ही दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा.
1: थोड़ा थोड़ा, हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत
0: सो
1: कहाँ से हुई मिलने की?
0: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी. इवन इन 2024 तक यही सच था. व्हाट्सएप
1: अच्छा.
0: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट, बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना. फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, और हम उनके फ्रेंड के ही रुके हुए थे. सो आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है. तो कहती है तुम यू नो यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
1: सही है.
0: मिलता है ना. तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना एनजीओ है, दिल्ली में रहते हैं, और इनके काफी फ्रेंड्स और काफी गेट टुगेदर्स और फंक्शंस होते हैं, तो आपको मिलने को बहुत लोगों से मिलेगा. तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल. तो वो एक किसी का नंबर दिए, एंड मैं वापस आई, उनसे बात हुई, एंड उनका एक गेट टुगेदर हो रहा था सितंबर में. तो उन्हें बोला कि यू नो आप व्हाई डोंट यू कम, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, 13-14 लोग हैं, एंड उसमें ना काफी सारे मैरिड कपल्स भी हैं जो दोनों
1: अच्छा.
0: ही विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, और बहुत अच्छा, वेरी एजुकेटेड ग्रुप, सब वर्किंग है, अच्छे से इंडिपेंडेंट हैं, तो और सब मेरी एज के ही थे. तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं गई, 2 दिन का प्लान था.
1: सिस्टर के साथ गए अकेले? अरे
0: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ सारे विजुअली
1: अच्छा.
0: इम्पेयर्ड ही थे. और वो मेरे, नहीं अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना यहाँ, वैसे भी यूएस में है, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे
1: जरूरी
0: अकेले
1: है,
0: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता.
1: निकलता बिल्कुल सही
0: हाँ,
1: है.
0: और अब जॉब भी कर रहे हो, तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग.
1: कहाँ का ट्रिप था वो मेघा जी?
0: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने एक, हाँ जी,
1: ओके
0: गुड़गांव में एक
1: ओके.
0: होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं, तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन. तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
1: हाँ
0: को
1: वही,
0: बोल
1: मैं भी मन में वही सोच
0: के.
1: रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा.
0: देखो चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है, प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो यू नो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
1: आपकी
0: अच्छी
1: तो कहानी
0: फैमिलीज.
1: सिमरन से बहुत मिलती जुलती है. अच्छा
0: हाँ, तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया था.
1: चलो राज पता नहीं, राखे जा जरूर आ गया।
0: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना। बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, और मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ। तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी, तो
1: अच्छा
0: हाँ, और ये भी वहां सबको जानता था, तो ये भी इनवाइटेड था। तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना त्यार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया। वहां पे एकदम एंट्री मारी
1: ओहो
0: एंड हाँ बिल्कुल आया, एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन, आपको फील होता है हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है।
1: मतलब कुछ तो
0: हाँ,
1: है।
0: ये पीयूष
1: कुछ
0: को
1: है
0: ज्यादा
1: कुछ
0: लगा था वैसे, आप इससे पूछना जब
1: है।
0: इसकी बारी आएगी। एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम
1: लेकिन
0: एक दूसरे
1: आपको तो
0: के,
1: कुछ पता थोड़ी था कि ये सिंगल है, कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको। लेकिन
0: सिंगल था ये पता था, क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, और बाकी सब हम सिंगल ही थे। एंड
1: अच्छा, मतलब
0: हाँ
1: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है या बायो क्या है, वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिला के।
0: नहीं, सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई है, चंद्रशिला ट्रेक के लिए गए थे,
1: अच्छा,
0: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है।
1: बहुत शौक है, राइट।
0: तो आई वाज लाइक एक VI कम्पलीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था बिल्कुल, दो तीन चार चीजें,
1: और आपने
0: तो
1: सोचा होगा यार यूट्यूब पे जिसको देखा वो यही मिल गया।
0: हाँ बिल्कुल। ये अच्छा टाइम है पूछने का कैसे। तो जब इससे साइड बाय साइड हम बैठे थे, इससे बात होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ सोच के बात शुरू किया नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से भी नहीं थे, एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी दिल्ली छोड़ के यू नो जाऊंगी,
1: कहीं
0: तो वो
1: जाऊंगी।
0: क्वेश्चन ही नहीं था कभी। बट मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए कैसे ट्रैक कर रहे हो और क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बस बात शुरू हुई और हमारी बात होती गई, और हमें अच्छा लगा एक दूसरे का कंपनी, तो नंबर शेयर किए, फिर वी स्टेड इन टच, एंड फिर बस चीजें बदलती गई, तो दिस इज हाउ वी मेट। एंड
1: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका। और पीयूष
0: यस
1: जी,
2: हाँ
1: आपको
2: जी,
1: भी कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था?
2: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6-7 बजे, 8-9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज़्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
1: अरे भाई
2: बाय
1: साहब,
2: साइड बैठ के।
1: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा। गेट
0: हाँ वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा।
1: टुगेदर जो है सफल हो गया।
2: बिल्कुल नहीं, मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ दो तीन लोगों को ही जानता था, फिर आई थिंक बिजनेस के वजह से ही, काम के वजह से ही, पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज ने, जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा, तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में, हाँ
1: उसी ट्रिप में
2: नहीं
1: नहीं
2: उस
1: नहीं
2: ट्रिप में, ये
1: उससे
2: थोड़ी
1: पहले
2: थोड़ी
1: पर्पल
2: पुरानी, उससे आई थिंक
1: फेस्ट के
2: उससे
1: टाइम ना, उससे
2: 2 साल,
1: पहले
2: मतलब हम मिले 2024, ये 2022 की बात, टू
1: की बात है। ओके।
2: थाउजेंड में हम, मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ, फिर जॉर्ज के साथ, तो मैंने जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है, फिर उन्होंने मुझे एक बार ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में,
1: जी
2: 2024 में उन्होंने जनवरी के महीने में
0: हाँ,
2: हुआ
0: सेम
2: था,
0: योर, हाँ
2: हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए, और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर। तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस, तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा, और गोवा में ही, आई थिंक गोवा में जब हम मैं गया था तभी मैं सबसे ज्यादा लोगों से मिला। और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सको, चीजें डिस्कस कर सको। तो वहां पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले और वहां से फिर मेरा काफी इस कम्युनिटी में भी काफी जान पहचान लोगों से हुआ। और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से। और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ। और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई। ये वो
1: हाँ
2: भी थोड़ा डिग्रेस हो गया। आई थिंक ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वहीं मिला था। सो द सेम ईयर जब मैं उस पूरे
1: बताइए
2: ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
1: कहाँ
2: फेस्ट पे मिला।
1: कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
2: सही में
1: गुड़गांव।
2: सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है, लिखा होता है, तो हो ही जाता है। बिल्कुल।
1: हाँ, तो हम थे गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के,
2: हाँ
1: और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा?
2: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देखिए हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती। पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं, और शादी की सोचे। हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे, और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं।
1: अरे
2: आप
1: भाई
2: समझ लो
1: साहब,
2: ऐसे,
1: इसने
2: या आप समझ लो नवंबर,
1: डिसाइड
2: चलो इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है, 15 दिन बाद इसने
1: किया
2: डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो
1: था। अच्छा।
2: मतलब
1: हाँ नहीं,
2: आप
1: मैं
2: समझ
1: वही
2: लो
1: पूछ
2: दो
1: रहा हूँ,
2: महीने
1: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले।
2: इसने प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में, आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है।
1: नहीं कि
2: एंड आई
1: मुझे
2: थिंक
1: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है।
2: नहीं, सही बात है। आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो, एक होता है आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा होता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है, फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता। एंड ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो इसको यू नो किसी चीज में कन्वर्ट करा जा सकता है। बट आई
1: हाँ यार,
2: थिंक
1: मेघा जी, मैं पूछने वाला ये था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी को नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
2: बिल्कुल, आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा। काफी कुछ हम कर रहे हैं एवरीथिंग। और मेरा क्या था कि, और ये आई थिंक काफी लोगों का होता है, हम आई थिंक पहले भी इसके बारे में आप और हम शो से पहले बात कर रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो के आपको ये लगता है यार कोई साइटेड मिल जाए। और ऐसा ही था, मतलब पहले, और मेरे, एज आई सेड राइट, मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स या कम्युनिटी में कोई कनेक्शन था नहीं। मैं हमेशा मेन स्ट्रीम,
1: आपके सर्कल में मेन स्ट्रीम के लोग ही थे।
2: राइट, तो हमेशा वही रहे हैं और वही मेरे लाइफ का पार्ट भी रहे हैं। उसी ग्रुप में, मतलब फ्रेंड्स के साथ, साइड फ्रेंड्स के साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट कभी कुछ पैन आउट हुआ नहीं। फिर एक सर्टेन एज के बाद आके तो यही लगा कि देखो, शादी जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए तो नहीं करनी थी, करती तो इसलिए करती कि हाँ कोई सच्चा मिला तो। एंड जैसे सबके साथ होता है, मेरे पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज में भी किया, जैसे पोर्टल्स वगैरह पे 2-3 लोगों से मिली, कुछ साइटेड, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से। पहले तो पेरेंट्स का यही था कि नहीं, साइटेड से ही करो, तुम दो विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मैनेज करोगे, जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होगी। और वही मेरा भी माइंड फ्रेम था, बट और फिर काफी लोगों से मिली, बट किसी से कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके यही सोच लिया कि ठीक है, नहीं होएगी तो नहीं होएगी। यू नो, अब ठीक है, कभी कोई मिल गया तो देखा जाएगा। अरेंज मैरिज तो नहीं करूंगी, और बाकी कुछ होगा तो वील सी इन द फ्यूचर। तो वही माइंडसेट हो भी गया था। एंड पेरेंट्स भी आई थिंक यही सोच लेते कि ठीक है, हमारे साथ खुश है तो हमारे साथ ही रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी माइंडसेट में ही आई थिंक चलते चलते, बट सडनली
0: पीयूष के साथ दैट जस्ट हैपेंड कि वो एकदम क्लिक हुआ, ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ कि बस 2 महीने में ही सब कुछ हो गया, सोचा ही नहीं कि अरे 2 साल की जरूरत भी है। अब
1: डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगा मेगा जी? नहीं,
0: इतना टाइम तो चाहिए। दो दो महीने से कम तो बहुत कम है।
1: पीयूष ने कहा ना 15 डेज बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
0: अब थोड़ा टाइम तो लगता है। अब एक्चुअली जैसे
1: जब कभी मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे?
0: हाँ वो तो था ही ऑफ कोर्स। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट या किसी को लाइक करता है या नहीं करता। जब हम मीटिंग हमारी हुई, हमने काफी बात की, तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है, जैसे आपने पूछा भी था ना इस सेट की, तब वहां सब सिंगल ही थे। बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है, और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है। तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे, एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही। फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हो, खुद ही बोल दे तो सही रहेगा।
1: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना
0: हाँ
1: पड़े,
0: तो देखो
1: अपना
0: लाइक
1: काम,
0: लाइक हाँ जी
1: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
0: हाँ सही में कि हाँ ना बोलो खत्म। तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली। एंड जब इनने प्रपोज किया, ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप, पहले शादी का था माइंड में, बट पहले देखा था कि ठीक है अभी तक मिले एक ही बारी है, मिलके थोड़ा पता चलेगा। तो ही प्रपोज्ड, एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे। उस टाइम इनको NABC का अवार्ड मिल रहा था, तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए, टाइम स्पेंड कर पाए। तो उस टाइम बस मिलके लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार, जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है, इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो ही मेट माई फैमिली, मम्मी पापा से मिला, इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं, इसके भैया, तो उनसे मैं मिली, एंड हमें काफी पॉजिटिव फीलिंग आई। तो हाँ, तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है, शादी कर सकते हो इससे।
1: ओके, वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई। तो
0: लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया।
1: नवंबर से अप्रैल तक, मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
2: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था, तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ। तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो, 2 VI की शादी तो बहुत मुश्किल है, ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा, इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ढूंढ ले, भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बट ऐसे फिर और VI कपल, जो एक और VI कपल से, विजुअली इम्पेयर्ड कपल से, मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने खुश हैं, और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिलके कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके, ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं। तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला, अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था, फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं, ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए। तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया, जब नवंबर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था, उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में, बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख लें, उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है। तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले, हम ये इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे, सब मिले, और फिर वहीं ट्रिप में ही डिसाइड कर लिया। आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर लिया और फिर मई में शादी।
1: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले, क्योंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है, या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
2: देखिए पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना, मेघा ने बताया कि कुछ न किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी, इतना मैंने सोचा नहीं कभी। लेट 20s में ही मैं रियलाइज करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं, और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे, साइटेड ही देख रहे थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे, बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था। और कोई रिश्ता आता भी नहीं तो आपके मन में डाउट होता है, बोले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना, मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा, जबकि लव मैरिज अगर नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता। तो वो एक फेज था जिसमें ये था, बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए, मैं ओपन हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू
1: कोई
2: या
1: दिक्कत
2: प्रॉब्लम
1: नहीं।
2: नहीं है। और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला, समझा कि काफ़ी अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश है और काफ़ी चीज़ों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था।
1: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है,
0: हाँ जी
1: और मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं। जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों वीआई हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्या रीजन है इसके पीछे?
2: आई फील दोनों का कॉन्फिडेंस, मेघा का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये चीज़ों को कितने अच्छे से करती है, शी इज सो कॉन्फिडेंट। अगर इसको देखोगे आप, हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, शी इज कॉन्फिडेंट। और मिल के बात करने का तरीके से लगा कि कोई फील ही नहीं होता इसको कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कई बार लो लगता है कि ये मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज्ड है खुद, कई बार ऐसा लगता है, बट मेघा से मिलके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई थिंक मेघा ने भी मेरा जब ट्रैकिंग वाला स्टोरी सुना और ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
0: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है, उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है। आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते। आप ना ये सोचते हो कि ठीक है, हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में जिंदगी भर। बट वो मुझे लगता है एक कॉम्प्रोमाइज है, और वो ठीक है आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है। तो जब मैं पीयूष से मिली तो मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ
1: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
0: जी
1: और लेकिन हो सकता है 1,000 में से 1-2 लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में, बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को, यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे, उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में, तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
0: आई डोंट थिंक मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे। एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो, तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज़्यादा लगता है फील, क्योंकि एक चीज़ करते करते एकदम से उस चीज़ को नहीं कर पाना और उस वजह से काफ़ी चीज़ों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस। बट आई से हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं, तो हमें वो ही जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डिप्रेसिंग फेज और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ तो देखो
1: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हुए भी आइसोलेशन में रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए व्हेन इट कम्स टू अ वाइट केन। जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है। बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना टू वॉक विद अ वाइट केन।
1: वाइट कैन.
0: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के, नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है, और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, वाइट केन यूज करो, कितना आसान हो जाएगा. बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज है टू एक्सेप्ट. तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज को एक्सेप्ट करना. एंड अब बल्कि हम दोनों, ऑनेस्टली बताऊं तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था. बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं, हम डिनर्स, लंचेस, शो सब जाते हैं अकेले, और हम वाइट केन लेके जाते हैं. एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ वाइट केन तो यूज करना ही, और हमें वो नॉर्मल लगता है. तो
1: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है. जी
0: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि जैसे हम बिल्कुल, जैसे पीयूष भी, आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों बहुत फूडी हैं, एक तो ये कैलकटा से, हमें दिल्ली से हो, तो दोनों को खाने का शौक बहुत है.
1: शौक है ही बिल्कुल.
0: एंड हम लोग को काफी
1: अच्छा, आप
0: ऐसे
1: दोनों
0: मिले,
1: के बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इश्यू तो नहीं आया?
0: नहीं हम दोनों
1: क्योंकि
0: वेजिटेरियन
1: अच्छा फिर
0: है.
1: ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉनवेज थोड़ा ज्यादा चलता है.
2: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही, मेरे बर्थ के पहले यहाँ सेटल हो गई थी कैलकटा में. तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं.
1: वेरी
2: और
1: नाइस.
2: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं, या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है, तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीज़ें जो आपको पसंद है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर हो. और जैसे आप मान लो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक्साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है एक शादी में, या मतलब एक रिलेशनशिप में, तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है, और ऐसे कई चीज़ें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज़ नहीं है. बट जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो, तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं, और उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है.
0: मतलब ये, मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड और एक्साइटेड है, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बट वही, एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है. आई फील एज एस एक लाइक माइंडेडनेस, कंपैटिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है. अब चाहे विजुअली
1: बहुत
0: इम्पेयर्ड हो,
1: बढ़िया,
0: साइटेड हो, डजेंट मैटर.
1: काफी सीरियस बातें हो गई. जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
0: बिल्कुल किया. एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था. एंड
1: ओ
0: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया. हमने सोचा इंडिया में ही पहले कहीं सोचा चले जाए, क्योंकि इजी रहेगा, राइट? इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है. बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार, बाहर जाने का मन है तो चलते हैं, वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे. बट
1: सही
0: ट्राई
1: है.
0: नहीं है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं. तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है बाली चलते हैं, क्लोज है, अगर कुछ हुआ भी
1: इंडोनेशिया.
0: तो. हाँ जी, तो ये सोचा क्लोज है, कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं. एंड यू नो, वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए, खुद से इसने अपनी आइटिनरी सेट की.
1: क्या बात है, बहुत खूब. तो श्रोताओं, ये था आज का हमराही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेगा राखेजा के साथ. लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है. अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है, उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे, जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ?
0: ऑफ कोर्स, बिल्कुल.
2: बिल्कुल कर सकते हैं.
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने तुरंत हाँ भी भर दी. तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का. 9414151415 पर, और रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और पीयूष.
0: थैंक यू.

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मैं कमलेश माउंट आबू डूंडई गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2026 और हम सभी प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु जी। तो आज बाबा कहते बच्चे राह तो एक प्रभु ही दिखा सकते हैं, अर्थात एक बाप ही दिखा सकते हैं। लेकिन बाबा कितना भी राह दिखाने का प्रयत्न करे, माया ऐसी है जो फिर भी बुद्धि योग बाप से लगने नहीं देती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे माया से डरो नहीं, बल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। राह बहुत सिंपल है, बाबा कहते राह यही है कि अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, तो आत्मा पावन बनती जाएंगी और विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। तो बाबा आकर के ये सुंदर राह हम बच्चों को दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में इसी राह को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, परंतु बाबा कहे जहां अज्ञानता का अंधकार हो तो भक्ति करने के बावजूद भी वो राह दिखाई नहीं देती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे माया से डरो मत, बल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई कि जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, पुरुषार्थ में आगे नंबर वही बच्चे लेते हैं जो पूरा पूरा बाप पर बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं, बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते हैं, अपना कखपन ये पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसीलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना, कितना बाबा प्यार से बच्चों को कहते मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं, वहां ही ठोकरे खाते रहते हैं। अज्ञानता का अंधकार है तो ठोकरे तो खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। कितनी प्रबल है माया जो बुद्धि योग बाप के साथ लगने नहीं देती है। समझते भी है एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं रहेगी, बाबा की याद से फिकरात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही ज्ञान दाता है, स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कह सकते हैं, वो तो प्रालब्ध जीवन में है, तो प्रालब्ध भोग रहे हैं, तो वहां ज्ञान की
जरूरत नहीं। फिर बाबा के सागर एक ही होता है, परमात्मा ही ज्ञान सागर है, वो एक ही है, और स्थूल में भी इस धरती के चारों ओर एक ही सागर है। बाबा का इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है। फिर उनको बांटा गया है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई

ना सके, ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर ना आओ। सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहेंगे। यहां तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था, जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई छीन न सके। यहां देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है, एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपए देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान दाता एक परमात्मा है जो इस समय आकर हमें ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ ऐसे कहेंगे, हाँ बाबा कहते हैं, हाँ ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने हैं, इस प्रारब्ध को पाई है। तुम ही थे, तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। बाबा की मत बहुत सिंपल है, वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी वापस जाना है बाप के पास, यह भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। बाबा ने हमें पहले सावधान किया हुआ है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएंगी, दो मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते थकना नहीं है। अच्छा एक मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना, अंदर में ये पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैशालय है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो ये पुराना शरीर है, बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना, ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए हैं। बाबा क्या ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। यह भी समझाया है, क्या समझाया है, अंत मते सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी, आकर्षण होगी। बल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। बाबा कहे छोटेपन से ही, क्योंकि ज्ञान के संस्कार ले गए हैं तो संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना, जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं, जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं, ऐसे ही बाबा कहे, यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुक तो करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे,
वो फिर से बाप के पास आकर के क्या करेंगे, मालिकम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेंगे, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अंत तक सर्विस जरूर करो। विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि आदि। क्या कहेंगे? शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि, ये ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। दुनिया में मनुष्य शरीरों को देखकर कहेंगे कि हाँ शिवानंद ने ज्ञान दिया, लेकिन यहाँ कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा कहते, मैं ऊंचते ऊंच हूं, मुझ आत्मा का नाम है शिव। अपना परिचय भी बाबा खुद देते हैं, शिव परमात्मा नमः कहते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताएं नमः। यह भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, दादा है बड़ा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले ये सुनते हैं, बाप को कहता हूं, बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूं। देखो बाप दादा की रूरिहान। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूं, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूं। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी वही होना होता है। बाबा कहते कुर्बान भी होना होता है, तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूं, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं वह कोई गरीबों को दान नहीं होता। कॉलेज बनवाया तो उससे तो आमदनी होती है, तो वह कोई गरीबों को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है। परंतु दान तो करते हैं ना, वहां स्थूल ज्ञान का दान होता है। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, अनेकों को वहां ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसीलिए उसका कर्मों का फल बाबा बताते दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, ये आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है, इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। हम क्या दान करते, अपना कखपन, और बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना,
या यह आर्य समाज ले लेवे, वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना शाहूकार होता। तुम जानते हो वहां जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहां तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं, वहां तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे? फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियां, मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है। बाप के पाठ को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? 5 पांडव बचे। अच्छा फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राजाई करेंगे। बाबा कहते राजयोग सीखा फिर क्या हुआ? तो जरूर जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़ी थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था बाबा का। गीता रोज पढ़ना तो गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते कुछ भी समझा नहीं। अब समझ में आया कि उस समय कुछ नहीं समझा था, डिब्बी में ठिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहां भी तो सब पवित्र बन न सके, इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उठलेगी जरूर। हाँ, बाप की शरण में आएंगे, लेकिन बाबा कहते जो पुराने संस्कारों रूपी बीमारी है उतलेगी जरूर। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्ट मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए, बाप के बन गए गोया, इस दुनिया से मर गए, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वो जैसे कुछ भी है नहीं। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है। कितनी प्यार से बाबा ये बात कहते, घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए, फिर क्रोध क्यों करते? शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते ये विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, बस पूरा करना है। ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे, भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा दोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूं फिर ये बातें क्यों याद आई? बाबा साकार में जब थे तो अपने आप को चुटकी काटते थे कि हम नारायण की याद में बैठा हूं फिर ये बातें क्यों याद आई।
तो यहाँ भी ऐसे होता है, अनुभवी है बाबा। तो कहते यहाँ भी बाबा को याद करने बैठते और ऐसा होता है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है, अच्छा छोड़ो धंधे धोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, दे अभिमान छोड़ते जाओ। क्या छोड़ने के लिए कहा? घर बार नहीं। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदर लायक बन जाएंगे। ब्रह्मरी का, कछुए का ये सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन है, तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू करती हो, ये दृष्टांत अभी का है, ये बता न सके। बाबा कहते वह बता न सके, त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, सतयुग त्रेता में त्योहार मनाते नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के। द्वापर के बाद सारे त्योहार मनाना आरंभ करते हैं। अभी देखो कृष्ण जयंती थी, श्री कृष्ण की मूर्ति मिट्टी की बनाई, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो ये क्या करते हैं? यह है अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने श्री कृष्ण की पूजा छोड़ दी, इसीलिए यह हाल हुआ है। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण कुल भूषण है परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में है ये शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा हो जो कोई समझ ना सके। बाबा कहे तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा हो जो कोई समझ न सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी है हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खलास, वहां की वहां रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, कहेंगे जरूर कि प्रभु से मिलने की राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चले वर्षा लेवे ये बुद्धि में नहीं आता है। बहुत अच्छी सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारियां, ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छी सेवा कर रही ब्रह्मा कुमारी, बस अरे तुम भी तो समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहां से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है, अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम है संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया, यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे, साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत कुछ देखेंगे। अच्छा अंतिम समय में बाबा कहे बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत देखेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की
रूहानी बात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दूरी के ख्यालात है, उन्हें उतार देना है, याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट बाबा, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट बाबा। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सतबाप, सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं, वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता, वे ऐसे अनुभव करते जैसे भरपूर है, खुशियों की खान मेरे साथ है, जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया, ऐसा अनुभव करते। आज का स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, आज पहली अक्टूबर होने कारण अक्टूबर मास का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। परोपकार की भावना से संपन्न बनने के लिए हर आत्मा के गुणों को ही देखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान दो। अपने समय को, सुखों को, नाम शान मान सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अच्छा, ओम।